0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। इस शो में हम उन किताबों का सफर करते हैं जिनकी सोच ने तरीका इस सफर को बदला है, तहजीब को रोशन किया है और इंसानी तरक्की को नया रुख दिया है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं बल्कि आपको इनवाइट करना है कि आप खुद पढ़ें, सोचें और अपनी जिंदगी में उन आइडियाज को टेस्ट करें जो इन किताबों ने दुनिया को दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलियाना की रोशनी से। आज के एपिसोड में एक ऐसी नॉवेल पॉलियाना जो 1913 में पब्लिश हुई और जिसने उम्मीद को एक जीने की स्ट्रेटेजी बना दिया, हम उसका सफर करेंगे। इस कहानी की छोटी सी हीरोइन अपने ग्लैड गेम से पूरे शहर की सोच बदल देती हैं। ये नॉवेल एलेनोर एच पॉटर ने लिखी और इसका पॉजिटिव मैसेज उस दौर के सोशल चैलेंजेस के दरमियान लोगों के दिलों को रोशन करता चला गया। दोस्तों, एलेनोर एच पॉटर अमेरिकन नॉवलिस्ट जो 1868 में पैदा हुई और 1920 में वफात पा गईं। वो बच्चों और जवान कारीन के लिए ऐसी कहानियां लिखती थीं जिनमें इंसानी रिश्ते, ईमान और उम्मीद को सेंट्रल जगह मिलती थी। पॉलियाना ने उन्हें लिटरली वर्ल्ड में मुस्तहकम मकाम दिया। बात करें हिस्ट्री की तो 1913 के अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरी जिंदगी की तेज रफ्तारी और सोशल तब्दीलियां बढ़ रही थीं। ऐसे माहौल में लोगों को ऑप्टिमिज्म की जरूरत थी और पॉलियाना ने वही सांस दी। नॉवल की सीरियल रूट्स क्रिश्चियन हेराल्ड से हैं और किताब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से होता है कि सिर्फ पहले 7 सालों में 47 प्रिंटिंग्स हुई, मतलब कारीन ने इस पैगाम को दिल से अपनाया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में ऐसा क्या खास है, तो आइए जानते हैं कि ये बुक लिखी आखिर क्यों गई। भाई, पॉटर ने एक सीधा लेकिन बड़ी सोच वाला आइडिया दिया और वो ये कि पॉजिटिविटी एक कॉन्शियस चॉइस हो सकती है। ग्लैड गेम हर सिचुएशन में किसी चीज पर खुश होने की मश्क पॉलियाना के वालिद की तालीम से आती है और हीरोइन इसे प्रैक्टिकल बना देती है। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। स्टोरी ब्लेजिंग विला वर्मोंट की फिक्शनल शहर में सेट है। छोटी सी पॉलियाना अपनी स्ट्रिक्ट खाला पॉली के घर आती हैं। घर ठंडा, रूल्स सख्त, लोग अपनी अपनी टेंशन में बंद, लेकिन पॉलियाना के पास एक गेम होता है। अगर एक्सपेक्टेड डॉल के बजाय मिशनरी बैरल से क्रचेस मिल जाएं, तो खुश इस बात पर हो जाए कि तुम्हें क्रचेस की जरूरत ही नहीं। अगर एटिक रूम में कारपेट्स पिक्चर्स नहीं, तो हाई विंडो का खूबसूरत व्यू देखकर ग्लैड हो जाओ। इस तरह वो नैन्सी, घर की जो मेड थी, मिस्टर जॉन पेडल्टन और शहर के दूसरे अफराद की जिंदगी में रोशनी भरती रहती थी। कहानी में एक वाकया आता है कि पॉलियाना का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पॉलियाना को चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ नॉवल दिखाती है कि जब पॉजिटिविटी को सबसे सख्त इम्तिहानात मिलते हैं, तब कम्युनिटी का सपोर्ट और ग्लैड गेम की असली कुव्वत सामने आती है। वहीं अगर बात करें इस बुक के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और व्यू पॉइंट्स की, तो ऑप्टिमिज्म एज प्रैक्टिस, यानी उम्मीद को डेली हैबिट बनाना चाहिए। और वहीं लैंग्वेज एंड पॉजिटिविटी के हवाले से देखें, तो रिसर्च और रेफरेंस वर्क्स ने बताया कि लोग ज्यादा पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसे पॉलियाना इफेक्ट भी कहा गया है। वहीं फेथ एंड कम्युनिटी में नॉवेल की सेंट्रल आर्क्स में रिश्तों का हील होना, शहर का नजरिया बदलना और इंसानी मेहरबानियों का फिर से जिंदा होना है। दोस्तों, लिटरेरी और कल्चरल इन्फ्लुएंस पे रोशनी डालें, तो पॉलियाना को चिल्ड्रंस क्लासिक का दर्जा मिला है और उसका असर सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा। मैरी पिकफोर्ड की 1920 साइलेंट फिल्म एडेप्टेशन ने कैरेक्टर को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। बाद में डिज्नी की एडॉप्टेशन 1960 के बारे में लोग अक्सर रेफरेंस देते हैं। मैरी पिकफोर्ड फाउंडेशन की आर्काइव्स और फिल्म हिस्ट्री सोर्सेज इस कल्चरल फुटप्रिंट को डॉक्यूमेंट करती हैं। इसका सीक्वल पॉलियाना ग्रोज अप, जो 1915 में आया, इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये कंटिन्यूटी दिखाती है कि स्टोरी और उसके आइडियाज ने ऑडियंस को लंबे अरसे तक इंगेज रखा था। वहीं ख्वातीनों हज़रात, मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात करें, तो साइकोलॉजी और एवरीडे लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को साइकोलॉजी में पॉलियाना इफेक्ट या पॉलियाना प्रिंसिपल के हवाले से एक्सप्लेन किया गया कि लोग अक्सर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्रोसेस करते हैं और ज्यादा याद रखते हैं। अथॉरिटेटिव रेफरेंस जैसे ऑक्सफोर्ड रेफरेंस इन टेंडेंसी को लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव लेवल पर समझते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये है, अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में कॉन्शियस

सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।

वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक के हवाले से आज हमने क्या जाना कि माइक्रो ग्लैड लिस्ट, रोज तीन चीजें लिखें जिन पर आप ग्लैड हैं, हेल्थ, रिश्ते या छोटी छोटी कामयाबियां। लैंग्वेज रीसेट करें, अपनी बातचीत में नेगेटिव से पहले पॉजिटिव एंगल खोजिए। ऑक्सफोर्ड के डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं कि जबान खुद पॉजिटिविटी की तरफ झुकती है, इससे फायदा उठाइए। वहीं कम्युनिटी केयर की बात करें तो नोवेल की तरह अपने माहौल में छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शुरू करें, ये सोशल ऑप्टिमिज्म को कॉन्टेजियस बनाता है। पॉलियना हमें ये याद दिलाती हैं कि पॉजिटिविटी अंधा ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि इंटेंशन प्लस एक्शन है, अपने नजरिए को कॉन्शियसली चूज करने का, अपनी जुबान को बेहतर बनाने का और कम्युनिटी को रोशन करने का। तो दोस्तों, पॉलियना का कोर मैसेज ये है कि उम्मीद को आदत बनाइए। ग्लैड गेम सिर्फ बचपना नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड नजरिया है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी रोशनी ढूंढने की सलाहियत देता है। इस गेम का कंसेप्ट ये सिखाता है कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल होता है, बस हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। इस नॉवेल का असर सिर्फ लिटरेचर तक महदूद नहीं रहा, इसने फिल्म, थिएटर और रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। आज के फास्ट पेस्ड और स्ट्रेस फिल्ड दुनिया में भी ये अप्रोच रेलेवेंट है, क्योंकि पॉजिटिविटी और रेजिलियंस टाइमलेस वैल्यूज देती हैं। दोस्तों, जब जिंदगी एटिक रूम जैसी लगे, गरम, खाली, बेकार, तब विंडो का व्यू याद रखिए। अक्सर रोशनी वहीं होती है जहां हम देखना चाहते हैं। पॉलियना हमें ये सिखाती हैं कि ऑप्टिमिज्म कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल का टूल है। हर इंसान के पास चॉइस होती है, या तो वो अंधेरे पर फोकस करे या फिर रोशनी की तरफ देखे, और अक्सर वो रोशनी हमारी सोच के अंदर ही होती है। तो दोस्तों, शुक्रिया साथ रहने के लिए इस सफर पर। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो पॉलियाना को जरूर पढ़कर अपनी ग्लैड गेम शुरू कीजिए। शायद आपको लगे कि ये सफर एक नॉवेल है, लेकिन इसके अंदर एक फिलॉसफी छुपी है जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। अगली दफा हम एक और ऐसी ही किताब पर बात करेंगे जो सोच बदलेगी, एक ऐसी बुक जिसने सिर्फ लिखने वालों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नए आइडियाज दिए हैं। हम उसके कंटेक्स्ट, उसकी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट्स और उसके कल्चरल इम्पैक्ट को सिंपल और इंगेजिंग अंदाज में समझेंगे। भाई तो जरूर जुड़िएगा एक और थॉट प्रोवोकिंग सफर के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड से सरवर मिर्जा और साउंड डिजाइनर शकेब अहमद जी को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

की इब्तिदा हम करेंगे एक बुनियादी सवाल से कि क्या हर इंसानी तकलीफ को फौरन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम देना दुरुस्त है, और दूसरी तरफ क्या हर नफसियाती मसले को सिर्फ ईमान की कमजोरी कहकर छोड़ देना दुरुस्त है। तो इन सवालात के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी, तो कबूल कीजिए सलाम व तहियात, और तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत ही एक अहम गुफ्तगू होने वाली है। सभी के नाम इब्तदाई में आपको एक इल्मी नुक्ता बता दूं कि जदीद साइकोलॉजी और साइकेट्री के डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क पर तंकीद सिर्फ इस्लामी हलकों की तरफ से नहीं हुई बल्कि खुद मगरबी नफसियाती दुनिया के अंदर भी इस पर सवालात उठाए गए हैं। तो इस सिलसिले में बाज़ ने ये सवालात भी उठाए हैं कि इंसानी फितरत कहाँ ख़त्म होती है और बीमारी कहाँ शुरू होती है। सभी कराम आज का इंसान बाज़ औक़ात परफेक्शन के इल्यूशन में मुब्तला है। उसे लगता है कि एक हेल्दी पर्सन वो है जिसे कभी गम ना आए, कभी एंग्जाइटी ना हो, कभी इनसिक्योरिटी ना हो, कभी खौफ महसूस ना हो, कभी रोना ना आए और हमेशा मोटिवेशन 100% रहे। हालांकि ऐसा इंसान दुनिया में है ही नहीं। इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, कभी वो खुश होगा, कभी गमगीन, कभी मुतमइन होगा, कभी परेशान, कभी एतमाद बुलंद होगा, कभी किसी वाक़े के बाद दिल लरज जाएगा। यही ज़िंदगी है। साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें सामने कराम, तो एक तारीखी पहलू है जिसका जिक्र करना नागुज़ीर है। बगदाद में अब्बासी दौर के दौरान जहनी अमराज के इलाज की रिवायत है, और इसे मगरबी इदारा जाति नफसियाती इलाज से बहुत पहले की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। साइकोलॉजी की तारीख पर लिखी गई मगरबी किताबों में मुस्लिम इल्मी वरसे मसलन अबू ज़ैद अल-बलखी, इमाम गज़ाली और इब्न सीना का जिक्र बहुत महदूद दिखाई देता है। हालांकि यही फ़िक्हुन नफ्स का बुनियाद है, और फ़िक्हुन नफ्स ये कोई मखसूस स्कूल ऑफ थॉट का नाम नहीं, बल्कि फ़िक्हुन नफ्स ये इंसानी नफ्स को उसके खालिक की दी हुई हिदायत की रोशनी में समझने की कोशिश है। कोई उसे इस्लामिक साइकोलॉजी कहे, कोई इस्लामाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी कहे, कोई इस्लामिक थ्योरी ऑफ द सेल्फ कहे, तो नाम का ये मौजू सेकेंडरी है। असल सवाल ये है कि इंसान है क्या। अगर इंसान को सिर्फ न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और बिहेवियर के मजमू के तौर पर देखा जाएगा तो डायग्नोसिस भी उसी दायरे में होगा, लेकिन अगर इंसान जिस्म भी है, नफ्स भी, कल्ब भी, रूहानी जिम्मेदारी रखने वाली मखलूक भी, और अपने रब के सामने जवाबदेह बंदा के तौर पर भी अगर देखा जाए तो फिर सेहत की तारीफ भी ज़्यादा वसी हो जाएगी। तो एक बड़ी गलत फहमी दूर करने की ज़रूरत है, वो ये कि कभी कहा जाता है कि अगर ईमान जहनी सुकून दे तो फिर दीनदार लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार क्यों होते हैं। ये सवाल दरअसल ख़ुद ईमान की डेफिनेशन को बहुत महदूद कर देता है। क्या ईमान सिर्फ ये है कि इंसान अरकान ईमान याद कर ले, या फिर ज़ाहिरी मजहबी शनाख्त इख्तियार कर ले, कुरान पढ़े, मस्जिद जाए, ये सब अपनी जगह नहायत अहम है, मगर ईमान इंसान के अखलाक, ताल्लुकात, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल, रज़ा और मामलात में भी जाहिर होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि कामिल ईमान का तकाजा है कि इंसान अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह पड़ोसी को अजियत पहुँचाना भी ईमान के कमाल के मुनाफी रवैया है। तो एक शख्स बज़ाहिर रिलीजियस हो सकता है मगर उसे अभी गुस्से पर काम करना है, तवक्कुल पर काम करना है, माल की मोहब्बत पर काम करना है, लोगों से ताल्लुक पर काम करना है, और तकदीर के साथ अपने कल्बी ताल्लुक को मजबूत करना है। तो ईमान कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है कि बस है या नहीं है, उसके दर्जात होते हैं, उसका ज़ौक है, उसका असर है, और उसकी मुसलसल निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। वैसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की रोशनी में ये बात सामने आई है कि ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़ाहरी मजहबी शनाख्त बहुत वाज़ह होती है मगर जब अंदर की दुनिया खुलती है तो वहाँ दुनिया से शदीद वाबस्तगी, औलाद के बारे में हद से बढ़ी हुई एंग्जाइटी और प्रॉपर्टी के मसाइल, तकदीर के बारे में इस्तराब और रज़ा व तस्लीम की कमज़ोरी सामने आती है। ये दरअसल किसी की दीनदारी का मजाक नहीं बल्कि अपने आप से सवाल है कि मेरे जाहिर से आगे मेरे बातिन में ईमान कितना उतरा है। मेरी ज़बान अगर कहती है कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ, लेकिन क्राइसिस के वक्त मेरा दिल क्या कहता है। यही वो मकाम है जहाँ इंफॉर्मेशन अबाउट फेथ और लाइफ फेथ में फ़र्क सामने आ जाता है। अब मोमिन को मौत का खौफ महसूस ही नहीं होना चाहिए, बात ऐसी नहीं। अशद से

ना हो। नतीजा नतीजा यह है कि वो मुसलसल कंपैरिजन में रहता है, मुसलसल टेंशन में रहता है, मुसलसल दूसरों की राय से अपनी सेल्फ वर्थ नापता है और एक वक्त पर यह रिलेशन ब्रेकडाउन या पर्सनैलिटी डिसफंक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सामने एक जाविया ये भी है कि सरफेस सिम्टम्स पर पहुंचने से पहले रूट डिजीज पर काम होना चाहिए, यानी सिर्फ ये ना पूछो कि आप उदास क्यों हैं, ये भी पूछो कि आपकी पूरी सेल्फ इमेज दूसरों की अप्रूवल पर क्यों खड़ी है। समझ के जदीद नफसियात में बाज साइकोथेरेपी अप्रोच जैसे कॉग्निटिव थॉट्स या बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियर्स पर जो काम करती हैं ये सब थॉट्स, तो ये बिलाशुबा मुफीद हो सकता है, लेकिन अगर इंसान की असल मुश्किल किसी गहरी रूहानी या अखलाकी खराबी से मुतालिक हो तो सिर्फ थॉट रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी नहीं हो सकती। यानी सरफेस करेक्शन तो ज़रूरी है मगर साथ साथ रूट करेक्शन भी ज़रूरी है। मसलन कोई शख्स हर वक्त दूसरों के बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मुझे कम न समझें, मैं उन्हें साबित कर दिखाऊंगा, तो फ़िक्र-उन-नफ्स का जाविया ये सवाल भी शामिल करता है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के सामने खुद को साबित करने में क्यों लगा रहे हो, अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते। किसी ख़ानदान या नस्ल से ताल्लुक रखता हो, ईमान की बुनियादी कदर के अतबार से सब एक उम्मत का हिस्सा हैं। इसी क़ुव्वत का एक दूसरा तकाजा है, नसीहत और नुसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो ख़्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मज़लूम हो तो समझ आता है कि उसकी मदद करें, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका हाथ जुल्म से रोको दो, यही उसकी मदद है। तो यहाँ इस्लाम ने जाहिलियत के पूरे तसव्वुर को बदल दिया है। जाहिलियत में मतलब ये था कि मेरा कबीला है इसलिए हर हाल में उसके साथ दूंगा, चाहे वह हक पर हो या बातिल पर। इस्लाम ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम्हारा भाई मज़लूम है तो उसे जुल्म से बचाओ, और अगर वो ज़ालिम है तो उसे जुल्म करने से बचाओ। यानी हकीकी नुसरत वो नहीं कि हम किसी के हर अमल को डिफेंड करें, हकीकी नुसरत ये है कि उसे हक के साथ खड़ा करें, बातिल से रोकें, अदल की तरफ वापस लाएं, और यही उख़ुव्वत इस्लामी का मेयार है। और इसी उसूल का तकाजा ये भी है कि मुसलमान दुनिया के किसी हिस्से में मज़लूम हों तो बाकी उम्मत उनसे बेनियाज ना रहे। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्तेआत के मुताबिक उनका साथ दें, दुआ, माली मदद, इंसानी इमदाद, आवाज़ उठाने या दीगर जायज़ वसाइल के ज़रिए। तो यहाँ असल उसूल किसी एक मुल्क या एक ज़माने तक महदूद नहीं, मज़लूम के साथ खड़ा होना और ज़ालिम की मदद न करना। अगर कोई ताकत जुल्म की पुश्त पनाही करे, ख्वाह वो किसी भी नस्बत से हो, तो इस्लामी उख़ुव्वत हमें ये नहीं सिखाती कि ताल्लुक या मसलहत के नाम पर जुल्म को दुरुस्त कह दिया जाए, बल्कि असल मेयार तो अदल है। अब इसी तरह उख़ुव्वत ईमानी का एक बहुत बड़ा हक है बाहमी कफालत, यानी एक अगर भूखा हो और दूसरा आसूदा हाल, एक के पास लिबास न हो और दूसरा इजाफी लिबास रखता हो, एक बेघर हो और दूसरा उसकी मदद की इस्तेआत रखता हो, एक बीमार हो और इलाज से महरूम हो, एक ज़ख्मी हो और कोई उसके ज़ख्म की खबर न ले, ये किस किस्म की उख़ुव्वत होगी। इस्लाम कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज़बान से कहें हम एक उम्मत हैं लेकिन एक दूसरे के दर्द से अमली तौर पर लाताल्लुक रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की मिसाल एक जिस्म से दी, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इज़ इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु सायिरुल जसद बिस्सहल वल हुम्मा। अहले ईमान अपनी मोहब्बत, रहमत और बाहमी हमदर्दी में एक जिस्म की मानिंद हैं। जिस्म का एक उज़्व तकलीफ़ में हो तो पूरा जिस्म बेखाबी और बुखार में उसके साथ शरीक हो जाता है। इसी तरह मज़ीद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल-बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए अपनी उंगलियाँ एक दूसरे में पेवस्त करके दिखाएं, यानी इसका मतलब है कोई अकेला सुतून पूरा मकान नहीं उठाता, पूरी इमारत तब खड़ी होती है जब एक हिस्सा दूसरे को सहारा देता है। इस्लामी मुआशरा में भी ऐसा ही होना चाहिए, कवी ताकतवर कमज़ोर का हाथ पकड़े, साहिब वसत मोहताज की मदद करे, इल्म रखने वाला इल्म की रहनुमाई करे, महफूज इंसान खौफ ज़दा इंसान का सहारा बने, और कोई शख्स इस्लामी माशरे में महज इसलिए भूख से न मरे कि बाकी लोग अपने अपने दस्तरखानों में मसरूफ़ थे। इसी मफहूम के एक मारूफ रिवायत के माना में यूँ बयान किया गया है कि जो शख्स खुद पेट भर कर सोए जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो, उसने इस्लामी उख़ुव्वत के हक़ को पूरा नहीं किया। इसीलिए अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और हमारे करीब कोई बुनियादी ज़रूरत से महरूम है, तो उख़ुव्वत का इम्तिहान वहीं शुरू

0: है तो खौफ आपको गाड़ी देखकर रुकने पर मजबूर करता है, अगर खतरा है तो फियर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है, यानी अगर खौफ सही माने में हो तो इंसान को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर खौफ इतना बढ़ जाए कि वो ग्रोथ रोक दे, इंसान को घर से निकलने न दे, काम करने न दे, ताल्लुकात तोड़ दे या बार बार पैनिक की कैफियत पैदा कर दे, तो वो अनहेल्दी टेरिटरी में दाखिल हो चुका है। यहाँ खौफ पैनिक अटैक्स या क्लिनिकल एंग्जाइटी की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो इमोशन बजात खुद कोई डिजीज नहीं, इस इमोशन का पैटर्न, शिद्दत, ड्यूरेशन और असर अहम है। अब जरा एक शख्स की मिसाल लीजिए जो हर वक्त ये समझता है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, बॉस उस पर नजर रख रहा है, कोई उसकी बात सुन रहा है। इब्तदाई मरहले में मुमकिन है वो रोजमर्रा जिंदगी भी चला रहा हो, ऑफिस जाता हो, मीटिंग्स अटेंड करता हो, बाहर से फंक्शनल दिखाई देता हो, लेकिन फिकुनस का जाविया उसे यह बताता है कि बदगुमानी अभी से डिजीज है। उसे अभी एड्रेस करो, उससे कहो अपनी इस्लाह पर तवज्जो दो, लोगों के जहन पढ़ना बंद करो, हर नजर को अपने खिलाफ सिग्नल न समझो, हर खामोशी को साजिश न बनाओ। तो इस तरह ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जब रूट पैटर्न पैदा हो रहा है, न कि उस वक्त जब क्राइसिस मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाए। तो सामने कराम, ये पूरी गुफ्तगू दरअसल हमें एक ज्यादा जामे तारीफ की तरफ ले जाती है कि नफसियाती सेहत सिर्फ ये नहीं कि इंसान काम पर जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, बल्कि सवाल ये भी है क्या उसके दिल में तकब्बुर है, क्या वो हसद में जल रहा है, क्या बदगुमानी ने ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, क्या वो हकीकत कबूल कर सकता है, क्या वो गलती मान सकता है, क्या अल्लाह के बारे में उसका गुमान दुरुस्त है। तो यहाँ काफ़ी हेल्थ सिर्फ फंक्शनिंग नहीं बल्कि इनर बैलेंस भी है। तो जैसा कि हमने सामने कराम प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा था कि रूहानी और अखलाकी बीमारियों की अहमियत तस्लीम करने का मतलब ये नहीं कि क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या दीगर नफसियात बीमारों को सिर्फ बीमारियों को सिर्फ कमजोरी मान कर नज़रअंदाज कर दिया जाए। जिस्म की बीमारी का इलाज होता है, दिमाग और जहन की बीमारी का भी इलाज होता है, और दिल और किरदार की बीमारियों की इस्लाह भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये तीनों डायमेंशंस आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए हिकमत यह है कि न रूहानी पहलू को इग्नोर किया जाए और न मेडिकल या साइकोलॉजिकल केयर को। तो सामने कराम, आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस हल्के का मरकजी पैगाम ये है कि इंसान की बीमारी सिर्फ वो नहीं जो लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक मैनुअल में दिखाई दे। कभी बीमारी तकब्बुर, कभी हसद, कभी बदगुमानी, कभी अपनी गलती मानने से इनकार, कभी होपलेसनेस और कभी लोगों के सामने खुद को प्रूव करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी खो देना। इसी तरह हर गम डिप्रेशन नहीं, हर खौफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं। गम कभी मोहब्बत की निशानी है, खौफ कभी हिफाजत करता है, लेकिन जब यही कैफियत उम्मीद, इबादत, ताल्लुक, काम और हकीकत को डिस्टॉर्ट करने लगे तो फिर वो अटेंशन मांगती है। और शायद यहाँ फिकुन नफ्स की असल दावत ये है कि सिर्फ ये ना देखो कि तुम बाहर से कितने फंक्शनल हो, ये भी देखो कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना हेल्दी है। क्योंकि कभी इंसान दुनिया के सामने बिल्कुल कामयाब दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो रही होती है जिसने उसके सुकून, ताल्लुकात और आखिरत तीनों को खतरे में डाल रखा होता है। ऐसे के साथ सामीन, आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: boom, got a shake up, aankhon mein fire, level makeup, kal jo khwab the, aaj chase up, duniya jo bole, side mein karke, aankhon ko kholo, wake up, hey, doha wala mein kabir,
1: yehi kahunga, subah subah,
0: wake up,
2: har hafte, Sunday to Thursday, subah 6 baje se, sirf FM 107 par, dil se desi.
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है
4: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस मेरे लिए
3: तो कभी नए सपने दिखाता है मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द

रिक्वेस्ट शो, चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक। हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: क्वेस्ट शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
2: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: FM 107, Time Check. Time
1: Check. हाँ मुझे पता है, मैं छह बज के एक मिनट हो रहा है, पहले तो ये बता दूं, सब पता है मैसेज क्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग के लिए नहीं आ रहे मुझे मैसेजेस, गुड मॉर्निंग के लिए तो आ ही नहीं रहे, लोग जानना चाह रहे हैं आया कि नहीं आया, लग सा नहीं रहा है, ऐसा दिल ऐसा धड़क सा रहा है, आ गया भाई आ गया, जिसम आया, रूह तो वहीं सोफे पे, मतलब तकिया लगाए हुए सो रही है पसर के।

0: वेकअप जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और आ गया हूँ सवेरे सवेरे भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी तो मैं क्या बताऊँ, मैं अभी मेरी स्कूल, अभी स्कूल का सेशन मेरा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। लोग पढ़ लिख के स्कूल से कॉलेज जाके नौकरी पकड़ चुके हैं, मेरा अभी भी स्कूल चल रहा है। बैक टू स्कूल सिर्फ बच्चों का थोड़ी है भाई, मेरा भी है। मैं भी अभी छोटा बालक ही हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। दो तीन चीज़ों की कमी है, मैं तो कह रहा हूँ ये गाड़ी वाड़ी हटा दो और मुझे कोई स्कूल बस लगवा दे बढ़िया वाली, स्कूल बस मुझे ड्रॉप करके जाए। मैं गले में एक भाई साहब बोतल भी टांग लूँगा, थर्मस तो ला ही रहा हूँ, ये चाय के थर्मस को गले में टांग लूँगा, बढ़िया सी यूनिफॉर्म पहन लूँगा, एकदम चौकस हो जाएगा भाई मामला। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जिनके लिए सरप्राइज़ है मेरा मॉर्निंग है ना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरप्राइज़ आपको और कुछ टाइम तक देखना ही पड़ेगा, आप आई कांट हेल्प इट। बट जिनके लिए सरप्राइज़ नहीं है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ मैसेजेस हैं, अच्छी बात है ना स्कूल चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये, मतलब दिलासा दे रहे हो क्या मोहसिन भाई, गुड मॉर्निंग भाई। और एक मैसेज आया भाई, अब 7-2 सुनने को मिलेगा, अरे हाँ जाहिद भाई क्या याद दिलाया, वालेकुम अस्सलाम भाई गुड मॉर्निंग। और एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम है, वालेकुम अस्सलाम सुभाष भाई, क्या हाल है भाई के, भाई कल हमने चैनल चुनल बना दिया, दे दिया आपको बढ़िया करके, ठीक है। बाकी मैं सच में सोच रहा हूँ बैक टू स्कूल, क्योंकि मेरा भी है, तो बच्चों आप अकेले नहीं है बेटा, मेरे भी समर हॉलीडेज ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गए, हम सब उठ के पढ़ाई पे जाएंगे। तो मैं तो पढ़ाई पे आ गया हूँ, इस शो में बहुत कुछ होने वाला है। आज जो है कहानी जो आएगी वो 7:30 बजे के करीब आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली स्टोरी तो चाहिए है ना, मतलब थोड़ी है आपको, ये लड़का सुबह सुबह 4:30 बजे उठा है, मतलब कौन ही भाई, कहानी चाहिए। तो 7:30 बजे या 7:15-20 अभी टाइम डिसाइड नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, ऐसा जल्दी में सोचा नहीं मैंने, मगर इसी के आसपास होगी कहानी, ठीक है। आपको तो कानून पता ही है, तो सुबह और शाम का एक ही सीन है, सुबह के अधिकार शाम के अधिकार होते हैं, वैसे ही सुबह के अधिकार होंगे। तो 10 मिनट देते सेकंड के बाद आपसे मुलाकात होगी। बाकी मैं कह रहा था जी उठ जाओ भाई, आ लिया वापस में, ठीक है। हाँ एक वेलकम बैक भी आ गया मुझे, अरे थैंक यू सो मच परवेज भाई, वालेकुम सलाम, जजाकल्ला। मिलते हैं फिर, ज़रा उधम काटेंगे, ठीक है, जाना नहीं है आपने भाई, आ जाओ अब, आंखें खोल देंगे भाई पूरी।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

वो सुबह और लोग गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं कर रहे, दे जस्ट चेकिंग. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हैं आप फैसल भाई, क्या चल रहा है मेरा भाई. राबिया मैंने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप. एक मैसेज, कबीर भाई सोए हो या नहीं. भाई ये क्वेश्चन ना सोनू भाई आज मत पूछो भाई, कल से पूछना भाई. और एक मैसेज है सऊदी अरब से मोहसिन भाई का, और वो कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है स्कूल चल रहा है, आगे लिखते हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया. नहीं भाई, चाय का थर्मस मेरा जिंदाबाद, बढ़िया चीज़ है. अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम. और हमारे एक यूसुफ शमीम भाई हैं, भाई ने तो भाई भाई ने जो है आज मैसेज किया सीधा महवेश और नाजिया के लिए. भाई ने अंधा तो एकदम चला दिया तीर जहाँ जहाँ के लगे. यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, सुधर जाओ यूसुफ. और मैसेज किया है हमें अफसा बहन ने, उन्होंने मैसेज किया, उनकी भी ड्यूटी आज से शुरू होती है. मेरी भी आज से ड्यूटी शुरू हो गई है. वैसे आई डोंट फील लाइक ड्यूटी, मैं बच्चों के साथ हूँ, बिल्कुल बैक टू स्कूल की तरह मेरा भी बैक टू स्कूल ही चल रहा है. मैं तो बाकायदा अपना टिफ़िन भी लाया था मैडम, टिफ़िन मैंने सवेरे सवेरे ख़त्म कर लिया, पूरा टिफ़िन सूद गया, अब चाय चल रही है. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम राबिया बहन, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप. अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने बिलेटेड मुझे विश किया, थैंक यू सो मच. परवेज़ भाई वालेकुम अस्सलाम, जाहिद भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. और एक मैसेज, कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम. एक और यूसुफ भाई आए हैं और जिन्होंने वॉइस नोट्स भेजे हैं, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स क्या है कि मैं वॉइस नोट अभी बोलते बोलते सुन नहीं पाऊँगा. भाई जुनेद क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम जुनेद भाई. और मारुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. एंड एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये मैसेज क्या है, शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. हाय क्या हाल है भाई के. और एक मैसेज है, गुड इवनिंग कबीर भाई, होप यू फाइन, वेलकम बैक टू मॉर्निंग. ये जिसने भी भाई मेरे नाम की गुड़िया बना रखी है ना, कि इसको तो सुबह मैं ला के रहूँगा, तो भाई मत करो यार. अच्छा कुछ दिन है आज इंटरनेशनली मार्क्ड, काफ़ी सारे दिन हैं. एक तो जिन जिन का पगार का दिन है, मुबारक हो भाई, आज तो आपके अकाउंट में बारिश हो जाएगी भाई. अच्छा फिलहाल मैं कौन कौन से दिन है आज वो बता देना चाहता हूँ. तो आज है जिंजर कैट अप्रिसिएशन डे, जिनके पास जिंजर वाली वो बिल्ली होती है ना, बड़ी खूबसूरत दिखती है, जिंजर कलर जो होता है, तो उसको अप्रिशिएट करने वाला दिन है, ये भी दिन है भाई. इसके अलावा आज है नेशनल टोफू डे, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई टोफू, मेरे नहीं पल्ले पड़ा भाई. मुझे लगा मैं देखता रहता, मैंने कहा टोफू खा के देखेंगे एक बारी, मेरे नहीं समझ में आया भाई टोफू वोफू. पर आज है दिन उसका. और आज है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे. यू नो व्हाट विल हैपन, मैं आपको फ्यूचर दिखा दूँ अभी से. आज क्योंकि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे है ना, तो आपको तमाम जगहों पर लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे, क्या ज़माना था ना जब हम खत लिखा करते थे, चलिए आज हम एक दूसरे को खत लिख. ये नौटंकी में फंसना नहीं भाई, खामखा की चीज़ें भाई. अभी लोग इस दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे, एक दिन के लिए ऐसे बन जाएंगे जैसे वो तो बचपन से लेटर ही लिखते आ रहे हैं. तो ये इस जाल में फंसना वसना नहीं. आज है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, वो बात अलग है, लेकिन आएंगे आपके पास वीडियो, बता रहा हूँ. इनफैक्ट आपको सुनाई भी देगा कई जगहों पर, आज है वर्ल्ड राइटिंग डे, तो क्यों ना हम खुद को या किसी और को खत लिखें, आज मैंने एक खत लिखा है. जैसे बचपन में आदरणीय महोदय, बेसिकली हिंदी में. बट एनीवे, तो आज ये दिन है. इसके अलावा आज है एक्ने पॉजिटिविटी डे, और है बिल्डिंग एंड कोर्ट स्टाफ अप्रिसिएशन डे, ठीक है. और आज है चिकन बॉय डे. एक्चुअली मैं लॉस एंजलिस में ना एक 22 फुट का एक स्टैचू बनाया उन लोगों ने, उसमें एक लड़का है भाई, उसने चिकन का चेहरा पहना हुआ है, तो वो स्टैचू पता नहीं कि क्यों बनाया, वैसे वो मैस्कॉट था शुरुआत में, सो दैट इज़ देयर. बाकी आज अमरीकी लोग जो है चेस डे बना रहे हैं, अपना ही चल रहा है इनका, अभी इनके यहाँ तो सॉकर भी होता है, तो फिर क्या कह सकते हैं. और आज है आज चाइल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट अवेयरनेस डे. सोशल मीडिया बच्चों को नहीं होना चाहिए, बच्चे भी सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे ये अंकल, इस अंकल ने परेशान कर रखा है, ये कबीर अंकल आते हैं फोन नहीं यूज करने देते भाई, ये इनको हमारी जिंदगी से हटाओ. और आज है नो राइम नोर रीजन डे, खामखा का दिन बेसिकली. तो कुछ मैसेजेस है, गुलरेज भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू मॉर्निंग शो, आई मिस्ड यू अ लॉट, इवनिंग शो अपने लिए नहीं था ये, मैं मॉर्निंग शो के लिए कहना चाहता हूँ. माज भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग माज भाई. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, खुश रखें, हंसते रहें, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार बसीर भाई को. बसीर भाई के बाद एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, और इनके बाद मैसेज अली, अरे अलीना वे मिस जी बच्चे, बैक टू स्कूल. तो बच्चों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, आई स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन माय हाफ ईयरली एग्जाम्स. अलीना बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार बच्चे, एंड हाउ इज़ द स्कूल नाउ, थोड़ा नया नया सा लग रहा होगा ये क्या हो रहा है. लेकिन आजकल बच्चे भाई खुश रहते हैं स्कूल जाते हैं, मैं सही बताऊँ, हमारे जैसा कोई सीन नहीं था भाई. अल्लाह मैंने इसलिए कहा बेटा तुम्हें भी बच्चों के साथ ही भेजेंगे अभी, तो मैं सुबह मेरा भी बैक टू स्कूल ही चल रहा है अलीना, सो मैं भी बस्ता लेके आया हूँ. और मैं कभी

रिटर्न टू मॉर्निंग, और आज वन ईयर इम्पोर्टेंट डे, और आज वन, और आज एक और इम्पोर्टेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट डे, माज भाई कौन से इम्पोर्टेंट डे? अच्छा मैं आया मॉर्निंग में, अरे मेरा प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं कर रहा माज भाई तो ये मेरी तो चिप लगी हुई ना, अभी करप्ट चल रही है, एक दो दिन लगेगा इसे बैलेंस बिठाने में, क्योंकि लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखे मॉर्निंग बुलाया, अरे पूरा दिन मिलेगा तुम्हें, पूरा दिन मिलेगा, तो ये जो मुझे कैंडी पकड़ाई है कि पूरा दिन मिलेगा इस चक्कर में भाई मैं आ लिया। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मॉर्निंग वेलकम कर दिया, जज़ाकअल्लाह, लॉट्स ऑफ लव। अब आ गए हैं तो आ गए हैं, और अब आंखें पूरी पूरी खोल देंगे भाई, तो कहानी तो आ जाएगी 7:30 बजे, वो बात दूसरी है, लेकिन उससे पहले जो है मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल के दौरान ही बीच में कतर की सारी खबरें भी आ जाएंगी। तो पहले तो मुझे बताओ यार, इतने सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं जानना आप कौन सी ऐप पे हैं कौन सी पे नहीं है, वो बात दूसरी है, आपका पर्सनल मैटर है, पर कुछ लोग ऐसे चुनिंदा होते हैं जो हर जगह पे होते हैं भाई, हर जगह पे होते हैं वो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो हर जगह उनकी प्रेजेंस आपको मिल जाएगी, और कुछ लोग होते हैं बड़े स्पेसिफिक, या तो वो होते ही नहीं या होते हैं तो ना के बराबर होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कितनी ऐप्स चला रहे हैं आप, सारे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं क्या? अच्छा एक और कैटेगरी है, वो लोग जो उनको बस कोई कह दे कि ये स्टोरी लगाओ और चार लोगों को टैग करो, भाई वो तुरंत कर देंगे, चुटकी बजा देंगे साथ ही, वो नहीं पीछे हटते इन चीज़ों से। तो हर किस्म का इंसान है अभी मार्केट में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वैसे एक्टिव, क्योंकि मैं भाई नहीं कर पा रहा मेंटेन, मेरा तो एक्चुअली में ये काम होना चाहिए मेंटेन करना, मैं नहीं कर पा रहा भाई, मेरे से नहीं हो रहा, मैं समझ गया मैंने हार मान ली, मैं भाई कतई ओल्ड स्कूल इंसान हूँ, मेरे बस की को नहीं भाई, हर जगह पे प्रेजेंस दिखाना, हर जगह पे स्टोरी डालना मेरे से नहीं होगा, पर कुछ लोग हैं एंड आई जेन्युइनली फील फॉर देम, मतलब आई फील प्राउड ऑफ यू, बिकॉज ये मुश्किल काम है भाई मेरे से तो नहीं होता। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, थैंक यू। ये मैसेज क्या बिलाल भाई ने, बिलाल भाई शुक्रिया। एक मैसेज है, आपकी भैया सैलरी की बारिश होनी है अकाउंट में, भाई हमारे हो चुकी होती है भाई, एक तारीख दी है, पर एक देखो सीधी बताऊँ क्या है, कुछ लोगों की एक तारीख को आ रही होती है, कुछ लोगों की 25 को आ रही होती है, कुछ लोगों की 12-10 को आ रही होती है, मगर बाबा पगार का जो है ना, सैलरी का मामला ऐसा है, एक तारीख को आने वाली जो फील है ना वो नहीं है भाई, वो नहीं है बाकी तारीखों में, ठीक है आती है बाकी की अलग अलग तारीख में, लेकिन जो एक तारीख को आ रही है ना जिनकी, ये असली मतलब, हाँ हाँ कहने में मजा आता है, महीने की पहली तारीख है, तो महीने की पहली तारीख 1 सितंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे हम सबके लिए, बच्चे भी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है कबीर अंकल, कैसे आप, तो अंकल कह ही सकते हो, बुरा भी नहीं मानता मैं, सो तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर द डे, ये दिन जो है आपका तो हल्का जाएगा बच्चों, आपको तो आदत है, हम ही पीछे रह गए। और एक मैसेज है ये कम खान का, भाई आपका नाम यार बहुत ज़बरदस्त है यार, कम भाई बहुत ही बढ़िया नाम है कम भाई का, और उन्होंने बोला है कि अच्छा क्या 2 टिक 3 मतलब क्या, हर ये हर जगह है भाई, इन्होंने कोई वीडियो प्लेटफॉर्म भी नहीं छोड़ा भाई, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम भाई करते क्या हो आप, मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म पे रह के और मेंटेन कैसे कर रहे हो मुझे ये बताओ, हमसे नहीं हो रहा भाई कम भाई, कोई पीस ऑफ एडवाइस दो आप। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने मैसेज किया है कि मैं पेशे से टीचर हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है हर जगह पर होना, लेकिन फिर भी आई वांट टू क्रिएट कंटेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं सब जगह हूँ। मैं नाजिश बात कर रही हूँ एंड आई एम फ्रॉम बहरीन, अच्छा मैंने आपका नंबर देखा नहीं नाजिश, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा अभी, अच्छा तो नाजिश जी हैं, उन्होंने बहरीन से मैसेज किया है और उनका ये कहना है कि वैसे तो उनका मन नहीं है, नादिर जी झूठ बोल रही हैं आप, मैं आपको पता हूँ मन आपका पूरा है, मन आपका पूरा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है आपने बीच में थोड़ा सा थिएट्रिकल कर लिया बात दूसरी, तो नादिर जी कह रही हैं कि मेरा दिल तो नहीं करता पर मैं सारे प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं कंटेंट बनाना, क्या कंटेंट बनाना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं या फिर अपना कुछ कंटेंट बनाने का सोच रही हैं। एक मैसेज, सर सुबह सुबह उठने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना अब्दुल करीम भाई, ये जो सवाल है ये काफ़ी पेचीदा है भाई, मतलब यूँ समझ लो कि मेरी जो रूह है वो अभी तकिए पसरी हुई है और जिस्म आया भाई ऑफिस में तो ये है मेरा जवाब, जो आप कह रहे हैं कि सुबह स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई और होगी भाई, एक हफ्ते मैं भी इंसान हूँ, आदत नहीं है, जिस टाइम पर बंदा सो रहा है उस टाइम पर तो ऑफिस में आ गया मैं, समझ रहे हो, तो ऐसी क्लॉक हो गई कि समझ नहीं आ रहा भेजे को करना क्या है,
और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है कोई सा भी चलाना, पर हाँ मैं सब पर हूँ,

इफेक्ट पहले जमाने के भी सोशल मीडिया पे था वो तो अब रहे नहीं। ये उसाम भाई ने मैसेज किया, उसाम भाई लगे रहो उसाम भाई, वेरी गुड। और एक भाई कह रहे हैं भाई रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए बाकी अकाउंट नहीं बनाए, भाई के लिए तालियां। ये है ऑनेस्टी, ताली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है इनका? उबैद भाई, इनका नाम उबैद है। उबैद भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे से तो होता नहीं, मैं रीले देखता रहता हूँ, कहाँ पे मैं कोई किसी सोशल मीडिया पे नहीं जाता, देख देख के चुपके से निकल जाता हूँ। एक मैसेज है डेविड वजीमू की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डेविड वजीमू भाई, बहुत बढ़िया नाम है। और ये अयाम खान साहब आपने क्या डीपी लगाई हुई है? एक सेकंड, मुझे डीपी देखनी पड़ेगी भाई। ऊपर से नीचे तक कवर्ड मास्क वगैरह लेते, कहाँ जा रहे थे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वायरस तो चला गया, ये क्या हो रहा था, डाइविंग में विंग कर रहे थे। तबसुम ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहन, कैसी हैं आप, कैसी हैं आप। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबू बकर मजीद एंड गुड मॉर्निंग। अबू बकर साहब वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई बहुत सारा प्यार क्या। और एक मैसेज, जो लोग इवनिंग में सुनते हैं वो अब नहीं सुन पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी इतनी गारंटी है कि उनको कहानी तो ज़रूर मिलेगी एंड उनको बहुत सारा प्यार, जो ऑब्वियसली शाम में थे वो सुबह नहीं सुन पाएंगे, तो उनको भर भर के प्यार यार, मैं नथिंग टू से, ऑल लव यार, ऑल लव। और सुमुल जी आपको मैं अलग से ज़रा रिस्पॉन्स देता हूँ, डोंट वरी। एक मैसेज है, जैसा आपने भी बोला आप क्या मानते तो विल कॉल यू अंकल नाउ। ये क्या बात हुई, कह रहे हैं आप बुरा नहीं मानते तो मैं आपको अंकल बोलूँगा। अरे भाई बच्चों के लिए है ये लागू, ठीक है कह रहे आप तो मानते नहीं बुरा, तो ठीक है आप मेरे अंकल हुए, ठीक है भाई कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे दिल तोड़ोगे ना विनेश भाई नहीं नहीं ठीक है विनेश भाई, तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी फिर। ये भी है, एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई ने मैसेज किया है, भाई आप जब से आए हैं सुबह में मुझे नहीं पता कब से आए, लेकिन मैंने अभी ट्यून इन किया और मुझे मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। और आगे लिखते हैं कि आप बिल्कुल भी मॉर्निंग छोड़ के मत जाया करें, शाम वालों को शाम में छोड़ दें। अरे भाई ये क्या बात हुई ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसी नहीं, अच्छी बात नहीं होती ना। एक मैसेज है, इस वीडियो की आवाज़ तो ज़रा सुनाए भाई। मैं वीडियो की आवाज़ नहीं सुना सकता माजिद भाई, समझा करो, मैं जब वॉइस नोट प्ले कर रहा तो वीडियो कहाँ से प्ले कर दूंगा। और एक मैसेज है, अरे वाह बच्चों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। एक मैसेज मुझे किया है अहमद ने, वो उन्होंने मैसेज किया है कि स्कूल्स आर गोइंग ग्रेट, कबीर अंकल वेलकम बैक टू द शो, वी मिस्ड यू, एंड आपने मुझे स्टोरी भेजी थी, कब भेजी थी, अच्छा 3 महीने पहले, and I heard it and my friends are now also hooked to the story, thank you so much Kabir bhai for coming in the morning। एक बात बताओ अहमद, आप कौन सी क्लास में बेटा, पहले आपने मेरे को अंकल बोला फिर आपने मुझे भाई बना दिया, ये मेरे साथ आप क्यों खेल रहे हैं? मतलब ये जो जनरेशन गैप है एक ही मैसेज में पूरा जनरेशन गैप दे दिया अहमद ने, पहले अंकल बोल के फिर भाई बोल दिया। अहमद बाकी सब मैं जवाब दूंगा बेटे, पहले इसका जवाब दो मुझे आधा मैसेज क्या किसी और ने लिखा है? एक मैसेज है कबीर भाई को, क्या कबीर भाई शाम को आए या सुबह को, हम तो कबीर भाई के साथ हैं, हम तो करीम भाई, बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार। और तब से मैंने मैसेज किया है सोशल मीडिया ऑफ, मैं कल ही सारे अच्छा कल डीएक्टिवेट कर दिया आपने, अरे भाई। आगे लिखते हैं, क्योंकि इमोशंस ओवरलोड हो रहे थे, फनी और शायराना और दूसरी जगह पे गाने और एक जगह पे मोटिवेशन, 10-10 सेकंड में मेरे इमोशन के साथ खेला जा रहा था इसलिए बट इट टेक्स अ लॉट, आई डोंट थिंक के ज़्यादातर लोगों में इतनी हिम्मत भी है कि वो डीएक्टिवेट कर सके। मेरे साथ पता क्या, मेरा एल्गोरिथम जो जिस तरीके से काम करता है बता देता हूँ, मेरे पास वीडियो पता कैसे आते हैं, वीडियो ऐसे आते हैं कि आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक बैटरी को, एक सिंगल बैटरी को आप अगर अवन में रख देंगे तो क्या होगा, अगला वीडियो आता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अगर हम एक मक्खी को अवन में रख देंगे तो वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएगी, ये वीडियोस मेरे पास आते हैं, मैं ढूंढता भी नहीं भाई, तो आपको क्या लगता है मैं स्पेसिफिकली टाइप कर रहा हूँ ये सब, मुझे तो पता ही नहीं है, पर मेरे पास ये वीडियो आते हैं ना, मेरे पास शेरो शायरी आती कुछ नहीं आता, यही सब वीडियो आते रहते हैं। एक वो वीडियो उसमें वो बोतल सरकाता रहता है, वो सीढ़ियों से गिरती रहती हैं, बोतलें टूटती रहती हैं, वो देखते देखते सो जाता हूँ मैं, ये आ रहे मेरे पास वीडियो बहन, अब बताइए आप डीएक्टिवेट तो मुझे करना चाहिए, मेरा तो सोशल मीडिया ऐसा है कि ना के बराबर है, वो कुछ भी दे रहा है, उसे लगता है कि ये इसी लायक है तो मुझे ऐसा ही कंटेंट दे रहा है। एक मैसेज है कबीर भाई कोई,
हैं हम जो लोग मीडिया शुरू हुए। एक सेकंड, क्या कबीर भाई कोई नई फिल्म आई है क्या? हम लोग जब से मीडिया शुरू हुए टिकटॉक की है शुरू है, मैं आगे की लाइन नहीं समझा। नई फिल्म तो भाई अभी वो आई थी टॉक्सिक, चली नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी भाई मैं तो वारा बन के फैन हूँ, देखिए आया भाई। मैं एक मैसेज है इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब का, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर अंकल। ठीक है भाई, ठीक है, खेल लो मेरे साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैसेज है, भाई ड्यूटी तो चलती रहेगी लेकिन एंटरटेनमेंट पहले है, और मिलता भी है कबीर भाई के साथ, मेरा भाई अब्दुल करीम भाई, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत सारा प्यार। क्या और सुमुल, मैंने मैसेज किया है गुड मॉर्निंग ठाकुर, अब वो मेरे पास बैकग्राउंड स्कोर नहीं है वो चलने वाला ना, कितने याद वो वाला मेरे पास है नहीं। पर सुमुल बहन गुड मॉर्निंग, गुड टू यू इन द मॉर्निंग। फराज भाई ने मैसेज किया, फराज भाई गुड टू सी यू मैसेज इन द मॉर्निंग भाई, वालेकुम असलम, बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है, ये भी अंकल आ गए, सलाम कबीर अंकल फ्रॉम, अच्छा ये तो जेन्युइन है, ये जेन्युइन अंकल है, ये दोनों बच्चों ने मैसेज किया है। अच्छा ओके, तो गुड मॉर्निंग कबीर अंकल फ्रॉम दनीन एंड रदवा। क्या माशाल्लाह, क्या अलग सा नाम है ना, ये बड़ा इम्पैक्टफुल नाम है माशाल्लाह। एंड वालेकुम अस्सलाम दोनों को, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ लव। हाउ इज द स्कूल, इज द कैसा चल रहा है बच्चों, स्कूल का क्या सीन है? पर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं चल रहा मामला, मैं तो माँ बाप से ही पूछना चाहता हूँ, ये जो पहला दिन है अभी क्या कसरत चल रही है भाई, क्या चल रहा है मामला? क्योंकि जो अभी अभी स्कूल उनका दोबारा शुरू हुआ है तो वो जो इम्पैक्ट है वो लाइफ में तो आता होगा। एक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वकास हेयर, सुबह बखैर, आज आपका स्कूल नहीं, ये स्कूल ही तो है, ये स्कूल ही है भाई। बच्चे जो हैं गले में पानी की बोतल टांगते हैं, वकास भाई मैं गले में चाय का थर्मस बांध के आया हूँ, टिफ़िन मुझे मम्मी ने दिया था, टिफ़िन मैं पहले खा लिया भाई, दो पढ़ाई में करके आया हूँ, एग्ज़ाम अभी 7:30 बजे दे दूंगा भाई मैं, ये स्कूल ही तो है, बस गाड़ी से आ रहा हूँ मैं, और मुझे लग रहा है मैं स्कूल बस भी लगवा ही लूँगा भाई, स्कूल बस ही ड्रॉप करेगी मुझे रेडियो स्टेशन। सुमुल बहन कहती हैं अफसोस हुआ मुझे आपको सुबह उठना पड़ रहा है। पता नहीं सुमुल बहन आपके मैसेज में मुझे कन्विक्शन नहीं लग रही है, मुझे लग नहीं रहा कि आप उदास उदास हैं सुबह आने से। एक तबस्सुम ने मैसेज किया है, मुझे डिश वॉशिंग और क्लोथ्स वॉशिंग की सेटिस्फाइंग वीडियो देखकर नींद आती है, और आप मान लीजिए हम लोग अंकल आंटी की जनरेशन में एंटर कर चुके हैं बहन, सैडली यस, सैडली यस। और आपको डिश वॉशिंग और क्लोथ्स वॉशिंग की सेटिस्फाइंग वीडियो देखकर नींद आती है? मैं बता दूं, मैं बता दूं वो होते हैं ना वाले वीडियो जिसमें वो चॉकलेट बनाते हैं नहीं टॉफियां बनाते हैं, टॉफियां, वो वाले भाई मुझे बहुत बड़े लगते हैं वीडियो यार, वो बड़े सेटिस्फैक्ट्री वीडियो है वो, और मेरे मेरे फीड पे वाले वीडियोस भी आते हैं, अरे मैं आलू हूँ रे, ये आलू की लव स्टोरी टमाटर के साथ, और ये सब जो चल रहा है वो भी मेरे पास आता है। तो मेरा तो कंटेंट ही ऐसा है, टेक्निकली मुझे बंद कर देना चाहिए वो अपना पूरा का पूरा सोशल मीडिया। एक मैसेज है, कबीर भाई चाय ज़्यादा मत पियो कबीर भाई, चाय नुकसान देता है। एक बात बताऊँ आपको, जाट को आप बहका सकते हैं भाई, समझा नहीं सकते और चाय तो मेरा अमर प्रेम है भाई, अमर प्रेम, पहला प्रेम है ये। अगर सुबह सुबह उबलती हुई चाय ना दिखे और मैं उसे घटक ना लूं, तब तक फंक्शन नहीं होती भाई बॉडी। चाय के बिना तो जीवन मेरा बिल्कुल, मैं रो दूंगा बस आगे बोलूंगा तो। रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई पूरे रिजवान भाई का बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है, आपका एल्गोरिथम को सलूट है भाई, थैंक यू सो मच भाई। फराज भाई क्या आपको भी एल्गोरिथम चाहिए? भाई मैं विश करता हूँ जो मेरे पास एल्गोरिथम है ना, जो मेरे पास चीज़ आती हैं वो आप सबके पास आए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सुमुल बहन ने मैसेज किया है, मैं हैप्पी है, आई एम हैप्पी, मैं टीचर हूँ रे। हाँ जी टीचर जी, क्या चल रहा है? और माज भाई मेरे साथ है, माज भाई ने एक वोट दे दिया, माज भाई कह रहे हैं कॉफ़ी से तो बेहतर है चाय। अब देखो मैं कॉम्पिटिशन नहीं करवाना चाहता बट सही कह रहे हैं माज भाई चुपके से, मैं बहुत हल्के से बोलना चाह रहा था, सही तो कह रहे हैं पर मैंने बोल दिया वोकल हो गया। सही बात है भाई, चाय की बिना कैसा जीवन यार, और आप कह रहे हैं चाय छोड़ दो, हमें वो लोग नहीं छोड़वाया पाए चाय जो कह रहे थे चाय मत पियो काले पड़ जाओगे, हमें उनसे नहीं फ़र्क पड़ा भाई, और आप तो कह रहे हैं नुकसान होगा। वो आपने देखा है मीम वाला, आई डोंट वॉन्ट पीस आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स, तो मैं वही हूँ। अब्दुल खादिर अब्दुल आदि भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं एनर्जाइज इन द मॉर्निंग सेशन, वेलकम बैक कबीर भाई, अपॉन योर अराइवल आई फील समर इज गोइंग अवे, आई फील फुल एनर्जी अपॉन योर अराइवल। भाई ने बिल्कुल जहाज बना दिया मुझे तो, थैंक यू भाई।
और एक मैसेज है, अल्गोरिथम को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होना चाहिए।

0: आई फील हाँ होना तो चाहिए बट ठीक है यार अभी आदत पड़ गई है जो आ रहे हैं ना वीडियो चल जाता है काम। और एक मैसेज बताता हूँ क्या है, एक भाई ने मुझे अजहर भाई ने लिखा हाउ आर यू बाजी, नाजिया बहन लिखा इन्होंने, अरे मैं तो ठीक हूँ अजहर तुम बताओ कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है भाई, गुड मॉर्निंग भाई कैसे हैं। और कहते कबीर भाई डिनर हो गया, हाँ भाई डिनर ही तो कर रहा हूँ अभी रात के 10 बज रहे हैं अभी बस मैं सोच रहा हूँ गुड मॉर्निंग बाजी। और एक वैसे गुड मॉर्निंग से इकरम साहब लिखते हैं देखो देखो कौन आया मॉर्निंग वाला, मेरा भाई बहुत सारा प्यार आलिए रे। और मैसेज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड बट बॉटल ऑफ एनर्जी हैज कम बैक, थैंक यू सो मच भाई बहुत सारा प्यार खादिम भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है कसम से, क्या है कसम से आपसे आपा कोई नहीं है, मतलब मुझसे तो आपा कोई नहीं। मुझसे मेरे साथ सुबह सुबह ये दो बार हो चुका है, दो लोगों ने विश किया है मुझे, एक ने तो कहा गुड मॉर्निंग मैं विश बहन, मैंने भी कह दिया गुड मॉर्निंग भैया। अब कितनी बदली आवाज करूँ भाई, मैं बता रहा हूँ मैं AI से सैम्पलिंग निकाल के रखूंगा मैं। अगर किसी और ने मुझे बोला गुड मॉर्निंग बाजी, एक कॉल आ रही, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया भाई।
1: आज ऐसा दिख रहा मेरे को
0: जैसे कि
1: तब कुछ बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास
0: भाई। चाय पी लो, चाय पी लो इसी बात पे भाई, चाय पियोगे?
1: नहीं नहीं भाई, चाय वगैरह ने भाई की आवाज सुन लिए, चाय पीने से क्या बढ़ के थोड़ी है।
0: अरे भाई यार इसी बात पे बिस्कुट खाएंगे भाई मिलके सुबह सुबह।
1: बिस्कुट खाने से बढ़ के क्या कबीर भाई से बात होना।
0: अरे मेरा भाई बहुत सारा प्यार भाई को सवेरे सवेरे।
1: कबीर भाई सच बता रहा हूँ आप, मैं अभी गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू किया भाई की आवाज सुनने नसीब हो गई, यकीन मानो आज मेरा दिन इंशाल्लाह बेहतर जाएगा
0: यार। हैदराबादी लोग जब बोलना शुरू करते ना भाई, मैं बता रहा हूँ दिल में एकदम यूकेलिलिया बजने लगता है भाई, मजा आ गया भाई।
1: भाई हकीकत है देखो, सुबह ये 107 में काफी दिन से जो ना रौनक नहीं आ रही थी।
0: अच्छा
1: अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मैं वेकेशन जाने से पहले, क्योंकि इंशाल्लाह कल वेकेशन जा रहा हूँ मैं, तो जाने से पहले माशाल्लाह भाई से बात हो गई, भाई की आवाज सुन ली, माशाल्लाह आज नसीब हो गई हमारी।
0: थैंक यू सो मच भाई। लगेज भाई कितने किलो का है?
1: भाई दादा ने ओनली 30।
0: ओनली 30 मतलब बिल्कुल नाप चुके हो गए, इससे ऊपर 1 किलो नहीं है।
1: मैंने बढ़ के लेके जाएगी, मसला क्या है?
0: ये हुई बात भाई, मैंने कहा हैदराबादी हो गया ऐसी बात कैसे कर रहे भाई, नक्को करो रे भाई।
1: अपना मुदिर खुद ही पायलट है, नहीं खतरे
0: रहता। अच्छा अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप तो भाई VVIP सेक्शन में आइए बैठिए, कुर्सी लिया आपके लिए।
1: कबीर भाई क्या हाल है? कबीर भाई
0: बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप छुट्टी पे जा रहे हैं, मेरी दुआएं भाई आप साथ खरे से जाइए, साथ खरे से आइए मेरे भाई, और घर पे सबको सलाम कहिएगा।
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। मैं भाई की आवाज सुना तुरंत कॉल किया,
0: बहुत प्यार।
1: फिर इंशाल्लाह आपको 8 बजे के बाद फिर फोन करूंगा, फिर बात करूंगा।
0: डन डन भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई, सलामत रखें
0: आपको ही मेरे भाई, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो देखो भाई, भाई जो है बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं आपके भाई को, देख रहे हो सवेरे सवेरे। एक मैसेज है, सर मेरी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती, इसके एडवाइस करें, सुन रही है FM 107 आयशा। आयशा तैयार तो है माशाल्लाह, कितना प्यारा पोस्टर बनाया अपने आयशा का, बाकायदा यूनिफॉर्म में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा बेटा इफ यू लिसनिंग टू मी, बेटा मैं भी स्कूल आया हूँ, आप भी स्कूल चलो, हम दोनों स्कूल जाएंगे आज। पर आयशा को आप नहीं बताइए पहले इकरम साहब उसके टिफिन में क्या है आज, आई रियली वॉन्ट टू नो। और एक मैसेज है, ये जिन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बाजी कहा था, अजहर भाई कह रहे हैं झूठ बोल रहा है बंदा, मैं नंबर दे दूंगा, बता रहा हूँ धनिया बोल देंगे आपकी ज़िंदगी में 2 मिनट में। एक मैसेज, वेलकम बैक हबीबी, मरहबा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे कबीर भाई, थोड़ा डरा दो। एक तो मुझे ये बताओ, मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं लोग? मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ कहीं पर, आपने देखो आपके साथ भी होता होगा, बंदा चुपचाप बैठा हुआ है उसे कोई मतलब नहीं है। लोग अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहते हैं, देखो बैठे हैं अंकल, अंकल बैठे हैं, अभी मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, डांट देंगे अभी। अरे अंकल को क्यों विलन बना रहे हो भाई? अंकल ने क्या किया है उस बच्चे

0: की नजर में इतना इतना बड़ा विलन बना देते हैं यार, बच्चे से बातचीत भी नहीं हुई है वो पहले ही विलन समझ रहा है कि ये अंकल आते हैं, ये अंकल बुरे हैं, इनमें खोट है। खादिर भाई लिखते हैं, कबीर भाई आई एम रिमेम्बरिंग द कैमल रेस। अरे भाई मैं उन चाचा से बहुत डरता हूँ भाई, कैमल रेस वाले चाचा से। कह रहे आपके कबीर भाई का ट्रैक प्लीज 974 भाई, वो शाम वाला है। एक मैसेज, आपके डराने के बजाय बच्चे हंसने लगेंगे भाई, यही मैं चाहता हूँ फराज भाई, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत लोगों ने पर्चे फाड़े हैं। ये माज भाई ने मैसेज किया ना, माज भाई कह रहा है आई हैव वन गुड स्टोरी ऑफ चाइल्ड डेडिकेशन, अगर कॉल है तो। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है भाई, इनको ज़रा कॉल की जाए। माज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माज भाई से मैं एक बात भी करना चाहता हूँ। एक सेकेंड, माज भाई को कॉल लगाई जाएगी। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। माज भाई पहले तो मैं यार एक चीज, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, एक चीज क्लियर करो मेरे को, ये बताओ मुझे देख के सारे माँ बाप क्यों करते हैं कि आस पास के इंक्लूडिंग यू, अंकल अभी मार देंगे, अंकल कभी करने क्यों, मतलब क्या मेरी आवाज विलन वाली है? आप तो खुद ही डांटते हो,
1: आपके तिलक के लिए मेरे साथ ऐसा होता है कि हर कोई मुझे इस्तेमाल करता है, दोस्त वगैरह बोलते हैं माँ के फोटो भेज, बच्चे को डराना है। मेरा उल्टा हिसाब है भाई, मेरे दोस्तों के बच्चे मुझसे डर रहे हैं, दोस्त वगैरह सारे बोल रहे हैं माँ को बता देंगे, माँ अंकल आ जाएंगे। भाई मैं भी उसी तुम्हारी कश्ती में हूँ मैं
0: भाई, ये विलन का इंसेप्शन है, लोगों ने लगता है जोकर वोकर देखी नहीं है, बताओ। अच्छा तो माज भाई आप चाय के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे भाई?
1: भाई देखो चाय का जो डेडिकेशन है ना
0: जी भाई,
1: आई वांट टू एक्सप्लेन यू हमारा चाय का डेडिकेशन।
0: अच्छा बताओ।
1: हमारी जो बेगम थी वो चाय नहीं पीती थी, या ठंडी करके पीती थी, वो पता नहीं अजीब लोग होते थे एकदम ठंडी करके पीते थे।
0: वो वाला मीम याद आ गया मुझे, छी
1: ठीक है, साथ में बैठी है।
0: अरे
1: शादी के बाद से मैंने इनको सुधारा, चाय का सही चस्का लगाया,
0: बहुत बढ़िया
1: ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरी दो बेटियां हैं,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: और दोनों बेटियां यहीं कतर में पैदा हुई हैं, और कतर में यहाँ वुमेन वेलनेस में पैदा होते हैं हॉस्पिटल में। तो हमारा चाय का डेडिकेशन ऐसा है कि दोनों बेटियां जब पैदा हुई और डिलीवरी के बाद जब हम डिस्चार्ज हुआ तो हॉस्पिटल से निकल के हम पहले कड़क पीने रुके,
0: क्या बात है,
1: फिर घर गए हैं।
0: अरे भाई साहब
1: दोनों बेटियों के टाइम
0: डेडिकेशन भाई, डेडिकेशन यही है, यही डेडिकेशन।
1: ये था कि ना भाई नई बच्ची गोद में है उसको लेके पहले घर जाओ, नहीं पहले हम रुके चाय पीने कड़क पीने।
0: वाह।
1: और चाय की दुकान वाला भी, अरे नया बच्चा हुआ है, बोला हाँ, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक, उसकी भी दुआएं लेके गए। तो ये होता है चाय का डेडिकेशन
0: भाई, वेरी गुड भाई, भाई ग्रैंड सलूट भाई को, स्टैंडिंग ओवेशन भाई, यही यही इज्जत है जो चाय डिजर्व करती है, वेल डन वेल डन। पर ये मुझे ये भाई माज भाई की ये कहानी सुनने के बाद पता नहीं लोग क्या कहने वाले, बट क्या है, आपकी तरह आपके लिए मैसेज आया, फराज भाई कह रहे हैं भाई भी हमारी तरह टी लवर हैं। जी भाई ये टी लवर हैं, अब इससे बड़ा सबूत क्या देंगे वो,
1: और ये मैंने एक्शन में भी लिखा है।
0: अरे यार एक तो भाई मैं ये इस चीज से बहुत परेशान हूँ भाई,
1: और कड़क पी के घर आए।
0: वाह, पहले के माँ बाप कहानी सुनाते थे, बेटा मैं ना चल के आता था 20-20 किलोमीटर, माँ भाई बता रहे हैं बेटा आपके पैदा होते के साथ ही मैंने चाय पी। वाह वेल डन वेल डन। तो माँ भाई थैंक यू सो मच, और चाय की जो आपने लत लगाई, बच्चों के साथ क्या सीन है, बच्चों को भी पिलाएंगे चाय, अभी तक कुछ चखी उन्होंने नहीं? अच्छा नहीं मत लो, पर
1: हम रहते हैं उकेर में, उकेर से निकल के हम चाय पीने अलसद जाते हैं, दोहा जाते हैं।
0: भाई अभी अभी कर कभी अगर चाय की पत्ती का कॉन्टेस्ट हो ना भाई, आपको तो मैं पक्का जितवा रहा हूँ। मैं अपील करूंगा माज भाई जितने जी,
1: ये सब हम बाहर चाय पीने जाते हैं, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि बीवी साथ में बैठी है, लेकिन हमारी बेगम उससे बढ़िया चाय बनाती है।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: बाहर चाय पी के आते हैं और फिर लोग सरमाइश करके हमारे घर आते हैं कि यार बेगम के हाथ की चाय पिलवा दो।
0: क्या बात है यार, क्या बात है यार, आपके चक्कर में भाई आज कितने के दिल जल रहे होंगे जिन्होंने चाय छोड़ी है भाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस भाई, दिस इज समथिंग वर्ल्ड नीडेड टुडे।
1: एंड करना करना चाहूंगा मैं टॉपिक, वो ये है कि चाय चाय है, कॉफी को साइड में।
0: वेरी गुड।

वेरी गुड मास भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार आपको, बहुत सारी दुआएं। तो ये मास भाई ने जो बताया है हमें, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप सबकी अपनी चाय भाई की कहानी होगी। अजहर भाई ने एक और मैसेज, घर की चाय इज़ द बेस्ट। बिल्कुल भाई। और एक मैसेज है अब्दुल करीम भाई का, चाय वाली दुआ। एक मैसेज है ये रात वाली स्टोरी की तरह है, रात वाली स्टोरी की तरह है, आज आएगी कहानी। एक मैसेज है भाई हमारी भी तरह, भाई भी हमारी तरह ट्री लवर है। एक मैसेज है गुड मॉर्निंग सर, कंग्रेचुलेशन, आप जल्दी उठ गए, इसी खुशी में एक कप चाय, मेरी भी शुगर कम रखना। ठीक है भाई, भाई इनके लिए दो कप चाय दे दो, ये काशिफ भाई के लिए बहुत चाय पीते हैं, भाई भिजवा रहा हूँ मैं, कुल्लड़ वाली भी हो गई, कुल्लड़ वाली। और एक मैसेज है सोशल मीडिया को लेके, एक क्या है भाई, उठने की बहुत टेंशन है, खुशगवार फीलिंग्स ही कुछ और हैं भाई, ये कुछ ऑटो मैसेज सेंड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑटो मैसेज ही हैं वो गुड मॉर्निंग बाजी वाले ना, जो मेरे पास आ गए हैं गलती से। तो आखिर अहमद भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, व्हाट अ गुड मॉर्निंग, लोगों ने, हाँ भाई लोगों ने बाजी बाजी भी मैसेज कर दिए हैं। चाय के बगैर तो सुबह अधूरी रहती है, कबीर भाई आप सुबह का शो शूट करते हैं और आपकी आवाज़ सेम। अच्छा भाई, मैं इंटर्न था ना उनका, मोहम्मद भाई, इसीलिए बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और क्या मैसेज आया है, ये मैसेज क्या, मैंने भाई मैं 6-7 सोशल मीडिया पे हूँ और एक एक को एक महीने यूज़ करता हूँ। अच्छा ये क्या सिस्टम है फैसला, ये क्या बात है, करण 6-7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, हर को एक महीना देता हूँ, बस दो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको ये डेली यूज़ कर रहे हैं। और नहीं भाई आज कोई चाय का दिन नहीं है, ऐसी बोल दिया हमने तो, बन मस्कार दिला दिया, जालिम जालिम। आई हैव ट्राइड एवरी थिंग अजहर भाई इस मामले में। तो एक मैसेज है कबीर भाई, मेरा एक दोस्त बिलाल, उसका नाम मोटू उसका नाम, कबीर भाई मेरा एक दोस्त है बिलाल, उसका नाम मोटू, तो ये मैसेज दे देना। क्या मैसेज दे दूँ मोटू को, मैसेज तो बताओ, डाकिया को भेज दिया बगैर खत के। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ऑटो मैसेज। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने मॉर्निंग के ऑटो मैसेज लगाए होंगे उनको तो मैं अलग से रिप्लाई करूंगा। एक मैसेज क्या है, आज की स्टोरी का क्या होगा भाई, आज की स्टोरी विल कम एट 7:30। अजहर भाई ये भी ट्राई किया जो आपने मैसेज किया है, और ये कह रहे हैं फ्रेश मिल्क, अरे ये हमारी पार्टी वाले हैं। एक मैसेज है कबीर भाई, तला फ्रॉम अलखो, वेलकम बैक, चाय इज़ इम्पोर्टेंट भाई, कॉफ़ी जब सिर्फ डाइटिंग करनी हो। अरे डाइटिंग वाइटिंग कहाँ, हम इन चक्करों पड़ रहे हैं। अब्दुल करीम भाई लिखते हैं, पास में बैठा है इसलिए इतनी तारीफ कर रहा है भाई साहब, कभी अकेले हैं बात करो, फिर किसका चाय कितना अच्छा है फिर पता लग जाएगा। माज भाई आप पे इल्ज़ाम है। और एक मैसेज है, वेटिंग फॉर द स्टोरी, फॉर द स्टोरी, अच्छा ओके ओके। देखिए भाभी जी, मुना भाभी जी, मैं आपको बताऊँ, ये आपके लिए मैसेज आया है, ये इनफैक्ट ये कह रहे हैं ये कभी माज भाई से अकेले बात करो, वो बताएंगे उनकी चाय अच्छी है, अभी तो भाभी के साथ बैठे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। और एक मैसेज है, रोड तो पूरा ब्लॉक है कबीर भाई, कितनी गाड़ी निकला सुबह सुबह भाई, सुबह सुबह जो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हैं प्लीज़ बताइएगा कहाँ कहाँ फंसे हैं, वुड लव टू नो दिस, क्योंकि मुझे कॉन्टेंट मिलता है इस चीज़ से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहीं पर ट्रैफिक लगाओ 666-2107 पर। आई नो सुबह सुबह थोड़ा सा चेंज आया है और रूट्स बदले हैं, काफ़ी जगहों पर ट्रैफिक है, तो मैं काम करता हूँ आपको ट्रैफिक अपडेट भी लगे हाथों दे ही देता हूँ कुछ जगहों पर जहाँ पर अभी जाम लगा हुआ है। सो ट्रैफिक बढ़िया फ्लो में है, और अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप सीरिंग रोड के आसपास हैं तो सीरिंग रोड पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। इन केस आप मूव करते हुए जा रहे हैं सीरिंग रोड से जो कनेक्टिंग टू रौदत अल खैल, यहाँ पर पूरे पारिक के सामने जाम लगा हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन की तरफ है तो ज़्यादा नहीं है। नजमा के इंटीरियर रोड्स में ट्रैफिक मिलेगा, जाहिर सी बात है, वरना वो नजमा कैसे कहलाएगा। इसके अलावा किधर है भाई, नहीं चला गया जाम का, क्लियर हो गया, नहीं क्लियर तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे मेरा कंटेंट छिन जाएगा। हाँ ओके, तो ये मुंतजा पार्क के पास आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा, देन रौदतुल खैल से अगर आगे जा रहे हैं तो इंटरसेक्शंस पे ट्रैफिक है, अल्दीवान स्ट्रीट के पास ट्रैफिक है, सलवा रोड पे ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है, काफ़ी लाइट ट्रैफिक है, अभी मूवमेंट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो जो बढ़िया शाम वाला लग रहा था वैसा वाला ट्रैफिक नहीं है, इट्स क्वाइट क्लियर फॉर नाउ। वादी मुशारिफ स्ट्रीट के पास भी हल्का फुल्का ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब ऐसा है कि ये भी क्या बोलूँ मैं, ट्रैफिक इसको बहुत ही कम है, तो ठीक है भाई, कहाँ लगा हुआ है जाम, कहाँ दिख गया आपको जाम है। एक मैसेज है, 2 प्लेटफॉर्म्स पर पहले से था, अभी नए ब्लॉगर बने हैं हिडन जैम ढूंढने के लिए। एक तो भाई मैं कदर में परेशान हूँ, लोग जो हिडन जैम ढूंढते रहते हैं वो किसी भी गली चौक चौबारे को कह देंगे आज आपको मैं दिखाऊंगा हिडन जैम, और फिर वो हाथों के इशारे करते हैं अजीब से। सितरा बहन बिल्कुल सही कहा, वालेकुम अस्सलाम। एंड अलीना का कैसा रहा स्कूल, क्या चल रहा है वो भी बताइएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम।

0: चले खुश रहिए और माशाल्लाह वेलकम बैक.
1: थैंक यू सो मच.
0: लॉन्ग टाइम डेफिनेटली शफल होता है बड़ा. अभी रेडियो मैंने ऑन किया जस्ट नाउ.
1: हां
0: तो मैंने कहा यार कॉल तो मेरे भाई को बनती है.
1: थैंक यू सो मच भाई. बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार. अब ये बताइए, मैं लोगों से जानना चाह रहा था, कुछ लोग हर सोशल मीडिया को मेंटेन कर लेते हैं, आप कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जावेद भाई, क्या चल रहा है?
0: यार आप मुझसे ये सवाल वैसे पूछना का वैसे बनता है.
1: हाँ बिल्कुल. अरे कैसे, अरे यार पब्लिक के लिए पूछना पड़ेगा जावेद भाई.
0: मेरे लिए तो आप ही पब्लिक है मेरे सामने.
1: अरे रे, ये बात जो करनी, अब बात मतलब मुंह उठा के जवाब है, एकदम जुबान में रखा हुआ है, बस पूछ के देखो.
0: ऐसा नहीं है, दिल में आपको दिल में भी रखा हुआ है, सोच में रखा हुआ है, जहन में जमीर में रखा हुआ है
1: जावेद भाई. यार
0: भाई
1: आज अगर शायरी डे होता तो ये तो आपने शेर का मतलब बोल दिया भाई, आगे का मैं पूरा करके देता आपको. पता नहीं भाई इस मोहब्बत के लिए.
0: पर हाँ जी, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम. और कबीर भाई आप जानते हैं कि ड्यू टू दी जॉब बहुत ज्यादा मैं जुड़ भी नहीं पाता मैं, हालांकि बहुत सी चीजें दिल करता है शेयर करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता मैं.
1: ओहो,
0: लेकिन ये है कि जुड़ा रहता हूँ फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर.
1: काफी डीप बात कह गए बीच बीच में, अच्छी खासी कश्ती जा रही थी बीच. अच्छा ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं ऐसा?
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, आपको पता हर मामले में, देखिए आप भी जहाँ पर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है हर काम के अंदर होती है, इसलिए जितना बन पड़ता है वो मैं कर लेता हूँ, और
1: अच्छा.
0: जो नहीं कर पाता उसका फिर मुझे कुड़ता रहता हूँ मैं.
1: भाई मेरे अंदर का क्यूरियोसिटी वाला जो बालक है वो जाग गया, मेरे को जानना है, अलग से मैसेज करके पूछूंगा आपसे कि जेवी भाई क्या है जो पोस्ट नहीं कर पा रहे आप. मैं अलग जरूर पूछूंगा आपसे मैसेजेस में, ठीक है?
0: इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला. और सब खैरियत?
1: बस खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब शानदार. थैंक यू सो मच जेवी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार. ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. और जेबी भाई पता नहीं क्या पूछ करना चाह रहे हैं भाई, ये रहस्य भी उनके साथ ही रहेगा, बाकी मैसेज पूछ लूंगा. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकअल्लाह सलमान भाई, लॉट्स ऑफ लव. और एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, आज सुबह सुबह कैसे?
1: भाई एक ईमेल आया था कई सालों पहले, उसमें लिखा था तुम्हें सुबह आना है. बस भाई तो आ लिए भाई, आप कैसे?
2: भाई मैं सुबह सुबह मतलब ऐसे ही ऑफिस जाते टाइम टर्न ऑन किया रेडियो, फिर आपकी आवाज सुनी, फिर सोचा कि कॉल तो बनता है.
1: भाई भाई थैंक यू भाई, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के भाई, ये थोड़ी फ्रेशनेस आई भाई दिल में, थैंक यू सो मच भाई. तो भाई आज से सुबह शुरू है भाई, सुबह की ड्यूटी शुरू है आज.
2: सर जी वेलकम, तो आप इवनिंग में भी आएंगे?
1: अरे भैया क्या करवाना सर, अरे रे.
2: मैं सोचा फिर स्टोरी क्या होगा.
1: नहीं स्टोरी 7:30 बजे आएगी भाई, 7:30 बजे स्टोरी जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी 10,000%. अभी क्या बैक टू स्कूल है ना, तो मैं भी स्कूल में ही आया हूँ, बॉटल टांग के आया हूँ, बस इसमें चाय है पानी की जगह.
2: कबीर भाई आपसे ना एक टाइप का एक नाता बन गया है ना, पानी को जो अगर आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है तो फिर वो घर जाने का बनता ही नहीं है, घर पे फिर मूड ऑफ ही रहता है.
1: भाई आज तो ऐसा लग रहा है आज ही मेरा बर्थडे भाई, इतनी तारीफ भाई, थैंक यू सो मच भाई. बहुत प्यार मिल जाए, थैंक यू सो मच. लेकिन आप सुबह कभी भी जान सुनिएगा. हाँ बोलो क्या?
2: हाँ सुबह तो फिर आप बेसिकली ऐसा हो गया कि आपने अभी दिन बना दिया, फिर शाम का तो फिर ढूंढ लेंगे कोई और ठिकाना कैसे.
1: भाई बहुत डार्क ह्यूमर था भाई ये. बहुत सॉलिड भाई, बहुत
2: सॉलिड. अभी और क्या चाय की बात हो रही है, तो फिर जाते घर जाते
1: डन डन डन डन भाई. बट सुबह कभी मौका मिले भाई मैसेज जरूर कीजिएगा, डन है.
2: डेफिनेटली डेफिनेटली,
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत सारा प्यार
2: भाई.
1: आपने
2: बताया सोशल मीडिया, भाई मैं सोशल मीडिया घोस्ट हूँ भाई, मैं कोई भी अकाउंट पे नहीं हूँ, ना फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी नहीं.
1: क्या बात कर रहे हो?
2: जीरो, एक्सेप्ट व्हाट्सएप, वो भी अगर आप सोशल मीडिया में काउंट नहीं कर रहे हो.
1: हाँ.
2: तो फिर मैं जीरो.
1: भाई ये तो आप ही जी रहे जिंदगी, पता है आपको, यू आर एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट. बहुत बढ़िया भाई,
2: पर ये क्या पता नहीं मुझे समझ में नहीं जाता है भाई कि मतलब आदमी के दिल में कुछ और चल रहा है, बट स्माइल बना बना के पोस्ट करते जाओ, ये क्या सीन हो गया, मतलब दिल में तुम उदास हो.
1: ये कॉन्शियस डिसीजन है या आप थे पहले, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पहले थे कि हटे, मतलब कैसे हुआ ये?
2: ऑर्कुट के जमाने में मैंने बनाया था अपनी कॉलेज में, ऑर्कुट अगर आपको याद है.
1: बिल्कुल याद है भाई,
2: ऑर्कुट के टाइम में मैंने बनाया था, फिर फेसबुक नया नया आया था तो फिर उस टाइम पे बनाया था, फिर मेरे को समझ में नहीं गया, फिर मैंने उड़ा दिया
1: भाई. यार
2: तब से लेके आज तक मैं कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूं.
1: मैं आपको ग्रैंड सलूट देता, मैं कसम से मैं आंसू बहा सकता हूँ इस बात पे जो आपने बात बोली है, बहुत बड़ी बात है भाई.
2: अगर आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, तो फिर उधर भी मैं था, वो भी समझ में नहीं जा रहा है मेरे को, तो फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल से उस पे भी खत्म.
1: भाई आपके नाम का तो कोई हाईवे वाईवे बनना चाहिए भाई, तो बहुत बड़ी बात है भाई. वेल डन भाई, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू भाई. इस गोले

0: लेकिन नहीं है आप, मैं बताऊं ये तो अचीवमेंट है ही अपने आप, जेनिथ। थैंक यू।
1: मुझे बिलीव ये लगता है कि यार अगर कुछ शेयर करना ही है ना तो फिर वापस से रियूनियन करो, बुलाओ दोस्तों के, तो फिर अपन खुद चले जाए उनके घर, फिर उनके साथ जाके बैठ के शेयर करो।
0: तो बाकी घर वाले हैं आपके सोशल मीडिया पे? एनीबॉडी ऑन सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम यू, कोई है बाकी घर पे?
1: सारे ही है।
0: सारे ही है? पर यार, तो ये बीच में आपका बचना यार, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कमाल हो गया भाई, आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी फॉर यू मैन। सही है, अच्छी बात है, लगे रहो मेरे भाई, सो प्राउड ऑफ यू।
1: थैंक यू
0: मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई, जज़ाकअल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये तो अचीवमेंट भाई मुश्किल है, ये रिकॉर्ड है भाई, हथियार गिरा दिए मैंने तो, मेरे से नहीं होगा ये, भाई ने किया है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हाउ आर यू कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, एक नंबर, चौका चल रहा हमला, आप सुना है भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया बढ़िया, आपकी अभी मैं यही न्यूज सुन रहा था, तो मैंने कहा भी कॉल कर लूं, पता करूं हाल चाल का।
0: भाई एकदम शानदार है भाई, आप सुनाओ भाई क्या चल रहा है? भाई एक तो रेडियो जरा थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो, मुझे दो तीन आवाजें सुनाई दे रही है, मैं समझ नहीं पा रहा, एक सेकंड।
2: एक्चुअली आपकी वॉइस से जो रिटर्न हो रही है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, साथ रेडियो फुल है।
0: हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको तो वॉल्यूम थोड़ी कम करो, मैं बात कैसे करूंगा। हाँ तो किसी ने पूछा था कोई है,
2: वो साथ मेरे साथ एक भाई है, वो पूछ रहे थे किधर से आप?
0: भाई दिल्ली से।
2: मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे।
0: भाई शुक्रिया।
3: रावला कोट।
0: अरे ये भाई जोश में जो आपके साथ है भाई, यही आदमी जगाए सुबह सुबह, बाकी सब सो रहे हैं भाई।
2: इनकी नाइट ड्यूटी थी ना तो अभी तक ये सोए नहीं है, ये थोड़ा जोश में।
0: तभी ये नाइट ड्यूटी वालों की प्रॉब्लम है भाई।
2: ये रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना कतर में, तो इनकी नाइट ड्यूटी होती है, इस वजह से अभी जोश में, अभी रूम में जाके इन्होंने रश कम है।
0: अरे इनकी बैटरी अभी जो लास्ट का 10% होता ना वो है अभी, देखो फिर नींद सब खींचेंगे। नहीं उनको मेरा प्यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉल करने के लिए, डेफिनेटली यार बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप लोग याद कर लेते हैं, आवाज सुन के कॉल कर लेते हैं तो अचीवमेंट है भाई।
2: आपकी आवाज अच्छी लगती है सर, इसलिए हम।
0: जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू सो मच दोनों भाइयों को यार, बहुत सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों के नाम क्या है?
2: मेरा नाम शाहमीर है
0: और आपके साइड में
2: उनका नाम है अदनान।
0: अदनान, अदनान भाई को और आपको बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए।
3: दिल्ली वालों को बहुत बहुत प्यार,
0: नींद पूरी कर लो मेरे भाई। दिल्ली वालों की तरफ से है,
3: नींद कर लेते हैं सर, पूरी कर लेते हैं,
0: बहुत प्यार मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपने याद किया सुबह सुबह। अरे भाई फैन नहीं भाई, भाई बोलो भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार भर भर के भाई,
3: जज़ाकअल्लाह
0: भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बढ़िया प्रेम मिल रहा है भाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
4: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, क्या हाल है भाई के?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बताए देंगे,
0: बढ़िया भाई,
4: हमारा भी रेडियो चालू हो गया।
0: बैक टू स्कूल हो गया नदीम भाई।
4: बैक टू स्कूल हो गया।
0: तो नदीम भाई कैसा?
4: मैं ऐसे भी जाता रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैंने कभी रेडियो चालू ही नहीं किया है, पता नहीं दूसरे समझ ही नहीं आते अपने।
0: अरे भाई भाई सबको बता दो, मैंने पैसे नहीं दिए आपको बोलने के लिए।
4: नहीं भाई सही में मतलब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं समझ आते।
0: थैंक यू भाई, आपकी मोहब्बत है नदीम भाई।
4: भाई थे एक, आप हो बस
0: भाई को बहुत सारा प्यार भाई। नदीम भाई क्या चल रहा है फिर, अभी आपकी भी छुट्टियां चल रही होंगी ना बैक टू स्कूल से पहले, तो मतलब थोड़ा शांति होगी भी।
4: कुछ है ही नहीं, घर में गेमिंग ही चल रही है, बैठे बैठे बोर हो गए तो यार करने को है नहीं, ऐसा लग रहा है आजकल।
0: वेरी गुड नदीम भाई, वेरी गुड। तो अभी बैक टू स्कूल की वजह से निकले,
4: ठंडी आएगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा वापस
0: यार भाई। ये तो वो है, बाहर जाके गुफा के बाहर देखो मौसम कैसा है, वरना मैं यहीं ठीक हूँ।
4: निकलने दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी में कहीं पे
0: भाई, ये सहूलत।
4: दोपहर में जब स्कूल से लेने जाना है बच्चे को, साला गाड़ी में बैठो देखो 48-45 डिग्री बताता है।
0: नहीं आज आप कहानी सुन पाएंगे नदीम भाई 7:30 बजे?
4: हाँ अरे मैं तो लास्ट दो कहानी भी सुनाऊं, कल या परसों मैंने कॉल ट्राई की थी बट वो हुई नहीं, तो फिर बाद में मैं घर पहुंच गया था तो फिर मैंने नहीं किया कॉल।
0: चलो कोई बात नहीं,
4: दोनों लव स्टोरी भी सुनी है और वो भाई को जीप को डाल दिया था।

0: आज वाली भी भाई बहुत कड़ी कहानी, मजा आ जाएगा आपको भी इंशाल्लाह।
1: अब तो मॉर्निंग में तो अभी पता है, अभी जाऊंगा घर पे पीसी पे बैठ जाऊंगा तो हेडफोन लगा के सुन लेंगे वेबसाइट पे।
0: डन है, डन है भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई नदीम भाई कॉल करने के लिए।
1: मैं तो आपको पता ही है अपना माहौल बना हुआ रहता है तो फिर बाद में रेडियो सुन नहीं पाते।
0: नहीं अच्छी बात है, सुबह माहौल बनाएंगे भाई,
1: रहते साथ में
0: सुबह माहौल बनाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है।
1: ये सर सुबह में तो बढ़िया है। और चाय का तो कबीर भाई ऐसा है अपना भी, जब छोटे थे बचपन में ना तब चाय में रोटी चूर के देते थे मम्मी।
0: हाँ वो अलग चीज है भाई, उसकी बात ही कुछ और है।
1: आदत है चाय तो वो उस टाइम से ऐसा है कि अभी भी अगर चाय, अभी भी मोस्टली चाय के साथ रोटी मिले तो फिर मजा आता है कि यार गरम गरम पराठा या रोटी हो और चाय हो तो बहुत मजा आता है।
0: दिल से देसी यही लोग हैं भाई, दिल से देसी लोग।
1: अपने आप पे तो ऐसा भी हाल है कि यार ये जो अपने मलवारी वाले पराठे होते हैं लोग बनाते हैं, अपन तो उसके साथ भी चाय पी ले।
0: और इसी बात पे साथ दो होली है भाई, तो आप भी साथ देते रहो, ये बोलना बहुत जरूरी है, काफी टाइम बाद ही मौका मिला है। थैंक यू भाई, ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो घड़ी में हो गए हैं 7:02 और आप भी मेरा 7:02 फाइनली कह रहे हैं मुझे मौका मिला है। ये मेरा बहुत क्लीशे पंचलाइन है। वेलकम।

वेकअप बोलिए भाई, वेकअप बोलिए। कुछ मैसेज पढ़ दूं उसके बाद में कॉल लूंगा। कुछ मैसेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद भाई। जावेद भाई स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा था भाई। मैं एक मैसेज वालेकुम अस्सलाम मलिक वकास साहब, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। नॉर्मली मैं सुबह मैसेज नहीं करता, आपकी मोहब्बत और चाहत में भाई बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच। और एक भाई ने मैसेज किया, आजकल का ट्रेंड बहुत सिंपल है। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले जरा भाई मैं प्लीज एक मैसेज, चलो मैसेज पढ़ता हूँ पहले, फिर मैं कॉल उठाऊंगा। प्लीज कॉल करने वाले जरा सा रुक जाइए प्लीज, मेरा भाई बुरा मत मानिएगा। तो एक भाई ने मैसेज किया है, मीत भाई कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम बैक। आजकल हिडन जैम नहीं, आजकल एक दूसरा ट्रेंड चालू है। ये ट्रेंड मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे। पता है कौन सा ट्रेंड है? माई लाइफ एज अ बिजनेस ओनर, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये क्या करती हूँ, मेरा डेली रूटीन, और फिर खुद ही को कैमरे में उठते हुए दिखाते हैं ये। ये तो भाई मैंने भी देखा। और एक मैसेज, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। दो प्लेटफॉर्म्स पर पहले थे, अभी नए ब्लॉगर। अच्छा, ये तो मैसेज किया था सदरा बहन ने, थैंक यू सो मच बहना। एंड वालेकुम सलाम आसिफ भाई। एक मैसेज है, मास तो चाय में बिस्किट डुबा कर केक बनाकर खाते हैं। मास भाई अलग हैं, फैंटम आदमी है यार, फैंटम है वो, पुरुष महापुरुष फिर फैंटम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अच्छा एक ही चलाते हैं और हमारे कबीर भाईजान के नाम की वजह से, अच्छा उस पर भी आ गए। मैं सोशल मीडिया

0: के नाम नहीं सकता, डाउनलोड किया सब्सक्राइब भी करके बैठे हैं, पोस्ट का इंतजार है। बिल्कुल भाई, बहुत सारा प्यार और मेरे साथ देते रहिए सुभाष भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। एंड एक मैसेज कॉल भी, फवाद भाई मैं भी कॉल करता हूँ मेरी जान। और एक मैसेज है, मॉर्निंग कैसी लग रही है, आ गए छेड़ने एहसन भाई, कह रहे मॉर्निंग कैसी लग रही है। और एक मैसेज है, वेलकम बैक भाई, योर प्रेजेंस ट्रूली मेक्स द मॉर्निंग स्पेशल, वी हैव मिस्ड योर एनर्जी, योर वॉइस एंड द पॉजिटिव वाइब्स। अरवाद भाई बहुत सारा प्यार भाई, चार दिल नहीं, तीन दिल और एक आंसू वाला मुझे भेज रहा हूँ, खुशी के आंसू। और एक मैसेज है भाई, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार, इमरान हाशमी गाना लगा दो। लगेगा भाई, सब लगेगा, आने ला देंगे इस्लाम भाई। एक मैसेज है, अब स्कूल जाने आने जाने में मज़ा आएगा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर आलम भाई इस मोहब्बत के लिए। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया है, हूँ बट है शादी के पता चला कि ये बड़ा अजाब है, हैं ये इंटरेस्टिंग है। पहले ज़रा एक कॉल उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। फवाद भाई को मॉर्निंग, फवाद भाई को मॉर्निंग, क्या चल रहा है भाई?
1: ट्रैफिक और बच्चों को छोड़ना चल रहा है भाई।
0: अच्छा, बैक टू स्कूल तो आपका भी, माँ बाप का भी बैक टू स्कूल हो ही जाता भाई। तो फैक्ट है,
1: दो महीने ट्रैफिक सकून, ऑफिस जाना आना सकून।
0: हाँ।
1: अब तो हर कोई कट मार रहा है, मोहतरमा जा रही है वो भी कट मार रही है, वो तो हमारी नई गाड़ी हम तो संभाल के चलाना पड़ रहा है
0: भाई। जो लोग गाड़ी में, मैंने बता रहा हूँ, मैं कुछ दिनों पहले देखा है, एक बंदा गाड़ी चलाते हुए राइट हैंड साइड पे चला रहा था भले ही वो, लेकिन वो खरबूजा खा रहा था भाई, मैं शीशे से देख पा रहा था, खरबूजा खाते खाते गाड़ी चला रहा था अल्लाह का बंदा। तो भाई ऐसे ट्रैफिक में मत चलाओ, खरबूजा घर जाके खा लेना प्लीज, ये मेरी आप सबसे विनती है। तो फवाद भाई
1: शुक्रिया आप आए सुबह सर,
0: अच्छा
1: हमारी किस्मत है और हमारी दुआएं हैं।
0: क्या बात है, इतनी शरीफ बात मेरे लिए फवाद भाई, क्या हो गया भाई? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया भाई, क्या बात है।
1: शुक्र है हम रेडियो ऑन कर लिया करेंगे आप।
0: अरे मेरा भाई, थैंक यू सो मच भाई। डार्क मोड हो रहा है आपको भी बात भाई, धीरे धीरे ये समझ
1: सर, क्या करें सर, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे
0: हैं। और बहुत भाई ये बताओ यार, मुझे को मैं जानना चाहता हूँ, आप कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हाउ मेनी आर यू यूजिंग करंटली? क्या क्या हो गया
1: भाई? वो ऐप आया है ना कि बताते हैं कि हिडन में कहाँ कहाँ है बंदा।
0: हाँ हाँ,
1: खरीद के।
0: हाँ,
1: अगर वो चले ना शायद अलहदगी ना हो जाए।
0: अच्छा ऐसा है क्या?
1: कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैंने कभी जिंदगी में, यानी कभी बनाए होंगे लेकिन वो कभी यूज नहीं किए।
0: अरे भाई कहाँ कहाँ पे घूम रहे हो ये बताओ। क्या चक्कर है वाद भाई ये?
1: अभी किसी एम्बेसी का फॉर्म भरा था तो उसपे हाँ। लिखा था कि आप कहते हैं ईमेल लिखे, फिर हर की आईडी लिखी कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे।
0: हाँ।
1: मैंने वेगन से कहा भाई कितनी लिखूंगा।
0: हाँ।
1: ईमेल ही 7-8 है लेकिन वो तो चलाता एक ही हूँ, बाकी तो सिर्फ वो हया बाकी के चक्कर बनाए थे, एक एक दो दो अलग अलग चाहिए।
0: तो उन्होंने फॉर्म छीन के फाड़ा नहीं उन्होंने फिर?
1: मैंने कहा बस एक आधा ही लिख दो मेजर यूज करते हैं बाकी।
0: अच्छा अच्छा, वेरी गुड, मैं समझ। जिस आदमी के
1: ट्विटर, टिकटॉक तो यूज करता हूँ कभी कभार, जैसा वीडियो चलते हैं देख लिया। लेकिन आजकल कई बार सीरीज अच्छी आती है। और फेसबुक बहुत कम रेयर, ट्विटर बहुत कम रेयर, इंस्टा बस देखने की हद तक कभी, अगर यूरोप कहीं तो डाल दिया यूरोप।
0: शो ऑफ करना देख रहे हो पब्लिक, ये भाई साहब का अगर यूरोप गया तो डाल दिया भाई फोटो, वरना तो मैं यूज को नहीं करता भाई। बढ़िया भाई, एकदम वाद भाई, एकदम बड़े भले चंगे जा रहे हो भाई। पर आज अगर आप हो सके तो 20 मिनट बाद कहानी सुनिएगा भाई, कोशिश कीजिएगा।
1: सर मैं अभी रास्ते में हूँ टूवर्ड्स अलखोर, और अभी सिर्फ पहुंचा हूँ अलसद के पास।
0: फिर तो बहुत टाइम, फिर तो जरूर सुनेंगे आप, फिर तो जरूर सुनाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई, लेकिन
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, टेक केयर
0: मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो फवाद भाई की बात एक तो मैसेज पढ़ दूं, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, बस शादी के बाद पता चला कि ये कितना बड़ा अजाब है, जब बेगम से बात पे लड़ाई हो गई तो मैंने मेरी पोस्ट लाइक नहीं की, तुमने मेरी पोस्ट लाइक नहीं करी, कॉमेंट नहीं किया है भाई। ये भाई बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द मॉर्निंग, मैं भी अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। अच्छा बिल्कुल छोड़ दिया आपने मेहर अजीज़ भाई, कमाल है भाई। एक मैसेज है भाई, मैं गांव जब होता हम दोस्त साथ चाय पीने जाते थे 16 किलोमीटर दूर, भाई हम भी जाते हैं दिल्ली में। तो ईमेल का रिप्लाई आएगा बहुत देर के, क्या मेहरबान आते बहुत देर

की महर में आते आते एक मैसेज है, मेरा भाई दिल्ली का लौंडा एक नंबर लाला। थैंक यू सो मच भाई जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन नूरी भाई को बहुत सारा प्यार। एंड इनके बाद है सर, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन के, फ्रेश हो गया मूड। कल की स्टोरी अच्छी थी, काइंडली आज भी शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह। नुमान भाई नो प्रॉब्लम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक, रौनक वापस आ गई सुबह की, इमरान भाई को बहुत सारा प्यार। एंड देन गुड मॉर्निंग, दिस इज़ बाला फ्रॉम सऊदी। अरे भाई बाला, बाला आई एम सो श्योर लोगों ने चढ़ा दिया होगा आपको इस नाम से। बाला भाई कैसे हैं? और एक मैसेज है सैम का, शाम शैम का स्टूडेंट सुबह, शाम का स्टूडेंट सुबह। अच्छा भाई ये भैया नवेद भाई ने मैसेज किया है, आप आ गए हो मैसी रिटायर हो गया है, ये क्या बात है नवेद भाई, ये कुछ इसमें हिडन कुछ जैम है इसमें भी। हिशाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। याया भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वैसे सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है, बस मेंटेन वो प्लेटफॉर्म खुद करता है। वेरी गुड याया भाई, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। और एक मैसेज है भाई, शाम तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं और वी लव दिस वॉइस एंड लव द वाइब। भाई को बहुत सारा प्यार, चार दिल भेज रहा हूँ आपको मेरी जान। थैंक यू सो मच अरसलान भट्ट साहब। एक मैसेज है, दिल तो बहुत क्या मैसेज करूँ, बट आई वॉज ड्राइविंग, अब वापस पहुँचा हूँ, अब वापस आ गया तो सुबह का लीजी मूड गायब और एनर्जी डबल होनी चाहिए। वैसे मुबारक हो, छा गए या फिर से ऐसा क्यों? भाई वो फ़र्क हो जाता है, मैं इसके बारे में अलग से बताऊँगा, ये मैं हर चीज़ नहीं पढ़ सकता ना, है सब बोलवा मेरे से इधर ही। तला भाई वालेकुम असलम, जब कॉल, अरे अच्छा अच्छा, ओ मैं अभी अभी अभी अभी अभी, अभी कॉल उठाता, दो मिनट रुक जाओ बस। आप मॉर्निंग में भी आते हो? नहीं भाई वो मॉर्निंग ऐसा लग रहा मैं घर घर जाके कुछ बांट रहा हूँ। भैया सुनो, सुबह भी आते हो क्या? आ जाया करो सवेरे सवेरे 6 बजे हैं। हाँ उस्मान भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है, 1 रुपये का चिंगम कबीर भाई सिंगम क्या बात है सरफराज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक दिल्ली वाला भाई, थैंक यू सो मच भाई। और एक मैसेज है, आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने और नारी। सही है, इसी टाइम बुलाओ जब आदमी आना सके। सतरा बहन थैंक यू सो मच, उन्हें रैप अच्छा लगा। तब उसमें बहन कह रही है, मैं हिडन जैम और बिजनेस ओनर्स व्लॉग देखती हूँ और बहुत लेफ्ट आउट और अनएम्प्लॉयड फील करती हूँ, इसलिए डीएक्टिवेट कर दिया डाकिया वाले की आवाज़ भी निकालनी पड़ेगी अब, मुझे भी ऐसी लग रहा है बहन। मैं सबसे पहले खबर पढ़ दूं, फिर मैं जो है दो लोग कॉल करूंगा क्योंकि दोनों को बहुत बहुत मुझ पे गुस्सा आ रहा है। तो सबसे पहले कतर की खबरें, स्टार्टिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज यानी कि MOECC, उन्होंने अनाउंस किया है पूरे रिजल्ट्स, उन्होंने बताए क्वालिटेटिव रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं बाय देयर इनिशिएटिव, जिसका मकसद था टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। और ये प्रोसीजर्स जो है वो जुड़े हुए थे एनवायरमेंटल परमिट से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के लिए हैं। एंड देन उन्होंने मेंशन किया कि पूरा टाइमलाइन क्या रहा। तो लॉन्च हुआ था इनिशिएटिव फरवरी के महीने में 2025 में, और इनिशिएटिव ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल प्रोसीजर्स, फैसिलिटेटिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस और इम्प्रूविंग इन्वेस्टर्स जर्नी। तो कामयाबी के क्या कहते हैं उसको, कामयाबी शिखर, शिखर या पथ कहते हैं, जो भी है कामयाबी के जीने पे माशाल्लाह ये लोग भी ऊपर जा रहे हैं, बहुत बहुत प्यार। इसके अलावा कतर म्यूजियम की तरफ से अनाउंस किया गया है एक बहुत खास इनिशिएटिव, उन्होंने अनाउंस किया है द इवेंट्स फॉर डिजाइन दोहा। तो कतर प्रीमियर कंटेम्प्रेरी डिजाइन प्लेटफॉर्म ऑन हो चुका है जो कि वापस आया है अपने मच एंटिसिपेटेड सेकंड एडिशन के लिए। एंड इसकी जो टाइमलाइन है वो शुरू हो जाएगी 5 नवंबर से, तो 5 नवंबर 2026 से लेकर 31 जनवरी 2027, तो अगले महीने तक, पूरे 2 महीने तक ही रहेगा। और ये बायलिनियल प्रोग्राम है जो कि अनवील करेगा काफ़ी एक्सपेंसिव एग्जीबिशन प्रोग्राम के साथ साथ जो काम किए गए हैं ओवर 100 मल्टी डिसिप्लिनरी डिज़ाइनर्स की तरफ से, उन तमाम कामों को शोकेस करेगा। एंड इसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टूडियोज भी हिस्सा ले रहे हैं मिडल ईस्ट से, नॉर्थ अफ्रीका से, साउथ एशिया से। एंड 2026 का एडिशन जो है इट विल बी सेंटर्ड इन वन ऑफ द दोहाज मोस्ट सिग्निफिकेंट हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट फरीज अल असमक, जिसके लिए तैयार हो जाइए। और कतर एनर्जी ने अनाउंस कर दिए हैं डीजल और पेट्रोल के प्राइस। आइए मैं और आप यानी हम आम जनता ये भी जान लेते हैं, तो सितंबर के जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रीमियम गैसोलीन के, प्रीमियम पड़ेगा जी कहाँ गया, अच्छा ये रहा प्राइस। हाँ तो डीजल और सुपर गैसोलीन का प्राइस में थोड़े थोड़े बदलाव हैं, प्रीमियम गैसोलीन 2.05 और फिर 2.21 हो चुका है, और इसके अलावा जो सुपर है, हाँ सुपर और 2 रियाल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा कतर
का एक और बहुत मेजर हिस्सा यहाँ पे मैं गया था एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. ये फिलैटेलिक और न्यूमिस

0: न्यूमिस्मैटिक, ये बोलने मेरी जुबान भाई ऐसा लगता गिर जाएगी, न्यूमिस्मैटिक सेंटर जो कि अफिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, वो अपना सिक्स्थ एडिशन लेकर आ रहे हैं और इस बार इस सिक्स्थ एडिशन होगा अजमान इंटरनेशनल फिलेटेलिक एंड न्यूमिस्मैटिक एग्जीबिशन, बाप रे, और ये सितंबर की 2 तारीख से यानी कल से है एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज बाय द अजमान डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड मीडिया और पूरी एग्जीबिशन जो है वो एक बड़े से पैलेस होटल में रखी जाएगी जहाँ पे वर्कशॉप्स होंगे, कॉइन ऑक्शंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, बेसिकली यहाँ पे पुराने जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो बहुत ही शानदार जगह होती है, मैंने एक मरतबा एक्सपीरियंस किया, इट हैज़ बीन जस्ट अमेजिंग फॉर मी। एक मैसेज है, बाप रे बाप ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जी भाई, ऐसे भी होते हैं, मैं तो भाई कहीं मैं रट के आया था रात को, मैं न्यूमिस्मैटिक काफ़ी अलग ट्रेंडी तरीके से बोलूँगा, लिखना कोनी भाई। एक वैसे कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भाई बर्थडे विश देने के लिए, वो तमीम भाई तो 2 दिन पहले था पर थैंक यू। एक मैसेज, फॉर द लास्ट 2 मंथ ही डिड नॉट कॉल फॉर ब्रेकफास्ट, नाउ इज कॉलिंग फॉर ब्रेकफास्ट, दिस इज नॉट फेयर, हु कॉलिंग, अच्छा अच्छा वो ओके। और एक मैसेज है, आप सुबह आए नहीं हो, लाए गए हो। लिखते हैं भाई आप जल्दी उठकर स्कूल जा रहे हैं तो आप कैसे सो सकते हैं, थैंक यू सो मच सोनू भाई, इसी प्रेम की वजह से तो वो है ना मोहब्बत में फना हो जाऊं वही वाला सीन है। लतीफ़ साहब शुक्रिया मैसेज करने के लिए, अस्सलाम वालेकुम चाचू, वालेकुम सलाम भतीजे क्या हाल है। और एक मैसेज है, वेलकम बैक, बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर रकीम साहब, बहुत सारा प्यार रकीम भाई को, थैंक यू। एंड देन एक मैसेज है, नेक्स्ट वीक कम टू माई रेस्टोरेंट, अच्छा आलू पराठा भी है, दिल्ली स्टाइल में उस्मान भाई तो बात करो यार, दिल्ली स्टाइल में होना चाहिए भाई। अच्छा मुझे एक कॉल करनी थी तो मैं ज़रा वो कॉल कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया जी नंबर, उसके बाद उसकी कॉल उठाऊंगी क्योंकि भाई ने मुझे पहले बोल रखा था और इनकी मैंने कॉल उठाई नहीं, तो ये जालिम तो नहीं हो सकता मैं। कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जी क्या हाल है आपकी, माशाल्लाह
1: भाईजान,
0: जी भाईजान कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैंने सुना है आपकी बैचलर जिंदगी खत्म हो चुकी है, भाई ऐसे सुनने में आया, आवाज में वो कशिश नहीं है, क्या हुआ थी, दबी दबी आवाज क्यों है
1: यार, देखो मैं ना बहुत कुछ बोलने वाला था, अभी मैंने दबा दिया है।
0: अच्छा ऐसा है क्या,
1: एक इंसान जो है ना आंख होते से बिनाई चली गई उसकी ना,
0: क्या चली गई है,
1: और बिनाई बिनाई,
0: अच्छा
1: आंख की बिनाई चली गई है, और एक इंसान के हाथ होते हुए ना उसके आप काम नहीं कर रहे, कॉल उठा ले।
0: अरे वाह बड़ी तहजीब से आपने सुना है, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे। ये जीरो टू हंड्रेड जो आपकी गाड़ी गई है, पहले फुप्पो बन के शुरुआत करी आपने और शटर में उंगली उंगली दे रहे भाई,
1: होता है
0: ₹5 की लग गई भाई, फिर तो नहीं भाई इतना पैसा को नहीं भाई, इतना नहीं भाई इतना नहीं, वर्तला भाई आप तो सुबह कॉल कर लेना यार कभी टाइम मिले तो। आज मैंने मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था मैं, इसलिए मेरी नज़र नहीं है, जब गई तो मैंने इसलिए पहले बोल दिया, मैंने कहा पहले न्यूज़ पढ़ ले तो फिर मैं कॉल करूँगा।
1: रोने वाला नहीं, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ यही टॉपिक ड्रामा, 4 साल से।
0: थैंक यू आपको, बहुत खास नहीं भाई, वेलकम बैक। एक भाई ने मैसेज किया कि फाइनली तला भाई वापस आ चुके हैं, तला भाई की भी एंट्री हो चुकी है। एक मैसेज है, तला भाई पुप्पो से सीधा जल्लाद बन गई, आपके लिए मैसेज है मलिक वकास साहब का। बाकी लाइफ कैसे चल रही है तला भाई, अब तो भाभी आ चुकी होंगी मैंने सुना,
1: ट्रॉली के मार्क बने हुए

0: चार के, लेकिन आपका भाई उठा नहीं।
1: ये बात भाई, यही चाहिए, ऐसे ही जो है आगे जो है इंकलाब आएगा। बहुत बढ़िया,
0: शादीशुदा जिंदगी गुजारने की लेट जाओ, वही लेट ओंधे पड़ जाओ, लेट जाओ आंखों में ग्लेसरिन डाल के रो दो, लेकिन माफी ले लो।
1: वेरी गुड,
0: क्योंकि अगर उस दिन माफी ना ली होती तो आज तुम्हारा भाई फटे सर के साथ घूम रहा होगा।
1: अच्छा अभी
0: वो सीढ़ी से गिर गया था,
1: डॉक्टर ने क्या बोला फिर? कितना टाइम बताया है?
0: आपकी दवाई काम कर गई
1: है। अच्छा ओके वेरी गुड। अच्छा आपके लिए एक मैसेज आया, ये फवाद भाई लिखा है, थैंक यू तलहा भाई, व्हाट आई कैन नॉट से यू सेड इट, ये आपके लिए आया है। ये भी ट्रिप मानने गए थे
0: भाई, मेरे बोलना चाहिए। देखो फवाद भाई, देखो यूरोप जाने के बाद जो है ना आपकी जमान पे लकवा जो मार गया है तो आप जो है कोशिश करें उसको जरा यहीं पे रहेंगे ना,
1: ब्रिटिश ब्रिटिश हो चुके हैं ये,
0: गरम गरम पानी के गरारे करें, गरम पानी।
1: वेरी गुड तला भाई, अब मुझे एनर्जी नजर आ रही है, और ऐसी मेरा भाई सुबह आ जाया करो तला भाई, प्लीज यार।
0: लेकिन भाई यार एक बात बताओ, कैसा कैसा लग रहा सुबह आके?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है।
0: सवाल पहला था, ये मेरा आखिर भी है।
1: पंच बजा के रखा है ना क्लाइमेक्स का, इसलिए
0: मोजा आया, मोजा क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का
1: गाना तो बोलो ना बोलो क्या किया। नहीं भाई मुझे सुन लो, मैं अभी कहानी सुनाने जा रहा हूँ तला भाई, और सुन लेना कहानी, ठीक है? डन भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ फिर तला भाई, थैंक यू सो मच भाई। तो तला भाई की बात कुछ मैसेज पढ़ दूं मैं, क्या है, इसलिए इंग्लिश कार चला रहा हूँ इसलिए इंग्लिश, ओके। एक मैसेज है भाई तला भाई की बात, अभी अभी आई, अभी मतलब अब तो चले गए। एक मैसेज है, एक स्पेशल देसी एनर्जी ड्रिंक पिलाऊंगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या क्या ऑफर आ रहे हैं आज मुझे। और सईद हमजा भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड टू हियर यू इन द मॉर्निंग, साउंड विद सच स्ट्रॉन्ग बेस, थैंक यू सो मच सईद भाई, यही तो हमारी खासियत है। कहानी आने वाली है 7:30 PM आए, और उससे पहले एक और कॉल आ रही, उठा लेते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे क्या बात है कमालुद्दीन भाई, कैसे चल रहा है सब कुछ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है भाई, आपका तो इंतजार कर रहा था।
1: अरे भाई थैंक यू सो मच भाई,
2: कब आप मॉर्निंग में आएंगे?
1: बस भाई आ लिए भाई, एकदम हाजिर है, आज की कहानी जरूर सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा कमाल भाई।
2: कहानी तो भाई आपके साथ, जब तक आप हैं सुबह में मॉर्निंग में तब तक आपके साथ हूँ।
1: थैंक यू सो मच भाई,
2: इवनिंग में नहीं टाइम मिलता था भाई।
1: नहीं
2: नहीं, मॉर्निंग में तो एनी टाइम
1: मजा आएगा आपको कमाल भाई, बस मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं कहानी
2: शुरू कर
1: रहे थे जी।
2: हाँ चाय की जो बात कर रहे थे भाई, चाय लोग बोलते हैं कि चाय पीने से नींद नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, मेरे को नींद में उठाओ चाय पी लो फिर सुला दो।
1: अरे तो ड्रामे भाई, हम खुद चाय पी के ही सोते हैं।
2: भाई मेरे को तो भाई कोई बिस्तर पे भी लाके चाय देता, कभी कभी अभी छुट्टी गया था मैं, बिस्तर पे लाके चाय दिए,
1: चाय पियो, हाई फाइव भाई, मेरा भी ऐसे ही है, मेरा भी ऐसे ही है।
2: चाय के बगैर सुबह नहीं होती भाई।
1: हाँ
2: हमारे पूरे घर का यहाँ लगे चाय नहीं पिए, अगर किसी काम से निकल गए समझ लो सबके सर में दर्द पकड़ लेगा।
1: यही तो दिल से देसी होने की पहचान है कमाल भाई, यही तो पहचान है। आज मैं टैगलाइन प्रमोट की जा रहा हूँ इतनी देर से। पर आप अभी सुनिएगा कहानी तो कमाल भाई, मैं बढ़ रहा हूँ कहानी की तरफ, ठीक है?
2: ठीक है।
1: ओके,
2: सोशल मीडिया की जो बात की, एक मिनट बस बता।
1: हाँ बता दो, बता दो।
2: सोशल मीडिया अकाउंट तो मेरे बहुत सारे हैं, 5-6 है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी आपकी स्टोरी देखने के लिए मेरे को 23 घंटे लगे थे, 23 घंटे के बाद देखा हूँ, तो सोचिए।
1: अरे भैया
2: इतना टाइम नहीं देखता ही नहीं हूँ।
1: नहीं कभी भी एकांत में टाइम मिले तो एकांत में आपको दिखाएंगे, थोड़ा तो एक्टिव होना पड़ेगा आपको अभी
2: भाई। घर में जब से टीवी लगा लिया ना, तब से और प्रॉब्लम हो गई है।
1: अच्छा
2: ड्यूटी से रूम पे आया, टीवी में भिड़ गए।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको मैं एक जगह पे तो आएगी कहानी, वहाँ पे जरूर देखिएगा, ठीक है?
2: ठीक है
1: ठीक है।
2: कल एक मैसेज आपने किया था, वो ओपन नहीं हो रहा है,
1: मैं कराता हूँ ओपन, आपको बताता हूँ अलग से।
2: ठीक है
1: ओके ओके मेरा भाई। और मैसेज किया है सईद हमजा भाई ने, वो लिखते हैं, गुड टू हियर यू अर्ली इन द मॉर्निंग, साउंड विद सच स्ट्रिंग बोस, थैंक बेस बॉस, क्या हो गया, चाय भी नहीं पड़ेगी। एक मैसेज है, कैन यू सेंड मी टू स्टडी, मैं शुरू नहीं करी, अब आप मॉर्निंग में होंगे? जी भाई मॉर्निंग में आऊंगा, और इसके साथ दलजीत भाई भी आएंगे। पाजी आ रहे नहीं ना, ना, ना, ना, ना। कहानी जी कुछ देर में आ रही है 7:30 PM, बॉर्न टू शाइन। जट पैदा होया सिर्फ चौण वास्ते, भाई मैसेज मुसेज कर दिया करो, ठीक है? बैक टू स्कूल हो लिया।

मैं कहा जी देखो कहानी शुरू करनी है तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो मुझे बता दो कि कौन कौन लाइव है, क्योंकि अगर आप बता देंगे कि कौन कौन लाइव है तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, समझ रहे हैं आप। इट्स अ लिटिल इजियर फॉर मी टू नरेट बिकॉज आई नो कि सामने ऑडियंस है भाई, तो मेरे मतलब संतुष्टि के लिए थोड़ा सा पावर पैक्ड हो जाती है परफॉर्मेंस, इसलिए और कुछ नहीं। तो जो लोग लाइव सुन रहे हैं कहानी जस्ट लेट मी नो। और एक भाई ने लिखा है मेरे कल मेरे कल मेरे कल ही भाई, सुबह आना मेरे कल से कम थोड़ी है। ये जो है हमारे गुलरेज भाई ने मैसेज किया है। एनीवे तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव राइट नाउ, आई रियली होप कि आप लाइव सुन रहे हो। आज की कहानी बहुत खास है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और ये एक स्टडी पे, मतलब एक स्टडी पूरी इस पे बेस्ड है, तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। शुरू करूँ मैं? ओके, तो सबसे पहले तो भाई मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ ना, बड़ी ज़रूरी है। ऑल राइट, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, फिर उन्हें सबन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। और अब वक्त है आज के किस्से का जो कि एकदम असली है। इट्स अ वेरी वियर्ड स्टोरी लेकिन कमाल की कहानी है, तो शुरू करें, वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। भाई कह रहे ड्यूटी खत्म करवाओगे कि नहीं, शुरू कर रहा हूँ भाई। ऑल राइट, सो मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं कई साल पीछे ले चलता हूं आपको, 1960 में चलते हैं। जगह इंग्लैंड, यहां पर ग्लोरिया और ऑब्रे गिबन्स, ग्लोरिया और ऑब्रे ये दोनों के दोनों बारबेडोस से शिफ्ट हुए थे, इंग्लैंड आ गए थे 1960 में, और जो ऑब्रे था हस्बैंड जो था वो एयरफोर्स में काम करता था। दोनों को इस वजह से काफी मूवमेंट करनी पड़ती थी, एज यू नो कि जो लोग अपने अपने कंट्रीज में एयरफोर्सेस में काम करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, तो ऑब्रे को भी बार बार फैमिली को कभी इधर कभी उधर शिफ्ट करना पड़ता था। और फिर वो वक्त आया जो जिंदगी में

खुश भर देता है। अप्रैल 11th 1963, 1963 11 अप्रैल की तारीख, और इनके घर में ट्विंस पैदा हुए। ट्विंस का नाम रखा गया जून एंड जेनिफर गिबन्स, और ये आइडेंटिकल ट्विंस थी, दोनों की दोनों बहनें जून और जेनिफर। मगर एक बड़ी, एक नहीं इनफैक्ट बहुत सारी यूनिक बात थी इन दोनों में। ये ऐसा लगता था कि कोई एक सिंगल बंदा है, बस उसके दो अलग अलग वर्जन्स हैं। और एक मसला और था, इन दोनों की जो स्पीच थी, जो बोलने का तरीका था, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। जब इन्होंने बोलना शुरू भी किया, सो ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बात करती हैं, मगर जब सामने वाले से बात करने की बारी आती है तो कुछ मेड अप लैंग्वेज में बात हो रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रही। इनफैक्ट मां बाप भी नहीं समझ पाते थे, एंड दे ट्राइड कि भाई हम समझे अपने बच्चों को, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। मतलब इन दोनों की बातें ऐसी थी, अगर इन दोनों को, बच्चों को, ट्विंस को कमरे में छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि दो रेडियो साथ में चल रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर इनकी स्पीड को, बोलने की स्पीड को कम कर दिया जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ ऐसा कह रहे हैं। और ये दोनों बच्चियां पूरे दिन कुछ ना कुछ पढ़ती और देखती रहती थी, और ऐसा लगता था कि दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों अब किसी से बात नहीं करेंगे। और शुरुआत में माँ बाप को लग रहा था कि ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा देर में बोलना शुरू करते हैं, कुछ लोग थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं, तो मे बी शायद इन दोनों के साथ वही होगा। लेकिन ये कहानी अभी देखिएगा 0 to 100 कैसे होती है। इन दोनों ने अपनी ही जैसी कोई लैंग्वेज बना ली थी, और ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, और स्पेशली अगर ट्विंस होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो दे क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग जो उनके बीच में ही उन दोनों को ही समझ में आए। तो ये तो ट्विंस हैं, तो ये थोड़ी सी उम्मीद थी इनसे। खैर 1974 में गिबन्स फैमिली अपने ट्विंस को लेकर शिफ्ट हो गए वेल्स में, और ये भी इन्हें घर इनकी, इनके एयरफोर्स की तरफ से मिला हुआ था। ये दोनों बच्चियां जून और जेनिफर इस वक्त 11 साल की हो चुकी थी, और जब इनका स्कूल शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक, एक अच्छी और एक बुरी बात थी। जून और जेनिफर स्कूल में बेइंतहा अच्छी थी, वेरी गुड बिहेवियर, किसी से कोई बात नहीं करना, और शायद किसी से कोई बात ना करना ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, बिकॉज नंबर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मगर दोनों बातें नहीं कर रही थी। टीचर्स परेशान थे, परेशान कहना भी अंडरस्टेटमेंट है, फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्हें लगता था कि ये स्मार्ट हैं, पर ये बच्चे घमंडी तो नहीं है, कि चक्कर क्या है, ये बोलती क्यों नहीं है दोनों। और होता ये था कि बाकी बच्चे जो क्लास के थे वो बुली किया करते थे, बहुत बुली करते थे, बहुत परेशान करते थे जून और जेनिफर को। सबको ये दोनों बहनें बहुत वियर्ड लगती थी, और होता है ना कि बच्चों को अब कहाँ तक समझाएंगे, जब वो साथ में होंगे, रिसेस टाइम होगा, सो यू कांट कंट्रोल देम, और बच्चे मजाक उड़ाते थे। दोनों में से अगर किसी का नाम लिया जाए कि जून, जेनिफर, तो दोनों सुन के ऐसे इग्नोर करती थी जैसे वो खुद वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ऐसा लगता था कि इन दोनों ने अपनी एक दुनिया बना ली है जिसमें सिर्फ यही दोनों रहती हैं, और जिस स्कूल में थी ये, वहां पे एक लौती ब्लैक स्टूडेंट भी यही दोनों थी, तो ऑब्वियसली जो आप समझ लीजिए मायार क्या रहा होगा बुलिंग करने का, वो भी उस दौर में। टीचर्स को यहां तक कि ये रूल लाना पड़ा स्कूल के अंदर, जो किसी भी बच्चे के लिए नहीं था, कि जून और जेनिफर की जो छुट्टी होगी स्कूल की, वो बाकी बच्चों से 1 घंटा पहले की जाएगी। तो बाकी बच्चे 1 घंटे बाद जाएंगे और जून और जेनिफर को छुट्टी 1 घंटे पहले दे दी जाएगी। जस्ट इमेजिन, 1 घंटे में पूरा पीरियड निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि टीचर्स को डर था कि बाकी बच्चे बुली करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए रूल्स को बेंड किया गया स्कूल के भी। अभी तो स्कूल वाले थे, लेकिन मेन परेशानी घर वालों को हो रही थी। माँ बाप दोनों बड़े परेशान थे, वो जानना चाहते थे कि ये क्या है जो बचपन में उन्हें सिर्फ लग रहा था कि नॉर्मल सी चीज़ है, नेचुरल है, वो बड़े होते होते बिकेम समथिंग एल्स। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, जून और जेनिफर को लेकर, एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए।

उसने कहा कि दोनों को सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। इसका मतलब है कि कुछ बच्चों को चाइल्डहुड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे तभी बोलते हैं जब उनके दिल में कुछ हो कहने के लिए, उनके हिसाब से सेटिंग हो, मतलब उनके हिसाब से एनवायरनमेंट हो, उनके पसंदीदा लोग हों, जो कि ज़्यादा होते नहीं हैं, इक्का दुक्का होते हैं, तभी ये बच्चे बोल पाते हैं, वरना दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग एट ऑल। मुश्किल ये थी कि ये चीज तो पता लग गई है कि क्या है, मगर इसे ठीक कैसे किया जाए। और जब तक ये सोचते एक और परेशानी आ गई। जून और जेनिफर के स्कूल वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, ठीक है उनके नंबर आते हैं दोनों के, बट हम दोनों बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते, वी आर रियली रियली सॉरी। और दोनों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में। यहां एक्चुअली जून और जेनिफर के लिए बेहतरी थी, क्योंकि यहां के टीचर्स जून और जेनिफर को समझती थी, उन्हें पता था कि ये दोनों बच्चियां नॉर्मल हैं, बस बोल नहीं पाती हैं। और यहीं पर एक टीचर ने खुलासा किया, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों से हमेशा वो डील करती हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चियां कोई अपनी मेडअप लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हैं, ये दोनों बच्चियां बात अंग्रेजी में ही कर रही हैं, मगर इतनी स्पीड से बात कर रही हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा है, बहुत स्पीड से बात कर रही हैं, सो नोबडी कैन कॉम्प्रिहेंड कि ये दोनों क्या कह रही हैं, और वो किसी तीसरे इंसान को सुनने में लग रहा है जैसे इन दोनों ने अपनी ही कोई भाषा इन्वेंट कर ली है, विच इज नॉट ट्रू। स्कूल इन बच्चों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, यहाँ पे टीचर्स जैसे मैंने कहा कि इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर अभी भी वैसा ही था। जून और जेनिफर स्कूल से घर जाती थी, दोनों बहनें अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती थी, सोसाइटी से एकदम दूर, एकदम कट ऑफ हो जाती थी। यहाँ पे एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इस असली कहानी की एक और कड़ी। जून और जेनिफर, इनकी एक और बहन हुई जिसका नाम था रोजी। रोजी ऑब्वियसली इन दोनों की तरह नहीं थी, मगर रोजी इन दोनों के साथ कमरा शेयर कर रही थी, इनकी छोटी बहन थी, और छोटी बहन की यही दुनिया थी, वो इन दोनों को देखती थी, ये दोनों बड़ी वियर्ड सी लगती थी। अब थी तो बहन, मगर रूम तो शेयर करना पड़ेगा। वो देखती रहती थी कि कैसे जून और जेनिफर डॉल्स के साथ बहुत अलग तरीके से खेलती हैं, ये मम्मा डॉल, ये फादर डॉल, और वहां पे एक टेप रिकॉर्डर था जो उन बच्चियों ने रिक्वेस्ट करके लिया था, उस टेप रिकॉर्डर में अपने आप को रिकॉर्ड करती थी फॉर सम रीजन, और उसमें रैंडम बातें करती थी, बिल्कुल रैंडम। तो अगर आप उन्हें सुनेंगे उस टेप रिकॉर्डर, उनकी रिकॉर्डिंग हो, विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट बाय द वे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने आपसे कहा कि भाई आप गाड़ी लेके जा रहे थे और आगे साइकिल ने लेफ्ट ले लिया, इट डजंट मेक सेंस। बट वो यही बातें रिकॉर्ड कर रही थी, एंड दे यूज्ड टू प्ले इट बैक, बार बार अपनी रिकॉर्डिंग को सुनती थी। वियर्ड। वो अपनी छोटी बहन रोजी से ये दोनों बात करने की कोशिश करती थी क्योंकि रूम शेयर करना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनकी छोटी बहन रोजी 11 साल की हुई तो माँ बाप ने उसे अलग कमरा दे दिया, और दोनों बहनों ने, जून और जेनिफर ने, अपनी ही बहन से बात करना बंद कर दिया। जैसे बात करना मजबूरी थी, तो नाउ दे वर नॉट टॉकिंग एट ऑल। आलम यह था कि दोनों बहनें, जून और जेनिफर, इनको खाना खिलाना मां बाप के लिए एक टास्क था, उन्हें खाना रूम के सामने रखना पड़ता था, नॉक करना पड़ता था, और फिर ये खाने को उस प्लेट को अंदर खींचती थी कमरे में, और किसी के सामने नहीं खाती थी। मगर मुश्किल ये थी कि स्कूल में तो सब लोग हैं, सारे के सारे बच्चे, यहां पर क्या किया जाए। तो ये दोनों के साथ जो हो रहा था वो टीचर्स ने नोटिस किया, इन दोनों का हाथ एक साथ ऊपर जाता था, एक साथ बैठ के खाती थी, और ऐसा लगता था कि दोनों एक टाइम पे निवाला बना के एक टाइम पे खा रही हैं। इट वॉज सो मच इन सिंक, जैसे आपने देखा डांस करते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, दैट कोऑर्डिनेशन। और घर पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम बिल्डअप हो रहा था। जून और जेनिफर जब घर पे जाती थी तो बच्चों का भी तो मन होता है कार्टून्स देखने का, और उस टाइम पे जब फोन वगैरह नहीं थे तो ऑब्वियसली उनका भी दिल करता था कि वो भी कुछ देखें टीवी पर, यू नो। सो वो क्या करती थी, वो एक लेटर पे, एक

कागज पे अपने माँ बाप को लिख के देती थी, उसमें कुछ डिटेल्स होती थी कि उन्हें टीवी कब देखना है, उन्हें टीवी पर क्या देखना है, कितनी वॉल्यूम पर देखना है, मतलब थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा घटा दो। और फिर ये दोनों बच्चियां अपने बेडरूम के मेन डोर को खोलती थी, हॉलवे की तरफ जरा सा सिरकती थी और रूम से ही टीवी देखती थी। एंड इस चीज का कोई इलाज नहीं था, बिकॉज करना ही पड़ेगा, मां बाप मजबूर थे। और धीरे धीरे एक और चीज जो एक पैटर्न नोटिस किया गया वो ये था कि दोनों जब साथ में चलती थी तो बिल्कुल साथ में इन सिंक, जैसे कदम अगर राइट उसका उठ रहा है तो राइट फिर दोनों का ही उठेगा, ये इतना सिंक में चलती थी। और लोग बड़े हैरान होते थे ऑब्वियसली जो देखते थे, और अगर कोई देख लेता था इन्हें और नजरें अगर मिल गई तो ये एकदम रुक जाती थी। और रुकना भी ऐसा था जैसे आप किसी वीडियो को पॉज करते हैं, इट्स लाइक कि आपने किसी को बोल दिया स्टैचू, गेम खेलते थे ना बिल्कुल, सो दे यूज टू पॉज देन एंड देयर, के जैसे पॉज कर दिया सब कुछ, टाइम हैज स्टॉप्ड, और जब तक वो बंदा पास से ना चला जाए वो वॉक नहीं करती थी। ये दोनों की दोनों कोई रिबेल, कोई एक किस्म की ब्रेडी बच्चियां नहीं थी, बट जस्ट दैट दे हैड नो चॉइस। कमाल की बात यह है, सो द कहानी टेक्स अ टर्न यहां पे। दोनों ने डायरी लिखी, दोनों ने सेपरेट डायरीज लिखी हैं, और मैं रीड करता हूं एक फ्रेज जो उन्होंने डायरी में लिखा है, ट्रांसलेशन कुछ इस तरह का है। दोनों बहनों ने अलग अलग तरीके से मेंशन किया कि काश हम दोनों अलग हो सकते और हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग होंगे तभी हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे, खा पी सकेंगे, बात कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बहनें एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हैं, मगर दोनों की दोनों डायरी में ये अग्री कर रही थी कि दोनों को अलग होना पड़ेगा टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। बढ़िया कैसे होगा? एंड दिस वॉज द थिंग जहां पे माँ बाप को सोचना था कि ये कैसे करना है, क्योंकि डायरी हाथ लग गई थी, दे न्यू कि दोनों बच्चियां ये कह रही हैं, बट ये होगा कैसे? अगर दोनों को अलग करने की कोशिश करते थे तो दोनों की दोनों खाना पीना बंद कर देती थी, एक कैटाटोनिक स्टेट जहां पर ऐसा लगता है कि फंक्शनिंग बॉडी की हो ही नहीं सकती। सम हाउ देवर लाइक इन अ सिचुएशन, जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि आप नींद में, आपको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इट इज दैट काइंड ऑफ स्टेट। इट्स जस्ट दैट आंखें खुली हैं मगर दे कैन नॉट फंक्शन, उसमें खाना पीना देखना चलना बात करना सब कुछ आ जाता है, जैसे उनकी बॉडी के फंक्शंस का रिमोट छीन लिया गया हो। मगर अलग करने की कोशिश में हार माननी पड़ती थी माँ बाप को ही, इनफैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में उनके साथ बैठती थी उनको भी हार माननी पड़ती थी, और दोनों को फिर एक साथ लाना पड़ता था, और फिर वही होता था अगेन, वही कमरा, अपने आप को कैद कर लेना, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्शन। इट वॉज वेरी नॉर्मल। और फिर एक टाइम आया जब दोनों ने कागज मांगा और उस पर कुछ लिखा, उन्होंने फिर किताबें मांगी। एंड इंटरेस्टिंगली जो किताबों के नाम थे वो इस तरीके से थे कि हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, हाउ टू टॉक लाइक अ ह्यूमन। और वो ये किताबें मांग रही थी कि हम कैसे बात करें इंसानों से, कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है, मगर इट वॉज ऑफ नो यूज। दोनों किताबें पढ़ तो रही थी और रीड भी कर रही थी पर इसका कोई फायदा नहीं था। जून और जेनिफर जैसे साल आगे बढ़ते रहे, इनकी उम्र बढ़ती गई, दोनों की दोनों डिप्रेस्ड होती गई। अब यहां आता एक छोटा सा लेकिन एक बहुत जरूरी ट्विस्ट। दोनों ने खुद डिसाइड किया कि दोनों मिलकर एक किताब लिखेंगे जिसके अंदर वो अपना सारा दिल का गुबार निकालेंगे। सो एट द एंड ऑफ 1981 समर सीजन चल रहा था, उसके आखिर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा नोटबुक्स में, सब कुछ रैंडम, और उन्हें लग रहा कि पता नहीं उन्होंने क्या लिख दिया। एंड पब्लिश करने की भी कोशिश करी लेकिन एक कौड़ी तक नहीं मिली उसकी। एंड वो डिसहार्टनिंग, बच्चे ऑलरेडी परेशान थे और इससे उनका गम, उनके गम में इजाफा ही हुआ। अब यहां पे इंटरेस्टिंग एक और टर्न आया, जो बड़ी हो चुकी थी जून और जेनिफर, इनसे पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन इनकी मुलाकात

एक और ट्विंस हुई. ये अमेरिका के ट्विन बॉयज थे, लड़के थे दोनों, ऑलमोस्ट सेम एज के थे. और ये दोनों अलग किस्म के बच्चे थे, दोनों पार्टी करने वाले, मौज करने वाले, खुश रहने वाले बच्चे थे. और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थी. पर इन दोनों को लगा कि पहली मरतबा किसी किस्म का ह्यूमन कनेक्शन है. जब दोनों लड़कों से इन दोनों की बातें होने लगी तो खुशी की जगह कुछ दिक्कत पैदा हो गई. दोनों बहनें आपस में लड़ने लगी. जेनिफर ने अपनी जर्नल में, अपनी डायरी में यह तक कह दिया कि वो जून को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती. गर्मियां खत्म होने वाली थी, जैसे अभी छुट्टियां खत्म हुई हैं, और अमेरिका वापस लौट गए वो दोनों ट्विन लड़के. एंड वापस ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गई, वापस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं. अक्टूबर के महीने में जून और जेनिफर, उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो अब दुनिया से बदला लेंगी. फॉर सम रीजन उन्होंने ये चीज को डायरी में भी मेंशन किया. उन दोनों ने डायरी में ये तक लिखा कि अब हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जिससे लोग परेशान हो. ऑलरेडी लोग परेशान थे. एंड इन दोनों ने जाके एक स्टोर में आग लगा दी. जब वो स्टोर पूरी तरह से जल गया, उसके बाद डायरी में जेनिफर और जून ने ये तक लिखा कि ये सबसे बढ़िया दिन था मेरी जिंदगी का, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. एंड ये डायरी में मेंशन किया. मगर ये डायरी, क्योंकि माँ बाप नजर रखे हुए थे, तो उन्होंने डायरी पढ़ी एंड दे वर रियली रियली सैड. एंड उन्हें खुद सजा देने के लिए पुलिस को बताना पड़ा. जब इन दोनों को जेल में डाला गया तो उन्हें लगा था कि हमें एक साथ रखेंगे, हम मजे करेंगे, लेकिन प्रिजन तो प्रिजन होता है. दोनों को एक साथ रखा गया मगर दोनों लड़ने लगी. फिर दोबारा अलग किया गया, फिर से साथ में लेकर आए. प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को साथ में भी रहना था और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगी थी. डॉक्टर्स जो इन दोनों पे नजर रखे हुए थे और लगातार बातचीत कर रहे थे माँ बाप से, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एवरी ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजी, उनका ये कहना था कि बच्चों का कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है. पर फिर इस बात को नकार दिया गया. जजेस, इनफैक्ट पैनल ऑफ जजेस जो वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों बच्चों को हम देख सकते हैं कि ये बीमार हैं किसी तरीके की, तो उन्हें जेल में नहीं डाल सकते, इन्हें भेज दिया जाए. और उन्हें कहाँ भेजा जाए? ब्रॉडमोर हॉस्पिटल. ये दोनों बच्चियाँ, जून और जेनिफर, इस वक्त 19 साल की थीं. मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में इन्हें एडमिट किया गया. ऑब्वियसली दोनों खुश नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी. 2 साल ये वहाँ रहीं, 2 साल लगातार सेपरेट अलग अलग वार्ड में इन दोनों को रखा गया. इस दौरान इनसे कहा गया कि तुम दोनों अलग रहोगी, एक दूसरे को खत लिखोगी, और तुम्हें इजाजत है कि तुम माँ बाप को भी खत लिख सको. जेनिफर, उसने एक अपने खत में लिखा जून को, और उस खत में उसने एक बहुत अजीब बात लिखी. उसने बोला, जून, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नंबर आ चुका है, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए. और ये दोनों क्योंकि अलग थी, काफी टाइम एक दूसरे से अलग थी, तो हलूसिनेशंस चालू हो गए थे. दोनों अजीब सी हो गई थी, और जो दवाइयां इनको दी जा रही थी उससे इनका ब्रेन फॉगी हो रहा था. जब ब्रेन फॉगी हो रहा था और आंखों को धुंधलापन दिख रहा था, तो ये दोनों खत भी नहीं लिख पा रही थी. अब इनके लिए ये तक लिखना मुश्किल हो रहा था. हर साल कोर्ट में पेशी लगती थी कि आप इन बच्चों के साथ क्या करें, और जज साहब जो थे तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे थे. आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तारीख बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते 12 साल बीत गए. 12 साल इन दोनों ने इस मेंटल फैसिलिटी में बिताए. जब दोनों की दोनों 30-31 साल की हो चुकी थी लगभग, तो हॉस्पिटल चेंज किया गया और इन्हें ट्रांसफर किया गया. जब ट्रांसफर कर रहे थे तो जेनिफर जो थी वो बोली कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा है, बीमार फील हो रहा है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है. एंड उसने जून को फिर से बोला कि जून, मेरा टाइम आ गया है. एंड सून आफ्टर, लाइक आधे घंटे के बाद, उसे अक्यूट माइकार्डियल हुआ, जिसको अगर मैं मेडिकल टर्म्स को आसान करके बताऊं तो इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट में, दिल में. अब मगर ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है किसी की जान चली जाए, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है. और ऊपर से दोनों बहुत यंग हैं. मगर उसके बाद भी जेनिफर कुड नॉट सर्वाइव. जेनिफर

उसके लिए पहले ही लिख दी थी, एज इफ उसे पता था कि जेनिफर जाने वाली है। जेनिफर के जाने के बाद ऑब्वियसली जून पे बहुत बहुत भार आ गया था, लेकिन एक साल वो और इस फैसिलिटी में रही और यहां से एक बहुत बड़ा राज निकल के सामने आया इन ट्विंस का। जब इंटरव्यू लिया गया तो जून से पूछा गया कि जून हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब जब तुम्हारी बहन नहीं है तुम क्या बात कर पाओगी? और जून जो कि इस वक्त 32 साल के करीब थी, जून ने बोला कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, इनफैक्ट मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे से वजन हट चुका है, आई एम मोर रिलैक्स्ड। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी बहन जेनिफर के साथ कैसा रिश्ता था, क्योंकि हम सब ने पूरी दुनिया ने देखा है, तो उसने बोला वो रिश्ता बहुत टॉक्सिक था, मुझे फाइनली लग रहा है कि हम आज़ाद हैं और हम में से एक को जाना ही था ताकि दूसरा जी सके। मार्च के 18 तारीख 1994 18th of March 1994 जून फाइनली फैसिलिटी से बाहर आई और उसने ये भी बोला कि मैं जी रही हूँ नॉर्मल जिंदगी अपनी बहन जेनिफर की वजह से, बिकॉज उसने जाने का फैसला किया। इन दोनों की जिंदगी पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस बीच एक साइकेट्रिस्ट थी, इनका नाम था इयान ग्रेटा, उन्होंने एक बात कही जो हो सकता है किसी के काम आ जाए जिनके घर में ट्विंस हैं। तो उनका ये कहना है, और मैं एक और कहानी में मेंशन कर चुका हूं कि जब ट्विंस होते हैं, उनकी स्टडी के हिसाब से जब ट्विंस होते हैं तो दोनों को सेपरेटली ट्रीट करना बहुत बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली दोनों दुनिया में एक साथ आए हैं, मगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल फन एंड गेम्स, दोनों को सेम कपड़े पहनाना, दोनों को सेम खाना देना, सेम टाइम में देना, एवरीथिंग इज फाइन, पर उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होना बेहद बेहद जरूरी है फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, उनके जहन को फंक्शनिंग देने के लिए, आगे बेहतर फंक्शनिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी स्टडी में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब ट्विंस होते हैं तो आपको शायद दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, पर दोनों इंटरनली कहीं ना कहीं एक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, मगर जो कम भी होता है वो नॉर्मल से ज्यादा ही होता है। सो इफ यू हैव ट्विंस तो उन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। दो बहनें, दो भाई, भाई बहन, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे भी हो सकते हैं, मगर इफ दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि खाना अलग अलग दो, अलग अलग बिठाओ, एक दूसरे से दूर कर दो, नो, ट्रीटमेंट का मतलब है उनको सिखाने, पढ़ाने, बताने, उनसे बात करने का तरीका हैज टू बी डिफरेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक मशहूर साइकेट्रिस्ट का कहना है। और ये कहानी जून और जेनिफर की बहुत सारी और स्टडीज़ का बेस बनी है और काफ़ी सारी बच्चों के लिए जो किताबें लिखी गई हैं, माँ बाप के लिए पेरेंटिंग पे किताबें लिखी गई हैं, उनका उनके कहीं कहीं जगहों पर जो बेस लाइन है वो यही कहानी है जून और जेनिफर की, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट स्टोरीज जो आज तक मैंने पढ़ी होंगी। बट अब ये कहानी आपके हवाले, 666-22107 नंबर है, 666-22107, और अब आप ही बताएंगे क्या आपको ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज बताइएगा 666-22107, डू लेट मी नो, ओके? बता दो भाई, आदित्य रिखारे तुल

कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। और आज जो कहानी सुनाई है प्लीज़ पे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बहुत सारे मैसेज आए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इतने दिल से कहानी सुनी है। एंड ऑब्वियसली कोशिश ये रहेगी कि कुछ कहानियाँ जो बहुत काम की हैं वो सुबह बहुत सारी आए, भर भर के आएँ। एंड दिस वॉज वन ऑफ द स्टोरी। सो आपने मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अभी तो जिंगल का टाइम हो रहा है इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा बीच में बात कर लूँ, है ना। 666-22-107 नंबर, 666-22-107। आपके मैसेजेस के इंतज़ार में मैं दोहा वाला कबीर। और कहाँ गया भाई? हाँ एक सेकेंड। सारा शहर हमें FM 107 के नाम से जानता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक चेक चेक चेक 8:01 अस्सलाम वालेकुम मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे तो भाई आज की गाने के बाद जो मैसेज आए बड़े कमाल के क्योंकि आज ट्विंस की कहानी थी और इनको अगर आप पढ़ना चाहें इंटरनेट पे तो यू कैन आल्सो गो इन सर्च आप

0: टाइप कर सकते हैं साइलेंट ट्विंस, पूरी की पूरी इनकी कहानी आ जाएगी ऊपर से नीचे तक भाई, सब कुछ डिटेल में। एक कमाल का मैसेज है जो खुद ट्विन है, ट्विंस का एक हिस्सा है। तो मजहरुद्दीन भाई ने मैसेज किया, वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी ट्विंस हूँ। अब 12 साल की एज में हम दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। हम लोगों का क्या, हम लोगों का बदन नहीं लग रहा था। अच्छा, अब बदन में खाने लग रहा था, डॉक्टर सजेस्टेड सेपरेट खाना खाया करो। मेरे पेरेंट्स ने वही किया, बट हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। पेट भर के खाएंगे बट ऐसा लगेगा कुछ खाते नहीं, बट धीरे धीरे सब चेंज हो गया। और भाई अच्छा और अभी आम लोग के जैसा बिहेव करते हैं। आज की स्टोरी हार्ट टचिंग थी। दैट इज़ व्हाट मज़र भाई, जैसे आपको कहा गया ना कि आप ऑब्वियसली वन ऑफ द ट्विंस हैं, आप जैसे आपकी माँ, आपको कहा गया कि दोनों को अलग अलग खिलाओ, वैसे ही मतलब खिलाने से भी जुड़ा हुआ है और अलग अलग बिहेवियर, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है ट्विंस में। दैट इज़ व्हाट द साइकोलॉजिस्ट सेड। एक मैसेज है, I think they both were possessed and then NDD took one of them to spare the other one to live. भाई possibilities are endless. लेकिन उन्होंने लिखा है, parenting matters a lot. Parents couldn't establish a bond with their daughters too. हाँ, मुझे ये भी लगता है इस कहानी में ये भी एक बहुत major part है कि माँ बाप भी bond नहीं बना भाई, भाई उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। एक मैसेज, कमाल की स्टोरी कबीर भाई, मजा आ गया, जजाकला मेरे भाई सलमान भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं जिन्होंने कहानी सुनी है, 4434377 पर एन बता सकते हैं, इन केस यू लाइक द स्टोरी। एंड एक मैसेज है, वेलकम टू द मॉर्निंग शिफ्ट, अफजल उस्मान हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। तब बस मैंने मैसेज किया, वेरी नाइस स्टोरी विद इन्फॉर्मेशन कबीर भाई, जजाकला बहन, थैंक्स अ लॉट। और एक भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने लिखा है, डेंजर एक्सीडेंट हुआ है भाई शमाल रोड एग्जिट 20 पे, तो वहाँ पे ज़रा क्लियर ऑफ रहें, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, अल्लाह हाफिज़ ना भाई, ख्याल रखिए, प्लीज़ ड्राइव सेफली, जोश जोश में आज बैक टू स्कूल में लोग चला रहे हैं गाड़ी। और एक मैसेज है अहमद भाई का, उन्होंने मैंशन किया कि भाई मज़ा आ गया, क्या कहानी थी, लाइफ स्टोरी का मज़ा अपना ही है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार। और इनके बाद मैसेज है, भाई वन ऑफ अ काइंड स्टोरी, और अच्छा हुआ आप सुबह आ गए, नाओ मेरी सुबह बनी रहेगी, थैंक यू सो मच। एक और भाई ने वन ऑफ अ काइंड स्टोरी लिखा है एंड शॉकिंग स्टोरी लिखा है, ऐसा नुबैद कुरेशी भाई ने, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आपको। एंड आसिफ भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम खादिम हुसैन साहब, वालेकुम सलाम नवीद साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल है ब्रदर, मैं बढ़िया ब्रदर, हेलो ब्रदर। नौशाद साहब थैंक यू मैसेज करने के लिए। और एक मैसेज है, वेलकम टू द मॉर्निंग शो, नो प्रॉब्लम हो। और एक मैसेज, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, काम में नहीं हूँ लेकिन आपके लिए उठा हूँ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू भाई भाई भाई। हैदर भाई को बहुत सारा प्यार, हैदर भाई ने कल भी कॉल करके शाम में बता दिया था, थैंक यू सो मच हैदर भाई, लॉट्स ऑफ लव ब्रदर। एक और मैसेज था मेरे पास, अच्छा एक और ट्विन से ने मैसेज किया, वेरी नाइस यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इम्पैक्ट मुझे ये था। इन्होंने मैसेज किया है कि आपका नाम नहीं लिखा भाई आपने, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे भाई ट्विंस हैं, हम लोग बचपन में जब एक दूसरे के साथ खेला करते थे तो अक्सर हम इतना खो जाया करते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे खैर हमने जब बोलना शुरू किया तो हमारे मम्मी पापा बताते हैं कि बोलने में भी हम दोनों को बहुत टाइम लगा, और जब बोलना सिखा रहे थे तो डॉक्टर्स ने बोला कि इन दोनों को अलग रखा करो, इन दोनों से बात किया करो, तब हमने बोलना शुरू किया। तो आपकी कहानी जो आपने सुनाई, इट वाज अमेजिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग फॉर अस एज वेल। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ट्विंस भी निकल निकल के मैसेज कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। अमजद भाई लिखते हैं, ब्यूटीफुल स्टोरी, जजाकल्ला मेरे भाई, थैंक यू सो मच, रियली रियली मीन्स अ लॉट। एंड जब ट्विंस को अच्छी लग रही कहानी तो मेरा तो भाई काम हो गया भाई। अब्दुल करीम भाई बहुत शुक्रिया, एक मैसेज है भाई, एक भाई का मैसेज आया, देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई, भाई अच्छी स्टोरी थी, लव यू हो गया, थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, काशिफ कश्मीर भाई थैंक यू, बहुत सारा प्यार आपका। और एक मैसेज है मोहसिन भाई के, लिखते हैं, कमाल एवन थैंक यू, एक वॉइस नोट है जो भी मैं पहले सुनूंगा, बब्बा जी जिनका नाम है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग जी, रविंदर सिंह सिद्धू जी UAE अबू, इतनी भाई इतनी दूर से मैसेज कर रहे लोग, माशाल्लाह, कॉल भी आ रही है, कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई?
0: बस बढ़िया भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा आप सुबह वापस आ गए हैं
0: जी भाई,
1: बैक टू स्कूल की तरह, आपको भी स्कूल भेज दिया गया ऐसा लगा
0: भाई। बिल्कुल, मैं तो सुबह से ही कह रहा हूँ जैसे बच्चे वो गले में पानी की बोतल टांगते, मैं थर्मस टांग के आया हूँ भाई चाय का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं बिल्कुल इसी बात का, मैंने कहा कि कबीर भाई को वेलकम करने के लिए फोन करना पड़ेगा। अब जो लोग अकेडमिया में जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल वापस आने वालों का इस्तकबाल करें
0: भाई। मैं तो कह रहा हूँ एक स्कूल बस भी लगवा दो भाई, मैं क्यों आऊँ गाड़ी से।

0: मुझे भी स्कूल बस में आना।
1: ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो बचपन से क्रेविंग है कि भाई जाने आने के लिए एक बस लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए,
0: बहुत अच्छा हो जाएगा भाई।
1: टाइम पे छोड़े बाकी सबको ना उठाए, सिर्फ हमें उठाए।
0: नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुझे बस उठा ले 3:30-4 बजे उठा ले और सबको उठाते उठाते मुझे ड्रॉप कर दे आराम से 5:30 तक, कोई दिक्कत नहीं है।
1: बस में सो लेंगे
0: बस की नींद अलग ही होती है, उल्टी दुल्टी बस की जो नींद होती है कमाल की होती है।
1: हाँ बचपन से मतलब मैं स्कूल के जितना टाइम था हमें 1-1.5 घंटा लगता था, तो 6-7 साल मेरा स्केड्यूल फिक्स था कि मैं उसको अपनी नींद का आवर मानता था। मैं किसी तरह उठूंगा, नमाज पढ़ के तैयार होके बस में बैठ जाऊंगा और फिर मुझे 1 घंटा सोना है, अगर कोई डिस्टर्ब कर देगा तो उसकी खैर नहीं, झगड़ा हो जाएगा बस में भाई।
0: इस मामले में लगी है भाई,
1: मेरा 1 घंटा जाने का सोना, 1 घंटा आने का सोना, ये मेरा फिक्स था, बिल्कुल कोई और काम करता ही नहीं था मैं।
0: बस भाई आपके चक्कर में मेरी चाह और बढ़ गई है, अब सच में बस लगानी पड़ जाएगी।
1: लगवा ले कबीर भाई, मजा आ जाएगा।
0: और बताइए भाई,
1: ताजा ताजा आप पहुंचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा।
0: कहानी सुनने को मिली आपको, कहानी सुनी आपने?
1: जी कहानी मैंने पूरी सुनी और मैंने लाइव बहुत दिनों बाद सुनी कहानी, इससे पहले शाम में तो शायद एक आध दिन ही लाइव सुनी होगी, रिकॉर्डिंग अलबत्ता सुन लेते थे कभी कभी, लेकिन बहुत दिनों बाद लाइव कहानी सुन के। ये जो ट्विंस की हमारे कलीग हैं वो भी ट्विंस हैं, तो दोनों माशाल्लाह उनके वालदैन ने मुझे ऐसा लगता है बड़ी अच्छी तरबियत की, दोनों बड़े जबरदस्त भाई और बड़ा मजा आता है उनके साथ। तो लेकिन मैंने नोटिस किया है कि दोनों को एक अलग आइडेंटिकल सेंस है, तो ये उनके मुझे लगता है आपकी कहानी सुन के बाद की वालदैन की कामयाबी है, माशाल्लाह एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है।
0: अरे भाई साहब,
1: तो मैंने कहा कि दोनों को माँ बाप ने बिल्कुल लगता है सेपरेट भी बचपन से तरबियत की कि एक डॉक्टर बनना था, एक इंजीनियर बनना था।
0: नहीं भाई ये फैक्ट है भाई, अलग अलग रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है भाई ट्विंस के केस में, स्पेशली आइडेंटिकल।
1: दोनों को एक शहर में दी, मतलब स्कूलिंग तो एक जगह कराई लेकिन उनके वालदैन ने उसके बाद हायर स्टडीज के लिए दोनों को अलग अलग जगह भेजा।
0: अरे
1: नहीं भेजना, तो दोनों की जो नशोनमा हुई है वो वैसे तो बहुत सारे लोगों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, बहुत सारे ट्विंस है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे ये मैटर करता है इवन सिबलिंग्स में ये मैटर करता है। अगर माँ बाप में मतलब अगर दो सिबलिंग्स में फर्क नहीं करेंगे स्पेशली ट्रीटमेंट में, तो किसी एक की आइडेंटिटी लाजमन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये फील आ जाएगा कि और ट्विंस में ये ज्यादा हो जाता है, कई बार हम सोचते हैं यार चलो एक जैसा ही, तो कई बार आपने एक को कुछ बोला आपने अज्यूम किया दूसरे के लिए भी अप्लाई हो गया। दूसरा भी चाहता है कि उसे इंडिविजुअली मुखातिब किया जाए,
0: वो क्या ना अमूमन
1: खाना सेकेंडरी चीज है। आप कई बार बात करते हैं, आप एक को देख के बात कर रहे हैं और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों के लिए लागू होगी बात, या आपने एक को कुछ कह दिया और आपने ये मान लिया है कि वो उसको बता देगा, नहीं आप इसको कह रहे हैं तो उसको भी वैसे ही समझाइए।
0: वैसे एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छे समझाया,
1: जो लोग समझ नहीं पा रहे शायद।
0: ये आपने क्योंकि सिबलिंग्स में कहना जब एज का डिफरेंस होता है ना तो वो अपने आप में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, तो उसमें आसानी हो जाती है। मगर व्हेन इट इज अबाउट ट्विंस तो अब वो सेम टाइम पे सेम चीजें सेम कपड़े पहन रहे सेम तरीके का चल रहा है, तो वो अलग करना बहुत जरूरी है और वो मुश्किल काम भी है।
1: तो इसीलिए मतलब तरबियत में बहुत अहम चीज है कि ट्विंस भी हो और सिबलिंग्स भी हो, और सिबलिंग्स भी अगर क्लोज एज के हो तो उसमें भी ये फैक्टर का बहुत ख्याल करना चाहिए कि
0: डेफिनेटली भाई
1: ट्रीटमेंट जो है उसको प्रॉपर एक किसी को तवज्जो पूरी दी जाए, ऐसा ना हो कि एक की तवज्जो दूसरे को बांट दी जाए।
0: तो ये कहानी अपने भाई उनको कलीग को जरूर भेजिएगा, मैं भेजूंगा।
1: नहीं मैंने आपको पहले बता दिया ना, मैं उसको जरूर भेजूंगा, आप जैसे रिकॉर्डिंग भेजेंगे मैं भेजूंगा भाई, तुम लोग के लिए कहानी आई है।
0: डन है, डन है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह कॉल करने के लिए। जैसे हमने बात करी ट्विंस का मामला ऐसी है भाई, एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: भाई, आपकी आवाज ऐसी हो रही है वो जो पहले टाइम पे एंटीना ठीक करते थे ना बिल्कुल वैसी कट कट के आ रही है, आप भी बोलो।
2: अरे क्या कर रहे हो भाई, हमारे को पहले ही सुबह सुबह चूना लगाना शुरू कर दिया।
0: नहीं नहीं भाई आ गए, हम आवाज क्लियर आ गई भाई, जैसे ही आपने अपनी भाषा बोलना शुरू किया आया फील भाई।
2: मोना डार्लिंग सोना कहाँ है, बोलता कहीं भी सो जाइए वो।
0: नहीं भाई सुबह सुबह नींद की कोई बात नहीं करेगा, आज बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई, एक हफ्ते बाद करना नींद वगैरह की बात।
2: सो ना अब आप भी कहीं भी सो जाइए वाला नहीं। अच्छा आप ये बताओ पहले आप अलार्म लगा के सोए थे कि ऐसे उठ गए थे, ये बताओ
0: भाई। गिन के बता रहा हूँ, 7 अलार्म लगाए थे, गिन के बता रहा हूँ मैं।
2: क्योंकि जो बंदा 8 बजे
0: गई आवाज। हेलो हेलो भाई, आपकी सबसे बात चली गई। हेलो भाई
2: की मतलब ये करना तो थोड़ा

0: अजीब सा नहीं था
1: भाई? मैं बताऊं, मैंने हाथ में घड़ी में भी अलार्म लगा रखा था और 7 अलार्म फोन में लगा रखे थे, 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक अलार्म ही अलार्म है भाई।
0: अल्लाह हमारा, हमारे लोग का रूटीन, हमारा तो बिल्कुल नाइट वाला रूटीन, हमको मॉर्निंग वही 4 बजे।
1: फिर गई आपकी आवाज भाई, आपका सच बता रहा हूँ बिजली विभाग वाला सीन हो रहा। हेलो हेलो, क्या कोई है भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से कट गई है।
0: आप लोगों के लिए, हाँ, आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा टफ था मेरे हिसाब से, कि क्योंकि आप लोग का एक अपना वो बना हुआ था सुबह का और शाम का, तो उस हिसाब से आदमी लेजी हो जाता है ना, कि बंदा उस हिसाब से चलो यार, क्योंकि हमारा ड्यूटी भी सुबह के टाइम शुरू होता है फिर शाम तक, तो उस हिसाब से अपना एक रूटीन बना लेता है बंदा।
1: भाई जिस टाइम सोना हो उस टाइम उठ के ऑफिस आना हो रहा है तो बिल्कुल ऑपोजिट है भाई, बिल्कुल उल्टी ही नदी बह रही है।
0: ये आप, आपके लिए मतलब एक से ये भी बनाया गया है कि भाई जिंदगी में और कुछ भी है,
1: जिंदगी में कुछ और। शुक्रिया बाबा जी।
0: जितने कितने तक मत जियो, बस लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हैं, हर एक को एक्सेप्ट करना सीख लो।
1: वाह,
0: ऐसा नहीं है
1: बाबा जी। कौन सी पहाड़ी पे बैठते हैं आप बताइए, और कस्टमर
0: भैया हम लोग तो बस वही है, आप दिल्ली के, हम लोग यूपी वाले हैं, तो बस आसे पास के हैं हम लोग।
1: वो बस ये बेल्ट जो पूरी यूपी दिल्ली बिहार वाली बेल्ट है, ही डेंजर बेल्ट भाई। अलग है
0: ना थोड़ा सा, और रहन सहन खान पान तकरीबन वही रहता है, तो आदमी का वो आइडिया रहता है ना उसके बारे में।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल रहता है।
0: और कबीर भाई बड़ा अच्छा लगा, मतलब का आपका कहानी भी, मतलब एक दिन तो आप व्हाट्सएप पे भी भेजे थे, वो जो जेट ईयर वाला यार, वो बड़ा मुझे मजा आया वो सुन के, वो कहानी कि उसमें देखो किस तरीके से सामने वाले को, बंदे को इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई आने से, चाहे मतलब जूनियर या सीनियर का, ये डिपेंड नहीं करता है, सिचुएशन को देख के हर एक को मतलब ये करना चाहिए।
1: हाँ भाई, वो भाई ये रहता है, ये हर प्रोफेशन में भाई कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है लोगों में। तो
0: असल में हम लोग मैं अपना बता रहा हूँ, अपना पर्टिकल की, मतलब हम मैकेनिकल अभी तो ड्राइव पे आ गए हैं, हम लोग पहले मैकेनिकल उसमें बॉम्बे में रहते थे।
1: अच्छा।
0: हमारे साथ में सीखने वाला बच्चा, कभी कभी हम कोई सामान फिटिंग करने के टाइम इतना कंफ्यूज हो जाते थे ना, कि दिमाग, वो छोटा बच्चा सीखने वाला, वो हमें बता देता था और उसका आइडिया, पहले हमको उसको तो थोड़ा इग्नोर करते थे, चल यार बंदा जो एकदम परफेक्ट बताया, ये मतलब कैसे कभी गियर फिट करना हुआ है और ये कुछ मतलब, तो वो कैसे कैसे उसका तरीका समझ में आ जाता था और वो परफेक्ट हो जाता था। तो ये बंदे को कभी भी मतलब इसके ऊपर ये करना चाहिए, सामने वाले को हर एक को नहीं ये करना चाहिए कि नहीं अब मैं सीनियर हूँ तो ये जूनियर, और ये इस मामले में बंदे को थोड़ा सा ये करना चाहिए।
1: नहीं पर आज की सुनिए आपने कहानी, तो आपने पिछला पूरा पास्ट गिना दिया, लेकिन आज की सुनिए आपने कहानी।
0: आज की तो सुनी ना यार, मैं जुड़वा मूवी जब देखा था ना पहले बॉम्बे में, उस टाइम बचपन में तो मुझे लगता था कि यार ये सब क्या फेक ड्रामा बना, हाला उस टाइम इतनी समझ नहीं थी 14-15 साल की उम्र में, तो ये लगता था यार ऐसे कैसे होता है, एक को मार रहा है दूसरे को चोट लग रहा है उसको, मतलब ये हो रहा है तो ये मुझे, लेकिन ये है वाकई कुदरती है, अभी मतलब इस में मतलब ये जो आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल हकीकत है कहानी। तो मैं अब हमेशा जुड़ूंगा, क्योंकि सुबह में हमारा तकरीबन ये शाम वाला थोड़ा सा, अब आप व्हाट्सएप पे भेजते थे तो सुन लेते थे,
1: मैं भेजूंगा
0: थोड़ा सा मतलब मसला होता था कि वो टाइम में।
1: नो प्रॉब्लम भाई, भेजूंगा मैं, टेंशन फ्री रहो एकदम, भेजता हूँ मैं, ठीक है?
0: और बातचीत भी करते रहेंगे, अच्छा लगता है सुन के।
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत
0: शुक्रिया। आप लोगों की सीखने को मिलता है, तो थोड़ा सा रूटीन अलग अलग चेंज हुआ है, अब और लोग मैम साहब लोगों को अब उनको सोने का मौका दे दिया, वो बिना अलार्म लगाए सो जाए।
1: ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए, जज़ाकअल्लाह।
0: के लिए भी मतलब मौका है,
1: हाँ।
0: चलो सब लोगों को मौका मिलना चाहिए भाई, ये भाई। कोई हमारी तरफ से शिकायत नहीं है, ये जरूरी भी है,
1: हाँ।
0: कि हर बंदे को अभी एक रूटीन में ही नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहिए।
1: वाह वाह, मैं कह रहा हूँ ना, कोई किसी ना किसी पहाड़ी पे जरूर बैठते हैं, आप छुपा रहे हैं हमसे।
0: इसलिए सुबह के टाइम थोड़ा सा हम लोग का गप सप ज्यादा होता था, ये उसमें एक मौजू होता था, हमारे बड़े भाई लोग जो जुड़ते थे,
1: हाँ।
0: तो सुन के अच्छा लगता था, उसमें वो अलग रूटीन था उसमें, और वो भी एक बहुत मजे का मतलब ये हुआ करता था, बातचीत करके और एक दूसरे से मतलब ये करके एक मौजू हुआ करता था, कि मतलब इस पे आपकी क्या राय है, तो इसके ऊपर हर एक का रूटीन अलग अलग होता है ना, तो थोड़ा सा चलो अब वो भी उसका भी हो सकता है किसी के तरफ से सिस्टम शुरू
1: किया नहीं भाई।

0: थैंक यू सो मच. देखो अभी कॉल जो है हमारे भी लंबी, मौजू बहुत लंबा हो गया, मौजा ढूंढना पड़ता है, इसलिए दूसरों को भी कॉल देते. थैंक यू मेरा भाई, शुक्रिया.
1: ओके भाई, चलो जारी रखो आप.
0: ओके मेरा भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
1: हमारे जितने जानने वाले हैं सबको सलाम वादा, मैं रईस बात कर रहा हूँ.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. रईस भाई जो है इनके बाद एक और कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. अरे भाई साहब कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. भाई आप बताएं कैसे हैं?
0: बस भाई वही हड्डी वही खाल है. सुनाइए.
2: अचानक से आवाज में कुछ मतलब तगैयर लगा तो मैंने कहा कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये किसने बिखेर
0: दिया? देखो देखो वो आ गया. वैसा
2: नहीं, वो शेर याद आया. ये कौन है, ये किसने बिखेरी है मस्तियाँ, हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है.
0: अरे यार ये आदमी कैसे, यार मेरे को जलन होने लगी आपसे यार. ये आप कैसे सिचुएशन के हिसाब से एकदम फटाफट एकदम निकाल देते हैं शायरी. यार कमाल है, यार कमाल.
2: कबीर भाई मोस्ट वेलकम बैक.
0: थैंक यू.
2: थैंक
0: यू मेरा भाई.
2: बाकी अल्फाज मुझे लगता है खुलूस का पता दे रहे होंगे एक देरी ना इंतजार के बाद. अल्हम्दुलिल्लाह आप वापस आए. और जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब वो तब्दीली जो नेचर का एक हिस्सा है, तो ये तब्दीलियां भी जरूरी है और बस काफी टाइम हो जाता है. अच्छा एक चीज है, जैसे हर मैं अब आप आए हो, एक कॉलर आपने अभी अटेंड किया या दो कॉलर में, तो अभी जस्ट सुनना शुरू किया जैसे सुना आपकी, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी यार लॉन्ग टाइम हो गया जल्दी करो फटाक से, तो मैंने कॉल शुरू कर दिया. क्योंकि आपको पता है कि 107 पर कॉल करना मतलब जिहाद करने के मुतरादिफ है.
0: क्यों भाई? क्या बात हुई?
2: बड़ी मुश्किल से कॉलें लगती हैं यार.
0: यार पहली कॉल उठाई यार आपकी, यार मतलब ये तो मतलब ये कोई बात नहीं होती यार. मैंने पहली बार
2: मतलब चले ठीक है, वो कभी कभार वाले को नहीं जोड़ा जाता.
0: कभी कभार, कभी कभार भाई साहब यार ऐसी बात नहीं.
2: नहीं कभी कभार एक आध बार में लग जाती है, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता.
0: ये देख रहे
2: हैं कॉल लगती है.
0: अरे चलो ठीक है,
2: अल्हम्दुलिल्लाह की एक, एक मतलब वो क्या कहते हैं वसीओ तरीर शोहरत ज्यादा चीज है इस वजह से.
0: एकदम सिपाहियों की तरह गाड़ी उर्दू जो आप बेक बेक के मारते ना भाई. मजा ही आ जाता है, बिल्कुल फील आ गया.
2: कबीर भाई इसको खत्म चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि एक आदत जो बनी रहे, अगर मतलब क्या कहते हैं इसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से कुछ हाथ नहीं आएगा.
0: ओके ओके.
2: तो बेहतर है कि जो जबान पे चढ़ी है या जो मतलब बहुत तेज रफ्तारी के साथ रवानी के साथ निकल रहा है उसे निकलने दो.
0: ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आपकी जुबान है, जो मर्जी करें आप. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप वापस आए सुबह में. आई एम रियली हैप्पी भाई. और
2: मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था कि आप सुबह में आए, क्योंकि बाकी तो धीरे धीरे सब लोगों से बात हो जाती है. मैं तो शाम के टाइम रहता नहीं हूँ, हो नहीं पाता हूँ. तो अब आप शाम के टाइम है और हमारे दिन में वक्त होता है, सब लोगों से इस तरह से बारी बारी अगर मौका मिल जाए करता है तो ये हमारे लिए बेहतर है.
0: नहीं भाई थैंक यू सो मच कि आपने इस काबिल समझा मेरे भाई कि आप कर लेते हैं कॉल सही टाइम पे, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी जान. थैंक यू सो मच
2: भाई, ऐसा मत कीजिए, हम इंतजार कर.
0: क्यों हम ना बोले गाड़ी गाड़ी उर्दू में गाड़ी गाड़ी बातें ना करें, हम आपको अकेले बोलने दें. हम भी तो बोलेंगे ऐसे कैसे.
2: कहना चाह रहे थे कि ये चीज है नाजिया बन के उसमें क्या कहते हैं शो में नहीं हो पाती थी.
0: अच्छा.
2: थोड़ा सा माहौल आपके आने से चेंज यही हुआ है कि लोग बेतकल्लुफी का इजहार करते हैं.
0: हाँ.
2: और देखो जब जहाँ बेतकल्लुफी होती है ना, वहाँ न सिर्फ फरहत तो शादमानी होती है बल्कि अंदर से बाहर तक आदमी थोड़ी देर के लिए एकदम मसरूर होके मगन हो जाता है.
0: अरे भैया कहाँ ये सब छोड़ो भाई, आप किताबें विताबें लिखो भाई, गलत लाइन में है मैं आपको बताऊं.
2: आपकी आमद जो है ना वो हमारे सुरूर का बाइस.
0: अरे भैया तो यार मुशायरा लगा दिए भाई, फील आ गई यार.
2: नहीं नहीं सच में कभी ना, देखो यहाँ मतलब मजाक का मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. आपके आने से जाने कितने बंदे जो मैं फील कर रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ कि यार हाँ चलो थोड़ी सी बेतकल्लुफी जब दोस्तों के बीच में होती है.
0: हाँ.
2: तो कोई भी मौजू अगर टफ भी हो या कहीं अगर थोड़ी सी लग्जिश भी हो जाए तो वो सब बराबर लगती है.
0: अरे भाई थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना मेरे लिए बहुत है भाई.

0: सेट कर दिया एकदम मूड, अब आ रही है फील।
1: हाँ
0: जी, थैंक यू सो मच।
1: कम लोग ऐसे होते हैं और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनका इंतजार किया जाता है। हम तो खैर मतलब इंतजार करने वाले में से हैं, लेकिन आपका इंतजार कर रहे होते हैं, ये आपके लिए बड़ी बात है।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार भाई, जज़ाकअल्लाह आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्यार का
1: प्यार मसला है मेरे भाई,
0: बढ़ाते रहेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई,
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मैंने कल कहा भी था नाजिया मैम को कि किसी के मुंह से मैंने सुना है कि जंग हो या मोहब्बत हो, दोनों भरपूर होना चाहिए।
0: अरे यार
1: मजा तभी आता है।
0: वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट वेरी राइट, थैंक यू सो मच भाई। अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, और भी कॉल्स आ रही है, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया।
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई कसम से भैया, मतलब कमाल की उर्दू है इनकी, ऐसी वो गाड़ी समैया होती है ना बगैर दूध वाली, बिल्कुल वैसी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ भाई, कितनी उर्दू सीखी अभी भाई से?
2: भाई क्या हाल चाल,
0: ये कोई उर्दू? अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया। आसिफ भाई आप सुनाओ क्या हाल है?
2: बढ़िया बढ़िया भाई,
0: और बताओ मेरे जान क्या चल?
2: भाई कैसे हो आप, कैसे हो आप?
0: बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम शानदार एकदम शानदार।
2: भाई मैं भी ठीक हूँ भाई, आप बताओ। बस मैं बोल रहा था भाई, मैं सुबह सुबह जब उठा, उठने के बाद मैं मतलब 6 बजे में उठा और 6 से लेके 7:30 बजे तक का तो मेरे को खबर ही नहीं थी कि क्या बोलते है अपने
0: कबीर कबीर
2: कबीर भाई, कबीर भाई सो पे है। बाद में भाई मैं अभी दो तीन जगह कॉल में सुना तो मैं, अरे कबीर भाई अपने, अरे अरे अरे कबीर भाई, छुट गया लगता है सुबह।
0: भाई भाई आज मुझे लग रहा है अभी भी नींद में ही हूं आसिफ भाई, अभी होश आया नहीं है मेरी जान।
2: साला दुख काहे खत्म नहीं होता।
0: दुख काहे खत्म, मेरा तो शुरू हुआ भाई।
2: भाई कसम से मॉर्निंग ड्यूटी ना मेरे को बहुत चीड़ आ रही है भाई।
0: मेरे टाइम
2: 5:30 बजे उठो
0: बस भाई, हाई फाइव भाई, 1 घंटा पहले मैं उठ रहा हूँ आसिफ भाई, तो ऐसे ही चल रहा है।
2: भाई बाकी मैं तुम्हारी स्टोरी तो नहीं सुन पाया भाई,
0: मैं
2: थोड़ा बिजी था, भेज दो ना मेरे को, मैं सुन
0: मैं भेज रहा हूँ भाई।
2: और बाकी भाई बहुत प्यार भाई,
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई, प्लीज मैं गुजारिश करता हूँ सुबह सवेरा भाई, इंटेलेक्चुअलिटी मत झाड़ना भाई, आप बहुत अकलमंद हो गए। इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए भाई प्लीज, मेरे बस का कौन नहीं भाई ज्ञान। एक कॉल आ रही, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: कमाल भाई क्या रहे कमाल भाई की?
3: अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई।
0: जी भाई,
3: आप जो कह रहे हैं अभी कह के गए जमाल भाई,
0: जी जी,
3: तो यकीन मानिए आज मौसम भी देखिए, किसी से पूछिए आज हवा इतनी अच्छी चल रही है आपसे आते ही कि गर्मी थोड़ी कम हुई है
0: भाई,
3: हवा बहुत जबरदस्त है।
0: आप जमाल भाई से सीख गए मुझे लग रहा है।
3: नहीं जमाल भाई से नहीं सीखा भाई, आज तो मौसम देखिए और लोगों के वो देखिए, इतनी सुबह खुशनुमा हुई है आपके आने से।
0: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
3: जो आपने सुनाया बहुत अच्छी थी, कहीं मैं आने के बाद जो है ना ऐसा लग रहा है कि आज सुबह जो है जल्दी हो गई है।
0: हाय भाई आज तो भाई
3: सबका बदला हुआ, देखिए जो भी आ रहे हैं हंसते हुए जा रहे हैं आपके साथ में।
0: मैंने बोल रहा ना मौसम बना देंगे भाई, मौसम बदल देंगे, तो बस वही है।
3: और सुबह जो हो वैसे होती थी तो भाई जो भी आते थे सब ज्ञान की बातें होती थी, पर आपके साथ में ज्ञान नहीं है, आपके साथ में जो है सुबह अच्छी होती है।
0: थैंक यू भाई, मींस अ लॉट भाई, जेन्युइनली मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई, ऐसे ही बस प्यार देते रहिए। कहानी भेजता हूँ मैं कुछ देर में,
3: ठीक है
0: मेरे भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये जो बात है मैं फिर से क्लियर कर दूं भाई, देखो अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, छोड़ो ना ज्ञान, सुबह सुबह एक मैसेज है, ऑफिस में मौसम बदल दिया, आप सुन रहे हैं आपको, अरे भाई अहमद भाई थैंक यू सो मच। एक खुर्रम शहजाद भाई का मैसेज है, GPS प्रॉब्लम किद्दा वीरे। एक और मैसेज है अरबाज भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कारी मौलाना कबीर सर कह रहे हैं सुबह ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है तो बस 1 घंटा सुन पाऊंगा आपको। हाँ हवा तो माशाल्लाह बहुत तेज चल रही है। और नदी मैंने कहा कबीर भाई क्लाइमेट भी चेंज कर रहे हैं, क्या बात है भाई, अभी मैजिक चल रहा हूँ मैजिक। अच्छा अभी जो है मुझे गाना चलने की जरूरत है, आई एम गोना प्ले अ ट्रैक। आसिम सर तू है वही, 8:26 by the clock, मैं दो हवाला कबीर, लेट्स गो।

भाई देव अगला गाना मैं लगातार चला ही रहा हूँ तो जरा ट्रैफिक की अपडेट जरूर दीजिएगा इस बीच में 666-2107 पे। गाने के बाद मिलते हैं। गाने का नाम है जी डेंजर। और संगीत पे मैगा जी पूरे कदर को

0: वेकअप जी वेकअप शो का तो यही नाम है। ऐसा उठाएंगे पूरे दिन के लिए तैयार रहेंगे आप। बैटरी फुल चार्ज रहेगी भाई, जैसे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं होया करती भाई, जिनको लगा देते हैं हम पार्किंग में बढ़िया, वैसी वाली फील करा देंगे आपको। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड इट इज 8:32 बाय द क्लॉक 33 कुल मिला के। तो अब सब मैंने लिखती है वेकअप। यस यस एब्सोल्युटली राइट बहरा। एंड सबकी ड्यूटी चालू हो गई भाई, बच्चों की वजह से माँ बाप की ड्यूटी भी चालू है। सो कंग्रेचुलेशंस बैक टू स्कूल। यूसुफ भाई लिखते हैं कि नहीं हो सकता कबीर एक दिन में। यूसुफ भाई किस बारे में बात करें बताता हूँ। यूसुफ भाई कह रहे हैं बड़े सीरियस कॉलर्स पे जाते हैं। देखो जो जो बहुत सीरियस बातें करने वाले हैं ना कॉलर्स, हमारे बहुत प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, फॉर्मेट नहीं है भाई अपना, अपने को क्या जचता नहीं है थोड़ा सा ना, तो ज़्यादा सीरियस होने का नहीं इधर, क्योंकि मैं नहीं हो पाऊँगा। समझ रहे हैं आप? सोचिए आपने 10 मिनट बहुत भारी भरकम बात कर ली, पता चला मैंने मजाक कर दिया, तो भाई ऐसी ऐसी हो जाएगी। एक मैसेज है, पर्सनल नंबर दे दो वरना कसम से क्या है कतर में हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। किधर बैठेंगे आसिफ भाई हड़ताल में, मुझे प्लीज़ बताइए। आई रियली वॉन्ट टू नो, मतलब ये अपने आप में सवाल हो सकता है आसिफ भाई कि अगर आपको यहाँ पर कहीं बैठना हो तो किधर भी धरना देंगे आप इतनी गर्मी में, ये बताइए आप। आदमी धरना अपने घर पर नहीं दे पा रहा है। एक मैसेज है 20 मिनट बाकी मजे कबीर भाई, सारा दिन ड्यूटी पे रहूँगा, प्रोग्राम ख़त्म करके छुट्टी है। अरे भाई अभी है भाई छुट्टी, अभी ऐसे एकदम छुट्टी नहीं होती है, रुकना पड़ता है भाई, पर थैंक यू सो मच। अच्छा इट्स टाइम फॉर सम रिकमेंडेशन, मैं कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको। देर आर फ्यू थिंग्स जो आप देख सकते हैं, मैंने पिछली मरतबा आई थिंक मैंने कल ही शाम को कुछ बताया था, क्या मैंने कुछ दो मूवीज बताई थी, आई रिमेंबर मैंने द पावर एक करके मूवी बताई थी जो आप देख सकते हैं, डेफिनेटली वर्थ इट, जरूर देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स एवर मेड। और अगर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री टाइप देखना है तो मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है, दो चीज़ें। एक बहुत ही अनयूजुअल डॉक्यूमेंट्री है जो शायद आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, और ये आप बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा क्योंकि ऑफ कोर्स बैक टू स्कूल चल रहा है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो एक 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई थी, ध्यान से सुनिएगा इसका नाम, इसका नाम था माई ऑक्टोपस टीचर। कमाल की चीज़ है भाई, कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें बेसिकली जो जो फिल्म मेकर है उसने जो उसका एक बहुत ही अनयूजुअल एक इमोशनल बॉन्ड जो एक वाइल्ड ऑक्टोपस के साथ है, ऑक्टोपस के साथ जो उसका रिश्ता है वो उसने बताया है, साउथ अफ्रीकन एरिया किसी एक फॉरेस्ट में पूरा पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है। बट डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, आई थिंक ये लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, हायर ऑन द लिस्ट, बच्चों को भी जरूर दिखाएगा, दे विल लव इट। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, कौन है आपके साथ एफएम 107?
0: अरे भाई साहब हमने कहा बैट्समैन रिटायर्ड हो गया, क्या बात है क्या बात है। शहजादा सलीम शेखू कैसे हो?
1: वेलकम टू द मॉर्निंग शो।
0: अनारकली कैसी है शेखू ये बताओ? है
1: बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से है, बिल्कुल इसमें नो डाउट है, बिल्कुल
0: बिल्कुल नो वेरी गुड।
1: वो आपका जो इवनिंग शो थे ना, तो मेरी तो ड्यूटी, मेरा शेड्यूल ही गर्मी में चेंज है ना, सुबह 3 बजे से ड्यूटी है, दोपहर के 3-4 बजे तक फिनिश, आपका शो स्टार्ट होता था तो मैं तो फिर रूम में होता था, फिर कोई वीडियो के साथ गाड़ी के साथ नहीं होता हूँ ना। मॉर्निंग It's very nice, very good, excellent. Morning, you come back, morning show. So many appreciate, special for Kabir RJ.
0: Aye, Shahzad, aye. Itti pyari pyari baatein karte ho.
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे वो मैं आपकी एक सुन रहा था, कौन वो ऊपर अपना पहाड़ पे बैठ के अपना
0: ज्ञान देते भाई मैंने मैं वही बोला, मैंने कहा भाई बहुत सीरियस बातें कर रहे थे, मैंने कहा बाबा जी कौन से पहाड़ पे बैठते हो अभी बता दो, वही आके सुन लूंगा।
1: बाबा जी वही ना और रईस भाई है, वे सुन रहे हैं।
0: रईस भाई को सलाम, रईस भाई।

0: बहुत सारा प्यार है इस भाई को, स्वीट हार्ट है यार,
1: हाँ बहुत स्वीट है और हमेशा मतलब उनका बड़ा अच्छा है, एक एक्सीलेंट।
0: तो देखो शहजाद सलीम भाई, एक शर्त है देखो इस शो में कॉल करने की, मैं आपका नंबर नोट कर लिया भाई, एंड में 229 है ठीक है, तो कोई सीरियस बात नहीं करनी है, मौज करेंगे शहजादा भाई ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, हाँ। बिल्कुल सही किया, मैंने एक ही घूंट पानी पिया हूँ और
0: पहरा
1: मेरे के पास ये अप्रिशिएट करना था कि कबीर साहब आ गए और थोड़ा सा हाय हेलो और माशा एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच शेखु, बहुत सारा प्यार, ख्याल रखिए मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इनकी फोन कॉल को दीवार में चुनवा दिया जाए, अनारकली म्यूजिक भाई, कला आज भी डालूंगा मैं। शहजादा भाई बहुत सारे प्यार कह रहे हैं भाई, मैंने एक मूवी देखा था लास्ट सनलाइट, बहुत जबरदस्त मूवी लगी मेरे को, क्या नाम है लास्ट सनलाइट, क्या किस बारे में है आसिफ भाई, सिंस यू आर रिकमेंडिंग भाई बता दो किस बारे में है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम देव, कैसे हो
0: हैं, कौन कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग नहीं हुई आपकी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है भाई, क्या नाम है आपका,
2: गुड मॉर्निंग तो होगी है, मैं तो कह रहा हूँ मेरा देव वापस आ गया।
0: अच्छा मेरा देव सी यार आ चुका है,
2: धड़कन मूवी याद आ गया,
0: अच्छा धड़कन मूवी गुलरेज भाई, भाई मैं तो धरी हूँ भाई, आप किधर गायब है, आपकी तो मैंने गैर मौजूदगी के इश्तिहार लगाए हुए मंसूरा में पूरे,
2: फोन मर गया,
0: अरे मर नहीं गया यार मैं कह रहा हूँ मैंने मिसिंग वाले पोस्टर लगाए हुए हैं पूरे मंसूरा में, गुलरेज नीचे लिखा है मिसिंग, ढूंढने वाले को 5 रियल और कैसा चल रहा है गुलरेज भाई, सब बढ़िया
2: भाई, शुक्र है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार,
2: ठीक है
0: एकदम सेट चल रही
2: है,
0: हैं क्या यही तो भाई, तपती धूप में चाय पीने का जो मजा है वो
2: मुझे ब्लॉक
0: ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट
2: भाई, मेरी बात सुने,
0: हाँ
2: आपकी जो स्टोरी है वो सुना दी आपने,
0: हाँ भाई सुना दी मैंने
2: यार, आप मैं ना आज मेरा मतलब काफी 3 मंथ्स बाद पाकिस्तान से आया हूँ ना, तो इसलिए मुझे रूटीन नहीं पता,
0: नहीं अभी अभी अभी 7:30 के आसपास ही होगी कहानी वैसे रियली,
2: वो तो अल्लाह तो कल मैंने एफएम ऑन कर लिया तो मुझे एक सुरीली आवाज नहीं थी, मैंने तो अपना ही ब्रो है
0: अपना ही ब्रो है, यही यही मैं चाहता हूँ भाई, ऐसे ही दिल में बात आनी चाहिए भाई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत
2: शुक्रिया,
0: फिक्स है फिक्स है फिक्स है, अभी फिक्स है भाई, सुबह 6 बजे से,
2: मतलब कि सुबह सुबह उठना पड़ेगा
0: भाई, बार बार मत याद दिलाओ यार, हाँ भाई उठना पड़ेगा भाई,
2: हम तुम्हारा दर्द समझो हूँ पायो,
0: थैंक यू ब्रदर, बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू, जजाकल्ला मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना, आप भी दुआ में याद रखिए, जजाकल्ला, ओके। तो गुलरेज भाई की बात, यस मैं मूवी रिकमेंडेशन दे रहा था, तो मैंने आज एक डॉक्यूमेंट्री आप बता दी, बच्चों को जरूर दिखाएगा, माय ऑक्टोपस टीचर, एंड देयर इज वन मोर, मैं एक और बता देता हूँ बिफोर आई प्ले द ट्रैक, तो एक है द डीपेस्ट ब्रेथ, ये 23 में आई है, ये आप देखिएगा भाई, ये तो मज़ा ही आ जाएगा आपको देख के, इसमें जो है ना डाइवर्स ने बहुत ही अलग एक दुनिया दिखाई है, एक अलग सेक्शन, अमूमन जब ओशंस के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है समुद्र के अलग अलग पार्ट्स दिखाए जाते हैं, मगर दिस इज उफ उफ उफ, यू हैव टू वॉच इट। एक मैसेज है यूसुफ भाई के, लिखते हैं कबीर एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है, हाल ही में देखी है, पूरी नहीं देख पाया हूँ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लगी, कौन सी, टीच यू अ लेसन, अच्छा ओके, वो लिखते हैं आजकल के जेंजी के स्कूल्स और स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में है, बहुत अच्छी लगी, वैसे मुझे वेब सीरीज देखने का टाइम नहीं मिलता बस, बट किसी के रिकमेंडेशन पे देखी, वेरी नाइस, तो यूसुफ भाई ने एक रिकमेंडेशन दी, वो कह रहे हैं कोरियन ड्रामा हो गया है बेसिकली, प्लीफ इंग्लिश में अवेलेबल होगी, Teach You a Lesson, और बता रहे हैं यूसुफ भाई कि उसका टॉपिक ऐसा है कि जेन जी जो स्कूल्स और स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उनके बीच की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उसके बारे में, यूसुफ भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकमेंडेशन ब्रो, बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी शेयर करें। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, आई एम अरसलान आरिफ फ्रॉम पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन, FM 107, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू।

भाई क्या टाइम ट्रेवल वाला हिस्ट्री निकालो, मैं देखता हूँ आपको ऐसी कहानी मिली तो। और आसिफ भाई ने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया है, वो कह रहे हैं कि द लास्ट सनराइज मूवी ने, मूवी है ये, अच्छा मूवी है ये, ओके लिखते हैं, जो मूवी में बताया बहुत इमोशनल मूव है, एंड में उसको देखो। मैं क्या पूछ रहा था आसिफ भाई मूवी में क्या है, मैंने पूछा इनसे मूवी में क्या है, कह रहे हैं एंड देखो भाई, एंड देखो भाई। आसिफ भाई ये मेरे उन दोस्तों की तरह जो बहुत बुरे बुरे स्टोरी टेलर्स नहीं होते, ये वैसे वो कहते हैं भाई उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का मेरे सामने आ गया, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर भाई मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो मेरी तरफ बढ़ा, तो वहाँ फिर क्या हुआ भाई, बहुत गुस्सा आया, फिर क्या हुआ, बस यार बस बहुत बहुत गुस्सा आया। तो ये कॉन्टेक्स्ट बता देना मुझे, ठीक है।

0: वाला कबीर एफएम 107 पे जरा ट्रैफिक का हाल चाल जान लेते हैं। वादिल मुशर्रफ स्ट्रीट के पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक इंटरसेक्शन की तरफ, इसके अलावा अलखैल स्ट्रीट की तरफ अगर आप हैं तो आपको जेएम का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दीवान स्ट्रीट की तरफ है तो ट्रैफिक है। अल रियान रोड की तरफ हल्का फुल्का ट्रैफिक है, मतलब यहाँ मूविंग ट्रैफिक है, नॉट दैट मच, इट्स ओके। कॉलेज की तरफ हालांकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक नजर आ रहा है, और स्पेशली अगर आप मस्जिद सुल्तान स्ट्रीट से मुड़ के इधर आएंगे तो आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगने वाले हैं। इधर धीरे धीरे ट्रैफिक लग रहा है। वेस्ट बे की तरफ क्लियर है मामला, सिर्फ ये अपना क्या है वो जगह नाम बोल गया मैं, बस ये जो अलफुंदक स्ट्रीट की तरफ वाला एरिया है ना पूरा, हाँ दोहा एग्जीबिशन सेंटर की तरफ वाला, बताओ DCC भूल गया, वहां पे एकदम क्लियर है, बट वो सिग्नल्स के पास जो थोड़ा बहुत लगता है उतना ही है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ पे एकदम क्लियर सेट मामला है। बाकी अगर कॉन्फ्रेंस सेंटर की तरफ से आप निकलते हुए जा रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर मूविंग ट्रैफिक मिलेगा, नॉट दैट मच। अभी सबके सब अपने स्कूल्स और ऑफिसेज में जा चुके हैं तो थोड़ा सा मामला अभी लाइट है, बट इसके अलावा अगर आपको ट्रैफिक देखना है, मन कर रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां मैंने देखी नहीं बहुत टाइम से, तो इकट्ठी हो गई हैं अल जामिया स्ट्रीट की तरफ अगर आप जाएंगे और ये जो पूरा वो एरिया अलसद वाला, वहां पे आपको फिर भी ट्रैफिक मिलेगा। कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, मुबारक हो सुबह की ड्यूटी।
0: अरे समझ में नहीं आ रहा मैं थैंक यू किस मुंह से कहूं। हाँ भाई बताओ भाई।
1: मैं सुबह से सोच रहा था कबीर भाई सुबह सुबह में आज स्टार्ट किया मैं।

0: मुबारकबाद तो दे देते।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: ऊपर के मन से बोल रहे हैं क्या
1: आप? ऊपर के मन से बोल रहा हूँ भाई, मेरे में आई डोंट मीन इट।
0: मुझे मालूम है कबीर भाई को बिल्कुल भी सुबह में पसंद नहीं है।
1: भाई क्या है, थोड़ा टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में भाई, जैसे अंधेरे में आके थोड़ी एडजस्ट होती है ना, तो वैसा वाला सीन है भाई अपना, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई।
0: सुबह में थोड़ा नींद का भी रहता है और शाम का वैसे अच्छा था। चलो
1: ये बातें कर करके और मोरल गिरा दो आदमी का।
0: मैं सुबह कभी भाई को थोड़ा मुबारकबाद दे, इतने में आपने स्टोरी चालू कर दी।
1: हाँ।
0: फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेरा मसला हो गया।
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, बढ़िया,
0: बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है।
1: चलो बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, मुझे मुबारक हो। थैंक यू, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। और भाई की मुबारकबाद की बात, तो मेरे ऊपर मन से थैंक यू कहने के बाद एक मैसेज पढ़ता हूँ। यूसुफ भाई ने मेंशन किया है कि कबीर बहुत पहले आपने कोरियन सीरीज बताई थी, रिकमेंड की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू। हाँ यस यस यस यस, आई लिखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त थी। और वो एक स्क्विड गेम्स और एक ये देखता हूँ बस। नहीं वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बताई ना आपको यूसुफ भाई, वो ज़रूर आप अपनी बिटिया को ज़रूर दिखाएगा, फातिमा को भी, शी विल लव इट, माई ऑक्टोपस टीचर। वो बहुत बहुत अच्छी मूवी है, वो ना बच्चों को दिखानी भी चाहिए, बिकॉज एक इमोशनल बॉन्ड वो सिखाता है, नॉट जस्ट इंसानों का इंसानों के साथ, मगर जानवरों के साथ भी, यू नो, फिशेस के साथ भी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री। मुझे याद भी नहीं मैंने कब देखी थी, बट मुझे भी याद आया कि अरे बताने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी बैक टू स्कूल भी चल रहा है। बट यस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वो जो है, बहुत कमाल की थी भाई, बहुत कमाल की सीरीज थी, मतलब मज़े आ गया था। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107। आपने कहीं जाना ही नहीं, बेस्ट जगह पर हैं आप, किधर जाइएगा, हाय किधर जाइएगा। यासिर भाई कह रहे हैं मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे या आप बताएं, वो भी देखें भाई, माँ बाप बताएंगे। आसिफ भाई क्या, आसिफ भाई क्या, आसिफ भाई का नाम इस बीट पर रैप कर सकता हूँ मैं।

अच्छा गलियों के खाले आठ बावन बाय द क्लॉक मैं दोहा वाला कभी रेफर 107 पे. वैसे तो घड़ी के हिसाब से इजाजत लेने का वक्त आ गया, 9 बजे अब न्यूज बुलेटिन भी सुन लेंगे, मगर एक मैसेज आया कबीर भाई, व्हेन स्टार्ट गेम? कौन सा गेम? कौन, मैंने कब खेला गेम? क्या हो गया? एक वैसे वी हैव वी टू हैव ट्विंस, आप भी ट्विंस हैं भाई, बहुत बढ़िया. और अरबाज भाई लिखते हैं, भाई वैसे तो बच्चा नहीं हूँ लेकिन बच्चे ही हैं, मैं एक तरीके से हमारे बच्चे तो नहीं है सर, मैं बहुत जलता हूँ कि सुबह सुबह जो माँ बाप

गिलो भाई, कैरम गिलो कैरम। खैर मैं निकलता हूँ, अभी मेरे जाने के वक्त है, अपना ख्याल रखें एंड इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, तमाम जगहों पर हम मौजूद हैं। एंड दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ कहते हुए कि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
5: चले तो कट ही जाएगा सफर,
4: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
6: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।

0: ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान कतर और इक्वेडोर के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने और दोनों ममालिक के प्राइवेट सेक्टर के दरमियान तआवुन को वसी करने के तरीकों पर बातचीत की गई। वहीं कतर चैम्बर के चेयरमैन शेख खलीफा बिन जासिम बिन मोहम्मद अल सानी ने अरब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर वाइल अवध से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और भारत के दरमियान मईशी और तजारती ताल्लुकात के साथ साथ दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों के दरमियान तआवुन, शराकतों और सरमायाकारी के मौाक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 56.25 पॉइंट्स या 0.57% के साथ 9,806.85 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 35,742 ट्रांजेक्शन के नतीजों में 13 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 37 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 4 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में टोक्यो में जारी फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में कतर की मर्दों की कौमी बास्केटबॉल टीम को पीर को जापान के खिलाफ 29-11, 24-23, 40-11, 30-25 सेट से शिकस्त मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बयान के मुताबिक वाइट बॉल कोच माइक हेसन के टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने की इत्तला हैं और दौरे के पर जाने वाले स्क्वाड से 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है, जिनमें से 5 अब तक सीरीज में हिस्सा ले चुके हैं। वापस भेजे जाने वालों में मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, आली उस्मान और खुर्रम शहजाद शामिल थे, जबकि उनके साथ आमिर जमाल और मोहम्मद अवस को भी वापस भेजा गया है। इन दोनों में से किसी ने भी इस दौरे के दौरान एक भी मैच नहीं खेला था। एएफसी एशियन कप अंडर 20 फुटबॉल क्वालिफायर में इंडिया ने पीर को सीरिया को 1-0 से हराया। मारूफ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का 25वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल का ख्वाब यूएस ओपन के पहले राउंड में मारियानो नवोने के हाथों में हारने के बाद खत्म हो गया। नवोने ने जोकोविच को 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 सेट से हरा दिया। स्पेन के खिलाफ फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में हार के चंद महीने बाद लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। और मारूफ विमेंस टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स यूएस ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गईं। उन्हें उनकी ही मुल्की सोफिया केनिन ने स्ट्रेट सेट से हरा दिया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: एफएम 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
3: साहिब सुमो अमीर को बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद फरोग देने के हवाले से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वजीर दाखिला और दाखिल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने फ्रांसीसी वजीर इंसाफ से मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद फरोग देने, बिलखसूस कानूनी और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। कतर ने नेपाल के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हंगामी इंसानी इमदाद रवाना करते हुए पानी निकालने के आलात, गजाई अशिया, रोशनी का सामान और खेमे फराहम किए। और कतर ने उर्दून और मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी, कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर।

0: ये दुआ पढ़नी चाहिए। मजीद, हर इंसान किसी न किसी हद तक ज्यादती करता है, इसलिए बार बार इस दुआ को दोहराइए। प्यारे दोस्तों, आज की दुआ हमें याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त में असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। गुनाहों की माफी, दिलों का सुकून, दुश्मनों पर गलबा, ये सब उसी रब के हाथ में है। आइए हम सब मिलकर अपने रब की बारगाह में ये दुआ मांगे। रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफना फी अम्रिना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफिरीन। तो ये थी हमारी आज की पहली दुआ। इंशाल्लाह कल दोबारा एक नई दुआ के साथ हाजिर होंगे। मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
2: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे धुआंधार बल्लेबाज के बारे में जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि ही वॉज बेसिकली अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन। या दोस्तों बात हो रही है क्रिस गेल के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बनती बल्कि क्रिकेट फैंस की यादों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और ऐसी ही एक इनिंग्स वेस्ट इंडीज

Assalamualaikum and welcome to Tech Update. मैं जी दोहा वाला कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और हाजिर हूँ टेक अपडेट लेकर. बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको जितनी आसानी से समझा सकता हूँ उतनी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar. सबसे पहली चीज जो आपके बहुत काम आ सकती है और इनफैक्ट उन लोगों के काम आ सकती है जो एडिटिंग तलाश रहे हैं, जिन्हें फैंसी फैंसी चीजें चाहिए, उनके बहुत काम आने वाली है. तो एक वेबसाइट जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या करती है बाद में बताऊंगा, लेकिन नाम पहले जरूरी है याद रखना. इसका नाम है unicorn.studio.com. स्पेल आउट कर देता हूं, UNICORN unicorn.studio studio.com. अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हैं. आपने देखा यूट्यूब पे लोग जब जाते हैं अपने पेजेस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, सो दे टेंड टू हैव दिस वेरी क्रिएटिव इंट्रो. कुछ लोग चाहते हैं इंट्रो बनाना, कुछ लोग चाहते हैं वीडियो में बीच में कुछ प्लगइन्स लगाना, ऐसे वीडियोस बना देना जो उनकी चीज से मैच कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो या उनका जो भी जिस बारे में भी वीडियो है उससे जुड़े हुए हों. सो दे यूज दिस. ये बहुत ही प्रोमिनेंट है. इनफैक्ट जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे और बहुत सारे एनिमेशन नजर आएंगे. उसमें फेड इन फेड आउट तो है ही, वेरी सिंपल. बट देन उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है वो भी आपको नजर आएगा. और जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पर जाके उन्हीं टेम्पलेट्स को फॉलो करें. आप अपने खुद से भी, मतलब यू कैन ट्राई योर ओन वे, उसे क्रिएटिव वे में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज और उस इमेज को एक पूरा एनिमेशन दे सकते हैं. तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत बहुत बहुत काम किए. एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशन जो फ्री टू डाउनलोड हैं और आप उन्हें डाउनलोड करके सिंपली अपने पास रख सकते हैं. इससे ज्यादा आसान कोई चीज हो नहीं सकती. हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ चैनल या फिर एक इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं. बिकॉज जब आपका इंट्रो बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अच्छी तरह से एल्गोरिथम के कंधे पे हाथ रख देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा. तो ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा आप जरा बढ़ेंगे एक बहुत जरूरी चीज की तरफ जो आपको कोडिंग सिखाएगी. नहीं, वो वाली कोडिंग नहीं जो डिफिकल्ट होती है, आसान वाली कोडिंग आपको सिखाएंगे जो आपके काम आ सकती है. अब कैसे? ये है चीट कोड्स, सुनिएगा जरूर. तो देखिए बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो काम आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी दुनिया भी यूज कर रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारा अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है मामला. ऐसा कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर इज द चीट कोड्स. गेम्स में होते हैं ना चीट कोड्स, वैसे ही चैट जीपीटी भी होते हैं. अब मान लीजिए आपने अपना फोन जो है वो एक्सप्लोर करना है कि भाई मेरे फोन के कंपोनेंट क्या है, मान लो इसे मुझे खोलना पड़ जाए, मैं खुद कुछ सीखना चाहता हूं, तो यू कैन डू दैट. आपको क्या लगना है उससे, अपने फोन का कोई भी नाम लिख देना. मान लीजिए आपका आईफोन है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसका नाम लिखा, लेकिन नाम से पहले आपको एक चीज लिखनी है, वो है एक्सप्लोर्ड व्यू. एक्सप्लोर्ड व्यू, शुरुआत से बताता हूं, फॉरवर्ड स्लैश डालिएगा, एक्सप्लोर्ड व्यू, प्लोर नहीं, एक्सप्लोर्ड. और उसके बाद अपने फोन का नाम लिखिएगा, जो मॉडल नंबर है, फॉर एग्जांपल 17 प्रो है, 16 प्रो, व्हाटएवर. तो जब आप ये लिखेंगे उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो वो पूरे के पूरे फोन के कंपोनेंट्स को अलग कर देगा. एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. आपकी आंखों के सामने पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा और वो एक एक चीज आपको बता देगा कि फोन का ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ और ये हिस्सा ऐसे ओपन होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक और आपको चीट कोड देता हूं और ये चीट कोड भी चैट जीपीटी का ही है. तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको जो है जानना है कि कोई मोटर है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरेटर है, छोटी सी चीज ले लेते हैं, कोई इन्वर्टर है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानना है या कोई मशीनरी जो आप खुद ठीक करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है forward slash sticky notes STICKYNOTES. ये लिखने के बाद जब आप स्पेस देंगे, स्पेस देकर आपको कोई भी मशीन आपके सामने है उसके बारे में पूछ लीजिए और आपको पूरा का पूरा स्टिकी नोट्स के जरिए लाइक अ टॉडलर ये बताएगा. एंड इट इज डेफिनेटली

0: वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये काम आता है भाई। आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कई सारी चीजें हम खुद भी ठीक करना चाहते हैं पर हमें पता नहीं होता है। तो यही मौका है मैकेनिक बनने का मेरे भाइयों, बहुत काम आएगा आपकी। ट्राई दिस वन आउट एंड लेट मी नो के इफ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। और बाकी आने वाले जो एपिसोड होंगे उनमें आपको मैं और भी चीट कोड्स बताऊंगा। इफ यू लव टू नो मोर चीट कोड्स, ऐसे ही चैट जीपीटी के और बाकी एआई के भी बताता रहूंगा। ऑलराइट, एंड लास्ट में एक खबर, खबर बड़ी सिंपल है। ये है खबर गेमिंग की दुनिया से, मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है। अभी तक एल्डन रिंग का कोई भी तोड़ू गेम उसको कंपटीशन देने के लिए नहीं आया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मॉर्टल शेल इज द एल्डन रिंग किलर, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत अच्छा गेम है यार, मैं बुरा नहीं कर पाऊंगा। मॉर्टल शेल 2 इज डेफिनेटली अप देयर। मतलब होता नहीं है कि बस भाई वो सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे 19-20 का फर्क होता है, तो यहाँ पे 18-20 का फर्क है। मॉडल शेल डेफिनेटली रिकमेंडेड ऑन द लिस्ट। अगली बार मिलते हैं जाएगा नहीं टेक अपडेट में। मैं दुहा वाला कबीर, दिल से अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका। मैं हूं फजील और ये शो, ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड हर गुजरते हुए रोज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आप बहुत होशियार हो जाते हैं और आपको पता है कि जमाने में और जगह जगह पे या हमारे दोस्तों को, हमारे यारों को किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह का स्कैम होता है। और आप ऐसे में जब होशियार हो जाते हैं तो स्कैमर्स भी होशियार हो जाते हैं। वो नए तरीके ढूंढते हैं आपको स्कैम करने का, आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का। और आज इसी तरह के एक फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये है टेक सपोर्ट स्कैम, एक ऐसा धोखा जहां स्कैमर्स आपको डराकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। आजकल ये फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचना सबके लिए बेहद जरूरी है। कैसे होता है ये स्कैम? अक्सर एक सडन और डरावने पॉपअप मैसेज से शुरू होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है या आपका सिस्टम डेंजरस वायरस से स्लो पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन फोन नंबर दिया जाता है और तुरंत कॉल करने को कहा जाता है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो एक फेक टेक्नीशियन आपसे बात करता है कॉल पे रहते हुए और आपको डराता है। वो आपसे कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर के जरिए देना होगा। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस इन एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं उन्हें, तो यहां पर हो जाता है स्कैम। एक बार जब उन्हें एक्सेस मिल जाता है तो वो आपकी फाइल्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या सिस्टम में रियल मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आखिर में वो इस फेक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपसे मोटी रकम, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, कतरी रियाल, वो डिमांड करते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए? दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इनमें से सिर्फ चार ऐसे तरीकों के बारे में कि इन चार तरीकों को अगर आपने अपना लिया तो ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और बचाव है कभी भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉपअप किया हुआ मैसेज है जिसमें फोन नंबर है उस पे कॉल ना करें। इवन कई बार आपको ये स्कैमर्स अलग तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, फोन के जरिए भी ये आपसे स्कैम कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको पता है कि कैसे इन स्कैमर से टैकल करना है। आपने फोन किया, हो सकता है कि आपका फोन करना ही ये कोई एक स्कैम हो। तो कभी भी नंबर पे कॉल ना करें अगर स्क्रीन पर ऐसा कोई वायरस या एरर पॉपअप आए और उसमें कॉल करने को कहा जाए तो उस नंबर पर कभी कॉल ना करें। रियल टेक कंपनीज जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी आपको इस तरह से कॉल करके आपकी परेशानी को हल करना या आपको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। उसके अलावा उस ब्राउजर को फौरन बंद करें। ऐसे पॉपअप्स आने पर तुरंत अपना वेब ब्राउजर क्लोज कर दें। अगर ब्राउजर फ्रीज हो जाए तो ऑल्ट F4 दबाएं या टास्क मैनेजर से उसे फोर्स क्लोज करें। उसके अलावा कभी भी किसी अनजान शख्स को

0: इन पे कॉल करके आप मदद लें। एक बार फिर से, कभी भी किसी को कॉल ना करें, जो पॉपअप हुआ मैसेज है उसे क्लोज करें, उसके अलावा किसी को रिमोट एक्सेस ना दें और ऑफिशियल सपोर्ट का हमेशा इस्तेमाल करें। इन तरीकों से आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बच सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में इसी तरह के नए जमाने के नए फ्रॉड पर बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट्स।
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बजटिंग की। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल महंगाई हर घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, चाहे सैलरी अच्छी हो या एवरेज हो। अगर बजटिंग ना हो तो मंथ के एंड तक फाइनेंशियल प्रेशर महसूस तो होता ही होता है। इसीलिए स्मार्ट बजटिंग बहुत जरूरी है। देखिए, स्मार्ट बजटिंग का मतलब है सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी इनकम को इस तरह से मैनेज करना कि हर जरूरत पूरी हो और कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए भी सेव हो। और सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना। बहुत से लोग सैलरी आते ही खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड में सोचते हैं कि पैसे कहाँ गए। एक सिंपल मोबाइल ऐप या फिर नोटबुक यूज करके हर एक्सपेंस लिखें। मिसाल के तौर पे आपकी 10,000 सैलरी है तो रेंट 3,000, ग्रॉसरी 1,500, ट्रांसपोर्ट 500 और बिल्स 800, सेविंग आपकी 1,000, रिमेनिंग आपकी लाइफस्टाइल पे जो खर्च हो रहा है 3,200। इस तरह से आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक बड़ा ही फेमस रूल आपने सुना होगा, 50-30-20। जी हाँ, 50% इनकम नेसेसिटी के लिए हो, 30% आपके वॉन्ट्स के लिए हो और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर किसी की सैलरी 12,000 रियाल है तो 6,000 उसकी नेसेसिटी पर जाएं, 3,600 लाइफस्टाइल और आपके एंटरटेनमेंट में और 2,400 सेविंग्स में। ये फॉर्मूला सिंपल है, प्रैक्टिकल है। और अब मैं आपको बताती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए, अली और सारा, ये मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलिए इन्हीं की लाइफ को जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अली और सारा दोनों को कंबाइंड इनकम अगर मिलती है 18,000 कतरे रियाल। मंथ के एंड में कभी सेविंग नहीं होती। जब उन्होंने कॉफी शॉप विजिट की, अननेसेसरीली शॉपिंग की, फूड डिलीवरी ऐप चेक की तो पता चला कि 2,000 कतरे रियाल उनके सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव स्पेंडिंग में जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 50% कट किए और साल के एंड तक 12,000 कतरे रियाल सेव कर लिए। ये बहुत ही छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको बजटिंग के हवाले से। देखिए, बजटिंग का मतलब है अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना और समझदारी से स्पेंडिंग करना। हर वीकेंड एक्सपेंसिव ब्रंच की जगह एक वीकेंड छोड़ के आप वो ले सकते हैं। डेली कैफे कॉफी जाने के बजाय घर पे कॉफी बना सकते हैं। इम्पल्सिव शॉपिंग से पहले 24 घंटे, 24 आवर रूल्स, क्या ये मुझे चाहिए, क्या इसकी जरूरत है मुझे, ये सोच सकते हैं। एक और जरूरी चीज वो है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम अज कम 3-6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होने चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस 8,000 कतरे रियाल हैं तो इमरजेंसी फंड 24,000 या फिर 48,000 तक होने ही चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जॉब लॉस है, कार रिपेयर है, फैमिली इशू है, इन सबके लिए फंड चाहिए। बस समझदारी से प्लानिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आखिर में ये याद रखना बड़ा जरूरी

बजटिंग रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, बजटिंग फ्रीडम है। जब आपको पता होता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए स्ट्रेस कम हो जाता है। फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं सिक्योर लगने लगता है। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से क्या होगा, छोटी छोटी सेविंग्स ही वक्त आने पर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है, और वक्त आने पर ये छोटी छोटी सेविंग्स जो है ना, वो आपका सहारा बन जाती है। नीड्स पर भी फोकस कीजिए, वांट्स पे भी फोकस कीजिए, और इन दोनों में एक गुड बैलेंस क्रिएट कीजिए। सेविंग्स ये हमारी और आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे भी निग्लेक्ट करा जा ही नहीं सकता। देखिए, आज हमारा सेगमेंट का फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैंने बहुत हल्का फुल्का रखा। इस टॉपिक को फर्दर भी मैं एक्सप्लोर करूँ और मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी कि बजटिंग कितना इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, स्मार्टनेस हर तरह से आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है। फाइनेंशियली स्टेबल होना आपके फ्यूचर के लिए अब एक चॉइस नहीं, एक जरूरत है। फिलहाल मैं यानी नाजिया आपसे इजाजत लूंगी। जब नेक्स्ट यानी कल आपकी मुलाकात होगी, तो फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु साथियों, जैसा कि आपसे वादा था कि अगले दिन यानी कि आज के दिन आप मेरी आवाज़ सुनेंगे सुबह 10 बजे। भाई इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 10:01 और मेरे साथ एक और आवाज़ जुड़ गई।
3: अस्सलाम वालेकुम, और आप सुन रहे हैं यू मैटर। एक दफ़ा फिर हम लोग आ गए हैं भाई 10 बजे वाला जो टाइम है ना सफाई, ये मुझे लगता है अपना पना, क्योंकि इतना मैंने इस दौरान शो किया है कि मुझे लगता है कि भाई ये टाइम मेरे लिए ही बना है।
2: ये अपना टाइम है,
3: अपना टाइम आ गया,
2: अपना टाइम आ गया। अच्छा, ये जब हम बहुत ज़्यादा अपना अपना करते हैं माविश, तो आपको कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये जो अपना अपना है ये हमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर आपके साथ? अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा सोचा है किसी चीज के बारे में?
3: नहीं, मैं वैसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से? अच्छा, किस तरह से बोल रही
2: हूं? इस तरह से कुछ ऐसा होता है कभी कभी जिंदगी में ना, हम पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग फ्यूचर को बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंजाइटी होती है उन्हें उससे। कुछ लोगों को पास्ट के बारे में सोचकर डिप्रेशन हो जाता है। कुछ को ये होता है कि फ्यूचर, क्या पता अगर मैं ये काम करूं तो ये हो जाएगा। अरे भाई, कुछ लोग इतना सोचते हैं कि जो बीमारियां उनको नहीं भी हुई होती ना, वो उसके बारे में भी सोच कर फिर उसका डायग्नोसिस कर और वो जी भी लेते हैं।
3: एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस तरह का बिल्कुल भी मामला कभी भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। मतलब कि पास्ट में ना मुझे ये शायद होता है, आप ना किन लोगों के दरमियान में रहे हो। आप जिंदगी में ना बहुत कुछ कहते हैं किताबों से बंदा सीखता है, किताबों से सीखता है, लेकिन आप बहुत कुछ अपने जो दरमियान रहने वाले लोग हैं ना उनकी जिंदगियों से सीखते हो। तो मैंने देखा कुछ लोग इस तरह जो कि पास्ट में बहुत रहने वाले थे, तो उनकी वजह से मैंने तो बिल्कुल ही, और मेरी नेचर ही नहीं है यार, मतलब मेरी तो नेचर ही नहीं है। मुझे याद है, बिल्कुल मेरे मामू ने मुझसे बोला था कि शादी से पहले जब मैंने रेडियो छोड़ा बस जैसे ही, तो उनको पता था मैंने बड़ा पैशन से ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा याद नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिस चीज को छोड़ देती हूँ उसके बारे में पलट के सोचती भी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे लगता है कि शादी हो जाएगी तो तुम हमें भी भूल जाओगे। अब मैं सोचती हूँ थोड़ा हुआ तो ऐसा ही है।
2: मेरी जैसी जिंदगी क्यों लग रही है?
3: एग्जैक्टली नहीं, मेरा ऐसे ही है, सीन ऐसे ही है। अच्छा, मतलब आप जिस जगह पे हो प्रेजेंट मोमेंट को ना आप पूरी तरह से जियो, ये मेरी फिलॉसफी है।
2: ये बात समझने में बड़ा टाइम लगता है माविश, मुझे लग गई सदियां इसको समझने में। खैर, इस बात के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल तो आपको ये बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं कौन सा शो?
3: FM 107 पे सुन रहे हैं यू मैटर्स।
2: और भाई आपका और हमारा साथ रहेगा, यानी कि माविश और सफा का साथ रहेगा कितने बजे तक माविश?
3: एक घंटा बस,
2: एक घंटा।
3: तो
2: सोचने ज्यादा इन्होंने कहा कि इतना कोई डायनेमिक कॉम्बो दे रहे हैं, घंटे ज्यादा पब्लिक बर्दाश्त ना करेगी,
3: नहीं करेगी। ये तो भाई लोगों से पूछना पड़ेगा। मैं ये सोच रही थी जब ये एक घंटे का हुआ कि यार हम बोलेंगे या लोग बोलेंगे, मतलब क्या होगा। एक घंटा तो यूं निकल जाएगा चुटकियों में।
2: चले भाई देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा बोलता है। माफी ज्यादा बोलती है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, आप ज्यादा बोलते हैं।
3: अच्छा टॉपिक बता दो, क्योंकि हमारे पास कॉल आ गई है, वो बोलना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे।
2: तो भाई हमारा टॉपिक आज का ये चल रहा है कि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, कि हाउ ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स एक्चुअली लिविंग इन यू। फिर आप नहीं जीते, फिर वो ओवरथिंकिंग जीती।
3: डीप है। चलें जी देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम। अरे पुराने लिसनर रहा और पुराने
3: जी जी
2: इतने पुराने चल रहे हैं कि इतने दूर हो गए हैं,
3: इतने पुराने
2: ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब वो बिल्कुल वो वाला 80s वाला फोन है उससे बात कर रहे हैं।
3: आपकी आवाज बेसिकली कम आ रही है, कहने का मकसद ये है।
2: कहने का मकसद ये मेरे भाई, आवाज कम आ रही है आपकी।
4: बहुत अच्छा, बस सुनो आप लोग बहुत कम, इतना मुख्तसर वक्त क्यों दिया गया आप लोगों को, मतलब ये इस उस पे आप लोग दो आदमी हो, परेशान हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। कम से कम 1.5 घंटा तो
3: ओवरथिंकिंग शुरू यहीं से। जी रईस भाई ना,
4: ओवरथिंकिंग अरे भैया कौन नहीं जानता है
3: रईस का, नाम तो क्या बात है रईस भाई,
2: ब्रांड है अपने भाई, ब्रांड
4: मतलब ज्यादा बोलते हैं ना हमारे कल अब रऊफ साहब ने कहा था कि मतलब करके बात के रिजल्ट रईस भाई है।
3: रईस भाई है।
2: बिल्कुल
4: मैंने अपने तकिया कलाम को कहा था, लिख के दिया था, लेकिन आप कुछ आप नहीं पढ़े थे, अब नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दे उसको।
3: हाँ हाँ, वो मैंने तो पढ़ लिया था, लेकिन ये मैंने क्योंकि टाइम बड़ा कम रहता है ना हमारे पास, तो बस मुख्तसर
4: आपके मुंह में हर बात को आखिर में आपके मुंह में कहा करता था, तो कहा कि मेरा बच्चा खो गया है आपके मुंह में, और अगर मिल गया मेरा बच्चा आपके मुंह में तो ऐसा चमाट मारूंगा आपके मुंह। बोला मेरे मुंह में क्यों मारेगा, बोला ये मेरा तकिया कलाम है बस।
3: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही, ये कैसा तकिया कलाम है, किसका तकिया कलाम था भाई?
4: अरे वो हर बात को आखिर में वो आपके मुंह में कहा, मतलब ये कॉमेडी थोड़ा सा बना के।
3: ओके ओके ओके ओके, सही सही सही। अच्छा भाई रईस भाई, ये बताएं ओवरथिंकिंग करते हैं कि नहीं करते?
4: फायदा नहीं है ओवरथिंकिंग, फायदा नहीं है ना, बंदा उसमें डिप्रेशन में चला जाएगा, ओवरथिंकिंग करना अच्छा नहीं है मेरे
3: ख्याल से। जबरदस्त, तो आप करते भी नहीं है?
4: नहीं बहुत ज्यादा नहीं, अपने इस्तेताद के
2: मुताबिक। हस्बे जायका, नमक की तरह इस्तेमाल करता हूँ ओवरथिंकिंग को, जब दिल किया तब कर ली,
4: जरूरत से ज्यादा। हाँ, ओवर थिंकिंग करके फिर हम अपने से ऊपर के लोगों के बारे में या और मतलब जो अपने से खुश लोग हैं उनके बारे में सोच के, हम ही को क्यों दुख मिला इसके बारे में, हम ही क्यों गरीब हैं इसके बारे, ये सब मतलब आदमी के अकल को तलब कर लेगा फिर, ये इसमें बहुत जरूरत ज्यादा नहीं, बस अल्लाह के तकदीर पे और थोड़ा उस पे भी ये करके अपने आप को, जो भी है अल्लाह ने हमें दिया है उतने पे खुश रहें,
3: मत करें मत।
2: अच्छा ऐसा कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या, अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ना इंसान की जिंदगी से कोई एक चीज छीन लेती है, वो क्या चीज होगी? वैसे तो बहुत सारी चीजें छीन लेती है,
4: जो अपने ज़हनी सुकून है मतलब जिस्मानी सारी चीजें हैं वो सारी छीन जाती है बंदे को, दूसरे को देख के समझ लो कि हसद के उसमें और तरह तरह के उसमें आ जाता है बंदा कि यार मुझे क्यों नहीं मिला, उसे ही क्यों मिला, तो ये सब चीजें उसमें बहुत बहुत तरह तरह के डिप्रेशन में बंदे को लेके चली जाती है। मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, अपने इस्तेताद पर जितने पे अल्लाह पे मतलब ये करके अपने तकदीर पे ये करके वहीं पे खत्म कर देना चाहिए कि चलो ठीक है अल्लाह ने हमारे नसीब में यहाँ तक ये किया था, हमें यहाँ तक पहुँचना है इस बुलंदी तक, और जो भी चीजें हैं सारी चीजों को वहीं पे अल्लाह के उस पर ये करके सिपुर्द करके बंदे को वहीं पे सब्र करके काम लेना चाहिए, ओवर थिंकिंग नॉट बेटर।
3: चले नहीं, गुड हो गया, ये तो अच्छी बात हो गई कि ओवरथिंक रईस भाई तो करते ही नहीं है,
4: लंबी बात क्योंकि करने का मौका नहीं है और हमारे वक्त बहुत मुख्तसर है।
3: जी जी जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है?
4: अल्लाह ताला आप लोगों के शो को बेहतरीन से बेहतरीन मतलब ये करे, और हम इंतजार करते हैं, हम 10 तक इंशाल्लाह जुड़ते रहेंगे
3: इंशाल्लाह। चले हम आपका इंतजार करेंगे रोज आना। चले जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हमारे साथ रईस भाई, और रईस भाई का कहना ये था सफा कि किसी के बारे में ज्यादा सोचो, अपने से ज्यादा जो ब्लेस्ड हो तो फिर बंदा सोचता है भाई ये उसके पास,
2: हाँ, ये ना, और वो हसद का बाइस बनता है।
3: हाँ,
2: मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी तो एक चीज गुम होती है सिर्फ, नींद।
3: ओके,
2: अगर कभी ओवर थिंकिंग आ जाए ना गलती से और दिमाग शट डाउन नहीं होता तो नींद भाग जाती है।
3: अच्छा, एक ओवर थिंक ये वाला होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी के पास ज्यादा है, और एक ओवर थिंकिंग एक और भी होती है वो ये वाली कि आप ना किसी के साथ कोई इशू हो गया समझो, मतलब कहीं पे किसी डकैती हो गई, उसमें किसी को मार दिया, जो खबरें वगैरह जो देखते हैं
2: न्यूज को,
3: हाँ, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे इस तरह के लोग जो देखे हैं कि वो इतना ओवर थिंक करते हैं, उनके दिल से वो अफसोस नहीं निकल रहा होता, और डेफिनेटली मतलब एक सेंसिटिव दिल जो होता है वो सोचता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि उस पर भी अगर आप बहुत ओवर थिंक करोगे जो आपके बस में नहीं है, हालात बहुत सारे बस में नहीं होते,
2: दिल हम कहते हैं कुचड़ पुचड़ हो जाता है, दिल का हाल, दिमाग, और दिल जो है ना वो दिमाग के अंदर खलल पैदा कर देता है।
3: एग्जैक्टली, जैसे मेरे अपने मामू का ही सीन चल रहा है कि जो मतलब हालात हमारे मुल्क के हैं तो उसके ऊपर इतना ओवर थिंक कि वो बेचारे कमजोर, डिप्रेशन का शिकार, मतलब ये वाला मामला उनका बन गया, और वजह और कोई नहीं, अपनी जिंदगी माशाल्लाह बिल्कुल फिट चल रही है,
2: मैंने कहा ना
3: अच्छा बिजनेस सब कुछ, लेकिन हालात इर्द गिर्द के देखते
2: वो एनवायरमेंट आपका अगर सुकून वाला है, ऑफिसेज में भी अक्सर ऐसा होता है कि आपका अगर ऑफिस का एनवायरमेंट अच्छा ना हो ना, आपको लाखों करोड़ों मिल रहे हो तनख्वाह के तौर पर भी, तो आप नहीं सुकून से रह सकते। मैंने कितने लोगों को देखा है माविश,
3: एग्जैक्टली,
2: मतलब अगर उनका दिमाग सेट नहीं है ना किसी बात किसी जगह पर, उन्हें इनर पीस नहीं मिल रहा, वो कहते हैं खल्ली वाली छोड़ो नहीं चाहिए,
3: बिल्कुल ऐसे हमारे साथ कॉलर ने देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो तो ओवरथिंक नहीं करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: وعلیکم السلام مہویش بہن، کیا آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟
3: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی
5: صفا کیسی ہے؟ صفا ٹھیک ہے؟
2: صفا بالکل ٹھیک ہے، اور صفا بھی انتظار کر رہی تھی. میں دیکھتی ہوں کون کون مجھے سلام کرتا ہے.
5: صفا میم کو تو سلام نہیں کرے گا نا، پھر تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے.
3: پھر تو بس گئی، پھر تو گئی.
2: بالکل ایسے ہی.
3: مدثر، مدثر بھائی ہیں نا؟ مجھے بھی ہاں مدثر بھائی ہی لگ رہے ہیں.
2: مدثر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
5: الحمدللہ. آپ کیسے؟ ٹھیک ہے.
2: اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی.
5: مہینے کے بعد آپ کی آواز سن رہا ہے.
3: ہاں کیوں
2: آپ کی آواز؟
3: اچھا میری، اچھا اچھا میری، اوکے.
5: مہویش،
3: تین مہینے تو نہیں ہوئے، اتنی چھٹیاں کہاں ملتی ہیں ہمیں؟
5: نہیں چھٹی کے بعد نہیں ہے نا.
3: اچھا اچھا، وہ صبح صبح، اوکے اوکے.
5: 12 بجے ابھی. ہاں
3: صحیح صحیح صحیح، ہم صبح صبح نکل رہے تھے نا. ہاں
5: صبح نکل رہے تھے نا.
3: صحیح صحیح.
5: بس تین مہینہ صفا کے ساتھ گزارا. وہ صاحب تین مہینہ صفا کے ساتھ بھی نہیں تھا، صفا کے ساتھ مہینہ بھی ہوگا.
3: اچھا اچھا،
5: اور بھی نہیں دیکھے تھے. مہویش آئے گی وہ میرا کلاس لے گی.
2: ہاں مہویش جو ہے نا جب آتی ہیں
3: یہ ڈبا ہے مہویش، تھوڑی سی معصومیت مجھے دینا اس کے اندر، اس ڈبے کے اندر مجھے معصومیت دے دینا مہویش. میرے پاس بہت کمی ہے معصومیت کی، سب دیکھ لو امپریشن کی بات ہوتی ہے.
5: مہویش تو بہت معصوم ہے.
3: مدثر بھائی آپ مجھے اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا، میں کیا بولوں.
2: مدثر بھائی یہ جو چشمے پہننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ناٹ ٹو ٹارگیٹ، لیکن میری زندگی میں جتنے بھی چشمے پہننے والے لوگ آئے نا، یہ شکل سے بڑے معصوم ہوتے ہیں. غور کیجیے گا، شکل سے بڑے معصوم ہوتے ہیں.
3: اچھا ابھی اس وقت چشمہ مزے کی بات ہے، صفا نے بھی پہنا ہوا.
2: نہیں مجھے تو عمر کے لحاظ

0: से लग गया है, लेकिन ये जो बचपन से जिनको चश्मा लग जाता है ना, ये वाले जो होते हैं ना, इनकी बैटरी बहुत डबल ट्रिपल चार्ज होती है, इनको बंद आंखों में भी नजर आता है। बस ये भी उसी, तभी तो आप ये कह रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को पहचान कर कह रहे हैं।
1: लेकिन मैं नाइट में लगाता हूँ, डे में नहीं लगाता हूँ।
2: अच्छा, नाइट वाला है, नाइट विजन।
0: अच्छा भाई, ये बताएं मुदस्सर भाई,
1: मेरा पहले से नजर कमजोर था, फिर मैं पाकिस्तान में लेजर करवाया। बहुत ज्यादा कमजोर था, तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप नाइट के टाइम में आप लाजिम लगाओगे, नॉर्मल होगा।
2: कब करवाया आपने लेजर? सब सही है?
1: हाँ, अब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह,
2: जबरदस्त, ग्रेट। मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ, डर लगता है।
0: नहीं, अच्छा होता है। अच्छा मुदस्सर भाई,
1: जी
0: मुदस्सर भाई, ये तो बताएं, ओवरथिंकिंग करते हैं कि नहीं करते?
1: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरथिंकिंग नहीं करता
0: है। अरे मुझे हैरत होती है, ये आदमी जो है वो बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं करते क्या?
1: नहीं करता,
0: तभी इतने मस्त रहते हैं।
1: इसका कोई फायदा नहीं है ना, मतलब किसी के बारे में तुम सोचोगे या तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया उसके बारे में सोचोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है ना।
0: आदमी जीते।
1: मतलब मैं आपको जो बताऊंगा ना कि मेरे अभी कितने मसले चल रहे हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ अभी मेरा फेस तुम देखोगे, तुम बोलते कि ये तो बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, ये वो है, लेकिन मेरे अंदर कितने मसले हैं वो तो अल्लाह को मालूम है।
0: सही सही सही।
1: या तो उसके साथ ओवरटेकिंग करना तो अपने आप सेहत खराब हो जाता है, जैसा सफर मैम ने बोला ना कि ओवरटेकिंग से मेरा नींद खराब हो जाता है, ये सिर्फ सफर मैम के साथ नहीं, ये बहुत ऐसे लोगों के साथ होता है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलते मुझे नींद नहीं आता, मैंने कहा नॉर्थिंग नहीं करो तुम्हें नींद सही दो आएगा। जितना चेकिंग करोगे उतना तुम्हारी सेहत लाजिम खराब हो जाएगा।
2: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो किस चीज का फायदा नहीं होता है तो उसमें क्या हो, आदमी इतना सोचेगा, इतना ये करेगा, इतना वो करेगा।
2: बिल्कुल सही मुदस्सर भाई, बिल्कुल सही
1: जी।
2: तो ये सीन है, नहीं करते
1: जी, नहीं करते। आप 11 बजे तक है?
2: जी जी बिल्कुल, 11 बजे तक हम आपके साथ हैं।
1: इतना शॉर्ट,
0: सबका ये सवाल हो रहा है कि इतना शॉर्ट टाइम क्यों दिया गया है आपको?
2: शॉर्ट टाइम बस क्या कह सकते हैं।
0: टेंशन नहीं ना, 4 महीने इतने ही शॉर्ट टाइम पे चलेंगे।
2: हाँ।
0: क्या चीज, क्या चीज,
2: क्या कह रहे?
1: ये 3 महीने तक है का?
2: 4 महीने,
0: दिसंबर तक।
1: ये तो बहुत लंबा हो गया।
2: वो ड्यूरेशन लंबी है ये वाली, लेकिन घंटा बस हमें एक मिलेगा। चले खैर, मतलब क्या कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल यही है, इसी में गुजारा करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोग जुड़ते रहिएगा। अच्छी बात यह है कि आपकी कॉल आ सकती है ना, इस वक्त में आप कॉल कर सकते हैं।
1: कॉल तो करेंगे, मैं असल में 10 बजे उठता हूँ कि सुना कि मैं 10 बजे आएगी तो मैं आज 9 बजे उठाऊँ।
2: अरे वाह, ठीक है मुदस्सर भाई, जबरदस्त, बहुत अपने दिल खुश कर दिया।
1: पुराने आर्जे हो ना।
0: अच्छा, अभी मैं भी अपने वो घिसती हूँ, जाकर पुराना करती हूँ।
2: पुराना करो। कह रही मैं भी अपने आप को घिसती हूँ, पुराना गिरती हूँ।
0: अभी मैं म्यूजियम जाऊंगी, वहाँ पे अपने आप को रखवाऊंगी और मैं कहूंगी मैं पुरानी हूँ,
2: पुरानी होकर आई।
1: जो हमारे पास आएंगे ज्वाइन करेंगे वो भी बोलेंगे सफा हमारा पुरानी आर के।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही
0: नए लिस्टनर जमा करने पड़ेंगे।
2: चले जी मुदस्सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रोई जी, तो भाई हमारे साथ जितने भी अभी तक लोग आए, सबका ये कहना है कि वो ओवर थिंक नहीं करते, तो भाई ये करता कौन है?
0: मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपने हमारे साथ शामिल होना है इस गुफ्तगू में, तो भाई आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। द नंबर फॉर मैसेजिंग इज 6622107, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है मावेश
2: 443-443-77।
0: देखिए जब कोई छुट्टी से वापस आता है ना, तो हम ऐसे पकड़ते हैं,
2: नंबर नहीं आता।
0: 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं।
2: और कॉल आ गई,
0: कॉल आ गई है, चलिए फिर मैं बाद में बताती हूँ, कॉलर के बाद बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग करता कौन है ज्यादा।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल आप छुट्टी पे जाते हैं ना, तो आप थिंक ही नहीं करते इस बारे में, इसी वजह से नंबर वंबर सब उड़ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कौन?
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
3: मैं मुबशर मुबीन बात कर रहा
0: हूं। मुबशर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मुबशर, ये मावेश मुझे सब
3: मैंने बोला हम लोग अटेंडेंस लगवा दे, पता भी तो होगा आपको कौन कौन रहा है।
0: हाँ वैसे वैसे मुझे आवाज़ है, देखिए मैं माविश को टारगेट करते हुए क्योंकि आज पहला दिन तो माविश अभी ना फुल रूटीन में नहीं आई है, तो इस वक्त मैं उनको टारगेट कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि माविश आपको कहाँ ही याद होगा कोई तो मुझे तो बाकी सब याद है मैं नंबर

0: बढ़ा रही हूँ ना। मुबशर भाई ये बताएं कि ओवर थिंकिंग करते हैं या सिर्फ थिंकिंग करते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कि थिंकिंग करते ही नहीं है?
1: मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि भाई आप ओवर थिंक करो लेकिन एक लिमिट पर रख करो।
0: सही।
1: और आप ओवर थिंक करो तो उसको आप पॉजिटिव वे में यूज करो, ना कि आप उसको जिस तरह भी पहले बात कर रहे थे हसद को लेके या किसी के बारे में सोच, आप उसको अपने बारे में भी सोच सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था एक लास्ट वीक, तो इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट हुआ, तो मसला नहीं है। मुझे ये चीज पता चल गई कि भाई मैं किस बेस पर रिजेक्ट हूँ, ठीक है।
0: मोटिवेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ओवर थिंकिंग को।
1: और जब ये चीज समझ आ गई कि हाँ भाई यहाँ पे कमी है, इस चीज से वो कमी पूरी हो रही है, बस वहाँ पे सोचना खत्म।
0: सही हो गया, बिल्कुल सही, वैसे होना यही चाहिए।
1: इसके अलावा आप टाइम एंजॉय करो बस, और आप उसको आप अपने उस चीज को पूरा करने की कोशिश करो, साथ साथ मेहनत करो, ये जैसे भी आप किसी भी वे में ले सकते हैं, लेकिन बस एक लिमिट तक सोचे। इसको ओवरथिंक तो तब हो जाएगा कि भाई आप उसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, तब आप ओवरथिंक पे जाते हैं, क्योंकि मेरे अराउंड इस तरह के बहुत सारे बंदे हैं जो इसी तरह जाहिर सी बात है जॉब को लेके ज्यादातर होते हैं, और
0: और ये एक और बड़ा मैसिव डिजास्टर है जो ओवरथिंकिंग करती है, तवक्कुल खत्म कर देती है इंसान।
2: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ये बात बड़ी सही बोली मुबशर ने कि अगर कोई चीज ऐसी हो गई है, कुछ बुरा हो गया, तो उस बजाय इसके बारे में ओवरथिंक करने के आप ये सोचें कि हुआ क्यों।
0: और मैं आपको बताती हूँ मुबशर भाई कॉल रखने के बाद कि मुबशर भाई ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या चीज मुबशर भाई
1: मैं कह रहा हूँ आप सोल्यूशन सोच सकते हैं इसके
2: बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तकरीबन 10-15 दिन से ये मेरे गिर्दगिरी सारी चीजें चल रही है। पाकिस्तान में भी एक किसी करीबी का जॉब का इशू चल रहा था, वो बेचारे के जॉब को नींद ना है उसको, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई इतना मसला नहीं है, आपका सारा कुछ हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन टाइम पे आऊंगी। कल उन्होंने रिजाइन किया और आज वो नेक्स्ट जॉब पे
0: है। माशाल्लाह।
1: ओवरथिंक से अपनी बस वो नींद भी खराब की हुई है, मेरे से तो ये चीज हो नहीं रही।
2: सही सही, बिल्कुल सही। चले जी मुबशर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, और आपके लिए दुआएं बहुत सारी कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको जॉब भी मिल जाए, सारे मसले हल हो जाएं, ठीक है?
1: इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह। चले जी थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, और एक कॉलर हमारे साथ वेट कर रहे हैं, तो फौरन से उनको ले लेते हैं, फिर सफा से पूछते हैं कि मुबशर ऐसा क्यों सोचते हैं, आप किस नतीजे पे पहुंची। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: सफा।
0: नाम तो आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा मेरा।
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं भाई?
3: अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ।
2: अब्दुल्ला बात कर रहे हैं
3: जी, शायद आप पहचान नहीं, मेरा दूसरा नंबर से आपके पास सेव है, लेकिन ये दूसरे नंबर से किया मैंने।
2: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल लग तो रहा है कि आपसे बात हुई हुई है।
3: एक दफा हुई लेकिन मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया उसका।
0: अब्दुल्ला भाई एक दफा में तो अम्मा अब्बा का नंबर याद नहीं होता, आपका कहाँ से नंबर याद होगा?
3: मेरे पास तो नंबर होता है आप लोग का शो में, हर टाइम सुनता हूँ, सुबह के टाइम में सपा और ये नाजिया बहन जो है ना वो सुबह के टाइम में जो शो करती है वो भी सुनती हूँ। आज तो चेंज हो गया ना,
0: आज से चेंज हो गया सब कुछ।
2: जी जी
3: बिल्कुल। क्या हाल है, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र
3: शुक्र है।
0: अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, कोई एक बंदा तो मिल जाए जो ओवरथिंकिंग करता हो?
3: यार थिंकिंग तो बस यही करता हूँ कि आज बीबी क्या बोलेगी।
0: मैंने सोचा अभी कहेंगे लोग क्या कहेंगे, तो इनको लोगों से है ही नहीं, कह रहे बीबी क्या बोलेगी,
2: बीबी क्या बोलेगी। क्या बोलती है बीबी?
3: जब भी कोई पुरानी बात हो तो वो मेरे को बोलती है उस टाइम ये हुआ था, तो मैं उसको बोला पुराने बातें छोड़, मैं उसका सोच।
0: हाँ, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये होता है। अच्छा ये खातिन में होता है। मैंने इसी के ऊपर आना था, इसके ऊपर बात करूंगी मैं, लेकिन आपसे बात हो जाए फिर उसके बाद बात करूंगी। ये वायरिंग ना कुछ डिफरेंट होती है, आदमियों की और औरतों के दिमाग की वायरिंग कुछ अलग होती है।
2: हाँ हाँ, हाँ

0: हम जो एक बात करते हैं वो दोबारा दूसरी बात शुरू कर लेती है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि अभी एक साल पहले वाली बात तेरे को याद है, आज वाला बात नहीं बताती है, वो वाली बताती है। तो इस वजह से बस थोड़ा सा उसके साथ सही हो जाता है, लेकिन बस दो तीन बातें ऐसा तलखी हो जाती है ना।
1: सही हो गया। तो मतलब बीवी पे दिमाग लगा रहता है हर वक्त। वो ओवर थिंक करी किसी और मामले में, आप ओवर थिंक करें कि वो क्या ओवर थिंक कर रही है।
0: बस मैं तो असल में ये कि मैं गाड़ी चलाता हूँ उबर का। हाँ, तो उबर में ये कि बस हर टाइम लोगों के साथ
1: गुफ्तगू रहती है,
0: उससे बात करना है, तो यही, और आपका शो सुनता है हर टाइम 107।
1: जबरदस्त।
0: हाँ, तो बस अल्लाह आप लोगों को जो है ना तौफीक दे, जो इतना हमारा खिदमत करते हैं आप लोग।
2: चले भाई,
1: बहुत शुक्रिया भाई।
2: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अब आप लोगों से बस ये फोन किया तो मिल गया, वरना ऐसा तो नहीं मिलता।
2: आज ये अभी तक टाइमिंग लोगों को जो ना कुछ समझने में टाइम लगेगा, हफ्ता दस दिन क्या कहती है लगेंगे ना।
1: हाँ,
2: हफ्ता दस दिन टाइमिंग समझने में लगेगा।
1: बिल्कुल, इधर से उधर हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
0: जी, आप दोनों पाकिस्तान से हैं ना?
1: जी जी, बिल्कुल पाकिस्तान से हैं दोनों। आप भी पाकिस्तान से हैं ना?
2: नहीं, मैं जर्मनी से हूँ।
0: पाकिस्तान से?
2: नहीं, मैं यूके से हूँ। यूके से, यूनाइटेड कराची से।
1: यूनाइटेड कराची,
2: यूके से ताल्लुक रखती हूँ। यूनाइटेड कराची से हूँ मैं।
1: अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा अच्छा, ग्रेट भाई।
0: तो कैलिफोर्निया में गया था, तो उधर सिस्टम ये था कि उधर एक किस्म का वो पैसा डाल के 10 डाल के 20 लेता है ना। तो मेरे को मालूम, एक आदमी ने फंसा दिया।
2: अरे ये स्कैम का शिकार हुए।
0: मैं असल में गया था कि मैं, मेरे पास उस टाइम 300-400 रुपए था, वो था ना,
1: तो ये डबल चार के पास चले गए।
0: तो उसने मेरा पीछे गया, फिर वो बाद में पुलिस वाला आदमी था, वो पुलिस वाला है, मेरे को बोले तुम जवार खेल रहे हो ये। उसी ने फिर दूसरा आदमी आके उसने बोला कुछ पैसा मैसा दे के अपने जान छोड़ाओ।
1: लो लो, ये आपको कराची अच्छा लगा।
2: चले भाई, इसके बारे में हम ऑन एयर बात ना करेंगे। चले जी,
1: इंशाल्लाह बात होती है आपसे, आपसे इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे भी बात करते हैं इंशाल्लाह, और आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा सफ़ा, मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि हमें क्या एक म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहिए? कॉल्स हमारे पास बहुत आ रही हैं, लेना है या फिर कॉल लेनी?
3: देख लें आपको क्या करना है।
2: हमने क्या करना है,
1: आप
2: सोच
1: आप
2: लें।
1: बताएं, आप बताएं।
2: नहीं नहीं, आप बता दें, आप बता दें।
1: अच्छा चलिए, देखिए मुझे लग रहा है आपका दिल चाह रहा है बात करने।
2: आपका मसला ये है इस वक्त कि आप अभी छुट्टी से वापस आई हैं।
1: नहीं, मैं छुट्टी से वापस आई की बात नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा होगा कि हम गाना चलाएं। मैं ये सोच रही हूँ। तो हम कॉल अब तो ले चुके हैं,
2: चले एक कॉल के बाद फिर हम ब्रेक लेते
1: हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप
2: दोनों? बिल्कुल अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। शुएब भाई हैं, शुएब भाई हैं।
1: ये सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि गाना चलेगा नहीं चलेगा, गाना चलेगा या मैं आऊंगा।
4: नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं मेरे पास दोबारा भी डायल कर सकता हूँ।
2: शुएब भाई, सवाल बताएं, सवाल का जवाब दें। शुएब भाई, वैसे तो मजा आएगा आपसे बात करने में, लेकिन आप बताएं आज के ओवर थिंकिंग करते हैं आप?
4: बहुत ज्यादा।
1: ओए, कोई तो आया, कोई तो आया।
4: हाँ, मैं कभी कभी इतना डीपली चला जाता हूँ, बहुत ज्यादा
1: है।
4: हाँ, गाड़ी चलाते चलाते, जैसे कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ सोच रहा हूँ कि यार काश मैं एक पुलिस वाला होता। अब उसके अंदर फिर और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, यार मैं इतने बदमाशों को पकड़ता, ये करता वो करता।
2: इन्होंने पूरी पूरी गैंगे पकड़ ली,
4: मतलब इतनी ज्यादा
2: जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुई।
4: खो जाता हूँ बिल्कुल, एकदम अपनी एक अलग अलग सी दुनिया बना लेता हूँ, एक मेरा एक अपना एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं, कि मतलब बस उसमें लगता हूँ कि जैसे कि बस मैं कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ इमेजिन करता हूँ रियल।
1: हाँ।
2: अच्छा ये बताएं शुएब भाई, ये तो बताएं, ये बताएं मुझे, एक तजस्सुस है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे एक तजस्सुस है, आप ओवर थिंकिंग करते हुए खुद से बात करते हैं?
1: तो मैं भी करती हूँ, मतलब खो तो मैं भी जाती हूँ, कहीं पे भी खो जाती हूँ।
2: हाँ, ये ओवरथिंकिंग का एक पैटर्न है ना।
1: है,
2: हाँ,
1: अल्लो,
4: ये है, ये सच में होता है। देख पता क्या है, जैसे कि पहले मैं जिम जाता था, तो मैं एकदम बॉडी शॉडी एकदम परफेक्ट बना के रखता था, तो

0: मैं अपने आप को शीशे से शीशे में मतलब देख के फिर बात करता हूँ, यार आज तूने छुए आज तूने क्या किया, आज तूने यार बाइसेप्स अच्छे से नहीं लगाया, चल एक राउंड और लगा ले क्या, बोल ना भाई।
1: ये वाला सीन है, अपने आप से मोहब्बत इतनी है कि हम ओवरथिंक करते हैं अपनी, अपना ही एक हमारा सीन चल रहा होता है, ये अच्छा है भाई।
0: हाँ अरे ये सही है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, सही है अपने आप से बात करना अच्छा है।
1: लेकिन ये तो ओवरथिंक नहीं है ना, ये तो मतलब ये तो वो है कि हम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मतलब ओवरथिंक वाला हो जाता है जहाँ पे आप अटक जाते हैं कहीं और निकलते नहीं है उससे।
0: हाँ मतलब जैसे मतलब मैंने आपको बताया ना, मैं अपना यूनिवर्स क्रिएट कर लेता हूँ, वहाँ पे अटक भी जाता हूँ तो वो बहुत ज्यादा डीपली हो जाता है और मैं आज तक कभी उससे बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मतलब अभी भी जैसे कि मैं, मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है तो मैं कुछ सोचने लगा हूँ, कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, और फिर वहां जाके जैसे कि मतलब मैं समझ लो कि एक तरह से मेरी नींद खुल गई, ठीक है मैं वापस आ गया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैं ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ, अपने काम को लेकर करने लगता हूँ। लेकिन क्या है कि ज्यादातर मैं अपने दिल की सुनता हूँ, तो वो चीज क्या है, वो एक तरह का मेरा भ्रम है, भ्रम मतलब समझती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ तो मेरा एक तरह का वो भ्रम है, मतलब बस वो एक तरह का मेरा एक फेक यूनिवर्स है जिसमें मैं थोड़ा सा खो जाता हूँ, अपने आप को थोड़ा फील बेटर फील करा लेता हूँ, फिर उसके बाद वहां से वापस आ जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन स्टार्ट। तो ये चीज मेरे साथ होती है।
1: सही सही, अच्छा लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो मुझे अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये तो मतलब एक तरह से आपने एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है और वो उसमें वो चीज़ आपको खुशी भी देती है, बल्कि जो परेशानियाँ होती हैं उनसे आप किसी हद तक अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, है ना।
0: हाँ उससे मैं मतलब एक तरह से बच जाता हूँ, मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है, कुछ टेंशन है दिमाग में, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है, तो मैं वो वहां से टेंशन से अपना माइंड हटा के और उधर की साइड लगा लेता हूँ, तो वो मैं अपने आप को बेटर फील कराने के लिए या जैसे भी आप समझो, मतलब वो ठीक है मेरे हिसाब से।
1: नहीं नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये जबरदस्त चीज है।
0: हाँ ये ठीक है, अपने आप से बातें करना, ये अपने मतलब एक तरह से मेरे हिसाब से थोड़ा कूल भी है, और लोग सोचेंगे मैं साइको हो गया, पागल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता।
2: इसके ऊपर भी एक नई सोच आ जाती है, लोग क्या सोचेंगे,
1: लोग क्या सोचेंगे।
0: नहीं नहीं मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता कि लोग क्या सोचते, मैं बहुत फ्रेंड टाइप का बंदा हूँ, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। लोगों का काम है सोचने का, वो जो उनको सोचना है वो सोचो, मैं अपने मजे में मस्त रहता हूँ, मैं अपने दिल की ज्यादातर सुनता हूँ, दिमाग से ज्यादा इतना नहीं सुनता हूँ, दिल की बहुत ज्यादा सुनता हूँ, हद से ज्यादा।
1: चलिंग गुड, अच्छा है ये वैसे। खैर ये वाली ओवर थिंकिंग अगर आप इसको कह रहे हैं ना, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कहना चाहिए
2: मोटिवेटेड रखने का, सेल्फ थेरेपी
1: है ना।
2: देखिए हमें जब एक्सपर्ट की राय चाहिए होती है ना शुभ भाई, सीधी सी बात है, जब एक्सपर्ट की राय चाहिए होती है ना तो अपने आप से कंसल्ट करना पड़ता है, हमारे अलावा तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, है कि नहीं।
0: चलो ठीक है,
1: बहुत शुक्रिया आपका, आपके कॉल का, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होती है, और ओवरथिंक नहीं कीजिएगा, ऐसी अपनी दुनिया में खोए रहिएगा, अच्छा है ठीक है। चलिए जी, थैंक यू जी। अच्छा जी सफा, और वक्त आ गया है कि हम जो है वो एक ब्रेक ले ही लें, फिर उसके बाद वापस
2: आकर आपसे करते हैं बात ओवर थिंकिंग के बारे में। तब तक के लिए आपको याद दिलाते चलें कि आप सुन रहे हैं माविश और सफा के साथ यू मैटर ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा और माविश के साथ, शो का नाम है यू मैटर। और भाई आज बात चल रही है ओवरथिंकिंग के बारे में। माविश, मैं आपको ये बताती चलूं, याद दिलाती चलूं कि मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो ये थी कि मैं नहीं बोल रही, रिसर्च ये कहती है कि जो मर्द हजरात और खातिन का जो ना वो बहुत अलग अलग हिसाब होता है ओवर थिंकिंग के मामले में। मैं नहीं बोल रही है, रिसर्च ये कहती है कि ऑन एवरेज, क्योंकि मैन एंड वीमेन their brain is designed differently. आदमी जो होते हैं ना वो मोर, अब कोई इसे पर्सनल ना ले ले, मैंने नहीं बोला, ये रिसर्च कहती है कि आदमियों का दिमाग जो है ना मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है।
3: हाँ, exactly.
2: और औरतें जो होती हैं ना, खातिन जो होती हैं, वो मोर इमोशनली अटैच होती है चीजों के साथ। तो होता ये है कि इंटेंसली जो ओवर थिंकिंग करती है ना, ऐसा नहीं कि आदमी नहीं करते, आदमी भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन बिकॉज देयर माइंड इज डिजाइन टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंगी, तो वो उसे डिफरेंटली, जैसे कि हमारे शुएब भाई और मेरे ख्याल से मुदस्सर भाई थे, वो कह रहे थे कि मैं ओवर थिंक तो करता हूँ लेकिन बड़ी डिफरेंट वे में लेता हूँ उसको, लेकिन खातिन जो होती है ना वो उसको बिल्कुल ही गिज वाले इंटरकनेक्टेड होते हैं ना सारे डब्बे, वो अटक जाती हैं। और वो बात को कहाँ से काम, जो हम कहते हैं ना वो रेत का पहाड़ बना लेना, राई का पहाड़, बाल की खाल, और पता नहीं कौन कौन सी मिसाल है ना, वो वाली मोस्टली जो है ना वो ऑन एवरेज वो ओवर थिंकिंग ऐसी वाली लेडीज की साइड से आती है।
3: एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, कॉलर हमारे साथ, और फिर मैं मैसेजेस पे भी आती हूँ, लेकिन पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: करीम भाई
4: जी, मेरे बहन,
3: क्या हाल है भाई?
4: करीम भाई अल्लाह से राजी
2: है। अरे भाई, अल्लाह की रजा में राजी, ठीक है भाई। करीम भाई, ये बताएं आज का दिन कैसा गुजर रहा है?
4: आज का दिन बड़ा प्यारा है। कभी कभी सोचता हूँ, होशियार लोग कहते हैं कि आदमी और परिंदे का नसीब एक, दोनों का नसीब जो है ना एक सा है। घर चलाने का तकाजा है कि घर छोड़ना है।
3: ऐसा है?
2: अरे भाई क्या बात बोली है, घर चलाने का तकाजा है कि घर छोड़ना है।
3: घर चलाने
2: का बरकत है,
4: घर चलाना है तो ओके ओके ओके।
3: ओए होए होए होए, डीप था, डीप था।
2: अरे भाई
3: क्या बात,
2: क्या तो
3: सफा, तुम इतनी डीप बातें इतनी जल्दी समझने लग गई हो।
2: देखो माविश, तुम्हारे इंतजार में ऐसी हो गई हूँ।
4: मौसम में आप लोग देखते हैं ना, जब मौसम बदलती है, परिंदे कहीं कहीं होते हैं, कहाँ कहाँ से, कोई घोंसले के लिए क्या लाता है, कोई कहाँ, मतलब घर ना रहना पड़ता है, घर चलाना है तो
2: घर से निकलना पड़ेगा। अरे
3: क्या बात, क्या बात।
4: क्योंकि कहते हैं ना, बदतमीजी को इल्म भी नहीं छुपा सकता, लेकिन कम इल्मी को अदब जरूर छुपा सकता है। अदब वो चीज है ना कि वो कम इल्मी को भी छुपा सकता है।
2: करीम भाई, आज क्या खा कर आए हो ये बता
3: ये
2: दो।
3: तो भाई ये तो
2: क्या हलवा पूरी खाई थी देसी वाली
4: ना,
2: हमारी नानी अम्मा वाली बातें कर रही
3: है। बादाम खाने पड़ते हैं।
2: अच्छा,
4: और एक बात और आखिरी कहता है ना, ये हमारे पश्तों का एक मिसाल है, मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, कि बादशाह ने मिरासी को तलवार दिया, बादशाह ने मिरासी को तलवार तोहफे में दिया, उसने वेल्डिंग करके चम्मच बनाया।
3: बस देखो जरा,
4: रिसोर्सेज के वक्त इंतखाब करते वक्त तस्दीक कर लिया करे कि सामने वाला इसका अहल है कि नहीं।
3: क्या बात कर दी, क्या बात
4: है जिसमें हम मार खा रहे हैं,
3: क्या बात करते हैं, जबरदस्त,
2: बस कर दें, बस कर दें। करीम भाई क्या रुलाने आए हैं आज, क्या इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक आ रही है।
4: अपने बहने एक साथ है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसे बातें करूं, क्यों, ये जिंदगी है। देखो जिंदगी में ये चीजें होते हैं ना, कुछ फैसले जो है ना, आप लोगों की घर वाले माँ बहन भाई बेचू वाले है ना, फैमिली है, दोस्त है, तो कुछ फैसले जो है ना वो बिल्कुल जैसे बंदा खुदकशी कर रहा है ऐसे लगते हैं कुछ फैसले। लेकिन ये सख्ती, मायूसी, कन ये चीजें जो है ना ये पड़ती रहे, क्योंकि असल देखो रोशनी तो ऐसे नहीं है ना, आसान रोशनी भी इतनी आसान नहीं है।
2: सही सही सही,
4: कुछ ना कुछ तो चलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना रोशनी के लिए।
2: करीम भाई मैं बता रही हूँ, जाकर थोड़ा सा जिद्दोजहद करो, जाकर जो है ना साइकेट्री डिपार्टमेंट में डिग्री ले लो डॉक्टर की, कुछ करो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत कन्विंसिंग शख्स हो, बस एक वो कागज का टुकड़ा जो है ना वो मिसिंग हो गया है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह
4: माशाल्लाह मेरे बड़ी फैमिली है उसमें प्रोफेसर शेखुल हदीस डॉक्टर अल्लाह की करम से बहुत सारे हैं लेकिन वो सब मुझे अंकल बुलाते हैं चाहे मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं वो बोलता है यार अंकल ने जो बात बताया इसमें दम है
3: क्या बात है भाई क्या बात है मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब इल्म जो है ना वो डिग्री का मोहताज नहीं होता
4: बिल्कुल यही तो बात है ना बंदा अच्छा है ना देखो आप उम्र कितना भी क्यों ना हो आप अगर ये चीज डिसाइड करे कि मैंने ये सीखना है दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रो सकता उससे आप सीख सकते हैं
2: इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसान को इसीलिए यही एक चीज तो है इंसान के पास अपने फैसले खुद फैसले अपने करना अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है ना इंसान को वो यही है
4: बिल्कुल तो ये वो चीजें हैं कि बदकिस्मती से बस पता नहीं चलता ये इज्तिमाई शक्ल में जब कोई मुश्किल आ जाता है ना जिस तरह तूफान आता है ना हर चीज को अपने साथ ले उड़ता है ना नुकसान करता है कुछ तूफान ऐसे हैं वो आपका रास्ता साफ कर देता है बजाय नुकसान के वो आपके रास्ता साफ कर देता है
2: वो वक्ती तौर पर हमें खराब लग रहे होते हैं बेचारे
4: बिल्कुल लेकिन वो काफी सारे फायदेमंद होते हैं आते हैं आपके मौजू पे आज क्योंकि मैं आज रिलैक्स हूँ मेरी गाड़ी का पंखा खराब है अगला बंदा बना रहा है वो इसी का पंखा तो मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के बस आज
2: ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ
4: बात कर रहा हूँ
2: मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ आज नहीं आज ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे
4: मैं साथ बात करता था तो मैं ड्राइविंग पे होता हूँ मैं जब भी बात करता हूँ मैं ड्राइविंग पे होता हूँ तो मेरी जो तवज्जो होती है वो आप लोगों के साथ तकरीबन लाइक 70-80% होता है जो मेरा फोकस होता है 20-30% वो मैं अपने ड्राइविंग पे होता है तो इसलिए मैं इतने खुल के और ठंडे दिमाग से बात नहीं कर पा रहा तो आज मुझे मौका मिला है
3: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा, तो बताएं ओवरथिंकिंग
2: करीम भाई एक बात आप थोड़ी सी टिप्स तो दें ये ओवरथिंकिंग को स्टॉप कैसे किया जाए आपसे टिप्स लेते हैं
4: देखो अल्लाह ने जो इंसान को बनाया उसमें ये चीजें अल्लाह ने रख दी है लेकिन ये अच्छा ये अभी खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है सबसे बड़ी बात आप खाना कौन सा खाता है ये बहुत जरूरी है उसके बाद आपकी जो लाइफ में इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस टाइप के लोग हैं उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है तो जहां तक मेरा ख्याल है इस चीज को हम ऐसे अगर इस्लाम से देखा जाए अगर एक बंदा पाबंदी से अपना 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है और बिला वजह किसी के काम में टांग नील मतलब बोलते हैं ना हम लोग छोड़ दो इसके काम में वो जो ये चीजें अगर बंदा छोड़ दे मैं कहता हूँ 5-10-15 दोस्त रखो नस्ली रखो ऐसे दोस्त रखो जो आपको अपने दिल की चौकीदारी करनी ना पड़े
3: सही क्या बात कर दी जबरदस्त
4: अगर आप ऐसे दोस्त अपनी जिंदगी में करते हो ना रखते हो जिसके लिए आपको अपने दिल की चौकीदारी करनी पड़ेगी तो फिर वो तो टेंशन ओवर थिंकिंग तो आएगा ना
3: क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त
4: तो यही वो बात है कि अगर तुम ख्यालों की कैद में हो तो तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारा जो ख्यालों की कैद में रहते हैं ना तो वो आपकी जो हर आजादी है जो आप अपने आप को मसलन
2: छिन जाती है
4: वो ख्यालों में रहते हो आप सोच रहे हो कि आप आजाद हो लेकिन आपकी हर आजादी बेकार है उसमें कोई दम ही नहीं है क्योंकि आप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हो
2: ख्याली पुलाव पका रहे हैं बिरयानी
4: ख्याली पुलाव तो वो आजादी बेकार है तो यही वो चीज है कि हम इस चीज से तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि हम इसको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं
3: सही हो गया बिल्कुल सही अच्छा ये खाने वाली बात बड़ी जबरदस्त की है
2: ये इसके ऊपर मेरे पास एक बात है
3: अच्छा एक बात जो आपके पास और भी थी उसके बारे में कोई पूछ रहा है कि वो बात क्या थी तो वो अभी बताना है इसके बाद
2: सही
3: तो चले जी करीम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी जबरदस्त बातें आपने शेयर की थैंक यू सो मच और आप आते रहिएगा क्योंकि ये वक्त जो है आपके लिए आसानी का होगा इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात करते हैं ठीक है
4: जी जी आखिरी मैं सब दोस्तों से माजरा चाहता हूँ ये हर इंसान इस चीज से गुजर चुका है क्योंकि ये जो हम ये इज्तिमाई है ये इंसानों की जिंदगी लेकिन मुश्किलात है वो मुख्तलिफ शिक्लों में है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि जो जो हमारा जो फकत ये ना मुकम्मल ख्वाबों का जो चांसा है ना हमारी जिंदगी का कि ये जिंदगी ना मुकम्मल ख्वाबों का चांसा है लेकिन कभी कभी इंसान इतना मायूस हो जाता है ना आप यकीन जाने मैं इससे गुजर चुका हूँ तो जब वो बड़ी माजरत के साथ जब वो गली का कुत्ता भौंकता है ना तो भी बंदे को नसीहत लगता है
2: जब ओवरथिंकिंग होती है हाँ ये होता है
4: तो इससे बचने के लिए दोस्तों में कमी लाओ अच्छा खाना खाओ, अपनी फिटनेस पे सेहत पे तवज्जो दो, आप इन सब चीजों को शिकस्त दे सकते हैं बड़ी खुशी के साथ।
3: सही, जबरदस्त, बहुत आला करीम भाई, थैंक यू जी, थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो इसके साथ ही ना जल्दी से हम पहले मैसेजेस शामिल कर लें और तुम बता भी देना उनका मैसेज में पढ़ती हूं फिर बता देना। शहजादे सलीम कहते हैं वेलकम टू द शो और हम हैं आपके साथ और एफएम वर्क के साथ, ये इन्होंने कहा। लतीफ भाई का मैसेज आया था, इन्होंने जो है वो फूल भेजा है हमें, उसके साथ सुबह खैर है,
2: फूल तुम्हें भेजा है मैसेज में।
3: और एक भाई ने कुछ कहा है वो मैं कह नहीं रही, मुबीन बुखारी कह रहे हम सबको सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग कतर आपको तमाम लिसनर्स को एमबीबी की तरफ से। और इसके साथ जी हम आए भी नहीं और शो चालू हो गया,
2: पहले बताना था ना,
3: मोहम्मद हुसैन
2: पहले बताना था कि आपकी वजह से रोक कर रखना था शो को।
3: और इसके साथ ही जी सफा मैम क्या बात ही बताएं ना, मुबशिर मुबीन
2: मुबशिर बताती हूँ
3: बताएं ना।
2: अच्छा मामला पता है क्या, ये आधी बात तो हमारे माशाल्लाह से करीम भाई ने बोल दी, मेरी पिछले दिनों एक डिस्कशन चल रही थी कि ये ताल्लुक क्या, ये ओवर थिंकिंग का, और ओवर थिंकिंग ना एक किस्म का डिजीज माना जाता है साइंस में भी, एक किस्म का डिजीज माना जाता है। तो मामला पता है क्या है, मामला ये कि वाकई में हमारे पेट से इंटरकनेक्टेड होता है। एक अब मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़े ना वो थे तबीब जो पुराने जमाने में,
3: हकीम।
2: तो उनका कहना था कि इंसान की 99% बीमारियों का जो मसला है ना वो हमारे पेट से शुरू होता है, एंड दैट इज ट्रूथ। आज की साइंस ये बताती है कि हमारा ये जो ब्लड शुगर है, ये जो कैफीन इंटेक है, ये जो हमारे हम लोग जो खाते पीते हैं ना, हमारे पेट में गट में जो ना माइक्रो बायोमीन्स होते हैं, वो मिलकर हमारी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं वो मिलकर, या हमें जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारा जो भूख का ज्यादा लगना होता है या कम हो जाना होता है, ये सारा कुछ जो है ना हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात ये तो सच है कि इंसान का बहुत गहरा ताल्लुक है इसके पेट से।
3: हाँ, नहीं है
2: तो आपके ओवर थिंकिंग का भी मसला होता है कि हम स्ट्रेस करते हैं चीजों को, ठीक है, बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि दिमाग है जाहिर बात है वो इंटरकनेक्टेड है, चाहे फिर वो आपकी भूख हो, डिहाइड्रेशन हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, एक्सरसाइज कुछ भी हो, डाइजेशन अफेक्ट होती है हमारी उससे, फिर ये होता है कि पेट में ना अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, और ये रिसर्च बताती है हम उन सेंसेशंस को नोटिस करते हैं, दिमाग उन्हें डेंजर समझ लेता है, और फिर उससे ये होता है कि हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। हमारे जो नाखून चबाना, ये जो होंठ के ये जो हमारी स्किन होती है, ये हम लोग जो ना इसको निकाल रहे होते हैं, ये जो ना अपने हाथों को यूं मैश कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, पांव हिलाना, ये सब कुछ रिएक्शन होता है उस चीज का। कभी कभी आपने नोटिस किया है लोग कह रहे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों परेशान हूँ, उनके दिमाग में कुछ पता नहीं क्यों कहाँ की ओवरथिंकिंग चल रही होती है,
3: जो बेसिकली सब कुछ केमिकल रिएक्शंस है ना।
2: एग्जैक्टली।
3: तो चलें जी, तो ये वाला सीन था। अच्छा दूसरी बात जो है ना, शोएब की बात पे तुमने एक बात बोली थी कि शोएब जो है वो इस तरह से क्यों करते हैं।
2: वो ये था कि शोएब भाई पर्टिकुलरली शोएब भाई को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो वाली बात मैं बता चुकी हूँ कि आदमियों का ये रिसर्च बोलती है।
3: अच्छा वो वाला सीन।
2: हाँ, वो आदमियों वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है आदमियों का दिमाग,
3: सही।
2: तो वो जिस तरीके से कह रहे थे ना कि मैं उसको एज अ मोटिवेशन ले लेता हूँ, लेडीज कुछ अलग तरीके से लेती हैं, लेडीज जो है ना उससे डाउन हो जाती हैं।
3: लेडीज का ना एक सीन है, मतलब वही वाला, मतलब हम खुद भी वही हैं, मतलब बुरा कोई ना माने, लेकिन हमें मतलब खवातीन में एक चीज होती है कि वो ना एंजॉय करती हैं
2: ओवरथिंकिंग को।
3: ओवरथिंकिंग
2: मैंने कहा ना, मैंने शो के शुरू में बोला था वो मर्ज भी जिए मैंने, अल्लाह माफ करे, जो मुझे है नहीं, लेकिन मुझे लगता हाय वो शाहरुख खान की फिल्म की तरह
3: होंगी कि मतलब आप उनको बोले माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी लग रही है, वो आगे से कहते नहीं नहीं मैं तो इतनी बीमार हूँ, तुम्हें क्या पता मेरी तो मतलब जिंदगी माहौल भी चला, मुझसे नहीं जाता ये वो, आप उनको कितना ही कायल कर लो कि मतलब सब अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मसला आ जाएगा, कोई ना
2: दिमाग में मसला है ना। वो शाहरुख खान की मूवी निकली थी ना कल होना, उसके अंदर शाहरुख खान को कैंसर हो गया था, तो मैंने तो वो कैंसर जी लिया था कि अगर मुझे ऐसा होता ना अब क्या ही कोई ताल्लुक बनता था मेरा उससे, लेकिन अगर मुझे ऐसा होता तो क्या होता। वो ओवर थिंकिंग का एक लेवल है।
3: तुमने भी अपने ख्यालों में सारी चीजें वसीयतें वगैरह कर
2: रही
3: होगी।
2: मैं सच में बता रही हूँ,
3: सीरियसली
2: ये हो चुका, और ये होता है रैंडमली। दैट्स व्हाई आई डोंट वॉच ड्रामास, दैट्स व्हाई आई डोंट वॉच, क्योंकि मैं ना टू मच ओवरथिंकिंग करती हूँ। मैंने शायद अपने शो में भी एक दो दफा सवाल किया था लोगों से कि आपको विजुअल तौर पे चीजें समझ में आती हैं दिमाग में या आपके कानों में शोर रहता है
3: कि किसी चीज को देखा एक मुझे इस पे फिल्म याद आ रही मैंने वो पूरी नहीं देखी हुई लेकिन वो उसकी है उसकी चलो मेरा नाम याद आता है बताती हूं पहले रईस भाई कह रहे हैं गाना बिल्कुल मत चलाओ अगर गाना हम तो नहीं चलाएंगे रईस भाई लेकिन हमारे लिए
2: हम
3: हो जाएगा
2: हम जो है ना वो बाउंड है कुछ चीजों से
3: तो ये मसला है चलिए जी तो फिर आप ना पहले कॉल ले लेते हैं और मैं वो ढूंढती हूं उस एक्ट्रेस का नाम फिर बताती

0: केरला घूमने का, एक ताजमहल देखने का और केरला घूमने का, बिकॉज इन द मूवीज आई वॉच इंडियन मूवीज ना, वो कौन सी वाली, वो मल्लू मूवीज होती है ना, उसके अंदर मैंने देखा है केरला का बहुत ज़्यादा. इट्स वेरी ग्रीन एंड इट्स वेरी प्रिटी. तो मुझे बहुत शौक है केरला घूमने का, अगर मुझे मौका मिला तो मैं केरला जरूर जाऊँगी. अच्छा अज्जू भाई, It's rainy over there. Yes, season ऐसा चल रहा है. तो भाई welcome back to Qatar and summer time. Reality check.
1: अभी कहाँ है दिमाग? केरला में है या यहाँ पर है?
2: यहाँ पर आ गया.
1: आ गया यहाँ पर. Good, जबरदस्त अज्जू.
0: अज्जू भाई ये बताएं, do you overthink about stuff?
2: कभी कभी.
0: कभी कभी. Because there is a difference, most of the time our minds does not understand the difference between planning and overthinking. Hum planning karte karte overthinking kar jate hain, hame pata hi nahi chalta.
2: So main to mera personal experience hai, main koi overthinking kar raha to main mera wife ke sath share karta hu. Aap bhi thoda think karo. Mera stress level thoda kam hoga.
0: Baat karne se.
1: Haan, bilkul sahi.
2: Mera idea, maybe it goes wrong, but some other person idea, if I take means, I will become good. So, kabhi-kabhi mera overthinking karne ke time, main kisi ko mera thinking ko thoda share karega, toh aapka stress thoda free ho jayega.
0: Aray bhai, Ajju bhai, ye bahut solid solution diya hai aapne.
1: Haan, bilkul sahi.
2: आपका ब्रेन आपको एक सेफ्टी वार्निंग देगा. योर माइंड थिंकिंग दैट वरिंग सो मेनी वार्निंग देगा, लेकिन कोई कोई आदमी को कंट्रोल नहीं सकता है. उसका नर्वस सिस्टम भी के तो उसका शोल्डर, उसका थाइस, उसका पैर पूरा वाइब्रेट करने के लिए शुरू होता है. ये नॉर्मल स्ट्रेस हैबिट है, लेकिन उसको बस्ट आउट करने के लिए आपको किसी के साथ आपका थॉट्स को थोड़ा शेयर करेगा तो आपका ओवरथिंक थोड़ा कम होगा.
1: बिल्कुल ऐसा.
0: आई टोटली अग्री विद.
1: अच्छा पता है क्या इसमें ना, जो मतलब आपके पास अच्छी बात है वाइफ है, अगर आप किसी वक्त में अकेले हो तो जो अभी शोएब ने जो थेरेपी बताई थी ना कि मैं अपने आप से बातें करने लग जाता हूं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. सीरियसली
0: डाइवर्जन,
1: मतलब आप ना उस बारे में बोलना शुरू कर दो पैनिक होने के बजाय. मतलब उसको बोलो, बोल के खुद कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है.
2: I agree. अभी हम लोग को फील्ड में कोई प्रॉब्लम के लिए अकेले जाएगा तो कभी कभी टाइम लगता है. तो उसी टाइम प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करने के लिए ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस भी बढ़ जाता है.
1: बिल्कुल ऐसे.
2: आपको कोई एक्सपर्ट है तो थोड़ा फोन करके बात करने का, ये ऐसे प्रॉब्लम हो गया क्या करने का. आप ज्यादा थिंक करेगा तो डेफिनेटली आप नर्वस के साथ आप कोई गलत करने के लिए चांसेस है.
0: आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है ना ओवर थिंकिंग.
2: Because you are thinking multiple.
0: Yes.
2: Not only present.
0: And plus overthinking ना makes you lose everything. वो आपको ना panic में डाल देती है. Panic में human can not take decisions. Not the good ones.
2: जस्ट आपका ओवरथिंक का थोड़ा दूसरा आदमी का शेयर करने का, अगर कोई नहीं है तो आप थोड़ा लॉन्ग ब्रेथ करके थोड़ा आराम करके थोड़ा ठंडा पानी थोड़ा पी के
0: डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ
2: में जस्ट डिस्ट्रैक्ट.
1: सही हो गया,
2: आपको फील होगा ओके आई एम रिलैक्स. रिलैक्स होने के बाद आप थोड़ा थिंक करेगा ना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा.
1: सही हो गया. चलें नहीं अज्जू, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा अच्छा जबरदस्त आपने आखिर में अच्छा हुआ कि एक तरह से कंक्लूड भी कर दिया आपने, सॉल्यूशन दे दिया. थैंक यू जी अज्जू.
2: थैंक यू.
1: बाय बाय रेडी. ये तो शो भाई शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गया, मतलब चला ही गया. मैं जल्दी से मैसेज पढ़ देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट है. मोहम्मद यूसुफ खान, सभी के इंपॉर्टेंट है. मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. मुख्तसर पढ़ रही हूँ. कैसी हैं आप दोनों? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं. और उसके साथ हकीम लुकमान ने कहा था, ये उन्होंने बताया हकीम लुकमान. मोहम्मद मुबशर थे और इसके साथ ही जी हमारे पास सफान मावश. टॉपिक इज गुड, नॉट रियली अंडरस्टूड बाय मेनी. ओवर थिंकिंग ऑन ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक डेवलपिंग अजम्पशंस ऑन स्मॉल इश्यूज इज नॉट गुड. अच्छा पूरा नहीं पढ़ सकती इसलिए जल्दी जल्दी से निकालना पड़ेगा. और ये जो है हसन है. हसन थैंक यू सो मच, आपने इतनी एफर्ट की, लेकिन बस हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है. अस्सलाम वालेकुम, दो नूर एक रूम में.
0: तभी तो लाइट बंद हो गई है.
1: हमेशा मेरे आने पे इसलिए बंद होती है, मुझे पता चला. अस्सलाम वालेकुम आपी, आप भी मेरी तरह ही ओवरथिंकिंग करती हैं.
0: मैं बहुत करती हूँ.
1: मैं अभी आया हूँ ड्यूटी पर और ये ड्यूटी पे कौन आए हैं? ये रिजवान है.
0: चले मेरे रिजवान भाई, आपकी और मेरी कंपनी अच्छी रहेगी, हम दोनों ही ओवरथिंकिंग करते हैं खूब.
1: जमेगा बुखारी भी मी टू कहते हैं.
0: चलें भाई ये गुड हो गया।

0: हाँ.
1: अच्छा लेकिन इसके साथ ना आप सॉल्यूशंस पर बढ़ते हैं हम
0: हाँ.
1: और सॉल्यूशंस ये हैं कि भाई अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करें जो हुँ. बात है उसको जिसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं उसी हुँ. के ऊपर थॉट रखें अपनी व्हाट इफ व्हाट नाउ के ऊपर नहीं करें
0: हुँ.
1: और दिमाग को दुरुस्त रखें हर चीज के ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं होता इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत
0: एमके ने सलाम कहा था एमके ने सलाम कहा था और इसके अलावा जो है ना एक और है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ओवरथिंकिंग की बात ना करें ठीक है ये नाम पढ़ देती हूँ उनका काशिफ कश्मीरी और इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज हमारी तरफ से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सामिकराम, एक मरतबा फिर ये सआदत नसीब हो रही है मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को कि मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ जो हमारे दिलों को कुरान करीम के करीब लाने, उसके मानी में गौर करने और उसके अंदर छुपे हुए हिकमत के मोतियों को तलाश करने की एक अदना सी कोशिश है। प्रोग्राम का नाम आपने सुना है पर्ल्स ऑफ द कुरान, कुरान के मोती। इससे पहले भी एक तवील अरसे तक तफहीमुल कुरान के सिलसिले में हम आपके साथ कुरान मजीद के फहम व तदब्बुर का सफर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान कुरान को मुख्तलिफ जावियों से समझने, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी से जोड़ने और उसकी आयात में पोशीदा हिदायत को महसूस करने की कोशिश जारी रही। और अब एक बार फिर हम इसी कुरानी समंदर में उतरने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये कोशिश होगी कि हर नशिस्त में किसी आयत, किसी एक कुरानी मंजर, किसी एक माना या किसी एक सूरत को मुंतखब किया जाए और फिर उसके अंदर मौजूद उन मोतियों को तलाश किए जाएं जो हमारी सोच, हमारे दिल और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोशन कर सके। तो सितंबर से दिसंबर तक इंशाअल्लाह इस नए शेड्यूल के दौरान कुरान की मोती का ये सिलसिला बाकायदगी के साथ जारी रहेगा और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो इस मामूली कोशिश को शरफ़ कबूल अता फरमाएं, उसे हमारे लिए इल्म नाफे, अमल साले और क़ुर्ब इलाही का जरिया बनाएं और कुरान को वाकई हमारे दिलों की बहार और हमारी ज़िंदगी की रोशनी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और आज इस नए सफर की पहली मंजिल के तौर

पर हमने इंतखाब किया है सूरह यूसुफ का। अब कोई सवाल कर सकता है कि भाई आपने सूरह यूसुफ का इंतखाब क्यों किया है। दरअसल ये सूरह कुरान की एक दिलनशीन और मारूफ दास्तान अपने अंदर समोए हुए है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इसके आगाज ही में फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, यानी हम आपके सामने बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं। अब हमारे इस प्रोग्राम का मकसद तो किस्सा बयान करना नहीं, इस प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत में वो कौन से मानी है जो एक मोमिन के दिल को सहारा देते हैं, जो आजमाइश के वक्त उसे साबित कदम रखते हैं, जो गम के वक्त उसे उम्मीद दिलाते हैं, जो इंसान को ये सिखाते हैं कि अल्लाह की तदबीर उस वक्त भी जारी होती है जब बज़ाहिर सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों। सूरह यूसुफ का एक नहायत खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक के लिए तसल्ली और तस्बीह का जरिया बनती है। बज़ाहिर सूरह यूसुफ में बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त खिताब नहीं किया गया, ज़्यादातर बयान यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का है, लेकिन इमाम तबरी रहमतुल्लाह एक मकाम पर ऐसा लतीफ़ रब्त बयान करते हैं जो हमें समझाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल तक इस किस्से का पैगाम किस तरह पहुँच रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर उन्हें एक मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया गया। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन। ज़ाहिर की निगाह से देखिए तो ये आजमाइश की इंतहा है, एक नबी का बेटा अपने बाप का महबूब भाइयों के जुल्म का शिकार हुआ, कुएं में पहुंचा, फिर वहां से निकाला गया तो आज़ादी नहीं मिली बल्कि बाजार में एक गुलाम की हैसियत से फरोख्त कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उसी तारीकी के बाद कुरान कहता है, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, और इसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में इक्तदार व इस्तेहकाम अता किया, और फिर फरमाया, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया और हम नेकी करने वालों को उसी तरह जजा देते हैं। यहाँ इमाम तबरी रहमतुल्लाह वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन पर एक इंतहाई दिलनशीन नुक्ता बयान करते हैं। वो ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इताअत व एहसान के बदले इल्म व हिकमत अता की, उन्हें ज़मीन में जगह दी और उनके भाइयों के हाथों से उन्हें नजात दी जो उनके खिलाफ बुराई का इरादा रखते थे, इसी तरह हम अहले एहसान को जजा देते हैं। इमाम तबर रहमतुल्लाह इस उमूमी वादे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक खास तसल्ली देखते हैं। गोया सूरह यूसुफ के वाकयात के पर्दे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक तक ये पैगाम पहुंच रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ ने अपने करीब तरीन लोगों से जो कुछ सहा, आप भी अपने कौम के हाथों आजमाइशें देख रहे हैं। यूसुफ को कुएं की तारीकी तक पहुंचाया गया, गुलाम बनाकर बेचा गया, मगर वो तारीकी उनकी कहानी के अख्तिताम नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें वहां से निकाला, उन्हें इल्म हिकमत अता फरमाई और फिर जमीन में इक्तदार दिया। इसी तरह आप भी अहले एहसान में से हैं और अल्लाह अपने मोहसिन बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। यही सूरह यूसुफ का हसन है। एक तरफ वशरौहु बिथमनिन बख्सिन, उन्हें मामूली कीमत पर बेच दिया गया, और दूसरी तरफ वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ब, हमने यूसुफ को ज़मीन में इक्तदार अता किया, फिर वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम अहले एहसान को उसी तरह जजा देते हैं। इन आयात को एक साथ रखिए तो एक पूरा पैगाम सामने आता है कि इंसान किसी वक्त अपने हालात को देखकर ये समझ सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मगर अल्लाह की तदबीर अभी ख़त्म नहीं हुई होती। कुआं आखिरी मंजिल नहीं था, ग़ुलामी आखिरी मंजिल नहीं थी, आजमाइश आखिरी मंजिल नहीं थी, आगे अल्लाह की तदबीर थी। और यही पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कल्बी तस्कीन का जरिया था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی مخالفت

अपने करीबी लोगों की दुश्मनी और अहले ईमान पर होने वाले मजालिम का सामना था। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान बता रही थी कि आज की आजमाइश को देखकर कल के अंजाम का फैसला न कीजिए। सामने किराम, सूरह यूसुफ की बाज़ आयात ऐसी हैं कि एक हसास दिल उन्हें महसूस करता है, यानी सिर्फ सरसरी पढ़कर नहीं गुजर सकता। याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, मैं तो अपनी बेकरारी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। रिवायत में आता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे, जब इस आयत तक पहुंचे तो शिद्दत गिरिया से उनकी आवाज, उनका नशीज पिछली सफों तक सुनाई देने लगा। यही सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि आजमाइश में दिल कैसा हो, गम में बंदा किसकी तरफ रुजू करे, तारीकी में उम्मीद कहाँ से हासिल करें, और जब हालात हमारे इख्तियार से निकल जाएं तो अल्लाह की तदबीर पर एतमाद कैसे बाकी रखा जाए। तो सूरह यूसुफ को अगर आप उसके आगाज से देखें तो दिल के सामने चंद कैफियतें उभरती हैं, आजमाइश, शिद्दत, हसद, अपनों की बेवफाई और साजिश। लेकिन जब इसी सूरत के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं तो मंजर बिल्कुल बदल चुका होता है। वहां कुशादगी है, नुसरत है, तमकीन, इज्जत और करामत है। और अगर आगाज और अंजाम के दरमियान सूरत के वसत में ठहरें तो वहाँ एक और दुनिया आबाद नजर आती है। सब्र, अल्लाह के हुजूर शिकायत, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना, उम्मीद को थामे रखना और अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न, यूं महसूस होता है जैसे सूरह यूसुफ इंसान को आजमाइश के सिर्फ एक लम्हे से नहीं गुजारती बल्कि आजमाइश का पूरा सफर दिखाती है। इब्तिदा में इब्तिला, दरमियान में सब्र व तफवीज और आखिर में फरज व तमकीन यानी कुशादगी। इसीलिए जो इंसान किसी कर्ब से गुजर रहा हो, किसी आजमाइश में मुब्तला हो, हालात की सख्ती ने जिसे घेर रखा हो, वो सूरह यूसुफ की तरफ लौटे तो उसे यहाँ अपने दिल के लिए कई तरह की तसल्ली मिल सकती है। इंसानी फितरत भी यही है कि जब हम किसी ऐसे शख्स की दास्तान सुनते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा सख्त आजमाइश से गुजरा हो तो हमारी अपनी तकलीफ किसी कदर काबिल बर्दाश्त महसूस होने लगती है, और यह एहसास उस वक्त मजीद गहरा हो जाता है जब आजमाइश से गुजरने वाला हमसे कहीं ज्यादा बुलंद मर्तबा और अल्लाह के यहाँ कहीं ज्यादा महबूब हो। सोचिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा मुअज्ज़ज़ कौन है, आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, नबीउल्लाह, इब्न नबीउल्लाह, इब्न नबीउल्लाह, इब्न खलीलुल्लाह, इतना बुलंद नसब, इतना बुलंद मकाम। लेकिन आजमाइश देखिए, कुएं में डाले गए, काफिले के हाथ लगे, गुलामों की तरह खरीदे और बेचे गए, फितने का सामना किया, तोहमतों की फिजा बनी और फिर बेगुनाह होते हुए कैद खाने तक पहुंच गए। गोया यहाँ सूरह यूसुफ अपने कारी से एक सवाल करती है, अगर अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आजमाइश से गुजर सकते हैं तो हम क्यों ये तवक्कु रखें कि हमारी जिंदगी आजमाइश से बिल्कुल खाली रहेगी? हम कौन हैं कि जिंदगी में हमारी कभी भी कैद ना आए, जुदाई ना आए, कोई गलत फहमी, कोई तोहमत, कोई इंतजार ना आए? ये एहसास बजात खुद एक उन्स है, एक तसल्ली है। आजमाइश का आना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह ने बंदे को छोड़ दिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आजमाइश के आयन दरमियान भी अल्लाह की निगाह रहमत में थे। फिर सूरह यूसुफ तसल्ली का दूसरा दरवाजा खोलती है। बार बार वो लफ्ज सामने आते हैं, फसबरुन जमील, बस सबर ही खूबसूरत है। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, मैं अपनी बेकरारी और अपने गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। तो यहाँ सबर का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द महसूस ही ना हो। याकूब अलैहिस्सलाम का जिस्म गम से मुतासिर हुआ, आंखें मुतासिर हुई। कुरान कहता है, वबियद्दत अईनाहु मिनल हुज्न, गम मौजूद है, आंसू मौजूद है, जुदाई की तकलीफ मौजूद है, मगर अल्लाह से उम्मीद का रिश्ता नहीं टूटा। इसी शदीद कैफियत में वो कहते हैं, इन्नी लअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या खूबसूरत कैफियत है कि बदन थक सकता है, आंख रोती है, दिल गमगीन हो सकता है,

से बड़े जुर्म तक पहुंच सकता है। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इंसान जुर्म करने से पहले अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए अपने लिए एक मजहबी अखलाकी जवाज भी तराश लेता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपस में एक दूसरे को कहने लगे, यानी जवाज तराशते हुए, कि भाई उसे कत्ल कर दो, उसे फेंक दो, यानी और उसके बाद तुम नेक लोग बन जाना। तो यानी अभी एक गलती कर लेते हैं, फिर बाद में सालेह बन जाएंगे। तो ये इंसानी नफ्स की एक निहायत खतरनाक चाल है। इंसान कहता है बस ये काम कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, बस ये एक जुल्म हो जाए फिर मैं अच्छा बन जाऊंगा। हालांकि हकीकत बिल्कुल बरक्स है कि गुनाह को पहले से मंसूबा बनाकर ये कहना कि बाद में नेकी कर लेंगे, ये तकवा नहीं बल्कि नफ्स का धोखा है। अल्लाह ताला ने उनके एक भाई के जरिए इस बड़े जुर्म को किसी कदर रोका कि उसने कहा ला तक्तुलु यूसुफ वअल्कूहु फी गयाबतिल जुब यल्तकितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फाइदीन। यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला उसे उठा लेगा अगर तुम्हें कुछ करना ही है। यानी कत्ल से तो मामला हट गया, लेकिन एक छोटे बच्चे को अपने खानदान से जुदा करना, उसे कुएं में फेंकना, अजनबियों के रहम और करम पर छोड़ देना, ये भी कितना बड़ा जुल्म था। अब सामने किराम, कुरानी तरबियत में एक और बड़ी बात यह भी है कि कुरान ये भी चाहता है कि बंदा इंसान बसीरत रखने वाला हो, लोगों की बातों से धोखा न खाए, मीठी जबान के पीछे छुपे हुए इरादों को पहचानने की सलाहियत पैदा करे। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारी कुरानी आयात हैं जो हमें इस पर मुतनब्बे करती है, इस अम्र अज़ीम पर। कुरान में एक मकाम पर इरशाद होता है وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुनियावी गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आती है,

0: बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है।
3: मेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना, मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
2: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो गया है. अल्लाहु

0: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। मैं जी दोहा वाला कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और हाजिर हूँ टेक अपडेट लेकर। बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको जितनी आसानी से समझा सकता हूँ उतनी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर। सबसे पहली चीज जो आपके बहुत काम आ सकती है और इनफैक्ट उन लोगों के काम आ सकती है जो एडिटिंग तलाश रहे हैं, जिन्हें फैंसी फैंसी चीजें चाहिए उनके बहुत काम आने वाली है। तो एक वेबसाइट जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या करती है बाद में बताऊंगा लेकिन नाम पहले जरूरी है याद रखना। इसका नाम है unicorn.studio.com। स्पेल आउट कर देता हूं, UNICORN unicorn.studio studio.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हैं। आपने देखा यूट्यूब पे लोग जब जाते हैं अपने पेजेस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, सो दे टेंड टू हैव दिस वेरी क्रिएटिव इंट्रो। कुछ लोग चाहते हैं इंट्रो बनाना, कुछ लोग चाहते हैं वीडियो में बीच में कुछ प्लगइन्स लगाना, ऐसे वीडियोस बना देना जो उनकी चीज से मैच कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो या उनका जो भी जिस बारे में भी वीडियो है उससे जुड़े हुए हों। सो दे यूज दिस, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे और बहुत सारे एनिमेशन नजर आएंगे। उसमें फेड इन फेड आउट तो है ही, वेरी सिंपल, बट देन उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है वो भी आपको नजर आएगा। और जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पर जाके उन्हीं टेम्पलेट्स को फॉलो करें, आप अपने खुद से भी मतलब यू कैन ट्राई योर ओन वे, उसे क्रिएटिव वे में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज और उस इमेज को एक पूरा एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत काम किए एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशन जो फ्री टू डाउनलोड हैं और आप उन्हें डाउनलोड करके सिंपली अपने पास रख सकते हैं। इससे ज्यादा आसान कोई चीज हो नहीं सकती। हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ चैनल या फिर एक इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं, बिकॉज जब आपका इंट्रो बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अच्छी तरह से एल्गोरिथम के कंधे पे हाथ रख देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब जरा बढ़ेंगे एक बहुत जरूरी चीज की तरफ जो आपको कोडिंग सिखाएगी। नहीं, वो वाली कोडिंग नहीं जो डिफिकल्ट होती है, आसान वाली कोडिंग आपको सिखाएंगे जो आपके काम आ सकती है। अब कैसे, ये है चीट कोड्स, सुनिएगा जरूर। तो देखिए बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो काम आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी दुनिया भी यूज कर रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारा अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है मामला। ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर इज द चीट कोड्स। गेम्स में होते हैं ना चीट कोड्स, वैसे ही चैट जीपीटी भी होते हैं। अब मान लीजिए आपने अपना फोन जो है वो एक्सप्लोर करना है कि भाई मेरे फोन के कंपोनेंट क्या है, मान लो इसे मुझे खोलना पड़ जाए, मैं खुद कुछ सीखना चाहता हूं, तो यू कैन डू दैट। आपको क्या लगना है उससे, अपने फोन का कोई भी नाम लिख देना। मान लीजिए आपका आईफोन है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसका नाम लिखा, लेकिन नाम से पहले आपको एक चीज लिखनी है, वो है एक्सप्लोर्ड व्यू। एक्सप्लोर्ड व्यू, शुरुआत से बताता हूं, फॉरवर्ड स्लैश डालिएगा, एक्सप्लोर्ड व्यू, प्लोर नहीं, एक्सप्लोर्ड, और उसके बाद अपने फोन का नाम लिखिएगा जो जो मॉडल नंबर है, फॉर एग्जांपल 17 प्रो है, 16 प्रो, व्हाटएवर। तो जब आप ये लिखेंगे उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो वो पूरे के पूरे फोन के कंपोनेंट्स को अलग कर देगा। एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, आपकी आंखों के सामने पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा और वो एक एक चीज आपको बता देगा कि फोन का ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ और ये हिस्सा ऐसे ओपन होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक और आपको चीट कोड देता हूं और ये चीट कोड भी चैट जीपीटी का ही है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको जो है जानना है कि कोई मोटर है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरेटर है, छोटी सी चीज ले लेते हैं, कोई इन्वर्टर है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानना है या कोई मशीनरी जो आप खुद ठीक करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है forward slash sticky notes STICKYNOTES। ये लिखने के बाद जब आप स्पेस देंगे, स्पेस देकर आपको कोई भी मशीन आपके सामने है उसके बारे में पूछ लीजिए और आपको पूरा का पूरा स्टिकी नोट्स के जरिए लाइक अ टॉडलर ये बताएगा। एंड इट इज definitely very very useful, क्योंकि ये काम आता है भाई. आप try करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा. कई सारी चीजें हम खुद भी ठीक करना चाहते हैं पर हमें पता नहीं होता है. तो यही मौका है मैकेनिक बनने का मेरे भाइयों, बहुत काम आएगा आपके. Try this one out and let me know कि if it was helpful for you or not. और बाकी आने वाले जो episodes होंगे उनमें आपको मैं और भी cheat codes बताऊंगा. If you love to know more cheat codes, ऐसे ही ChatGPT के और बाकी AI के भी बताता रहूंगा. Alright? And last में एक खबर. खबर बड़ी सिंपल है. ये है खबर गेमिंग की दुनिया से. मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है. अभी तक एल्डन रिंग का कोई भी तोड़ू गेम उसको कंपटीशन देने के लिए नहीं आया था. लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मॉर्टल शेल इज द एल्डन रिंग किलर. लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत अच्छा गेम है यार, मैं बुरा नहीं कर पाऊंगा. मॉर्टल शेल 2 इज डेफिनेटली अप देयर. मतलब होता नहीं है कि बस भाई वो सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे 19-20 का फर्क होता है, तो यहां पे 18-20 का फर्क है. मॉडल शेल डेफिनेटली रिकमेंडेड ऑन द लिस्ट. अगली बार मिलते हैं जाएगा नहीं टेक अपडेट में. मैं दुहा वाला कबीर दिल से अपडेट.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी हफ्ते के सबसे

0: बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका। मैं हूं फजील और ये शो, ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड हर गुजरते हुए रोज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आप बहुत होशियार हो जाते हैं और आपको पता है कि जमाने में और जगह जगह पे या हमारे दोस्तों को, हमारे यारों को किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह का स्कैम होता है। और आप ऐसे में जब होशियार हो जाते हैं तो स्कैमर्स भी होशियार हो जाते हैं, वो नए तरीके ढूंढते हैं आपको स्कैम करने का, आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का। और आज इसी तरह के एक फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये है टेक सपोर्ट स्कैम, एक ऐसा धोखा जहाँ स्कैमर्स आपको डराकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। आजकल ये फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचना सबके लिए बेहद जरूरी है। कैसे होता है ये स्कैम? अक्सर एक सडन और डरावने पॉपअप मैसेज से शुरू होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है या आपका सिस्टम डेंजरस वायरस से स्लो पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन फोन नंबर दिया जाता है और तुरंत कॉल करने को कहा जाता है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो एक फेक टेक्नीशियन आपसे बात करता है कॉल पे रहते हुए और आपको डराता है। वो आपसे कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर के जरिए देना होगा। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस इन एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं उन्हें, तो यहां पर हो जाता है स्कैम। एक बार जब उन्हें एक्सेस मिल जाता है तो वो आपकी फाइल्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या सिस्टम में रियल मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आखिर में वो इस फेक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपसे मोटी रकम, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, कतरी रियाल, वो डिमांड करते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए? दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इनमें से सिर्फ चार ऐसे तरीकों के बारे में कि इन चार तरीकों को अगर आपने अपना लिया तो ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और बचाव है, कभी भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉपअप किया हुआ मैसेज है जिसमें फोन नंबर है उस पे कॉल ना करें। इवन कई बार आपको ये स्कैमर्स अलग तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, फोन के जरिए भी ये आपसे स्कैम कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको पता है कि कैसे इन स्कैमर से टैकल करना है। आपने फोन किया, हो सकता है कि आपका फोन करना ही ये कोई एक स्कैम हो। तो कभी भी नंबर पे कॉल ना करें। अगर स्क्रीन पर ऐसा कोई वायरस या एरर पॉपअप आए और उसमें कॉल करने को कहा जाए तो उस नंबर पर कभी कॉल ना करें। रियल टेक कंपनीज जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी आपको इस तरह से कॉल करके आपकी परेशानी को हल करना या आपको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। उसके अलावा उस ब्राउजर को फौरन बंद करें। ऐसे पॉपअप्स आने पर तुरंत अपना वेब ब्राउजर क्लोज कर दें। अगर ब्राउजर फ्रीज हो जाए तो Alt F4 दबाएं या टास्क मैनेजर से उसे फोर्स क्लोज करें।

0: उसके अलावा कभी भी किसी अनजान शख्स को रिमोट एक्सेस अपने कंप्यूटर का ना दे। किसी भी अनजान इंसान को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तभी दे जब वो आपका कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय हो, आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, ऐसे लोग जो सच में टेक को जानते हो, कंप्यूटर को जानते हो और आपकी कंपनी में काम कर रहे हो। उसके अलावा हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने जो कलीग है, जो टेक्नीशियन आपके ऑफिस में है, उनसे राबता करें। अगर आपको सच में कंप्यूटर में कोई दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कस्टमर केयर नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मदद लें। एक बार फिर से, कभी भी किसी को कॉल ना करें, जो पॉपअप हुआ मैसेज है उसे क्लोज करें, उसके अलावा किसी को रिमोट एक्सेस ना दें और ऑफिशियल सपोर्ट का हमेशा इस्तेमाल करें। इन तरीकों से आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बच सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में इसी तरह के नए जमाने के नए फ्रॉड पर बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे धुआंधार बल्लेबाज के बारे में जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि ही वॉज बेसिकली अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन। या दोस्तों बात हो रही है क्रिस गेल के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बनती बल्कि क्रिकेट फैंस की यादों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और ऐसी ही एक इनिंग्स वेस्ट इंडीज के अजीम बल्लेबाज क्रिस गेल ने खेली थी। तारीख थी 24 फरवरी 2015, मकाम था ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम। या दोस्तों वेस्ट इंडीज 2015 वर्ल्ड कप में अपना मैच खेल रही थी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दिन क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसी इनिंग्स लिखी जाएगी जो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स में हमेशा याद रखी जाएगी। या दोस्तों क्रिस गेल क्रिस पर आए और फिर जो हुआ वो किसी क्रिकेटिंग स्पेक्टेकल से कम नहीं था। गेल ने शुरू से ही अपने इरादे वाजे कर दिए। उनकी बैटिंग में वही पावर थी जो उन्हें दुनिया भर में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर करती थी। बॉलर कोई भी हो गेल का जवाब एक ही था, इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना। और फिर आया वो लम्हा जिसने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्रिस गेल ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी हाँ दोस्तों 47 गेंदे। वर्ल्ड कप की तारीख में इससे पहले किसी बल्लेबाज ने इतनी तेजी से सेंचुरी नहीं बनाई थी। गेल की सेंचुरी पावर हिटिंग का एक जबरदस्त नमूना थी। हर तरफ बाउंड्रीज, हर तरफ सिक्सेस। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फैंस के लिए ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि गेल रुकने वाले नहीं थे। सेंचुरी के बाद भी उनका एग्रेशन बिल्कुल कम नहीं हुआ। एक तरफ जिम्बाब्वे के बॉलर्स प्रेशर में थे और दूसरी तरफ क्रिस गेल हर ओवर के साथ अपनी इनिंग्स को और भी खतरनाक बनाते जा रहे थे। फिर गेल ने वो कर दिखाया जो वर्ल्ड कप की तारीख में उस वक्त तक किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था, डबल सेंचुरी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप क्रिकेट में डबल सेंचुरी। क्रिस गेल ने 215 रन स्कोर किए, यानी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पर 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और इसी के साथ वर्ल्ड कप की तारीख में डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिस गेल पहले बल्लेबाज बन गए। और उनके इनिंग्स का स्केल समझने के लिए स्कोर कार्ड पर थोड़ा नजर डाल देते हैं। क्या कहते हैं आप, 147 गेंदे, 215 रन, 10 चौके और 16 सिक्सेस यानी ओवर बाउंड्री। जी हाँ 16 सिक्सेस, ये सिर्फ एक बिग स्कोर नहीं था, ये पावर हिटिंग का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें गेल ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और टाइमिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उनके सिक्सेस ग्राउंड के हर कोने में नजर आ रहे थे, कुछ शॉट्स सीधा क्राउड में जा रहे थे और कुछ बाउंड्री के ऊपर से। और हर सिक्स के साथ क्रिस गेल अपने नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जोड़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। उनकी बैटिंग का सबसे खास पहलू था उनका कॉन्फिडेंस। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखने को मिला था क्रिस गेल उस दिन अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन कैनबेरा। गेल को पता था कि अगर वो क्रीज पर सेट हो गए तो बॉलर्स के लिए उन्हें रोकना कितना मुश्किल होगा और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल यही किया। पहले सेंचुरी, फिर डबल सेंचुरी और फिर 215 रन्स। एक इनिंग्स में इतने माइलस्टोन हासिल करना अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। दोस्तों गेल की ये इनिंग्स सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं थी, इस इनिंग्स ने वेस्टइंडीज को भी एक मैसिव टोटल की तरफ पहुंचाया। गेल ने अपनी इनिंग्स के जरिए वर्ल्ड कप क्रिकेट में एक नया स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दिया और उस वक्त वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी का कॉन्सेप्ट ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज था। 50 ओवर क्रिकेट में 200 का स्कोर क्रॉस करना बहुत मुश्किल समझा जाता था लेकिन क्रिस गेल ने इस इम्पॉसिबल नजर आने वाले टारगेट को अपनी पावर हिटिंग से रियलिटी बना दिया और वो भी सिर्फ 147 गेंदों पर।
क्रिस गेल के करियर में बहुत सी मेमोरेबल इनिंग्स रही हैं। T20 क्रिकेट में उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये इनिंग्स उनके करियर का सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में जरूर शुमार होती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्टार प्लेयर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महबश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत एक खूबसूरत बाग की तरह है, जहाँ हर फूल अपनी अलग खुशबू रखता है. इस बाग में मेहमान नवाजी, खानदान, अदब, रिवायत और अपने विरसे से मोहब्बत शामिल है. कतर की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ इमारतों और शहर को देखना काफी नहीं, बल्कि उन रवैयों और रिवायतों को महसूस करना जरूरी है जो लोगों के दिलों में महफूज हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मेहमान नवाजी की. कतरी माशरे में मेहमान को इज्जत देना बहुत कीमती रिवायत है. किसी मेहमान का घर आना खुशी का मौका समझा जाता है. मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम करना, बैठने की जगह पेश करना, कहवा और खजूर से तवाजो करना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इनमें बहुत गहरा प्यार छुपा होता है. कहवा पेश करने का अंदाज भी एक सकाफती पहलू रखता है. छोटे प्याले में अरबिक कहवा पेश किया जाता है और साथ खजूर रखना अपनायत की अलामत समझा जाता है. ये सिर्फ एक मशरूब या खुराक नहीं होता, बल्कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू और राबते का जरिया बन जाता है. एक प्याला कहवा किसी अजनबी को भी मेहमान और फिर अपना बना सकता है. कतर की सकाफत में खानदान को भी मरकजी अहमियत हासिल है. घर के अफराद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, खुशी और मुश्किल में साथ देने और रिश्तों को मजबूत रखने को जरूरी समझते हैं. बच्चे अपने बुजुर्गों से ज्यादा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल है। काफ़ी कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स के दुनिया में, स्पोर्ट्स के दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है और मैं उस पर नज़र रखूँ। एंड आप लोग भी शायद फॉलो कर रहे होंगे, क्रिकेट चली रहा है एंड क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी है। तमाम जितने भी दुनिया भर में लीग्स हैं वो लीग्स भी जारी है और लीग्स के साथ साथ कतर में भी ऑब्वियसली वन ऑफ द लीग्स जो है वो भी सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड तक हम पहुँच गए हैं। और ये स्पोर्ट्स बेसिकली क्या है कि स्पोर्ट्स के तमाम जो अपडेट्स हैं, जो हो रहा है, होने जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करूंगा और आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। और जानने से मुराद एक क्विज ज़रूर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है मेरा। और हमेशा की तरह आप लोगों से मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ोन उठा लीजिए जल्दी से और स्मार्टफोन पे फटाफट अपना जो है नाम और सही जवाब लिखना चालू कर दीजिए। क्वेश्चन आज का ये है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच किस मुल्क के खिलाफ खेला था, यानी टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू कब हुआ था, फर्स्ट टाइम उन्होंने टेस्ट मैच कब खेला था, किसके अगेंस्ट में खेला था, कौन सा मुल्क था जिनके खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला टेस्ट मैच खेला था। दोबारा रिपीट करता हूं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच किस मुल्क के खिलाफ खेला था। आपको सिर्फ बताना है उस टीम का नाम और साल जो है, अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। एंड 666-22-107 पर आप शेयर कर सकते हैं आपका जवाब और सबका जवाब मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा और नाम के साथ, बाकायदा नाम के साथ ज़रूर बताऊंगा और ये लाजमी है। और एंड ऑफ द शो से जस्ट थोड़ा सा पहले आप लोगों से मैं गुफ्तगू कर लूँगा ऑन व्हाट्सएप। आप लोगों का कुछ कहना है स्पोर्ट्स के हवाले से, कुछ बताना है, ओपिनियन है, कुछ राय है, कुछ भी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज टॉप स्पोर्ट्स हाईलाइट हम देखते हैं कि हमने क्या देखा है, क्या सुना है, ये आप लोगों को थोड़ा हम बता देते हैं। और कल एक डेवलपमेंट अब फुटबॉल में हो चुका है, आप लोगों को पता है, एंड अगर फुटबॉल से शुरू कर लेते हैं, चलिए फुटबॉल में एक डेवलपमेंट और वो डेवलपमेंट है लियोनेल मेसी, जो रिटायरमेंट का ऐलान था वो कल शाम रात तक हमारे पास ये खबर जो है पहुंची और इसमें सब लोगों ने कहा कि भाई मेसी को फाइनली रिटायर तो करना चाहिए था और फाइनली वर्ल्ड कप में हार के बाद, स्पेन के खिलाफ हार के बाद आई थिंक थोड़ा बहुत वेट कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। और मैंने 20-25 साल से ज़्यादा हो गया था इंटरनेशनल करियर में अर्जेंटीना के लिए, हालांकि वो क्लब फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे हैं, क्लब फुटबॉल में अपना जारी रखेंगे जहाँ पर वो खेलते हैं इन MLS इन अमेरिका। सो नेशनल टीम के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया है और बस एक चैप्टर क्लोज है, एक लीगेसी जो है उनका जारी रहेगा, न्यू जनरेशन के लिए एक हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे लियोनेल मेसी। और ये एक बिग अनाउंसमेंट, ये बिग न्यूज़ इन द स्पोर्ट्स अरीना, इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ये हमें देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है। बास्केटबॉल, काफ़ी बास्केटबॉल इवेंट्स जारी हैं और बास्केटबॉल में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर्स के

दूसरे राउंड में कतर की टीम को हार मिली और अगेंस्ट जापान टोक्यो में ये मैच हुआ था कल और इस मैच में कतर को हार मिली 29-11 24-23 40-11 30-25 सेट से कतर को हार मिली। और वहीं अगर थोड़ा सा सक्सेस की बात करूं कतरी स्पोर्ट्स की तो कतर के बासे मोहम्मद ने स्विट्जरलैंड में गाला एथलेटिक्स बेलिंजोना चैंपियनशिप के मर्दों के 400 मीटर हर्डल्स रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया और साथ ही गोल्ड मेडल तो उन्होंने जीता ही गोल्ड के साथ इस मेडल के साथ उन्होंने 47.56 सेकेंड्स का वक्त रिकॉर्ड करते हुए अपना नया पर्सनल बेस्ट टाइम भी बनाया। सो 47.56 इज द न्यू रिकॉर्ड फॉर पर्सनल बेस्ट फॉर बासे मोहम्मद जो कतर के हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के शहर में गाला एथलेटिक्स बेलिंजोना चैंपियनशिप में हार्डल्स में गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर हार्डल्स बहुत डिफिकल्ट है हार्डल्स। और वहीं टीम कतर ने अनाउंस किया यानी कतर ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया कि टीम कतर 243 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड के साथ जापान के आइची नागोवा में शिरकत करेगी फॉर द 20th एशियन गेम्स जो कि 19 सितंबर यानी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये एशियन गेम्स जारी रहेंगे। एंड ये एशियन गेम्स में आपको पता है कि तमाम एशियाई जितने भी ममालिक हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर ओलंपिक स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस साल क्रिकेट को यहाँ पर जगह देगी एंड क्रिकेट में ऑल द टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। एंड ये भी देखना है कि इस बार क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल इस तरह के जो क्रिकेटिंग जो टीम्स हैं क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं क्या वो गोल्ड मेडल ले जा पाएगा या नहीं क्योंकि साथ ही साथ मलेशिया भी इज़ ऑल्सो वेरी टफ। मलेशियन क्रिकेट टीम भी है मलेशिया के साथ भी है इंडोनेशिया के पास भी है सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना जाना चाहिए कि क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। अच्छा इंग्लिश प्रीमियर लीग में बता दूं कि ब्रूनो कप्तान जो है ब्रूनो फर्नांडिस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान हैं उन्होंने एक हैट्रिक की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक जीत दिलवाई बहुत ही शानदार जीत और वो भी फाइट बैक जीत इप्सविच टाउन के अगेंस्ट में। एंड ब्रूनो फर्नांडिस को पिछले हफ्ते प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर से अवार्ड से नवाजा गया था एंड इसी के बलबूते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो मोटिवेटेड रहे हैं और उन्होंने एक हैट्रिक किया हैट्रिक की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक अहम जीत दिलवाने में उन्होंने मदद किया। सो दिस इज ऑल द अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन हाँ रुकिएगा जाइएगा मत अब क्रिकेट के खबरें भी हैं लेकिन क्रिकेट का जो सेगमेंट है वो एक ब्रेक लूँगा उसके बाद लूँगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो आप लोगों से शेयर किया ऑलरेडी आप लोग सुनिए गौर से सुनिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच किस मुल्क के खिलाफ खेला था आपको सिर्फ साल आपको कहना है साल बताने हैं और बताना नहीं बल्कि लिखना है ऑन द व्हाट्सएप 666-22107 और किस मुल्क के अगेंस्ट दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट और साथ में अपना नाम जरूर लिखिएगा बिकॉज नाम इज इम्पोर्टेंट एंड लोग कहते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम नो व्हाट्स इन अ नेम नहीं है वो नेम ही नेम है नेम इज इम्पोर्टेंट विदाउट द नेम नथिंग गोज बियॉन्ड एंड फॉरवर्ड। सो एनीवे टेकिंग अ ब्रेक ओवर हियर और स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: Sports Roundup. Sports Roundup with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
1: या दोस्तों, दोबारा आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है स्पोर्ट्स राउंड अप शो में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स की बातें हो रही हैं एंड स्पोर्ट्स में आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर कर चुका हूं मैं। अब क्रिकेट की बारी है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट शुरू करने से पहले क्रिकेट से एक सवाल था आप लोगों के लिए और आप लोगों ने बहुत ही शानदार आप लोगों के जवाब आ चुके हैं एंड आई थिंक यू गाइज आर रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज आप लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं एंड जो स्पोर्ट्स पसंद करता मैं उनको पसंद करता हूँ एंड यू गाइज हैव गॉट एंगेज्ड ऑन FM 107 के स्पोर्ट्स राउंड अप शो में ऑन द व्हाट्सएप नंबर पर और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, ये पता चलता है कि आप देसी हैं, देश के लोग हैं, देश यानी हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उन ममालिक से जितने भी लोग यहाँ पे कतर में मुकीम हैं, आई थिंक क्रिकेट ड्राइव्स यू गाइस एंड क्रिकेट इज सच अ गेम, ये एक पैशनेट गेम है जिसमें हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड एशियन टाउन में मैंने देखा, यू नो, जब भी मैचेस हुए हैं यहाँ पे एंड इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल टीम भी जब भी यहाँ पे खेलने आए हैं, वहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह, इस कदर जो खचाखच भरा हुआ जो स्टेडियम है, वो देखने से यही लगता है कि क्रिकेट रियली इज द नंबर वन स्पोर्ट इन ऑल दीज कंट्रीज। तो यानी सवाल दोबारा मैं दोहरा देता हूँ जिन्होंने भी लेट ट्यून इन किया है FM 107, उन लोगों के लिए मैं एक सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच किस मुल्क के खिलाफ खेला था? आप अगर साल बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों ने, कुछ लिसनर्स ने इतना भी कर दिया है, यानी दे वेंट टू दैट स्ट्रेच एंड दे फाउंड द रिजल्ट एंड रिजल्ट भी शेयर किया है, यानी नतीजा भी शेयर किया है एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोग वाकई इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ, आई ऑलवेज बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्रिकेट सर्किट में। क्रिकेट के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं और पाकिस्तान क्रिकेट, जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 194 रन से हार के बाद पाकिस्तान ये सीरीज तो हार चुकी है, पाकिस्तान टीम की हार हुई है इस सीरीज में 2-0 से, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अब थर्ड टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ न्यू डिसीजंस आउट से कि कुछ ऐसे मेरे लिए तो मुझे लगा कि ये स्ट्राइकिंग एक डिसीजंस है कि आप लोगों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 मेंबर को वापस बुला लिया है एंड टीम के कोच जो थे उनको भी, सरफराज अहमद जो उनके टीम के कोच थे, तो उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बयान के मुताबिक वाइट बॉल कोच माइक हेसन को याद होगा आपको, माइक हेसन ऑस्ट्रेलिया के थे, माइक हेसन के इस टेस्ट टीम को एक संभालने के लिए उनको कहा गया कि इट्स एन एडिशनल

रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, आप इस टीम को संभालिए और आप चले जाइए यू नो इंग्लैंड पे। और इंग्लैंड पर पहुंचे हुए हैं माइक हिसन और इस दौरे पर जाने वाले स्क्वाड से 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है कि वाई दे लॉस्ट सच अ बिग मार्जिन, और वो भी 2 टेस्ट मैचों में बिना किसी कंपटीशन के। एंड इट लुक लाइक अ वन साइडेड गेम फॉर द इंग्लैंड टीम, एंड इंग्लैंड टीम ने काफी मजबूती के साथ देखा गया तो लास्ट टेस्ट मैच में दे बोल्ड आउट पाकिस्तान वेरी वेरी मीगर फॉर 101 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स। और इसी टीम से 7 मेंबर्स को वापस भेजने का फैसला लिया गया है, जिनमें मोहम्मद रिजवान वन ऑफ द एक्सपीरियंस बैट्समैन इन द टीम, इमामुल हक के तो चोट के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको चोट पे ग्रॉइन इंजरी है या कुछ है, सलमान अली आगा, आली उस्मान और खुर्रम शहजाद इसमें शामिल हैं, जबकि इनके साथ आमिर जमाल और मोहम्मद अवस जाफर को भी वापस भेज दिया गया है टू पाकिस्तान। और लास्ट के जो दो नेम्स हैं मोहम्मद अवस और आमिर जमाल, इन दोनों में से किसी ने भी इस दौरे के दौरान एक भी मैच नहीं खेला था। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एक्सपर्ट्स, काफ़ी फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन्स ने इस पीसीबी के इस डिसीजन पर काफ़ी सवालात उन्होंने उठाए कि एक तो रमीज़ राजा को मैं पढ़ रहा था, रमीज़ का ये कहना है कि क्यों इतना भागम भागी, इतना डिस्परेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान टीम इज़ इक्वली ब्रिलियंट, उनको खेलने देते हैं, आप उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट टेस्ट मैच में इस तरह के चेंजेस, इस तरह के रद बदल जिसको कहते हैं कि पूरे टीम के 7 मेंबर्स को अपने वापस बुला लिए, तो पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को आड़े हाथ लिया, यानी दे क्रिटिसाइजिंग देम लाइक एनीथिंग। एनीवे, 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज के जो दूसरे मैच के बारे में अब कहा था, तो इंग्लैंड ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जहां बारिश ही बारिश, आज बारिश कल बारिश, नो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग दिस मैच, स्टिल इंग्लैंड मैनेज्ड टू बीट पाकिस्तान बाय 194 रन्स, एंड बाय दैट, बाय वर्च्यू ऑफ दिस विक्ट्री, इंग्लैंड हैज वन द टेस्ट सीरीज। अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगला टेस्ट मैच कब है एंड पाकिस्तान को किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है। अगला टेस्ट मैच जो है वह सितंबर 9 तारीख से, एंड ये मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान को कुछ अच्छा करके दिखाना होगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पाकिस्तान टीम, बाबर आजम इस नो द कप्तान है, एंड उनमें अब देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्ट अनाउंस्ड एंड हु आर द प्लेयर्स आर गोइंग टू रिप्लेस, हमें पता नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान स्क्वाड में शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, बाबर आजम जैसे मैंने कहा कप्तान है, मोहम्मद इमरान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अली, मोहम्मद गाजी गोरी जो विकेट कीपर हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, अजान हैं, अराफात हैं, साद बैग हैं जो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, एंड उबैद शाह, अब्दुल्ला फजल और रजाउल्ला। काफ़ी यंग टीम है, लेकिन यू नो वी कैनॉट लूज होप, वी कैनॉट से दैट रिजल्ट जो है वो दोबारा इंग्लैंड के खिलाफ, हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ करके दिखाए। एंड विद दिस होप हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, और अगले न्यूज़ में बताते हैं कि पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की मेज़बानी करेगा। दिस इज़ अ न्यू सीरीज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने, और इस दौरान बायलेटरल और ट्राई सीरीज खेली जाएंगी, जिसका ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है। अच्छा, इसके साथ एक और आप लोगों को बता दूँ क्रिकेट के हवाले से, एक और अपडेट, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रभात जयसूर्या बहुत ही नो एज एन अपकमिंग क्रिकेटर, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, उनको कोलंबो टेस्ट में इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के खिलाफ वर्जी करने पर उनके ऊपर डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है। इट्स अ पनिशमेंट फॉर प्रभात जयसूर्या, और इससे ये होता है कि यू नो पहले ICC वॉज नॉट दैट यू नो स्ट्रिक्ट, अब ICC जब से ICC का रोल अदा करना इन्होंने चालू किया कि हाँ भाई क्रिकेट है एंड क्रिकेट को डिसिप्लिनरी अगर मेजर्स लेनी है तो यू हैव टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर ऑल द बॉलर्स बैट्समैन, इवन फॉर द यू नो टीम के कोचेस भी हैं और मैनेजर्स भी हैं जो भी हैं उनको भी पनिशमेंट दिया जाता है, तो वांट टू मेंटेन सम डिसिप्लिन जरूरी हो गया है। एनीवे, मूविंग ऑन टू रीजनल एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, दोस्तों अब जो स्पेन के खिलाफ जो मैच हुआ था आप लोगों को याद होगा एंड द वर्ल्ड कप फाइनल,

अब बहुत पुरानी बात नहीं है, जुलाई 19 को ये फाइनल खेला गया था और वहां पर ये सबको लग रहा था कि अर्जेंटीना को जितवाने के पीछे बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन बहरहाल स्पेन को ये जीत मिली थी। एंड उसके बाद जो मारा पीटी, जो जिस तरह आपने देखा होगा ना बॉलीवुड एक्शन ऑन द पिच एंड जस्ट आफ्टर द फाइनल विसल, और उस मैच को देखने के बाद लियोनेल मेसी ने एक सोच लिया था कि अब नहीं, अब हो गया। 2022 कतर वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही ट्राइड कि अब अर्जेंटीना को दोबारा वर्ल्ड कप टाइटल जितवाए, लेकिन बस दैट वाज अ फाइनल डिसीजन आई थिंक ही मस्ट हैव टुक ऑन द ग्राउंड जब उन्होंने देखा कि अर्जेंटीना मैच हार चुकी है एंड फाइनली स्पेन हैज टू विन दिस, स्पेन वन दिस टाइटल। तो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट मेसी ने डिसाइड किया कि अब इंटरनेशनल फुटबॉल से आई विल टेक रिटायरमेंट, यानी संन्यास लेने की बात करी, यानी अब लियोनेल मेसी को हम अर्जेंटीना के वाइट एंड ब्लू स्ट्राइप्स में हम नहीं देखेंगे। और अर्जेंटीना के एक मारूफ खिलाड़ी है एंड ऑब्वियस बात यह है कि डेफिनेटली डिएगो माराडोना के बाद अगर कोई किसी ने नाम इतना किया है सो वो है लियोनेल मेसी। मेसी के पास ही हैज वन वर्ल्ड कप और 2022 का वर्ल्ड कप और रनर्स अप रहे 2026 में, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2014 में भी जर्मनी के अगेंस्ट में हार के बाद मेसी वॉज इन द टीम। तो मेसी प्लेड फ्रॉम 2006 से लेके 2026, यानी टोटल 6 वर्ल्ड कप्स में मेसी पार्टिसिपेटेड एंड हैज अ लॉन्ग करियर इन फुटबॉल एंड स्टार्टिंग विद बार्सिलोना, PSG, तो बड़े बड़े टीमों के साथ खेलने के बाद आई थिंक मेसी को रिटायरमेंट लेना चाहिए एंड इट्स टू ओल्ड नाउ 39, जबकि वहाँ रोनाल्डो साहब खेले जा रहे हैं। रोनाल्डो साहब के लिए भी एक तरह का इशारा है कि भाई आप कब तक खेलेंगे। एनीवे गुड लक टू लियोनेल मेसी फॉर गिविंग अस सच वंडरफुल मोमेंट्स और फुटबॉलिंग मोमेंट्स, स्किल्स एंड जिस तरह के डिस्प्ले उनका रहा है सब लोगों ने इंजॉय किया है। अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, आप लोगों को पता है। एक दफा आप लोगों को डेट्स बता दूं, 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा और इसमें 48 कौमी टीमें हिस्सा लेंगी। 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेजबान कतर का सामना इजिप्ट से होगा, दैट इज द फर्स्ट मैच ऑफ कतर 22 नवंबर, और अब 2 महीने की बाद ही है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने नहीं 2.5 महीना डायमंडा ले लीजिए, हमें सितंबर, आज फर्स्ट डेट ऑफ सितंबर है। देखते देखते टाइम निकल ही जाता है, वक्त कहते हैं कि नाउ इट फ्लोज लाइक अ वाटर स्ट्रीम, और पानी की तरह बहते हुए जा रहे हैं वक्त, और हमें पता ही नहीं चला कि सितंबर का आज फर्स्ट तारीख है आज। और देखते देखते वर्ल्ड कप अंडर 17 का दोबारा कतर इज गोइंग टू होस्ट दिस लाइक लास्ट ईयर। वहीं अरब गल्फ कप फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि गल्फ कप चैंपियंस लीग 2026-2027 के तीसरे एडिशन की जो ओपनिंग सेरेमनी 9 सितंबर को होगी और टूर्नामेंट 13 अक्टूबर को 30 अप्रैल 2027 तक स्केड्यूल है। दोस्तों टेनिस के बारे में अब बात कर लेते हैं। US ओपन में एक देयर वाज एन हार्ट ब्रेक यस्टरडे, मैंने नोवाक जोकोविच का मैच देखा एंड मैं हमेशा 2 साल से सोच रहा हूँ ये बंदा कब 25वें ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतेगा। दैट्स द वन रिजल्ट, वन ट्रॉफी, वन ग्रैंड स्लैम जो उसको नोवाक जोकोविच के लिए एक रिकॉर्ड होगा, महान रिकॉर्ड अगर कहें, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 25th ग्रैंड स्लैम किसी ने नहीं किया है। और US ओपन के पहले ही राउंड में मारियानो नावोने, अर्जेंटीना मेसी के ही मुल्क के नावोने ने उन्हें हरा दिया, और ये क्या मैच था, 4.5 घंटे तक जोकोविच जो था ही वॉज थ्रोइंग अप, यानी वो उल्टी कर रहे थे, ही वॉज नॉट वेल, मतलब इतना फिट नहीं होने के बावजूद जोकोविच ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाने के बावजूद इस मैच को उन्होंने छोड़ दिया कि भाई अब मुझसे ना हो पा रहा है, और 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 सेट से उन्हें ये हार जो है, ये शिकस्त जो है वो मंजूर, लेकिन उन्हें फाइट किया एंड अगेंस्ट अ यंगस्टर नावोने और अर्जेंटीना के इस नौजवान खिलाड़ी सेकेंड राउंड पे जगह बनाई। और वहीं अगर वीनस विलियम्स की बात करूं, वन ऑफ द लेजेंडरी वुमेन टेनिस प्लेयर, उनका भी आप एज देखिए, उम्र देखिए कि जस्ट अ नंबर, और उन्होंने US ओपन में भी खेल रहे हैं विद अ वर्ल्ड कार्ड एंड वाइल्ड कार्ड में खेलने के बाद भी उन्होंने फर्स्ट राउंड क्रॉस नहीं कर पाए। जो भी है, दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जब आप बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं तो लोग आकर देखते हैं कि देखिए क्या एज है इन खिलाड़ियों की, और इस एज में भी ये खेल रहे हैं, एंड दिस तरह का मोटिवेशन है फॉर द यंगर जनरेशन। आई वुड

appreciate every bit of Venus Williams. पहले राउंड से बाहर हो गई हैं और उन्हें उनकी ही मुल्क सोफिया केनिन ने स्ट्रेट सेट में हरा दिया. Definitely एक होता ना कि यंगस्टर्स के अगेंस्ट में एक यू नो एक वेटरन प्लेयर खेल रही हैं और वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता कभी कभार मेंटेन करना दैट फॉर्म. अच्छा, अभी इंडियन फुटबॉल के हवाले से एक बात कर लूं कि पनामा की कौमी फुटबॉल टीम 26 सितंबर को इंडिया के खिलाफ अवे मैच खेलेगी और ये फीफा इंटरनेशनल विंडो के लिए तयशुदा 3 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस में से पहला होगा. ब्राजील भी इंडिया में, दे आर प्लेइंग ऑन द 3rd अक्टूबर इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ब्राजील नेशनल टीम इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाफ खेलेगी. और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में आप लोगों को बता दिया, लेकिन यहाँ पे चेल्सी ने ब्राइटन को एक सनसनीखेज मुकाबले में 3-4 गोल से हराकर हेड कोच जावी अलोंसो के परफेक्ट स्टार्ट को जारी रखा. नाउ मूविंग ऑन टू क्विकली ऑन द क्विज, और आज का जो ये सवाल था कि श्रीलंका का फर्स्ट टेस्ट, और श्रीलंका का फर्स्ट टेस्ट किसके खिलाफ था, किस साल था, सब लोगों ने मोर ऑर लेस एवरीबॉडी हैज गिवन करेक्ट आंसर एंड अप्लॉज एंड बिगेस्ट क्लैप्स. आई मीन सबके लिए ये मैंने आई वुड से कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू अरबाज खान टू नाम आप लोग थोड़ा सा सबीम, अच्छा मीनल सबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का. और भी किन साहब ने दिया है, आप नाम लिखते नहीं, अवेज खान अजय साहब फ्रॉम मुंबई, एंड उन्होंने भी सही जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का. प्लीज़ आप लोग अपना नाम ज़रूर लिखेगा. इमरान खान साहब, आपके जो डीपी है काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग हैंडसम है, लेकिन नाम यू नो बनता है हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा आसान रह जाता है. आसिफ भी सही जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड और कौन है, काफ़ी लोग आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप स्पोर्ट्स से आप लोग जुड़ जाते हैं तो मुझे काफ़ी इट गिव्स मी लॉट ऑफ यू नो एक तरह से मैं कहूँ कि आई बिकम इमोशनल. अफरीदी साहब, सादात अफरीदी साहब ने भी सही जवाब दिया है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान के क्या कुछ समझ में नहीं आया, एंड 1918 और कौन किन्होंने, रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी सही जवाब दिया है. एनीवे एवरीबॉडी गेव द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1982 ये सही जवाब है. श्रीलंकन नेशनल क्रिकेट टीम का फर्स्ट टेस्ट मैच एवर वाज अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1982. आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और उस टीम में, मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, उस टीम में ऐसे चंद यंग स्टार्स थे, वो बाद में जाके दे बिकेम इंटरनेशनल सुपरस्टार इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जिनमें से एक नाम तो मैं जरूर बताऊंगा, अर्जुना रानातुंगा वाज द कैप्टन ऑफ द 1996 वर्ल्ड कप विनिंग ओडीआई टीम ऑफ श्रीलंका. एंड उस सीरीज में अर्जुना रानातुंगा वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड और फर्स्ट 50 करने का जो एक रिकॉर्ड था श्रीलंका के लिए पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए, दैट बिलोंग्स टू अर्जुन रणतुंगा. एनीवे कीप लिसनिंग टू एफएम 107 और अगली बार स्पोर्ट्स राउंडअप में जरूर आप लोगों से एक और सवाल पूछूंगा. तो कीप लिसनिंग टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. राइट दोस्तों, गुड आफ्टरनून, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हाँ जी दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सरवर नाजिया हम दोनों आ चुके हैं एकदम नए शो में, और नया मंथ और नए शो का आगाज, और पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं, भरते रहेंगे ढेर सारी एनर्जी, बहुत सारी बातें, और आपके लिए अमेजिंग से म्यूजिक भी हमने लाइन अप कर रखा है। एंड यस ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि एक अलग आर में जुड़ने का ये फायदा होता है कि एकदम वाइब जो है ना ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। मॉर्निंग में काम करते करते, मेरा मतलब है मॉर्निंग में आपके साथ जुड़ते जुड़ते एक अलग ही मोटिवेशनल थॉट एंड वो वाली जोन में थी। अब आफ्टरनून आते आते सरवर मिर्जा का साथ है, तो बस अल्लाह रहम करे।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसी हैं नाजिया और कैसे हैं सब लोग? नाजिया कैसा?
1: मैं तो एज ऑलवेज आई एम गुड, एंड नाउ लेट्स सी।
3: ये 3 से 4 महीने
1: अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे गुजरे, मैं बता नहीं सकती। अब पूछिए अगले 4 महीने कैसे गुजरने वाले।
3: अगले 4 महीने के लिए इंशाल्लाह वक्त रहते मैं आपसे पूछता ही रहूंगा।
1: हाँ।
3: और फिलहाल के लिए हम, जैसे कि नाजिया ने बता दिया है कि भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, और इंशाल्लाह ताला अब तकरीबन दिसंबर तक हम आपके साथ हैं 1:30 से 2:30 बजे तक। मेरा और नाजिया का, आपका, हम सबका एक साथ साथ रहने वाला है FM 107 पे। और वही नॉर्मल और पुराने और आसान तरीके हैं हमसे जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम को अपना बनाने के लिए। 666-22-107 मैसेज नंबर है, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 4-4-3-4-4-3-7-7। और प्रोग्राम रहने वाला बिल्कुल वैसे ही है, कुछ मौजू रहेगा जिस पे कुछ बहस होगी, डिबेट होगी।
1: हाँ।
3: जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या सही है क्या नहीं, आपके मशवरे, आपकी राय, आपसे सीखेंगे भी और कुछ बताने की भी कोशिश करेंगे। साथ में साथ इंशाल्लाह ताला गेम भी खेला जाएगा और गेम करा जाएगा। मेरे साथ तो गेम हो ही गया है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मकसद क्या है यहाँ पर। गेम आपके साथ भी करा जाएगा आगे चलते चलते रहते रहते, तो फिलहाल तो यही कुछ शुरुआत होने वाली है।
1: yes.
3: क्या कहती है नादिया, वेदर के साथ तो कुछ शुरुआत कर ली जाए
1: सबसे पहले, क्योंकि आप आ चुके हैं तो मौसम वैसे ही थोड़ा सा जो है वो गर्म हो गया है, परेशान हो गया है, तकलीफ में है, तो मैंने कहा चलिए जैसा जो है लोगों तक पहुँचे। तो
4: वेदर का हाल 107 दे नाल।
1: हाँ जी, तो वेदर का हाल चाल बता दीजिए मिर्जा।
3: बिल्कुल, वेदर का हाल जबरदस्त हो रखा है। 43 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है और फील्स लाइक 50 है, तो फील्स लाइक पे ही हमें जरा सा काम करना है, अल्लाह ताला से बात करनी है। हवाओं की रफ्तार इस वक्त 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और ह्यूमिडिटी है 30% पर। तो ये हवाएं जो तेज हैं, ये 2 दिन, जैसे कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि QMD के हवाले से आज और कल ये हवाएं तेज रहने वाली हैं। तो चलिए साहब, नाजिया का हो गया इशारा और आपकी कॉल ले लेते हैं और वेलकम करते हैं अपने पहले लिसनर को इस नए नए ताजे ताजे शो में। हेलो, सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई?
3: क्या सुन रहा हूँ?
1: ये आपको भी ऐसे ही लगा ना? मैं भी इनकी आवाज और इनका साथ सुन के मैंने कहा अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या सुनूंगी अब एक घंटा,
5: ये क्या हुआ,
1: यही तो रोना है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ तो छोड़िए, मैं कह रही हूँ ये क्यों हुआ।
3: सुनील शेट्टी आ चुके हैं इस वक्त मार्केट में, सुनील शेट्टी से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है नाजिया, ये आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह। करीम भाई हमारे साथ, करीम भाई कहाँ यार,
5: ये कौन से दिन पे आप आ गए हैं सर, क्या बात है?
1: अरे बस पूछिए मत,
3: देखिए भाई
1: का बस ना चढ़े, हड़प ले सुबह दोपहर शाम।
3: घर जाते जाते कुछ आसानी और आराम जरूरी होता है, तो नाजिया इसीलिए तशरीफ ले आई है ताकि आप घर जाते जाते आपको कुछ
1: जो तकलीफ है वो आप तो देते रहे।
5: ये वक्त चेंज होते रहते हैं, फिर तो वही बात हुआ कि

0: आदमी और परिंदे का नसीब एक सा है।
1: वाह।
0: घर चलाने के लिए तकाजा है कि घर ना रहो। आई हाय हाय
2: घर चलाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। ये
1: क्या गिराया है? क्या गिराया शेर को भाई? क्या गिरा हुआ मेरा मतलब है कि क्या मतलब कहाँ उठा हुआ था मतलब गिराया। अच्छा तो कुल मिला के शेर अच्छा हुआ। तो करीम शाह साहब कैसी तबीयत कैसी सेहत और कैसा रहा अभी तक का दिन?
0: अगर जिंदगी में कहते हैं ना जिंदगी में कम लोग रखो मगर ऐसे रखो जिनके सामने दिल के पहरा ना देना पड़े सर।
1: वाह
0: ये शेर आपके लिए था और ये हकीकत शेर नहीं है
2: ये आपके लिए था।
0: जिंदगी में कम लोग रखो
2: इधर तो बात मत कीजिए ध्यान दीजिए।
1: हाँ वाह वाह वाह वाह
0: जैसे नाजिया बहन सर मरोड़ भाई
1: सर मरोड़ सर सर मरोड़ सर मरोड़ दिया आपने तो मेरा
0: दिल को पहरा नहीं देना पड़ता है ना।
1: हाँ बिल्कुल सही सही सही सही फरमाया
2: तो है बिल्कुल सही
1: का। सही फरमाया। तो चलिए भाई अब करीम भाई की आमद हो गई है नाजिया तो आज के मौजू के हवाले से भी इनसे बातचीत कर लेते हैं।
2: हाँ आज का जो हमारा करीम भाई जो टॉपिक है हालांकि वो तो पर्टिकुलरली हमने स्टूडेंट्स को जहन में रख के रखा
1: स्कूल
2: था
1: खुल गए हैं
2: स्कूल
1: और
2: स्टार्ट हो गए पर हमने सोचा क्योंकि हमारे साथ यकीन है कि पेरेंट्स भी जुड़ेंगे और सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो बच्चों के लिए नहीं होती बहुत सारे और ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो है वो पहनी जाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म कल्चर है यू नो एक से सब कपड़े पहन के आते हैं चाहे किसी भी फील्ड की बात कर ले एक्स वाई जेड तो आपको क्या लगता है क्या ये सही है ये होना चाहिए या फिर आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए?
0: देखो ये चीज अगर नहीं होगा तो फिर दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म जो है वो निजाम चलाने के लिए जरूरी है। तो अगर आपने यूनिफॉर्म रखना ही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस काम का है वो किस काम का है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो सेवाएं आपके जो आप उना रहे बाकी जितने लोग आएंगे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
2: तो मतलब तो आप कहते हैं होना चाहिए पहचान बन जाती है उस प्रोफेशन की उस
0: नाइन्टी परसेंट उसका मदद करता है। अभी फर्ज करें हमारी कतर में यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं काफी सारे जगहों में हम लोग जा रहे हैं तो हमारे को जो सबसे पहले नजर पड़ता है यूनिफॉर्म पे पड़ रहा है।
1: ये हुई बात बिल्कुल सही।
0: तो हमारे जो मसले होते हैं ना 99.9% हल हो जाते हैं। जब कहीं पे हमें यूनिफॉर्म वाला बंदा नजर नहीं आ रहा तो हमारे जो 100% जो प्रॉब्लम है वो 120 हो जाता है कि अरे भाई अभी मैं किसको ढूंढूं किससे पूछूं। अच्छा आम बंदे से बंदा गवारा भी नहीं करता कि यार इससे मैं पूछूं पता नहीं बुरा माने पता नहीं कैसे माने। तो ये यूनिफॉर्म वो चीज है जो हमारे मसलूम है जो उम्मीद हमारी होती है जो हम यूनिफॉर्म को देखते हैं तो हम कहते हैं कि चलो भाई बंदा मिला आगे हमें उम्मीद हो जाता है कि चलो हमारा काम हो देर से हो लेकिन हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम कहेंगे यार अब उधर जाके बंदा मिल ही नहीं रहा है यार तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कभी कभार होता भी है ना लाइफ में के बंदे का हो। तो ये यूनिफॉर्म तो जरूरी है चाहे वो कोई भी काम हो दुनिया का अस्पताल से लेके अस्पताल तक मेडिकल से लेके मेडिकल तक।
2: Nice.
0: ये चीज तो बड़ी जरूरी है ये नहीं
1: भाई वाह वाह वाह वाह क्या बात है करीम भाई बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और बड़ा अच्छा भी लगा।
2: कहीं ना कहीं उन्होंने वही इक्वालिटी को हाईलाइट किया कि भाई एक इक्वालिटी का एहसास होता है फिर चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो या कोई और भी प्रोफेशन हो जहाँ जहाँ यूनिफॉर्म्स पहनी जाती है और आप इमीजिएटली उस बंदे या बंदी को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कितनी बड़ी आसानी है। हाँ ये बहुत बड़ी आसानी है।
0: इंसान चाहता भी इंसान आप लोगों को पता है मैं माजरा चाहता हूँ आपकी बात मैंने रोक ली। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत बेहतरीन मौजू आप लोगों ने लाया कि मैं कहता हूँ कि इससे बढ़कर बड़ी मौजू है ही नहीं। यानी इंसान के अंदर एक चीज है कि वो हमेशा आसानी चाहता है यानी एक चीज चाहता
1: है। वाह वाह वाह वाह वाह करीम भाई जबरदस्त मजा आ गया और बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी पहली कॉल आई और आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: आई थिंक बहुत टाइम के बाद आपसे मेरी बात हुई है।
1: बिल्कुल 2 बजे से हम लोग गेम भी खेलेंगे प्रोग्राम के अंदर तो उसमें भी जरूर शिरकत कीजिएगा।
0: जरा मसला ये था ना मेरा भी टाइमिंग इधर उधर हुआ था तो अभी इंशाल्लाह बड़े प्यारे टाइम पे मैं आ गया हूँ।
1: चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: अल्लाह आपको खुश रखे बड़ी मेहरबानी
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
2: अल्लाह हाफिज
1: एंड फॉर नाउ।

0: हाय हाय करण औजला नेहा कक्कड़ एक दूसरे का साथ निभाते हुए
1: हाय हाय तो आपके लिए हाय हाय हाय
0: साथ तो हम भी निभा रहे हैं
1: हाय हाय
0: एंजॉय कीजिए ट्रैक सरवन और नाजिया आपके साथ डोंट लियो एफएम 107
1: दिल से

0: कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन। तो बिल्कुल साहब, इस वक्त हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वेदर के हवाले से बात हो रही थी तो मैं मजीद बता दूं कि सितंबर में कतर का मौसम धीरे धीरे बेहतर होगा और होता ही चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। बारिश के इम्कान भी बनेंगे नाजिया, कहीं ना कहीं देखा जाएगा, आपको थोड़ा सा खींच के लानी पड़ेगी बारिश। वैसे QMD ने कहा है, ये बता देता हूँ,
2: कतर
1: मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक सितंबर के दौरान कतर का मौसम आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो होना शुरू हो जाता है। मतलब गर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो हवा में नमी बढ़ने और बाज़ औक़ात गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान भी बन जाते हैं। QMD ने सितंबर को गर्मी और सर्दियों के दरमियान ये एक बेहतरीन मौसम बताया है जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आने लगती हैं। हाँ, अगर मानसून आ जाए तो फिर बात ही अलग है। इस दौरान बादलों की जो हालत है वो आने जाने वाली रह सकती है। हवाएँ आज हमने आपको बता ही दिया है। मज़ीद

0: आप करते थे जब आप छोटे थे या आपकी मम्मा ही करती थी?
1: मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे ना सिखाए थे। आई थिंक आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड में था जब मुझे सिखाए थे। तो हम लोग क्या करते थे, यानी कि मजा आता था कि भाई हम लोग का व्हाइट शर्ट रहता, तो हम लोग क्या करते थे उसके ना शर्ट के पीछे डिजाइन बनाते थे, कभी है ना स्टार बना दिए, कभी इस तरीके करके ना शर्ट के एंगल्स को टर्न करके ऐसा है ना, बहुत सीखे। तो कभी भी शर्ट पहन ली जाते तो बोलते यार शर्ट के पीछे डिजाइन कैसा बना के गए, यानी कि आप क्रॉस करके लाइन मार दिए, फिर अलग क्रॉस करके लाइन मार दिए। यूनिफॉर्म जब स्त्री करते है ना उसका मजा ही कुछ, क्यों एक प्रॉपर लाइन बनती है उस पे।
2: लाइन में रहना आपने यूनिफॉर्म से सीखा एक्चुअली?
1: मैं स्कूल यूनिफॉर्म से ना मुझे बहुत मजा आता था,
0: कहते मैंने डिसिप्लिन सीखा है।
1: अब इतना मजा आ गया कि शादी के बाद वाइफ देख ली, वाइफ एक पर स्त्री किए तो पॉइंट पे दो लाइन आ गए। मैं बोला नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो अभी 25 साल से मैं स्त्री कर रहा हूँ, अभी तक समझ भी नहीं है बताने में कहाँ तक पहुँचा।
2: अच्छा हुआ उसके बाद आपके ऊपर कितनी लाइनें आई आपने ये नहीं बताया अकरम भाई।
1: हाँ मुझे अब आज मुझे याद आ रहा है किया था, तो अभी तक वो मेरा अभी तक मैं स्त्री कर रहा हूँ।
2: ये घर पे यही स्त्री करते हैं, कोई और नहीं करता।
1: बच्चों के यूनिफॉर्म स्त्री करते तो समझ में आता है कि भाई हाँ आज मम्मा ने स्त्री किया, ओ समझ में अब्बू नेक्स्ट टाइम जरा आप कर दीजिए।
2: वेरी गुड, वाह कला है भाई के पास।
0: यहाँ पहले फादर निकले हैं जिन्होंने आके यहाँ पे ये कन्फेस किया कि भाई मैं हूँ जो मैं आयरन करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी फादर जो है वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सरवर मिर्जा तो कभी नहीं ले सकते, सोच ही नहीं सकते।
1: नहीं देखिए आप अगर आप सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, हटके है ना, आप घर का काम करना है, कचरा फेंकना है, सरी बच्चों के हर चीज में हेल्प कर रहे हैं।
2: बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, जबरदस्त अकरम भाई,
0: अमल कीजिए। अच्छा मत कहिए सर,
2: बहुत अच्छे बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। थैंक यू सो मच भाई,
0: थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अल्लाह हाफिज। तो यहाँ हमारे साथ अभी तक दो कॉलर्स जुड़े और अभी दोनों का ये मानना था कि यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को तो हम जनरली यूनिफॉर्म की साथ जोड़ ही लेते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो क्या आपको लगता है ये ठीक है कल्चर, या डू यू बिलीव कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बंद जाते हैं या बोर हो जाते हैं या वो इंटरेस्ट नहीं आता ना हर रोज एक से कपड़े पहन पहन के जाना, तो एक इंटरेस्ट एक चार्म।
2: तो भाई अभी कुछ मैसेजेस हैं नादिया, वो ले लेते हैं, उसके बाद कॉल की जाने फिर चलेंगे। आज मेरा डे ऑफ है लेकिन इस एंट्री के लिए ड्यूटी के लिए निकला हूं और इस एंट्री का अब तक वेट किया। बेस्ट जोड़ी नादिया एंड सर्वर भाई, टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक घंटा, मुझसे पूछिए आप। ओके सर्वर भाई मोस्ट एनर्जेटिक मैन कहते हैं बहुत।
0: अरे भाई अब देखिए ना माशाल्लाह
2: एनर्जी खा रहे हैं तो एनर्जी भी होगी। मैं खुद कह देता हूँ दिलावर थे हमारे साथ। ओके कहते हैं सलाम, ये मौसम अभी जबरदस्त है।
0: हाँ अभी तो आज अच्छा है मौसम, आज हवा भी काफी चल रही थी।
2: ओके वॉइस नोट है, कहते हैं कहाँ से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, प्लीज डोंट गिव हार्ड टाइम टू अवर लिटिल चैंप मिस्टर सर्वर भाई। नाजिया मैडम जी टुडे मॉर्निंग आई मिस यू योर गेम प्रोग्राम। कौन है?
0: ये मकसूद
2: भाई है।
0: अच्छा मकसूद हमारे साथ।
2: ओके ओ बड़ा चौड़ा लंबा लेटर है यहाँ पर, तो इसको मैं पहले पढ़ लेता
0: हूँ। लेटर डे भी है उसके साथ,
2: लेटर डे उसी हिसाब से भेज दिया उन्होंने आज। यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। इसका रीजन ये था कि सबसे एक क्लास डिफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना नजर आए,
0: यूनिटी
2: एंड दैट्स हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो एलिमिनेटेड एंड लर्न्ड फ्रॉम स्कूल्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द शेप एंड शेप द हम्बल पर्सनालिटीज आल्सो टू सम एक्सटेंट। डिसिप्लिन कम्स विद यूनिफॉर्मिटी, सोशल क्लासेस एंड स्टेटस इज ऑब्वियस, विदाउट यूनिफॉर्म एंड पर्सनल स्टैंडर्ड कैरीड फॉरवर्ड टू स्कूल, खुले हुए बाल, एक्सपेंसिव गैजेट्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग गोइंग इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। आई टोटली डिसएग्री, दिस इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे। फौजिया है हमारे साथ।
0: बहुत ही अच्छा मैसेज फौजिया, और आपने सारी बातें कह दी। आई थिंक जितनी भी हम सबके जहन में थी वो सारी की सारी आपने कही। बट बिफोर वी इंडल्ज इन यू नो, अभी हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कौन है हमारे साथ?
3: हम ना बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, बच्चों का प्रोग्राम कब शुरू
2: होगा? ये बच्चों का ही तो प्रोग्राम है।

0: कंक्लूड नहीं किया सर,
1: अभी हम करेंगे
2: इंशाल्लाह। सर भाई ने तो 3 महीने उल्टी गिनती खिलवाई, आप नादिया आप ही आई है तो गेम तो चेंज होगा ही, सही बात है। अब मैं समझ गया कि गलती कहाँ हो रही थी,
1: अब सीधी होगी सीधी।
0: देखा अब
2: सर भाई, हम लोग समझ गए आपकी गलती कहाँ हो रही थी। सर्वर भाई आपने खाली बिरयानी और बारबेक्यू पे ध्यान दिया।
0: इनका सारा फोकस वहीं लगा हुआ है।
1: चलिए साहब,
0: हम कह रहे सीधी कर लो, ये फिर उल्टी ले जा रहे हैं।
1: मेरा फोन बंद है, वो टाइमर खोल लीजिए ना, ना दिया अच्छा। अपने मोबाइल में
0: ठीक है,
1: तो इनका टाइम जितना रहेगा वो हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हुसैन भाई। ओके तो हुसैन भाई, चलिए 586 से 576 चलते हैं उल्टे।
2: 586 से 576
1: ठीक है
2: जी, ठीक है।
1: चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 586, 584, 583, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582, 582
0: अच्छा खासा आप अच्छा बोल रहे थे।
1: कहाँ चला गया था?
2: वापिस फिर से मैं 80 में चला गया था, मुझे 79 में जाना था।
1: चलिए
2: छोटा सा
1: ब्रेक ले रहे हैं और यूं गए और यूं वापस आए हम दोनों।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check. हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ना जी आर सर्वन और नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 2:04। आप सबको वापस से वेलकम कहेंगे शो में जिसका नाम है एनर्जी आर, और एक परफेक्ट से आफ्टरनून को आपके किस तरह से एनर्जी से भरना है वो हमने और सर्वन ने डिसाइड कर रखा है। तो फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हाँ जी,
3: कैसे हैं गावा भाई?
1: कैसे हैं
2: सर्वर भाई? हाल का मैं मौसम के साथ जोड़ दूं?
3: हाँ, अरे और इससे अच्छी बात क्या है, मिलावट तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं, इसमें क्या नया होगा।
2: 24 कैरेट की मिलावट है।
3: और क्या, तो क्या कह रहा मौसम और हाल?
2: देखिए सर्वर भाई, जिस हिसाब से सुबह से हवा चल रही है ना, और जैसे ही 1:30 पे आप लोगों का शो शुरू हुआ एनर्जी आवर,
3: एनर्जी आई
2: नहीं आई? मानिए,
1: हवा भी रुक
2: गई। यकीन मानिए, इस शो के जो दो इंजन है ना, सर्वर जी और नारिया जी, आप दोनों ने भाई उस हिसाब से थ्रस्ट पैदा किया है ना,
3: वाह,
2: कि यात्रा में सफर करने का मजा ही आएगा।
1: यात्रा ना जाए लोग।
3: दो तरफ होता है इंजन ट्रेन का, एक पीछे होता है एक आगे होता है, दोनों तरफ से खींचा जाता है।
2: की बात कर रहा हूँ,
3: दोनों तरफ से खींचा जाता है, समझ रहे?
1: नहीं, ये तो ट्रक के इंजन की बात कर रहे थे।
2: आप दोनों ने जिस हिसाब से आज शुरुआत की है ना
3: जी,
2: यकीन मानिए सर्वर भाई, बहुत सारी जर्नीज होती हैं जो बहुत शॉर्ट होती हैं, मगर बहुत मेमोरेबल और बहुत अच्छी होती
3: है। कैसा, क्या बात है यार। और वाकई नहीं, मुझे वाकई सफर याद आ गया। खैर ये टॉपिक नहीं हमारा आज का। यूनिफॉर्म के हवाले से क्या कहते हैं गावा भाई?
2: यूनिफॉर्म तो सर्वर भाई होनी ही चाहिए,
3: होनी ही चाहिए।
1: जी, सबसे बड़ी बात हर रोज क्रिएटिविटी और जो एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो कहीं ना कहीं हल्का सा शेकी हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं,
2: नहीं बच्चे के हिसाब से या ओवरऑल? सभी
1: ओवरऑल भी और बच्चे भी आ गए उसमें, सबकी बात कर लेते हैं चलिए।
2: नहीं नाजिया जी, देखिए जब हम लोग काम रोज कर सकते हैं, रोटी रोज खा सकते हैं, तो यूनिफॉर्म ना पहनने का ये तो मैडम कोई बहाना नहीं हुआ।
1: ये आपके हिसाब से मैंडेटरी होनी चाहिए और नहीं तो बहाना है, ये तो ठीक
2: जी। और मैडम जो छुट्टी होती है और वीकेंड होता है वो तो बंदे का अपना होता है ना।
1: सही। और ये बात भी है, स्कूल्स में तो खैर ये होता भी, एक दिन आपका जो ना कैजुअल ड्रेस डे समथिंग लाइक दैट, ऐसे होता है कि कलरफुल ड्रेस समथिंग, तो वो बच्चों को वहाँ पे भी क्रिएटिविटी दिखाने का या अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है, बट अदरवाइज यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, और नॉट ओनली कि स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। और
2: जी आप आईटी सेक्टर में भी देखिए ना मैडम, जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं उन्होंने सब कुछ दिमाग में रख के, सबसे ह्यूमन को सबसे पहले ही दिमाग में रखा जाता है ना। आप बहुत सारी कंपनीज देखिए जहाँ पे वीकेंड पे आप ट्रेडिशनल डाल सकते हो, कोई फेस्टिवल है उस पे आप ट्रेडिशनल डाल सकते हो, तो ऐसा तो मैडम कोई है नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शन है ऐसी। गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क है, वहाँ पे तो फिर बंदे को वो तो कंपलसरी है ही,
1: कंपलसरी है और होना भी चाहिए, उसके उससे पहचाना जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा बंदा निकल के नहीं आया जिसने कहा कि नहीं ड्रेस या यूनिफॉर्म
3: मेरे
1: नहीं होनी
3: चाहिए। उम्र भी इसका एक बड़ा फैक्टर होता है शायद, अगर कोई कम उम्र या स्टूडेंट हमसे बात करे तो उनको तो आजकल बर्दाश्त नहीं हो रही है यूनिफॉर्म, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल गावा भाई क्या कहते हैं, गेम खेलने के लिए रेडी?
2: गेम नहीं सर भाई, मैंने एक बात और करनी थी। नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं खराब करना, टाइम पहले ही कम है।
3: हाँ नहीं, टाइम तो इसी में गुजरेगा।
2: मेरे को नहीं, मेरे को एक चीज बताओ सर्वर भाई।
3: दो
2: देखो, आप और नाजिया जी दोनों नो डाउट बिल्कुल जबरदस्त आरजे हैं, सॉलिड आरजे हैं, ठीक है? और आप दोनों में कैपेसिटी है 3-3 घंटे का शो सिंगल हैंडल करने की,
3: तो ये क्यों जुल्म हुआ है?
2: ये लॉजिक नहीं समझ आया अभी आप दोनों,
3: असल में हम दोनों भी समझ रहे हैं अभी, हम भी समझ रहे हैं और समझते समझते देखते हैं कितना वक्त गुजर जाता है।
1: जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही बताएंगे
3: यार, असल में हाँ मतलब अभी हम भी समझ रहे हैं, गाड़ी का इंजन गर्म होते होते चलते गर्म होता है, इतने देर में स्टॉप आ जाता है, तो ये हमें भी अभी समझने में टाइम लग रहा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला खैर होगी।
1: सारी चीजें हम एक घंटे में किस तरह से कवर करेंगे,
2: देखेंगे नहीं मैं सर्वर भाई, रीजन पूछ रहा हूँ आपसे, भी आप दोनों ही सिंगल तीन तीन घंटे का शो हैंडल कर सकते हो? एक घंटे का शो वो भी आप दो जने,
3: एक्चुअली परफेक्ट आर्जे। क्या होता है कि वो शफल हमारे यहाँ होता ही होता है ना सीजन के हिसाब से, तो हर किसी से
2: शफल होता है, आई एम एग्री सर्वर शफल होता है, आई एम एग्री, बट सर्वर भाई यार एक घंटा वो भी आप दो आरजे यार, वो भी दोनों ही सॉलिड आरजे।
1: नहीं हम लोग तय किया था कि 15 मिनट इन करेंगे, 15 मिनट बाकी के हमारे 15-20 मिनट लिसनर्स के रखेंगे और 5-6 मिनट के गाने वाने कर लेंगे जिस हिसाब से सेटिंग करेंगे।
3: गाना शायद चल जाए, इससे हो गया भी एक और
1: शायद एक और।
3: चलिए भाई, बहरहाल गावा भाई हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बात, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह
2: तआला आगे भी आप उस बात पे आना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा, कोई मसला नहीं है सरवर भाई।
3: ऑलराइट गावा भाई, शुक्रिया,
1: थैंक यू,
3: हैव अ नाइस डे।
1: हमारी
3: आपके अंदर एनर्जी भरते हुए बिल्कुल कनेक्टेड है,
1: पानी भर लीजिए,
3: बिल्कुल कनेक्टेड है, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम सर, साहिल आजमी।
3: साहिल आजमी?
4: यस सर।
3: अहलन वसहलन, कैसे हैं साहिल भाई?
4: सब ठीक है सर। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, सो मुझे इतना आइडियाज नहीं है कि वो क्या टॉपिक चल रहा है उसमें, बट आई एम श्योर कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा।
1: ओह यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की और यूनिफॉर्म कल्चर की, स्टूडेंट्स हो या दूसरे प्रोफेशंस में भी जो यूनिफॉर्म्स होती है उसे आप कहाँ तक अच्छा समझते हैं, क्या आपको लगता है ये होनी चाहिए यूनिफॉर्म्स या नहीं होनी चाहिए?
4: डेफिनेटली होनी चाहिए मैम, बिकॉज़ विदाउट यूनिफॉर्म वो सिमिलरिटी, इक्वालिटी और रिलीजन वो सारी चीजों को परे करती है यूनिफॉर्म जो होती है। और दूसरा चीज की जैसे हमारे बचपन में हम लोग होते थे तो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं था, हम लोग क्लास बंक भी कर देते थे,

0: अच्छा, आपके स्कूल बंक में कर देते थे?
1: नहीं, तो हम लोग स्कूल बंक कर देते थे, तो वो चीजें भी जो है वो पता चलता है कि स्टूडेंट है और किस स्कूल का है, आइडेंटिटी
0: है। ट्रू। अच्छा, वैसे बड़ा रेयर ये सुनने में आया मुझे कि कोई स्कूल था ऐसा जहाँ पे यूनिफॉर्म कल्चर था ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे नहीं सुना। जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ
1: हम लोग जिस तरह से रूरल स्कूल से आए हैं, वहाँ पे तो टेबल कुर्सी भी नहीं था, तो हैरत वाली चीजें क्या है, 5 तक तो छत भी नहीं था।
0: अच्छा।
1: तो वो बहुत यूपी में बहुत बैकवर्ड एरिया से हम लोग आते हैं।
0: कहाँ से हैं आप यूपी में?
1: आजमी है तो आजमगढ़ से।
0: आजमगढ़, अच्छा, उसका भी कोई और रूरल एरिया है?
1: जी, वहाँ से भी वो अंदर होता है, तो बहुत सारी जगह अभी भी इंडिया में इस तरह की चीजें हैं, या हम लोग जो कंट्रीज है इंडिया, जो एशियन कॉन्टिनेंट है, तो बहुत सारी जगह इस तरह की है कि बहुत बैकवर्ड है। अच्छा है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए?
0: होना चाहिए, आपके हिसाब से होना
2: ही चाहिए। चलिए साहब, तो साहिल भाई अब गेम खेल लेते हैं जल्दी से, उल्टी गिनती खेल रहे हैं हम। नादिया घड़ी को रेडी कर लीजिए।
0: उन्होंने की अब आप उल्टी गिनती में आ गए।
2: तो चलिए साहब, 543 से 533 जाना है आपने, उल्टे
0: नहीं जाएंगे।
1: 543 से 533
2: जी बिल्कुल। नादिया रेडी?
0: पहले तो पूछिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
2: जाएंगे जाएंगे, जबरदस्ती भेजेंगे। जाएंगे तो
0: कह रहे जाएंगे, अब आए हैं तो जाएंगे।
2: तो बताइएगा जब।
0: चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: 543, 542, 541, 540, 539, 538, 539, 536, 535, 534, 535.
0: Oh my God, ये तो 9 उसमें कर लिया सेकंड्स में।
2: वाह,
0: क्या बात है, पूरे 10 सेकंड्स में।
1: हिंदी स्कूल से आए मैम हम लोग।
0: ये तो बड़ा मतलब सॉलिड इन्होंने खेला, और इतनी तेज, ना जबान इनकी ट्विस्ट हुई ना कोई मसला। वाओ, कमाल है भाई।
1: हमारी जबान ही
0: अब समझ में आया कि स्कूल चाहे जैसा भी हो, बच्चे में अपने खुद में अगर कैलिबर है,
2: हुनर होना चाहिए,
0: हुनर हो, अगर टैलेंट है, तो वो हर तरीके से अपनी पहचान और जगह बना लेता है।
1: मैम बताते हुए लगातार 8 साल स्कूल टॉपर रहा हूँ।
2: वाह,
0: अरे ये तो बताना चाहिए सर्वर भाई को, शर्माएगी।
1: वाह, बीबीसी से काम करके आया हूँ, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी नेस्ले में काम करके आया हूँ, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पैशन है मेरा।
0: वाह,
1: और दुबई जैसे कंट्री को छोड़ के 13 साल बाद कतर में आया हूँ, और यहाँ पर भी एंजॉय कर रहा हूँ, जबकि इतने गर्मी वाला सीजन है, फिर भी मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। गर्मी है कि ठंडी है, मुझसे क्या
2: फर्क पड़ता है। क्या बात है, खाने पीने का शौक नहीं है आपको?
0: नहीं नहीं, उनका उनको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए प्लीज।
2: साहिल भाई, खाने पीने का कुछ शौक नहीं है?
0: नहीं, उतना नहीं है, जितना काम लाइफ चाहिए उतना खाते हैं।
2: बता ही नहीं रहे, वो तो बोल ही नहीं रहे।
1: ग्रिल बिरयानी मुझे बहुत पसंद है।
0: ग्रीन कलर
1: मुझे, ग्रिल मंदी? नहीं नहीं नहीं, ग्रिल मंदी मुझे बहुत पसंद।
2: वाह,
0: अच्छा, मैंने कहा कि ग्रीन कलर की अलग बिरयानी, सर्वर मिर्ज़ा तो ब्लैक खाते हैं।
1: नहीं नहीं, हम लोग तो बस बहुत सादे लोग हैं मैम।
0: नहीं नहीं, लेकिन आप सादे नहीं है बहुत माशाल्लाह,
1: बट बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है।
0: और
1: सच में मैं तो बहुत थोड़ी बार स्टार्ट किया हूँ रेडियो, बट जब भी करता हूँ मैं 107 पे ही रहता हूँ, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े जब जब आपको टाइम मिले।
2: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।
1: एक शेर बोलूंगा मैं।
0: हाँ प्लीज।
1: इस गेम के ऊपर बोलूंगा, ठीक है, जो गेम आप लोगों ने अभी कराया है। अब हवाएं तय करेंगी जिंदगी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।
2: वाह, क्या बात है। अच्छा। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, थैंक यू सो मच।
0: जबरदस्त। नीले नीले शुरू हो गए।
2: अब नीले पीले तो होना ही है नाजिया, आपके साथ है तो। वैसे मैं लाल भी हूँ, अपनी अम्मा का तो हुई। एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त सर्वर और नाजिया आपके साथ, ओनली ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर
1: एनर्जी आर
0: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी
2: Right guys, welcome back. A very good afternoon. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 2:18 on the clock and we are connected to one caller. चलिए बात कर लेते हैं. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कौन है हमारे साथ?
3: जी मेरा नाम अकरम खान है.
4: अकरम भाई
2: अभी जुड़े थे वही वाले अकरम भाई?
3: नहीं नहीं नहीं मैं शायद रेडियो कतर उर्दू में दूसरी बात कर रहा हूँ.
4: क्या बात है भाई, एहलन वसहलन.
2: माशाल्लाह
4: आप तशरीफ लाए, ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छा भी लगा. कैसे हैं अकरम भाई और कहां से ताल्लुक है आपका?
3: मैं नेपाल से हूँ, इंडस्ट्री एरिया में रहता हूँ नेपाल.
2: ओ माशाल्लाह, चलिए जी जबरदस्त. वैसे तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म को लेकर है. आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी मैं सुन रहा था. यूनिफॉर्म तो इम्पोर्टेंट है जो है. अच्छा. हमारे हिसाब से तो यूनिफॉर्म डिसिप्लिन जो है मेंटेन करती है, तो इसलिए लाजिम जो है हमें जरूरी
2: है. बहुत सही कहा, डिसिप्लिन भी कराती है
3: जी. चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कंपनी हो कहीं भी हो, लाजिम हमें उसको फॉलो करना चाहिए.
2: और हमें एक एहसास होता है कि हम इस स्कूल या इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं. तो बिल्कुल सही.
4: भाई वाह क्या बात है अकरम भाई.
2: लाइनर लाइन लेकिन आपकी बहुत ही अच्छी बात है.
4: तो गेम खेलने के लिए रेडी?
3: जी जी जी.
2: ऐसा लग रहा है दो टास्क हैं, पहले इधर बताइए फिर उधर जाइए.
4: दोनों ही चीजें बराबर करनी पड़ेगी. तो 523 से 513 जाना है आपने वापस?
2: हम नहीं जा रहे.
3: 523 से 513
2: मना कर दीजिएगा. नहीं हम नहीं जाएंगे.
3: जाएंगे
4: भाई खेलने आए हो इसी बारे. तो चलिए नाजिया बताइएगा कब टाइम शुरू हो रहा है.
2: आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
3: 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 512.
2: Oh my God, again, ये 10 seconds में complete किया इन्होंने.
4: अच्छा जाना 13 तक था, दो एक्स्ट्रा दे गए हमें keep the change करके.
2: तो इस हिसाब से दो पीछे हो तो 8 हुए इनके.
4: हाँ 8 सेकंड दे देते हैं.
2: 8 सेकंड. ओ बाप रे, साहिल उनका था 9 का, इन्होंने उनसे कम टाइम में किया complete. क्या बात है भाई,
4: जबरदस्त.
2: अकरम जी छा गए आप तो, जबरदस्त. आपने 8 सेकंड्स में कंप्लीट की है काउंटिंग, बहुत ही जबरदस्त. और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया
4: कि आप हमारे साथ जुड़े.
3: वेलकम वेलकम,
4: बहुत बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू जी, और आगे भी जुड़िएगा. हाँ ठीक है.
4: तो भाई ये थे अकरम भाई हमारे साथ, और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं. कॉलर भी ज्वाइन करेंगे जरूर. और यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाजिया जी और सरूर भाई कैसे हैं आप दोनों?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
4: वेल. वेलकम टू एनर्जी आर और ट्यूजडे आफ्टरनून सबको विश करते हैं. कहते हैं नंबर 1 जोड़ी ऑफ एफएम 107. अच्छा लग रहा है आप दोनों को फिर से सुन के एक साथ. लास्ट ईयर ये शो 11 बजे से होता था, तो इस बार 1 बजे क्यों? ये टाइम पे बच्चों का शो हुआ करता था. सही कहा कि 1 घंटा काफ़ी नहीं है ये शो के लिए, लास्ट ईयर 2 घंटे का था ना. मेरा जवाब ये है कि स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए लेकिन सिंपल एंड अफोर्डेबल, विच मस्ट बी अवेलेबल ईजली इन द मार्केट फ्रॉम एनी शॉप, नॉट ओनली इन द स्कूल डेजिग्नेटेड शॉप्स.
2: दिस इज आल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट. ये नहीं है क्योंकि फिर उनकी अपनी मोनोपोली हो जाती है, अपने प्राइसेस होते हैं, फिर आप बाउंड हैं. बट है ऐसा मसला कि बाहर नहीं अवेलेबल होती.
4: अस्सलाम वालेकुम सरवर, नहीं सर, कैसे हो सर? आप नाजिया मैडम के साथ पाउच अच्छे लगते, बहुत कहना चाहते होंगे अच्छे लगते हो. पहले भी आपका शो बताने भी बहुत अच्छा था. आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुझे तो आप लोग रिश्तेदार लगते हो.
2: अरे तो तौबा कीजिए भाई,
4: अरबाज है हमारे साथ.
2: दूर तक इनसे रिश्तेदारी नहीं बनती, बने भी तो मैं कैसे से खुद ही गाड़ दूं.
4: कहते हैं शी इज 3 इयर्स ओल्ड एंड वेट 4 and 5 kg, शी इज फुली वैक्सीनेटेड एंड शी हैज बीन. अरशद वारसी का जब कॉमेडी देखता हूँ कम से मुझे सर्वर याद आता है. अरमान मलिक, हेलो अस्सलाम वालेकुम.
5: हेलो वालेकुम अस्सलाम
4: जी, कौन है हमारे साथ?
5: कम कम बोल रहा हूँ.
4: कौन बोल रहा हूँ?
2: कम कम.
4: वाह वाह वाह वाह वाह, आज कम कम भाई एक साल बाद याद आए हमें और हमारी याद आई। क्यों इतना कम कम आ रहे थे आप ये बताइए, क्या वजह थी?
5: नहीं वजह कुछ नहीं थी, टाइम नहीं मिल पाया, वो आर्मी था।
4: कौन नहीं मिला?
5: ड्यूटी का जो शेड्यूल सब्जेक्ट था वो आर्मी के अंदर।
4: ओ, ड्यूटी की वजह से कम कम आ रहे थे हमारे कम कम भाई। और आज माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं, तो क्या कहते हैं कम कम भाई यूनिफॉर्म के हवाले से क्या कहना चाहते हैं?
5: जी यूनिफॉर्म तो हर जगह में जरूरी है, हर स्कूल का यूनिफॉर्म है तो स्कूल
2: कोई भी नहीं है जिसने कहा नहीं चाहिए।
4: सभी को चाहिए।
5: हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो टाइम में यूनिफॉर्म नहीं था, कुर्ता पैजामा भी नहीं था। आजकल अच्छा। अभी क्या हो गया, मदरसे में भी कुर्ता पैजामा सब सब हो गया, पहले हम लोग के टाइम में नहीं था।
2: अच्छा,
5: मतलब
2: आपने मतलब यूनिफॉर्म जो है वो पूरी एक पूरी कंप्लीट यूनिफॉर्म होती है ना, उसमें टाई बेल्ट सब कुछ, तो कभी नहीं पहनी और उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिला?
4: घर बात है, कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे।
2: अरे मतलब टाई बेल्ट भूल जाते हैं ना बच्चे अक्सर।
4: हाँ ओके, आवाज भी कम कम आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा?
5: बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूनिफॉर्म पूरा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है जींस पहन के गया, वो टाइम में मार पड़ती थी बोर्डिंग स्कूल में।
2: ओह अच्छा जी, पिटाई होती थी देखो। अभी तो खैर पिटाई का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन होती थी। फिर भी आप ये कहते कि आपको यूनिफॉर्म ने पिटवाया, लेकिन अगेन यूनिफॉर्म है अच्छी, ये कल्चर रहना चाहिए। हाँ
4: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कम कम भाई, आगे भी तशरीफ लाते रहिएगा, इंतजार रहेगा आपका, ठीक है?
5: जी सर जी, तस्वीर लाएंगे, थोड़ा टेंशन था, मन टेंशन तो खलास हो गया लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है, क्या करें।
2: अल्लाह ताला
4: आपकी परेशानी को दूर करे साथ खैरियत के। और
5: हम लोग को मालूम होगा ना नेपाल में भी कितना मुश्किल हो रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो उधर मेरी बीबी घूमने के लिए गई थी, अपने लोग भी उधर खुश थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह थे ना सब लोग, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल अभी भी है, कोई बीमार हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, एक जगह पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल रहा है ऐसा है, चाय के भी इधर से पैसे नहीं भेज सकते, कुछ नहीं भेज सकते।
2: नहीं हम समझ सकते हैं, मतलब सभी लोग दुआ कर रहे हैं कंट्री के लिए, सभी लोगों के लिए वहाँ पे जो जैसे फंसे हुए हैं या जिस तरह की परेशानी का इस वक्त शिकार हैं, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह हालात अब बेहतर हो रहे हैं और भी मजीद बेहतर होंगे यहाँ से। और डिफरेंट कंट्रीज से लगातार जो है वो एड्स भी दी जा रही है, खाने का सामान पहुँचाया जा रहा है, मेडिसिन वगैरह पहुँचाई जा रही
5: है। जी जी
2: तो पहुँच रहा है,
5: सबका शुक्रिया है।
2: हाँ इंशाल्लाह, तो बस अब धीरे धीरे हालात थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगेंगे इंशाल्लाह।
4: इंशाल्लाह ताला खैर होगी, ख्याल रखिए अपना,
2: ख्याल रखिए जी। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
4: तो भाई ये थे कम कम साहब हमारे साथ, और अब वक्त हो गया जाने का भी, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस तो नाम ले लेते हैं, वक्त क्योंकि काफ़ी कम है। शहजादा सलीम साहब हमारे साथ हैं, आसिफ भाई हमारे साथ हैं और हमारी आपकी तारीफ कर रहे हैं। नाजिया यूसुफ भाई कहते हैं कि क्यों है टाइम इतना फिर से आज। नाजिया सिस्टर को सर्दी तो नहीं लग रही क्या? अस्सलाम वालेकुम, कॉल नंबर सेंड कर दीजिए, अभी कर देते हैं, मैं आपको लिख के भेज देता हूँ इंशाल्लाह ताला, कल इस नंबर पे आपसे बातचीत हो पाएगी। अब टाइम हो गया कि मेरे ख्याल में हम कंक्लूड भी कर दें आज।
2: हाँ,
4: के
2: बिल्कुल, अब आई थिंक सभी लोगों ने सारी बातें कर दी, और आज और अभी जो हमें समझ में आया कि आप सब काफी प्रो हैं यूनिफॉर्म कल्चर के, और जैसा आपने कहा कि इसका मकसद यही है कि स्कूल में नहीं, आपकी जो कैरेक्टर की जो बिल्डिंग है वो काफी स्ट्रांग हो, फिर कहीं ना कहीं उसमें इक्वालिटी का रोल आ जाता है, प्रिंसिपल सॉरी डिसिप्लिन का रोल आ जाता है, एंड ऑफ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज भी नजर आते हैं, यूनिटी होती है, बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। और हाँ, जो लोग दलील दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं हमारी क्रिएटिविटी, हमारा अपना इंडिविजुअल स्टाइल जो स्पॉइल हो रहा है, जैसे कहा सर्वर ने, जो स्टूडेंट्स की दलील है वो उस तरह से मैं उसको नहीं, उतना ज्यादा उसके प्रो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे अगेन जैसे ही जैसे लगा सर्वर मिर्जा आप कहाँ है क्लास में, क्यों नहीं ध्यान दे रहे?
4: जी यस मैम, मैं यही मौजूद हूँ।
2: तो जैसे जैसे आप लोगों ने कहा और मुझे भी लगा कि ये कल्चर रहना चाहिए और ये हमारी और आपकी पहचान है और ये हमें बताता है कि हम इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, इस प्रोफेशन का बिलोंग करते हैं और लोगों को आइडेंटिफाई करना समझ पाना भी आसान हो जाता है।
4: क्या बात है नादिया,
2: ना तो कुछ भी समझ में नहीं
4: आया। चॉकलेट आपको एक्स्ट्रा देकर जाऊंगा मैं। मिसेज अहमद हमारे साथ जुड़ रही, कहती हैं यस यूनिफॉर्म होना चाहिए बिकॉज कस्टमर्स विजिटर्स एंड स्टाफ कैन क्विकली आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज और मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
2: शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो एजुकेशनल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे यूनिफॉर्म को एक बहुत ही वैल्यूएबल।
4: चलिए साहब, तो अब आज के लिए इजाजत ले लेते हैं और इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सेट होते होते मामला सेट हो जाएगा और हम तो सेट हैं, आप भी सेट रहिए।
2: मैं तो सेट हूँ।
4: अपने दिन को आगे और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कल इंशाल्लाह ताला हम फिर आपको परेशान करने के लिए तो आ ही जाएंगे। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और बाकी औकात में भी आप सुनते और देखते रहिए। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे।

अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे धुआंधार बल्लेबाज के बारे में जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि ही वॉज बेसिकली अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन। या दोस्तों, बात हो रही है क्रिस गेल के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बनती बल्कि क्रिकेट फैंस की

में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और ऐसी ही एक इनिंग्स वेस्ट इंडीज के अजीम बल्लेबाज क्रिस गेल ने खेली थी। तारीख थी 24 फरवरी 2015। मकाम था ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम। या दोस्तों, वेस्ट इंडीज 2015 वर्ल्ड कप में अपना मैच खेल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दिन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी इनिंग्स लिखी जाएगी जो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स में हमेशा याद रखी जाएगी। या दोस्तों, क्रिस गेल क्रिस पर आए और फिर जो हुआ वो किसी क्रिकेटिंग स्पेक्टेकल से कम नहीं था। गेल ने शुरू से ही अपने इरादे वाजे कर दिए। उनकी बैटिंग में वही पावर थी जो उन्हें दुनिया भर में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर करती थी। बॉलर कोई भी हो, गेल का जवाब एक ही था, इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना। और फिर आया वो लम्हा जिसने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्रिस गेल ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी हाँ दोस्तों, 47 गेंदे। वर्ल्ड कप की तारीख में इससे पहले किसी बल्लेबाज ने इतनी तेजी से सेंचुरी नहीं बनाई थी। गेल की सेंचुरी पावर हिटिंग का एक जबरदस्त नमूना थी। हर तरफ बाउंड्रीज, हर तरफ सिक्सेस। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फैंस के लिए ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि गेल रुकने वाले नहीं थे। सेंचुरी के बाद भी उनका एग्रेशन बिल्कुल कम नहीं हुआ। एक तरफ जिम्बाब्वे के बॉलर्स प्रेशर में थे और दूसरी तरफ क्रिस गेल हर ओवर के साथ अपनी इनिंग्स को और भी खतरनाक बनाते जा रहे थे। फिर गेल ने वो कर दिखाया जो वर्ल्ड कप की तारीख में उस वक्त तक किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था, डबल सेंचुरी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप क्रिकेट में डबल सेंचुरी। क्रिस गेल ने 215 रन स्कोर किए, यानी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पर 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और इसी के साथ वर्ल्ड कप की तारीख में डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिस गेल पहले बल्लेबाज बन गए। और उनके इनिंग्स का स्केल समझने के लिए स्कोर कार्ड पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आप, 147 गेंदे, 215 रन, 10 चौके और 16 सिक्सेस, यानी ओवर बाउंड्री। जी हाँ, 16 सिक्सेस। ये सिर्फ एक बिग स्कोर नहीं था, ये पावर हिटिंग का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें गेल ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और टाइमिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उनके सिक्सेस ग्राउंड के हर कोने में नजर आ रहे थे। कुछ शॉट्स सीधा क्राउड में जा रहे थे और कुछ बाउंड्री के ऊपर से। और हर सिक्स के साथ क्रिस गेल अपने नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जोड़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता। उनकी बैटिंग का सबसे खास पहलू था उनका कॉन्फिडेंस। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखने को मिला था क्रिस गेल उस दिन अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन कैनबेरा। गेल को पता था कि अगर वो क्रीज पर सेट हो गए तो बॉलर्स के लिए उन्हें रोकना कितना मुश्किल होगा, और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल यही किया। पहले सेंचुरी, फिर डबल सेंचुरी और फिर 215 रन्स। एक इनिंग्स में इतने माइलस्टोन हासिल करना अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। दोस्तों, गेल की ये इनिंग्स सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं थी, इस इनिंग्स ने वेस्टइंडीज को भी एक मैसिव टोटल की तरफ पहुंचाया। गेल ने अपनी इनिंग्स के जरिए वर्ल्ड कप क्रिकेट में एक नया स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दिया, और उस वक्त वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी का कॉन्सेप्ट ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज था। 50 ओवर क्रिकेट में 200 का स्कोर क्रॉस करना बहुत मुश्किल समझा जाता था, लेकिन क्रिस गेल ने इस इम्पॉसिबल नजर आने वाले टारगेट को अपनी पावर हिटिंग से रियलिटी बना दिया, और वो भी सिर्फ 147 गेंदों पर। क्रिस गेल के करियर में बहुत सी मेमोरेबल इनिंग्स रही हैं। T20 क्रिकेट में उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये इनिंग्स उनके करियर का सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में जरूर शुमार होती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्टार प्लेयर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Assalamualaikum and welcome to Tech Update. मैं जी दोहा वाला कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और हाजिर हूँ टेक अपडेट लेकर. बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको जितनी आसानी से समझा सकता हूँ उतनी मैं पूरी कोशिश करूंगा. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर. सबसे पहली चीज जो आपके बहुत काम आ सकती है और इनफैक्ट उन लोगों के काम आ सकती है जो एडिटिंग तलाश रहे हैं, जिन्हें फैंसी फैंसी चीजें चाहिए, उनके बहुत काम आने वाली है. तो एक वेबसाइट जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या करती है बाद में बताऊंगा लेकिन नाम पहले जरूरी है याद रखना. इसका नाम है unicorn.studio.com. स्पेल आउट कर देता हूं, UNICORN unicorn.studio studio.com. अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हैं. आपने देखा यूट्यूब पे लोग जब जाते हैं अपने पेजेस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, सो दे टेंड टू हैव दिस वेरी क्रिएटिव इंट्रो. कुछ लोग चाहते हैं इंट्रो बनाना, कुछ लोग चाहते हैं वीडियो में बीच में कुछ प्लगइन्स लगाना, ऐसे वीडियोज बना देना जो उनकी चीज से मैच कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो या उनका जो भी जिस बारे में भी वीडियो है उससे जुड़े हुए हों. सो दे यूज दिस. ये बहुत ही प्रोमिनेंट है. इनफैक्ट जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे और बहुत सारे एनिमेशन नजर आएंगे. उसमें फेड इन फेड आउट तो है ही, वेरी सिंपल. बट देन उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है वो भी आपको नजर आएगा. और जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पर जाके उन्हीं टेम्पलेट्स को फॉलो करें. आप अपने खुद से भी, मतलब यू कैन ट्राई योर ओन वे, उसे क्रिएटिव वे में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज और उस इमेज को एक पूरा एनिमेशन दे सकते हैं. तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत बहुत बहुत काम किए. एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशन जो फ्री टू डाउनलोड हैं और आप उन्हें डाउनलोड करके सिंपली अपने पास रख सकते हैं. इससे ज्यादा आसान कोई चीज हो नहीं सकती. हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ चैनल या फिर एक इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं. बिकॉज जब आपका इंट्रो बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अच्छी तरह से एल्गोरिथम के कंधे पे हाथ रख देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा. तो ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा अब जरा बढ़ेंगे एक बहुत जरूरी चीज की तरफ जो आपको कोडिंग सिखाएगी. नहीं, वो वाली कोडिंग नहीं जो डिफिकल्ट होती है, आसान वाली कोडिंग आपको सिखाएंगे जो आपके काम आ सकती है. अब कैसे, ये है चीट कोड्स, सुनिएगा जरूर. तो देखिए बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो काम आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी दुनिया भी यूज कर रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारा अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है मामला. ऐसा कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर इज द चीट कोड्स. गेम्स में होते हैं ना चीट कोड्स, वैसे ही चैट जीपीटी भी होते हैं. अब मान लीजिए आपने अपना फोन जो है वो एक्सप्लोर करना है कि भाई मेरे फोन के कंपोनेंट क्या है, मान लो इसे मुझे खोलना पड़ जाए, मैं खुद कुछ सीखना चाहता हूं, तो यू कैन डू दैट. आपको क्या लिखना है उससे, अपने फोन का कोई भी नाम लिख देना. मान लीजिए आपका आईफोन है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसका नाम लिखा लेकिन नाम से पहले आपको एक चीज लिखनी है, वो है एक्सप्लोर्ड व्यू. एक्सप्लोर्ड व्यू, शुरुआत से बताता हूं, फॉरवर्ड स्लैश डालिएगा, एक्सप्लोर्ड व्यू, एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लोर्ड. और उसके बाद अपने फोन का नाम लिखिएगा जो मॉडल नंबर है, फॉर एग्जांपल 17 प्रो 16 प्रो व्हाटएवर. तो जब आप ये लिखेंगे उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो वो पूरे के पूरे फोन के कंपोनेंट्स को अलग कर देगा. एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. आपकी आंखों के सामने पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा और वो एक एक चीज आपको बता देगा कि फोन का ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ और ये हिस्सा ऐसे ओपन होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक और आपको चीट कोड देता हूं और ये चीट कोड भी चैट जीपीटी का ही है. तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको जो है जानना है कि कोई मोटर है आपके सामने, फॉर एग्जांपल कोई जनरेटर है, छोटी सी चीज ले लेते हैं, कोई इन्वर्टर है फॉर एग्जांपल, आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना है या कोई मशीनरी जो आप खुद ठीक करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है forward slash sticky notes STICKYNOTES. ये लिखने के बाद जब आप स्पेस देंगे, स्पेस देकर आपको कोई भी मशीन आपके सामने है उसके बारे में पूछ लीजिए और आपको पूरा का पूरा स्टिकी नोट्स के जरिए लाइक अ टॉडलर ये बताएगा. एंड इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी यूजफुल क्योंकि ये काम आता है भाई. आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा. कई सारी चीजें हम खुद भी ठीक करना चाहते हैं पर हमें पता नहीं होता है. तो यही मौका है मैकेनिक बनने का मेरे भाइयों, बहुत काम आएगा आपके. ट्राई दिस वन आउट एंड लेट मी नो के इफ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. और बाकी आने वाले जो एपिसोड होंगे उनमें आपको मैं और भी चीट कोड्स बताऊंगा. इफ यू लव टू नो मोर चीट कोड्स, ऐसे ही चैट जीपीटी के और बाकी एआई के भी बताता रहूंगा. ऑलराइट, एंड लास्ट में एक खबर. खबर बड़ी सिंपल है, ये है खबर गेमिंग की दुनिया से। मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है। अभी तक एल्डन रिंग का कोई भी तोड़ू गेम उसको कंपटीशन देने के लिए नहीं आया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मॉर्टल शेल इज द एल्डन रिंग किलर। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत अच्छा गेम है यार, मैं बुरा नहीं कर पाऊंगा। मॉर्टल शेल 2 इज डेफिनेटली अप देयर। मतलब होता नहीं है कि बस भाई वो सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे 19-20 का फर्क होता है, तो यहां पे 18-20 का फर्क है। मॉडल शेल डेफिनेटली रिकमेंडेड ऑन द लिस्ट। अगली बार मिलते हैं जाएगा नहीं टेक अपडेट में। मैं दुहा वाला कबीर दिल से अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका। मैं हूं फजील और ये शो, ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड हर गुजरते हुए रोज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आप बहुत होशियार हो जाते हैं और आपको पता है कि जमाने में और जगह जगह पे या हमारे दोस्तों को हमारे यारों को किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह का स्कैम होता है। और आप ऐसे में जब होशियार हो जाते हैं तो स्कैमर्स भी होशियार हो जाते हैं। वो नए तरीके ढूंढते हैं आपको स्कैम करने का, आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का। और आज इसी तरह के एक फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये है टेक सपोर्ट स्कैम, एक ऐसा धोखा जहां स्कैमर्स आपको डराकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। आजकल ये फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचना सबके लिए बेहद जरूरी है। कैसे होता है ये स्कैम? अक्सर एक सडन और डरावने पॉपअप मैसेज से शुरू होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है या आपका सिस्टम डेंजरस वायरस से स्लो पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन फोन नंबर दिया जाता है और तुरंत कॉल करने को कहा जाता है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो एक फेक टेक्नीशियन आपसे बात करता है कॉल पे रहते हुए और आपको डराता है। वो आपसे कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर के जरिए देना होगा। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस इन एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं उन्हें, तो यहां पर हो जाता है स्कैम। एक बार जब उन्हें एक्सेस मिल जाता है तो वो आपकी फाइल्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या सिस्टम में रियल मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आखिर में वो इस फेक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपसे मोटी रकम, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, कतरी रियाल, वो डिमांड करते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए? दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इनमें से सिर्फ चार ऐसे तरीकों के बारे में कि इन चार तरीकों को अगर आपने अपना लिया तो ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और बचाव है, कभी भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉपअप किया हुआ मैसेज है जिसमें फोन नंबर है उस पे कॉल ना करें। इवन कई बार आपको ये स्कैमर्स अलग तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, फोन के जरिए भी ये आपसे स्कैम कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको पता है कि कैसे इन स्कैमर से टैकल करना है। आपने फोन किया, हो सकता है कि आपका फोन करना ही ये कोई एक स्कैम हो। तो कभी भी नंबर पे कॉल ना करें। अगर स्क्रीन पर ऐसा कोई वायरस या एरर पॉपअप आए और उसमें कॉल करने को कहा जाए तो उस नंबर पर कभी कॉल ना करें। रियल टेक कंपनीज जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी आपको इस तरह से कॉल करके आपकी परेशानी को हल करना या आपको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। उसके अलावा उस ब्राउजर को फौरन बंद करें। ऐसे पॉपअप्स आने पर तुरंत अपना वेब ब्राउजर क्लोज कर दें। अगर ब्राउजर फ्रीज हो जाए तो ऑल्ट F4 दबाएं या टास्क मैनेजर से उसे फोर्स क्लोज करें। उसके अलावा कभी भी किसी अनजान को रिट एक्सेस अपने कंप्यूटर का ना दें। किसी भी अनजान इंसान को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तभी दें जब वो आपका कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय हो, आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो। ऐसे लोग जो सच में टेक को जानते हो, कंप्यूटर को जानते हो और आपकी कंपनी में काम कर रहे हो। उसके अलावा हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपने जो कलीग हैं, जो टेक्नीशियन आपके ऑफिसेज में हैं, उनसे राबता करें। अगर आपको सच में
1: कंप्यूटर में कोई दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कस्टमर केयर नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मदद लें। एक बार फिर से, कभी भी किसी को कॉल ना करें, जो पॉपअप हुआ मैसेज है उसे क्लोज करें, उसके अलावा किसी को रिमोट एक्सेस ना दें और ऑफिशियल सपोर्ट का हमेशा इस्तेमाल करें। इन तरीकों से आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बच सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में इसी तरह के नए जमाने के नए फ्रॉड पर बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बजटिंग की। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आजकल महंगाई हर घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, चाहे सैलरी अच्छी हो या एवरेज हो। अगर बजटिंग ना हो तो मंथ के एंड तक फाइनेंशियल प्रेशर महसूस तो होता ही होता है, इसीलिए स्मार्ट बजटिंग बहुत जरूरी है। देखिए स्मार्ट बजटिंग का मतलब है सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी इनकम को इस तरह से मैनेज करना कि हर जरूरत पूरी हो और कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए भी सेव हो। और सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना। बहुत से लोग सैलरी आते ही खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड में सोचते हैं कि पैसे कहाँ गए। एक सिंपल मोबाइल ऐप या फिर नोटबुक यूज करके हर एक्सपेंस लिखें। मिसाल के तौर पे आपकी 10,000 सैलरी है तो रेंट 3,000, ग्रॉसरी 1,500, ट्रांसपोर्ट 500 और बिल्स 800, सेविंग आपकी 1,000, रिमेनिंग आपकी लाइफस्टाइल पे जो खर्च हो रहा है 3,200। इस तरह से आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक बड़ा ही फेमस रूल आपने सुना होगा,

मुश्किल है। और अब मैं आपको बताती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल देके। अली और सारा ये मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलिए इन्हीं की लाइफ को जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अली और सारा दोनों को कंबाइंड इनकम अगर मिलती है 18,000 कतरे रियाल। मंथ के एंड में कभी सेविंग नहीं होती। जब उन्होंने कॉफी शॉप विजिट की, अननेसेसरीली शॉपिंग की, फूड डिलीवरी ऐप चेक की, तो पता चला कि 2,000 कतरे रियाल उनके सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव स्पेंडिंग में जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 50% कट किए और साल के एंड तक 12,000 कतरे रियाल सेव कर लिए। ये बहुत ही छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको बजटिंग के हवाले से। देखिए, बजटिंग का मतलब है अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना और समझदारी से स्पेंडिंग करना। हर वीकेंड एक्सपेंसिव ब्रंच की जगह एक वीकेंड छोड़ के आप वो ले सकते हैं। डेली कैफे कॉफी जाने के बजाय घर पे कॉफी बना सकते हैं। इम्पल्सिव शॉपिंग से पहले 24 घंटे 24 आवर रूल्स, क्या ये मुझे चाहिए, क्या इसकी जरूरत है मुझे, ये सोच सकते हैं। एक और जरूरी चीज वो है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम से कम 3 से 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होने चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस 8,000 कतरे रियाल हैं, तो इमरजेंसी फंड 24,000 या फिर 48,000 तक होने ही चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जॉब लॉस है, कार रिपेयर है, फैमिली इशू है, इन सबके लिए फंड चाहिए। बस समझदारी से प्लानिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आखिर में ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि बजटिंग रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, बजटिंग फ्रीडम है। जब आपको पता होता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए स्ट्रेस कम हो जाता है। फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं सिक्योर लगने लगता है। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से क्या होगा। छोटी छोटी सेविंग्स ही वक्त आने पर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। और वक्त आने पर ये छोटी छोटी सेविंग्स जो है ना, वो आपका सहारा बन जाती है। नीड्स पर भी फोकस कीजिए, वांट्स पे भी फोकस कीजिए, और इन दोनों में एक गुड बैलेंस क्रिएट कीजिए। सेविंग्स ये हमारी और आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे भी निग्लेक्ट करा जा ही नहीं सकता। देखिए, आज हमारा सेगमेंट का फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैंने बहुत हल्का फुल्का रखा। इस टॉपिक को फर्दर भी मैं एक्सप्लोर करूँ और मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी कि बजटिंग कितना इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, स्मार्टनेस हर तरह से आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है। फाइनेंशियली स्टेबल होना आपके फ्यूचर के लिए अब एक चॉइस नहीं, एक जरूरत है। फिलहाल मैं यानी नाजिया आपसे इजाजत लूंगी। जब नेक्स्ट यानी कल आपकी मुलाकात होगी, तो फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए।

0: या फिर आज का कोई यंग बंदा मल्टीपल स्किल्स सीखना चाहे, करियर चेंज करना चाहे, फ्रीलांसिंग करना चाहे, बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और अपनी क्रिएटिविटी को इनकम में कन्वर्ट करना चाहे, तो क्या ये सही बात है? दूसरी तरफ पेरेंट्स और ओल्डर जनरेशन के लिए भी स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी समझने की कोशिश करें। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा है जहाँ स्टेबल इनकम का मतलब फैमिली की सिक्योरिटी था। उनके लिए रिस्क लेना सिर्फ एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती थी। यहाँ से जनरेशन गैप शुरू होता है साथियों। एक यंग जनरेशन ये कहती है कि भाई मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है और पेरेंट्स ये कहते हैं कि पहले सिक्योर करियर बनाओ। दोनों की नियत शायद एक ही है कि बेहतर फ्यूचर बनाना, सिर्फ रास्ता मुख्तलिफ है ना, मेथड थोड़ा सा चेंज है। इसी तरह एजुकेशन को देखा जाए तो भाई एक वक्त था जब डिग्री को करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट गारंटी समझा जाता था। आज की दुनिया में डिग्री के साथ स्किल्स, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एडेप्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की इम्पॉर्टेंस भी बढ़ गई है। आज एक यंग पर्सन के पास यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल स्किल्स और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो गई है। सवाल ये है कि एजुकेशन को चेंजिंग वर्ल्ड के साथ किस तरह इवॉल्व करना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी जनरेशन के दरमियान एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्रिएट करती है साथियों। ओल्डर जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी का, आप यूं कह लें कि टेक्नोलॉजी एक चीज थी जो वक्त के साथ सीखी गई। यंग जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी अक्सर उनकी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा है। एक पेरेंट ये कह सकता है कि भाई तुम हर वक्त फोन पे क्यों लगे रहते हो। यंग जनरेशन का बंदा ये कह सकता है कि वही फोन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, वर्क, बिजनेस और सोशल लाइफ सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फोन कितना यूज किया जाए, असल सवाल ये है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें कंज्यूम कर रही है। सोशल मीडिया ने भी जनरेशन के दरमियान एक नई डिस्कशन क्रिएट की है। ओल्डर जनरेशन के लिए पर्सनल लाइफ ज्यादा प्राइवेट होती है, आज यंग लोगों के लिए अपनी अचीवमेंट्स, ऑप्शंस, ओपिनियंस, लाइफस्टाइल और डेली एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं। क्या सोशल मीडिया ने लोगों को ज्यादा कनेक्टेड बना दिया है या फिर हम कनेक्टेड नजर आते हुए भी इमोशनली डिसकनेक्टेड रहते हैं? क्या ऑनलाइन फ्रेंडशिप रियल फ्रेंडशिप को रिप्लेस कर सकती है? और क्या हर वक्त दोस्तों की परफेक्टली एडिटेड लाइफ देखना हमारे एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक बना रहा है? ये वो सवालात हैं, चंद सवालात जो जनरेशन टॉक में एक्सप्लोर किए जाएंगे। हम रिलेशनशिप्स और फैमिली एक्सपेक्टेशंस पर भी बात करेंगे। आज के यंग जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपने करियर, लाइफस्टाइल और पर्सनल डिसीजंस अपनी चॉइसेस से चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए फैमिली की एडवाइस और इन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी पेरेंट्स की कंसर्न यंग जनरेशन को आप कह लें कि कंट्रोल जैसा महसूस होने लगती है और यंग पर्सन्स इंडिपेंडेंस पेरेंट्स को डिस्टेंस जैसी लग सकती है। तो भाई इसका क्या सोल्यूशन है? शायद जवाब है कम्युनिकेशन। जब हम अज्यूम करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, जब हम पूछते हैं समझ पैदा होती है। इसलिए जनरेशन टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायलॉग। यहाँ हम स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करेंगे। भाई आजकल के बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं, हमारी जनरेशन ज्यादा डिसिप्लिन थी, हमारी जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे स्टेटमेंट्स हम अक्सर सुनते आए हैं साथियों। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर हर जनरेशन अपने वक्त की चैलेंजेस के मुताबिक डिसीजंस ले रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको हम कवर अप करेंगे साथियों, जहां डिफरेंट जनरेशंस एक दूसरे को चैलेंज भी कर सकती हैं और मैं कहूंगी एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश भी कर सकती हैं। तो भाई हम कितने डिफरेंट हैं और असल में हम कितने सिमिलर हैं, ये जानने के लिए जनरेशन टॉक सुनते रहिए, क्योंकि हर जनरेशन की एक कहानी होती है और हर कहानी को सुनना जरूरी होता है। तो सामीन, इससे पहले कि हम अपने आज के गेस्ट से मुलाकात करें और उनसे गुफ्तगू करें, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद वापस आकर आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के गेस्ट से। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पर जनरेशन टॉक विद सफा।
1: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक

0: तो साथियों, आज की हमारी इस डिस्कशन में हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने लगी हैं, हिस्सा बनने लगी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना। हम आमना को वेलकम करते हैं जनरेशन टॉक में। हमें बहुत खुशी है कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो हमारी यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और अपना पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहती हैं। तो चलिए साथियों, हम अपनी आज की गेस्ट से मुलाकात करते हैं जिनका नाम है आमना, और मैं चाहूँगी कि आमना खुद अपना हमें इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आमना, मुझे एक बात तो बताएं कि इंट्रोडक्शन मैं आपका दूं कि इंट्रोडक्शन आप खुद अपना देना पसंद करेंगी?
1: मैं अपना खुद देना पसंद करूंगी।
0: नहीं, अपनी तारीफ देखिए, ये मुझे इस जनरेशन की ना बात ही अच्छी लगती है कि ये जनरेशन ऐसी कहते हैं, नहीं हमें किसी के बैकअप की किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद तारुफ कराएंगे। अच्छा भाई आमना, हमारे लिसनर्स को जल्दी से बता दीजिए कि आप कौन हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम किस से बात कर रहे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आमना है और अभी आई जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड हाई स्कूल एंड प्रीवियसली मैं एज अ हेड गर्ल भी थी, मैं सेक्रेटरी जर्नल भी थी MUN की, हेड ऑफ ऑपरेशन भी रह चुकी हूँ एंड जस्ट रिसेंटली मैं फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स मैं कतर में एज अ यूथ एडवोकेट काम कर रही हूँ, यूथ के लिए डिफरेंट इवेंट्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम कतर में करते हैं। थ्रू आउट फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स हम कर रहे हैं, डिफरेंट कोलेबोरेशन होती है, डिफरेंट इवेंट्स होती है एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन दो दैट्स अ वेरी न्यू कल्चर इन कतर अबाउट यूथ एडवोकेशन एंड स्टूडेंट क्लब्स, बट आई वॉज द फर्स्ट फ्यू हु स्टार्टेड इन बैक इन 2023।
0: सही। अच्छा ये बताएं कि आपने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने थोड़ी सी डिटेल आमना से ली थी पहले, तो आमना ने मुझे बताया था आमना ने अराउंड 25 इवेंट्स कवर किए हैं।
1: यस
0: राइट,
1: 25 नंबर तो लास्ट ईयर तक था, इस ईयर मैंने काउंट भी नहीं किया, तो यस इट्स 25 प्लस इवेंट्स।
0: आमना, बीइंग वेरी ओपन टू यू, मुझे ये बात पूछनी है कि इतनी छोटी सी एज में, मतलब हम तो ये सोचते थे भाई कोई होगा 30-35 साल का तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसने फलाने फलाने इवेंट्स कवर किए या इसका पोर्टफोलियो कहीं जाकर 26 या 27 के बाद बनना शुरू होगा, तो आपने तो अभी स्कूल पास ऑन किया है और माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स आती चली जा रही हैं, हाउ डज इट फील?
1: आई फील लाइक मेरा भी यही माइंडसेट था अंटिल आई रियली एक्सपीरियंस द अदर यू नो अदर सोसाइटीज इन डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम देखें कि एशिया में इतना कल्चर नहीं है अबाउट स्टूडेंट क्लब्स एंड ऑल, बट इंटरनेशनली व्हेन मैं यूएसए में, कनाडा में, यूके में देखा, स्टूडेंट क्लब्स तो ऐसे है कि इट्स जस्ट सो नॉर्मल देयर कि हर चीज का एक एडवोकेशन क्लब होता है। आप कैंसर को ले ले, मेंटल हेल्थ को ले ले, स्पोर्ट्स को ले ले, आप कुछ भी छोटा सा भी ले गए ना तो दे विल मेक इट इनटू वीकली क्लब।
0: सही।
1: तो I saw that gap between their community and our community and I realized that students are not given a good platform. पहले मैंने खुद बहुत ढूंढना चाहा और मुझे नहीं मिला, then I decided that I'm gonna start one.
0: Okay.
1: And that's when I started one and now I've been just growing and growing.
0: Mashallah. अच्छा आमना, मुझे एक बात बताएं कि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माशाल्लाह से प्रोग्रेसिव माइंड हैं और प्रोग्रेसिव माइंड यही कहता है हमारा कि हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट हैं ऑलरेडी लेकिन और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो मुझे पता नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने आगे बढ़ना है और दुनिया एक्सप्लोर करनी है, तो आपका क्या प्लान है आगे का? ज़रा थोड़ा सा अपने आगे के प्लान्स बताएं कि वापस पाकिस्तान जाकर आप कुछ शुरू करना चाहेंगी या यू वुड गो फर्दर फॉर यूरोपियन कंट्रीज एंड यू वुड स्टडी अब्रॉड और समथिंग, कुछ होगा दिमाग में?
1: अभी तो आई फील लाइक आई एम, इवन दो पीपल से दैट आई एम वेरी एक्सपीरियंस, बट मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक साइड ऑफ वर्ल्ड की एक सोसाइटी, व्हिच इज लाइक कतरी सोसाइटी और लाइक कतर का मैंने एनवायरमेंट देखा है, सो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं आगे ग्रो करूं, आई लर्न अ लॉट एंड देन गिव बैक टू माय कंट्री, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई स्टैंड राइट नाउ कि आई कैन गो बैक टू पाकिस्तान और हेल्प पाकिस्तान इन एनी वे, तो मैं ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड मूविंग अब्रॉड अपने स्टडी पर्पस के लिए और टू एक्सपीरियंस मोर। वन ऑफ माई टीचर्स के साथ ही मेरी बात हो रही थी एंड उनने मुझे यही कहा था कि फॉर अस फ्रॉम पाकिस्तान टू कतर वॉज अ प्रोग्रेसिव मूव, कि हमें Pakistani society se Qatar society mein aane se there was a move and we experienced a lot. Aap log Qatar se next society move karna zaruri hai kyunki you guys have experienced that society and the Pakistani society too. So now it's very important ki aap log next society move karke usko experience bhi kare.
0: Sahi. अच्छा जब हम नेक्स्ट सोसाइटी मूव ऑन करने की बात करते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल एंगल देखूं देखो भाई सीधी सी बात है अम्मा अब्बा के साथ जब हम रहते हैं ना तो वी आर भाई चार तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों से उतरी हुई होती है सबसे पहला अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि यू आर मूविंग आउट ओके यू आर गोइंग फॉर योर हायर स्टडीज एंड स्टफ लाइक दैट आपकी लाइफ का एक नया फेज एंटर करते हैं आप सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज आपको क्या लगता है आपके लिए क्या होगा
1: I think मैंने इस क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है ना इसको मैं ऑफनली थिंक करती हूँ कि what will be the biggest challenge that I would face. बट अगर आप देखें ना सारा कुछ एक चैलेंज होता है वहाँ पे सबसे पहले तो आपने इमोशनली ये माइंड बनाना होता है ना कि आप उधर जा रहे हैं तो उधर हर कोई आपका दोस्त नहीं होगा नो वन इज गोना स्टैंड फॉर यू यू हैव टू इंडिपेंडेंटली डू एवरीथिंग
0: रियलिटी चेक
1: रियलिटी चेक होता है एक काइंड ऑफ कि आपके पास तो अभी आपने जीरो से स्टार्ट करना है आपने अपनी 18 साल जिंदगी या 17 इयर्स ऑफ योर लाइफ स्पेंड इन वन स्पेस बीइंग कंफर्टेबल अब आपको सब कुछ स्विच करना है तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज लाइक फिट इन अ सोसाइटी और फिट इन ना करना या आपने कैसे वहां पे हाउ यू गोना सर्वाइव इट्स लाइक अ वेरी बिग चैलेंज
0: सही सही सही अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे कह रही हैं कि इट गोज थ्रू योर माइंड एवरी डे व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ विल यू मैनेज इट मैं अगर आपकी जनरेशन से एक बात पूछूं कि क्या इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ डिसीजंस लेना होता है अपने खुद कि हमें एक होता है ना भाई मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा मैं अपनी मर्जी से रहूंगा मैं अपनी मर्जी से रूम साफ करूंगा या ये भी एक बात आती है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कि जो डिसीजन लूंगी भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जब मैं अलग अकेले रहूंगी इतनी दूर
1: आई थिंक अगेन मैं आपको इसका एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी अदर डे माय फ्रेंड्स वर लाइक यू मूविंग यू प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ कतर तो व्हाट तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं लगेगा और यूजली मामा बाबा भी कहते हैं कि हम ना जितना तुम्हें आसान लग रहा है वैसे इट्स गोना बी वेरी हार्ड द आउटर वर्ल्ड इज वेरी हार्ड बट देन आई टेल देम कि इन दिस जनरेशन अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग हम सब अपने एक्शन पे हर तरफ से अकाउंटेबल रहना चाहते हैं तो अगर मैंने प्लान किया कि मैं अब्रॉड मूव करूंगी सो देयर इज अ वेरी वेरी वेरी बिग साइड ऑफ माय सेल्फ कि आई विल बी अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्शन दैट आई टेक एंड अगर मैं मूव भी कर रही हूँ ना उसमें अगर मुझे कोई इश्यू भी होगा तो मुझे पता है कि वो डिसीजन मैंने लिया हुआ है मुझे उस पर कायम ही रहना है आई थिंक अकाउंटेबिलिटी इन दिस जनरेशन इज अ वेरी बिग थिंग एंड वी वॉन्ट टू टेक आर डिसीजन एंड वी विल टेक आर अकाउंटेबिलिटी टू
0: अच्छा अब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं ना हम तो मेरे दिमाग में एक और चीज आती थी कतर का कल्चर ना बड़ा सपोर्टिव बड़ा सिक्योर है भाई है कोई माने ना माने मैं तो मानती हूँ क्योंकि मैंने भी एक उम्र का हिस्सा जिया यहाँ पर आई वाज बॉर्न ब्रॉट अप ओवर हियर मेरे दिमाग में एक चीज आती है आज की जनरेशन के लिए कि देखिए मामला पता है क्या है इंटरनेट ने वैसे भी हमें बहुत ज्यादा बैरियर्स खत्म कर दिए ठीक है लेकिन अगर आप सोचें फिजिकली आप किसी नए कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या लगता है वहां पे जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनाना जेन्युइन लोगों से बातचीत करना या रिलेशन डेवलप करना डिफिकल्ट होगा इन कंपेयर टू योर स्कूल एंड फ्रेंड्स ओवर हियर नाउ आपको क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक
1: आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन टू फिट इन आप कतर की I feel like it has grown a lot society wise and इधर भी फ्रेंड्स बनाना is difficult so to fit in any kind of group wo difficult hota hai pehle but then you start adapting and putting up your values I think wo easily phir ho jata hai kyunki sometimes aapko usually आपको एक बंदा मिल ही जाता है कि यू कैन यू नो थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर सकते हैं या इंटरेक्ट विद देम एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट पीपल एंड आई थिंक जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं ना आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है अच्छा मैं इन लोगों के साथ इस ग्रुप में बैठना पसंद करूंगी या इस ग्रुप में बैठना पसंद करूंगी सो आई थिंक it is difficult to make friends and like ek dobara se sara silsila shuru karna apne friend group ka and socializing group ka, but I think if you're patient then I think you can
0: अच्छा एक एक चीज मेरे दिमाग में आती है पेरेंट्स को पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं जब अपने जैसे आपने बोला आपके पेरेंट्स के भी कंसर्न्स हैं उन्होंने बैठकर आपसे बात की क्या प्लान है भाई क्या दिमाग में चल रहा है अक्सर औकात पेरेंट्स को ये होता है कि अगर हमने अपने बच्चे अब्रॉड भेज दिए ना तो दे विल लूज देयर आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर एंड देयर ट्रेडिशंस तो आपको ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन वो चीज लूज कर रही है बिकॉज यू बिलोंग टू दिस जनरेशन यू आर यंगस्टर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है कि जब अम्मा अब्बा कल्चर और ट्रेडिशन की बात करते हैं तो आप कहते हो भाई यू बिलोंग टू द डायनासोर एरा अक्सर औकात बच्चे ऐसे कह देते हैं ना अम्मा अब्बा को कि आप लोग बहुत पुरानी दकियानूसी बातें कर रहे हैं आप लोग क्या कौन कल्चर को लेकर बैठता है कौन ट्रेडिशन को लेकर बैठता है क्या आपको लगता है कि कल्चर और ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको लगता है कि अगर आप अब्रॉड जाएंगे नो आई विल स्टिल स्टिक टू माय रूट्स
1: आई थिंक ये रियली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे
0: इज इट अ वैल्यूएबल थिंग होनी चाहिए आपके लिहाज से होनी चाहिए
1: इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग आई थिंक फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी यंग एज मैंने तो हमेशा यही कहा अपने जूनियर्स को भी कि आपकी कोर वैल्यूज होनी चाहिए जिसको आप सस्टेन करते हैं For me, मेरी cultural representation बहुत जरूरी है Like even now, वो बहुत strong होती जा रही है time by time. And I think जब आप एक different country या different city move करते हैं तब आपकी cultural representation और आपकी cultural value बहुत ज्यादा और strong हो जाती है क्योंकि they are showing you their culture. तो आपको होता है कि no, हमारे culture में तो यही होता है ना इस तरह होता है you try showcasing your own culture. A lot there. So even I think when you go out or move out of space, aap apne cultural value, you know, your personal values, aap usko aur strongly hold karte ho, because that's the nearest thing to home to you at that point of time.
0: अच्छा मुझे एक एक बात तो बताएं, इसे ट्रिक कह लें, इसे हैक कह लें, इसे एक एडवाइस कह लें. How would you convince your parents? Because every parent, देखें एक सीधी सी बात है सिंपल सी बात है माँ बाप के लिए उनका सबसे बड़ा कीमती असासा जो होता है ना उनकी औलाद होती है आई डोंट नो कि कुछ पार्शली जनरेशन में बच्चे इस चीज को नहीं समझते आज की जनरेशन में लेकिन इट इज अ फैक्ट कि सबसे कीमती असासा सबसे कीमती एसेट माँ बाप के लिए उनकी औलाद होती है इट्स नॉट द मनी इट्स नॉट द स्टेटस इट इज यू गाइज तो जब आप बाहर जाने की बात करती हैं ऑब्वियसली अम्मा अब्बा परेशान होते हैं हाउ डू यू कंसोल देम हाउ डू यू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस हाउ डू यू गिव देम दैट सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के अच्छा आई एम अ ग्रोन अप आई हैव दीज प्लान्स कैसे हाउ डू यू कम्युनिकेट विद देम व्हाट डू यू कम्युनिकेट विद देम
1: अच्छा फॉर मी इट्स बीन अ बिट इजियर बिकॉज ऑफ माय यू नो होल स्कूल लाइफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड साइड क्वेस्ट सो फॉर लाइक I feel like for them, I give them a lot of time to digest कि मैंने क्या सोचे अपने future के लिए. So I give them a lot of time. I set down everything to them कि मामा बाबा मैंने ये सोचा है, मैंने ये करना है, ये मेरा plan A है, ये मेरा plan B है, plan C है. मैं बहुत ज़्यादा और grow करना चाहती हूँ and I want to experience a lot more new things and and I give them time to digest all of that because there's a regardless kya hum log ke there's a very big generational gap in every generation that we have so I think the best one advice I would give to all the students is give them enough time for them to digest the fact that you're moving and you're in terms of you're going to be away from them very mile apart अभी तो लाइक एक कॉल करो कि मामा ओके ये चीज नहीं मिल रही तो वो तो कॉल पे बता देती है मगर मूविंग टू अ नेक्स्ट कंट्री यू कैन नॉट रियली रीच आउट टू योर पेरेंट्स वेरी ऑफन अबाउट एवरीथिंग वो आपने डिसीजन लिया होता है सो आई फील लाइक गिव देम अ लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लेन देम व्हाई डू यू वांट टू मूव एंड आई थिंक
0: मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन के साथ साथ ना बच्चों को ये भी शो ऑफ करना चाहिए कि हाँ वी आर रिस्पॉन्सिबल इनफ अपने थोड़े बहुत काम तो खुद कर लेने चाहिए कि उनको नजर आए
1: जी लाइक आई विल टेल यू समथिंग वेरी पर्सनल ऑफ माइन लाइक माय मॉम का बिगेस्ट शी वाज लाइक इफ यू गोना मूव आउट हाउ यू गोना कुक
0: या
1: लाइक सम पास्ट senior, from my senior year of high school to like now, I start cooking so I can ensure her that like, okay, mama, I can cook for myself.
0: I'm proving. Bhai, noodles ke alawa bhi mujhe kuch pakana aata hai, main survive kar sakti
1: hoon. Yeah, noodles ke alawa bhi kuch banana aata
0: hai. Okay.
1: Yeah, I try to be very responsible with my works as well. Like, mere jo sare side quest hai, events karana, ya kisi interview pe jana, ya koi
0: unko show off karo na, unko showcase karo ki main acha bachcha hoon, dekho main yahan is aspect mein sahi chal raha hoon.
1: I think even after showcasing, there's a lot of doubt.
0: Yes.
1: So,
0: देखिए सवाल बहुत सारे थे मेरे पास, अभी भी बहुत कुछ है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन वक्त बहुत कम है. अब जो है ना, हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं अपने शो के. तो जाते जाते ना, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत रुझान हो गया इस चीज़ का कि बच्चों को स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेज दिया जाए, और बहुत सारे पेरेंट्स ये आप कह लें दिल पे पत्थर रख कर अपने बच्चे आगे भेज रहे हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर उनसे भी ज़्यादा अच्छा हो इंशाल्लाह. तो आप भी इसी सोच की मालिक हैं, आप भी यही कह रही हैं कि भाई अम्मा अब्बा को कन्विंस तो कर लिया है, 60-70% कन्विंस हो गए हैं, मैंने बता दिया है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो जितने भी बच्चे अपना ये माइंडसेट रख रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें, मूविंग अब्रॉड करने के लिए आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी, अगर वो ये प्लान रखते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना घोंसला छोड़कर आगे निकलना है, उड़ना है हमें. तो जो भी ये सोच रहे हैं उनके लिए मूविंग अब्रॉड, मतलब मूव अब्रॉड करने से पहले क्या आप उनको कोई सीख देना चाहेंगी, कोई एडवाइस देना चाहेंगी?
1: आई थिंक मैं एक एडवाइस यही देना चाहूंगी कि आपकी मूविंग अब्रॉड जर्नी उधर जाके स्टार्ट नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपके अपने घर से ही. टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू अपहोल्ड योर वैल्यूज. इवन कतर में भी, अगर आप कतर में रह के अपनी वैल्यूज को इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रहे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जब आप मूव आउट करेंगे तो वो आपकी वैल्यूज आपके लिए कुछ मीनिंग नहीं रहेगी. सो आई थिंक आप कतर में रह के ही टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, अपनी वैल्यूज और अपनी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करे, अपने पेरेंट्स साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखे, अपने एजुकेशन पे, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, अपना एक सोशल सर्कल बनाने के लिए, नेटवर्क करने के लिए यू शुड वर्क वेरी हार्ड. यू शुड स्टार्ट वर्किंग इन डिफरेंट स्टूडेंट क्लब, स्टार्ट वर्किंग इन डिफरेंट स्टूडेंट सोसाइटी इन योर स्कूल, एंड आई थिंक and try to communicate as much as you can with your parents. It will really help you a lot. And like, start planning everything. Like, plan everything. Bindu, aapke plans, kabhi aapke jo aapne plan kiya tha, us tarah nahi jaate, magar start planning every single move of yours.
0: सही सही planning के साथ चलें. और ये show करें, showcase करें भाई अम्मा अब्बा को मेहरबानी करके कि हम responsible हैं.
1: जी
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. कामना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जिस जनरेशन को लोग अक्सर औकात ये कहते हैं कि भाई ये कुछ सोच समझ के नहीं करते, उनमें से बात करके ये अच्छा लगा कि नहीं, ये प्लान करके दे प्लान डिफरेंटली, दे हैव देयर प्लान्स, ऐसा नहीं कि दे डोंट जस्ट रश ऑन थिंग्स. अपना ढेर सारा ख्याल रखिए कामना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.
0: अच्छा भाई, ये थे हमारे साथ आमना और साथियों. जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज की कन्वर्सेशन में हमने मूविंग अब्रॉड यानी कि एक यंग पर्सन के प्रस्पेक्टिव से इसको जानने की कोशिश की. और देखिए, यंग जनरेशन की आंखों में ना बहुत सारे ख्वाब होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस है, फियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर एस्पायरेशंस हैं, और उनका अपना एक चीज़ों को समझने का एक अपना ही तरीका है. उसको आप कह लें कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, समझने की कोशिश करें. देखिए, आमना के साथ बात करते हुए ये सामने आया कि अब्रॉड मूव करना सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाश नहीं होती, ये अपने आप को नया एनवायरनमेंट देने, अपने आप को डिस्कवर करने, चैलेंजेस को फेस करने, डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने और अपनी आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का एक एक्सपीरियंस आप कह लें उनका होता है. और हर इंसान अलग तरीके से सीखता है, ये जनरेशन कुछ अलग तरीके से सोच रही है और कुछ अलग तरीके से सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही अपने घर, फैमिली, कल्चर और फेमिलियर सराउंडिंग से दूर जाना भी एक इमोशनल जर्नी होती है साथियों. हर यंग पर्सन के लिए, हर यंगस्टर के लिए सक्सेस का डेफिनेशन डिफरेंट हो सकता है. किसी के लिए सक्सेस अब्रॉड सेटल होना होता है, किसी के लिए अपनी कंट्री में रहकर कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना होता है, और किसी के लिए सिंपली अपने पैशन को फॉलो करना होता है. शायद इसीलिए किसी एक जनरेशन के पास फ्यूचर को कंप्लीट करना, या आप कह लें कि फ्यूचर को वो कहते हैं ना हम सक्सेसफुल हो गए, उसका मीनिंग हर किसी के लिए अलग होता है. ये जो यंग जनरेशन है इसके पास एनर्जी है, फ्रेश आइडियाज हैं, नए ड्रीम्स हैं, जबकि ओल्डर जनरेशन के पास एक्सपीरियंस है, विजडम है और लाइफ लेसन है. तभी जब माँ बाप अपने बच्चों को मूव आउट करने की बात कर रहे होते हैं तो उनके दिल में धड़का होता है कि क्या करें, बच्चे छोड़ें कि नहीं छोड़ें. ऐसे ही इंशाल्लाह हम जनरेशन टॉक कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में. आप इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी और हम बात करेंगे जनरेशन के डिफरेंसेस पर, एक्सपीरियंस को डिफरेंटली सेलिब्रेट करने पर. लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए हम हमेशा से ये कन्वर्सेशंस ब्रिज करते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, जनरेशन गैप खत्म कर सकते हैं. तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जनरेशन की कहानी के साथ. अंटिल देन सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी. स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर. आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107. Time check.
1: चेक चेक चेक माइक चेक टाइम चेक. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01, यानी ये वक्त हो चला है.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
1: ओ यस माय देसी ऑडियंस, क्या हालचाल है. देखो ये वक्त ना बड़ा शानदार होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे कतर में ज्यादातर लोग सड़कों पर होते हैं, या तो लेट ऑफिसेज के लिए जा रहे होते हैं या

ऑफिस से छूट रहे होते हैं या बहुत सारे काम हमें मिले होते हैं. फिलहाल आपकी ये फॉर अमिता इस टाइम पर अब रहने वाली है क्योंकि द रिक्वेस्ट शो अब ये मेरे नाम हो गया है. हाँ जी रिक्वेस्ट शो ये वो शो है जहां पर हम अपने दिल की बात जुबान से कम गानों के जरिए ज्यादा कहते हैं, है कि नहीं. तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले द साउंड ऑफ समर 26, यानी कि वो धुने जो फेस्टिव मूड से निकलकर हमारे दिलों को छूती हैं, या वो इंडी पॉप्स जो वो कहते हैं ना कि हमारी हर एक सोशल मीडिया रील्स पर राज कर रहे होते हैं, या वो चार्ट बस्टर हिट्स जो हम सबकी जुबान पर चढ़ गए होते हैं. तो आज किसे कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ सोचा है? Well, सोचा नहीं है then you should think, come on. मतलब आज हम हिट गाने मतलब साउंड ऑफ समर 26 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा गाना है जो आपके मूड को बिल्कुल रिफ्रेश करता है, एनर्जी को बिल्कुल बढ़ा देता है एंड यू फील कि वो गाने आपको सुनने हैं, या एट द सेम टाइम आप किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं? देन हमारी फोन लाइंस खुली है. देखिए हमारा कॉल इन नंबर है 4434377, 4434377.

है कि नहीं, और ये आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है जनाब, तो इसका लुत्फ उठाइए, फटाफट हमें मैसेज करें, कॉल करें और अपने पर्सनल रिक्वेस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट करें, और मैं आपकी ड्राइव सीट पर बैठी हुई हूँ अमिता, एंड डेफिनेटली जो गाना आप रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ हम प्ले करेंगे। और अभी के लिए ये पहला डेडिकेशन है भाई, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम है। ये गाना मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा न जाने कब से है। आई होप यू गोना लव इट। सो वॉल्यूम बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
6: चले तो कट ही जाएगा सफर।
5: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
7: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Yes, and now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप। The request है जनाब, and literally अभी जब मैं अपना WhatsApp messages का ये पूरा जो sheet है ये देख रही हूँ, literally मुझे लग रहा है हाय क्या request आई है जनाब, क्या request आई है। तो सबसे पहली request आई है प्रिंसन के लिए, और इस वक्त गुड इवनिंग है आपको। कहते हैं कि उनके कॉलेज मेट, उनका बहुत ही पुराना दोस्त है गणेश पाई उनका नाम है, और आज उनका बर्थडे है। कहते हैं अमिता ये गाना जो मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या आप इसे बजा सकती हैं, क्योंकि मुझे ना सिंगर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये गाना मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड का फेवरेट सॉन्ग है। सो कैन यू प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। बड़ी खतरनाक सी रिक्वेस्ट आई है। अच्छा देखते हैं कि हमारे लिसनर्स इस धुन को पहचान पाते हैं या नहीं। वेल अल्ताफ राजा, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस सॉन्ग। मतलब जब ये गाना आया था तो ऐसा वो कहते हैं ना कि ऐसी कोई शादी पार्टी नहीं थी जहाँ पर ये गाना नहीं प्ले होता था। प्रिंसन ऑफ कोर्स वी विल प्ले दिस सॉन्ग, एंड आपके फ्रेंड गणेश को हैप्पी वाला बर्थडे FM 107 की एंटायर टीम की तरफ से। प्लस ये गाना हमारे ऑफिस में भी हमारी प्रोडक्शन टीम के नदीम जी को बहुत पसंद है, सो आई एम वेरी श्योर कि ये गाना अभी हर कोई फुल वॉल्यूम पर सुनेगा। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब ये आपकी राहों में आ रहा है। और उसके बाद एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है विच इज़ क्वाइट एन इमोशनल, एंड ये हमें रिक्वेस्ट की है सैयद हुसैन साहब ने, एंड दिस सॉन्ग इज क्या बात है। आज हमारे लिसनर्स काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गाना तेरे नाम हमने किया है, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। और ये गाना वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बेटी को। सो डेफिनेटली सैयद साहब ये गाना भी आपके नाम होगा, लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे प्रिंसन की रिक्वेस्ट। उफ, एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: हाँ जनाब, तो कैसे लग रहे हैं ये हिटेड गाने आपकी अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट से निकलकर आज द रिक्वेस्ट शो पर आ चुके हैं? क्यों बताओ, कैसा लग रहा है?
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: सीरियसली, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपके पसंद के गाने यहाँ मुझे मौका मिल रहा है आपके लिए प्ले करने का। एंड आज मुझे लग रहा था कि जब हम कह रहे थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे ये समर 26 के हिट नंबर्स, तो कुछ ऐसे एकदम धूम धड़ाके वाले गाने आएंगे, लेकिन काफ़ी इमोशनल सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई हुई है। सो स्टिल, गाने तो गाने होते हैं, जो दिल को अच्छा लग जाए, है कि नहीं? वेल, अभी हमें मैसेज आया है दिलबर अली का, जो कि काफी इमोशनल लग रहा है। ही वांट टू लिसन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। उफ, वाओ, बिरसा फिल्म से राहत फतेह अली खां की आवाज एंड फरहा, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मैं तेनू समझावा की। लेकिन आप ये गाना किसे डेडिकेट कर रहे हैं, आपने बताया नहीं? ज़रूर शेयर करें हमसे, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद एक और बड़े मज़े के गाने की रिक्वेस्ट आई है, और मुझे लगता है कि ये तो एक्चुअली समर्स को डेडिकेटेड है, और ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं इमरान बानी। क्या बात है, गोरे गोरे मुखड़े पे, वेरी नाइस। वेल, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आएंगे, और जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि अमिता हमारा वाला गाना कब आएगा, हमारा वाला गाना कब आएगा, तो आएगा, इत्मीनान रखिए। ये नंबर नोट कीजिए, 6622107, 6622107, इस पर आप मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ। एंड डेफिनेटली आज का ये जो पहला शो है, वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लक भी काम आता है, अगर लक रह गया तो आज आपके गाने हम यहाँ प्ले कर देंगे, और नहीं रहा तो भी ये शो आपके साथ चलता रहने वाला है पूरा हफ्ता। तो हर दिन आपके पास मौका होगा अपने पर्सनल गानों को यहाँ सुनने का। सो यस, मैं तैनू समझावा कि ये वो गाना है जिसमें बस इत्मीनान चाहिए, है कि नहीं? गाड़ी फास्ट नहीं, स्लो चलती है, और करक इंजॉय करें, कॉफी इंजॉय करें, और खूबसूरत ख्यालों में खो जाएं। सो लेट्स इंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक टुगेदर। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. भाई द रिक्वेस्ट शो में जो मजा आ रहा है ना, मतलब पूछिए मत. एक से बढ़कर एक हमारी प्लेलिस्ट के गाने हमें मिलते जा रहे हैं एंड हमारे लिसनर्स कह रहे हैं अमिता मेरा वाला गाना कब बजेगा. ऑफ कोर्स बजेगा. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स यहाँ प्ले होने वाले हैं. देखो मैं ना अपनी जुबान पर बहुत लगाम लगा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा कम बोलूँ और आपकी

जुबान या आपके दिल के जो आवाज है वो गानों के जरिए यहाँ पर फुल वॉल्यूम पर प्ले हो, है कि नहीं? वेल, अभी हमें रिक्वेस्ट आई है, यहाँ हमारे रेगुलर लिस्टर मोहम्मद यूसुफ खान हैं, इनके साथ एक और मोहम्मद हैं, इनके साथ रिजवान हैं, इन सब ने इस इंडी पॉप गाने की रिक्वेस्ट की है, जो मुझे लगता है किसका फेवरेट नहीं होगा, हर किसी का फेवरेट सॉन्ग है भाई। ये म्यूजिक सुनते ही हमें याद आ जाते हैं वो इंडी पॉप का जमाना, जब एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल वीडियोस आ रहे थे, गाने आ रहे थे, और जब भी टेलीविजन पर ये गाने आते थे तो वी यूज टू फील कि बस मतलब यही जन्नत है, यही बेस्ट चीज़ है, हमें मजा आ गया, है कि नहीं? सो अलीशा चिनॉय की आवाज़ में ये गाना आप कुछ ही देर में सुनेंगे, देखी है सारी दुनिया जापान से लेकर रशिया, मेड इन इंडिया। एंड स्पेशली जब ये गाना और इस गाने का वीडियो आया था, इसमें मिलिंद सोमन उफ, जब वो सामने आए तो ऐसा सुनने में आता है कि इस पर्टिकुलर गाने की वीडियो के बाद न जाने उन्हें कितने सारे शादी के रिश्ते आने लगे थे। yes, तो ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक गाना है जो कि थोड़ी देर में आपकी राहों में आएगा। और उसके बाद एक ऐसे गाने की रिक्वेस्ट आई है, मतलब क्या कहूँ, इसकी धुन ही सुन लीजिए आप। मतलब मुझे लगता है कि फादर ऑफ ऑल बॉलीवुड सॉन्ग है भाई ये गाना। मोहम्मद इब्राहिम ने रिक्वेस्ट किया कि अमिता ये गाना प्ले कर दो, बस कैसे भी करके ये गाना हमें सुनना है, विश्वात्मा फिल्म का ये गाना है। सो डेफिनेटली ये दोनों ही गाने, अलीशा चिनॉय की आवाज़ और साधना सरगम की आवाज़ में, ये दोनों गाने आपकी राहों में आएंगे। एंड हमारे कुछ लिसनर्स पूछ रहे हैं, अमिता आज का थीम क्या है? भाई आज हम हमारे सेप्टेम्बर के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम समर 2026 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज जो आपके दिल में गाने बज रहे हैं ना, वही हमारे आज के शो की थीम है। So yes, 666-22107, 666-22107 पर हमें मैसेज करें अपने फेवरेट गानों की रिक्वेस्ट, और बने रहे हमारे साथ। Stay tuned.

0: सीरियसली मतलब कोई अगर इतनी मोहब्बत करे और आपके पीछे सात समुंदर आ जाए तो भाई ऐसे शख्स को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वेल साधना सरगम की आवाज, बेहद खूबसूरत गाना, आई एम श्योर आप सभी ने एंजॉय किया हमारे द रिक्वेस्ट शो पर।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: यस वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मतलब मजा आ गया आज का पहला एपिसोड और हमारे समर 2026 को जो सेलिब्रेट किया है आपने ना, मतलब क्या शानदार प्लेलिस्ट बना दी आज की आपने। वेल अगली रिक्वेस्ट है मिस्टर का नाम जरा देख लिया जाए, देखिए नाम जरा लिखा करें, हमेशा मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। शेख इरफान, इनकी रिक्वेस्ट है और ये ट्यूबलाइट फिल्म का आतिफ असलम का कोई गाना सुनना चाहते हैं और ये गाना शायद ये खुद को ही डेडिकेट कर रहे हैं। वैसे इरफान भाई, अगर किसी खास को भी डेडिकेशन है, कोई इस गाने के पीछे की कहानी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? सो यस डेफिनेटली ये गाना मैं आपके लिए प्ले करूँगी, विच इज़ मैं अगर। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है भाई, वाओ, आतिफ असलम एकदम रूहानी आवाज़ है इनकी। प्रीतम चक्रवर्ती का म्यूजिक है एंड दिस सॉन्ग इज जस्ट कमिंग अप ऑन योर वे। वेल हमारे बाकी लिसनर्स जो कि अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि आप बेशक हमें मैसेज करें 6622107 पर 6622107। एंड इस गाने के बाद हम आपके लिए क्विज लेकर आ रहे हैं, वो भी गानों से रिलेटेड है, बस देखेंगे थोड़ा बहुत फिल्मी नॉलेज आपका आजमाना तो बनता है कि नहीं, है कि नहीं? सो 6622107 इज आर नंबर, अपने पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट किसी खास स्टोरी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ ना आपके लिए। ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ प्ले होंगे सिर्फ आपके पसंद के। फिलहाल आतिफ असलम आ चुके हैं, सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: क्या बात है, क्या इमोशनल ट्रैक है ना आतिफ असलम की आवाज़ में कि बस बस सिर्फ मेरा है तू। वाओ, अ ब्यूटीफुल डेडिकेशन, थैंक यू सो मच गाइस। जिस तरह से आप अपने पसंद के गाने यहाँ पूरे हक से डिमांड करके प्ले करवा रहे हैं ना, दिल इतना खुश हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक मोमेंट, यू नो, ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप से इन म्यूजिक के थ्रू, इन गानों के थ्रू मिल रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: Yes, now welcome once again, और ये द रिक्वेस्ट शो आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है जहाँ पर आप अपने पसंद के गाने इंजॉय करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि थोड़ा सा आपका फिल्मी नॉलेज चेक करने का वक्त आ चुका है।
1: क्विज टाइम।
0: तो क्विज टाइम पे क्या होने वाला है? क्विज टाइम पे ये होगा कि मैं आपको एक गाना बीच से सुनाने वाली हूँ और आपको ये गाना पहचानना है, ठीक है? अगर आपने पहचान लिया तो डेफिनेटली ये गाना मैं पूरा प्ले करूंगी और ये गाना होगा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम। इट विल बी डेडिकेटेड टू यू ओनली। सो नाउ गेस द सॉन्ग। क्या बात है, पहचाना कि नहीं पहचाना? वेल, अगर ये गाना पहचान लिया है तो जल्दी से अपने नाम के साथ हमें 666-22-107, 666-22-107 पर बताएं इस गाने का नाम। एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग इस गाने पर, वो कहते हैं ना, हक जमा पाते हैं, काबू कर पाते हैं। तो ये गाना मैं पूरा प्ले करूंगी बस कुछ ही देर में। लेकिन अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आई थी और ये रिक्वेस्ट आते आते मेरे हाथों से डिलीट हो गई। आए हाय हाय, मतलब मैंने डिलीट नहीं करी, हमारे उस्मान भाई ने डिलीट कर दी। भाई, मैं आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ना प्ले करने वाली हूँ। सो उस्मान भाई ने रिक्वेस्ट की है अलका याग्निक एंड मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गाना। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। गेस किया आपने? खुदा गवाह फिल्म का ये गाना है और आप जब ये रिक्वेस्ट करें तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तो ये तो सुनना तो बनता है कि नहीं? चलिए एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या बात है अलका याग्निक एंड मोहम्मद अजीज की आवाज में ये ब्यूटीफुल सी डेडिकेशन अभी हमने एंजॉय की. वेलकम है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी.
0: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? आर यू गाइज एंजॉयिंग ये हिट हिट गाने? Well, the request show पर हमने एक छोटा सा क्विज आपके सामने प्ले किया एंड इट वॉज कि एक गाना था उसको हमने बीच से प्ले किया और कहा कि ये गाना पहचानो. अगर आपने पहचान लिया तो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा मैं प्ले करने वाली हूँ और इट विल बी डेडिकेटेड टू यू. सो गाना था हाँ तो मैंने कहा था कि बताओ बताओ पहचानो पहचानो ये गाना कौन सा है. So definitely हमारे listeners ने बिल्कुल सही पहचाना है and the song is मेरे रश के कमर. क्या बात है. Well, जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है आइए जरा उनके नाम हम देखते चलते हैं कौन कौन है हमारे साथ. तो आसिफ ने हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है, हुसैन ने सही जवाब दिया है, फलक इरफान इन्होंने सही जवाब दिया है, अनवर इन्होंने भी सही जवाब दिया है एंड लिस्ट बढ़ती जा रही है. अदील ने भी हमें सही जवाब दिया है एंड हु इज दिस, देखिए नाम लिखना ज़रूरी होता है. सैयद ने भी सही जवाब दिया है. कमर नहीं, इनका नाम क्या है भाई? देखो नाम तो लिख दो. मकसूद, यस मकसूद ने हमें सही जवाब दिया है. और भी कई सारे हमारे लिसनर

है जिनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो भाई जिन्होंने भी हमें सही जवाब दिया है, सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। और फिलहाल ये बेहद खूबसूरत गाना आप सबके नाम होने जा रहा है, जिन्होंने इसे पहचाना, मेरे रश के कमर आपकी राहों में आ रहा है। एंड यस, इसके बाद एक आखिरी रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं, तो जल्दी से हमें मैसेज करें 666-22-107 पर और अपनी दिल की कहानी इस गाने के जरिए बयां कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड FM 107 पर दिल से देसी।

0: क्या बात है, इस गाने को सुनकर वाकई में मजा आ जाता है कि नहीं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस गाने की रिक्वेस्ट की, और यूं कहे तो हमारे ये कॉन्टेस्ट का गाना था जिसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, और फाइनली इस गाने को पहचान कर इसे अपने नाम आपने किया। आप सभी का तहे दिल से फिलहाल इस्तकबाल है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से।
0: हाँ जनाब, तो हमारा द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है।

गाना प्ले नहीं कर सकते, बट एमके आपके लिए हम एक बहुत ही बेहद आई शुड से एक खूबसूरत गाना प्ले करेंगे. यस, आफरीन आफरीन. और इस गाने की रिक्वेस्ट की है जीशान शरीफ ने भी, तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए. और हमारे साथ पहली बार जुड़े थे रुबेल इब्रार, तो बहुत बहुत शुक्रिया. द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 बजे आपकी फरमीता लेकर आएगी, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा. एंड अब मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त है मेरे जाने का. आपकी मेरी मुलाकात अब कल होने वाली है, तो कहीं ना जाएं. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: يا رب العالمين.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, दिलों की इस्लाह और उम्मत की वहदत के हवाले से बहुत ही एक अहम दुआ, इसका जिक्र हदीस में है। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। ए अल्लाह, हमारे दिलों को जोड़ दे और हमारे आपस के ताल्लुकात दुरुस्त फरमा। यानी दरअसल इन दो जुमलों से ये सिर्फ कोई जज्बाती दुआ नहीं मकसद है, बल्कि यहाँ फ़िरक़ावारियत का इलाज, घरेलू झगड़ों का इलाज, जमाती इख्तिलाफात का इलाज, उम्मत की कमज़ोरी का इलाज। क्योंकि जब दिल जुड़ जाते हैं तो लश्कर बन जाता है, और जब दिल टूट जाते हैं तो उम्मत बिखर जाती है। इसी तरह जो है ना, हिदायत, नजात और अख़लाक़ी पाकीज़गी इसके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि उम्मत जुड़ कर रहे, एक उम्मत बन जाए। इसी वजह से दुआ का अगला जो हिस्सा है उसमें अल्लाह से ये बात मांगी जा रही है कि अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, सलामती के रास्ते दिखा, वहदीना सुबुल सलाम, वनजीना मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर, हमें हर अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आ, वजन्निबनल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, हमें खुले और छुपे हर फहश हर गुनाह से बचा ले। सामिन किराम, हिदायत, नजात और हिफाजत, ये तीन स्टेप्स हैं। रास्ता दिखाना यानी हिदायत, नजात यानी गंदगी से निकालना, और गिरने से बचाना कि गुनाह के आलूदगी से हम अपने आप को आलूदा न करें और किसी खड्डे में गिर न जाए और फहश फाहिशी के मुर्तकिब न हों। तो इस वजह से जन्नबनल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, हमें दूर रख इन फहश फाहिशी, चाहे वो खुले हो चाहे वो छुपे हो, हर किस्म के फहश फाहिशी से हमें दूर रख मेरे मौला। तो हक दिखाया जाए, बातिल से निकाला जाए और दोबारा गिरने से भी बचाया जाए। ये है हमारी तमन्ना, हमारी दुआ अपने रब के दरबार में। मज़ीद ये भी तलब है कि जो नेमतें हमें दी गई इसमें बरकत अता कर। हाँ, तो ये बहुत ही एक अहम एक हिस्सा है, चूँकि अल्लाह सुब्हान व तआला अगर हमें चीज़ों में बरकत नहीं देंगे, वो बरकत ये जो रूहानी ग़िज़ा है, ये चीज़ें अगर नहीं रहती तो हमें जो है ना अपने काम, अपने किसी भी उमूर में हमें इत्मीनान नहीं मिलेगा। बरकत है तो रहमत है, तो इत्मीनान है, तो सब कुछ है। बरकत नहीं है तो बंदा हर वक्त मारा मारा फिरेगा। और इसी वजह से इस दुआ का अगला हिस्सा बरकत की तलब के हवाले से है कि अल्लाह बरकत दे, बारिक लना फी अस्माइना, हमारे कानों में, व अबसारिना, हमारी आँखों में, व कुलूबिना, हमारे दिलों में, व अज़्वाजिना, हमारे घर वालों में, व ज़ुर्रियातिना, हमारी औलादों में। यानी बरकत दे इन तमाम चीज़ों में। यानी बंदा सिर्फ यहाँ नेमत नहीं मांग रहा, बल्कि नेमत का सही इस्तेमाल भी मांग रहा है कि जी बरकत दे, यानी इसको जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो यही बरकत का मुजाहरा है। हाँ, बरकत है या जहमत है, नेमत है या जहमत है, ये चीज़ें तब समझ में आएगी ना जब अल्लाह की नेमतें हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आँख हो मगर हराम देखे तो ये वबाल है।

0: दिल हो मगर हसद करे तो ये वबाल है, औलाद हो मगर नाफरमान तो ये आजमाइश है, इसलिए मांगा गया कि नेमत भी दे और इसमें बरकत भी दे मेरे मौला। और आगे तौबा की तलब है कि मेरे अल्लाह हे मेरे मौला तो हमारी तौबा कबूल फरमा, व तुब अलैना व जअलना शाकिरीन लिनअमिक मुस्नीन बिहा अलैक काबिलीन लहा व अतमिमहा अलैना, यानी अपनी नेमतों का शुक्र गुजार बना दे, तेरी नेमतों पर तेरा सना खां बना दे। यानी ऐसे भी तो लोग होते हैं जो सिर्फ नेमतों के बावजूद शिकायत करते हैं, तो हमें या रब वैसे न बना बल्कि तेरी नेमतों पर तेरा सना खां बना दे, काबिलीन लहा हमें नेमत को कबूल करने वाला बना दे, वत्मिमहा अलैना नेमतों को हम पर मुकम्मल फरमा दे, यानी नेमत छिन न जाए, गुनाहों से बर्बाद न हो, आजमाइश बनकर वबाल न बने बल्कि अंजाम भी खैर पर हो। तो इस तरह दुआ के चारों जुमलों में हम गोया ये कहते हैं, मजमू मफहूम ये है इस दुआ का कि या अल्लाह हमें नेमत दे भी, शुक्र भी सिखा, हमें गुरूर से बचा, दिल से भी राजी रख और इस नेमत का अंजाम भी जन्नत बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

Assalamualaikum and welcome to Tech Update. मैं जी दोहा वाला कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड और हाजिर हूँ टेक अपडेट लेकर. बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको जितनी आसानी से समझा सकता हूँ उतनी मैं पूरी कोशिश करूंगा. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर. सबसे पहली चीज जो आपके बहुत काम आ सकती है और इनफैक्ट उन लोगों के काम आ सकती है जो एडिटिंग तलाश रहे हैं, जिन्हें फैंसी फैंसी चीजें चाहिए, उनके बहुत काम आने वाली है. तो एक वेबसाइट जरा कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या करती है बाद में बताऊंगा लेकिन नाम पहले जरूरी है याद रखना. इसका नाम है unicorn.studio.com. स्पेल आउट कर देता हूं, UNICORN unicorn.studio studio.com. अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हैं. आपने देखा यूट्यूब पे लोग जब जाते हैं अपने पेजेस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, सो दे टेंड टू हैव दिस वेरी क्रिएटिव इंट्रो. कुछ लोग चाहते हैं इंट्रो बनाना, कुछ लोग चाहते हैं वीडियो में बीच में कुछ प्लगइन्स लगाना, ऐसे वीडियोज बना देना जो उनकी चीज से मैच कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो या उनका जो भी जिस बारे में भी वीडियो है उससे जुड़े हुए हों. सो दे यूज दिस. ये बहुत ही प्रोमिनेंट है. इनफैक्ट जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे और बहुत सारे एनिमेशन नजर आएंगे. उसमें फेड इन फेड आउट तो है ही, वेरी सिंपल. बट देन उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है वो भी आपको नजर आएगा. और जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पर जाके उन्हीं टेम्पलेट्स को फॉलो करें. आप अपने खुद से भी, मतलब यू कैन ट्राई योर ओन वे, उसे क्रिएटिव वे में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज और उस इमेज को एक पूरा एनिमेशन दे सकते हैं. तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत बहुत बहुत काम की है. एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशन जो फ्री टू डाउनलोड हैं और आप उन्हें डाउनलोड करके सिंपली अपने पास रख सकते हैं. इससे ज्यादा आसान कोई चीज हो नहीं सकती. हाईली रिकमेंडेड इफ यू प्लानिंग टू ओपन अ चैनल या फिर एक इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं. बिकॉज जब आपका इंट्रो बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अच्छी तरह से एल्गोरिथम के कंधे पे हाथ रख देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा. तो ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा अब जरा बढ़ेंगे एक बहुत जरूरी चीज की तरफ जो आपको कोडिंग सिखाएगी. नहीं, वो वाली कोडिंग नहीं जो डिफिकल्ट होती है, आसान वाली कोडिंग आपको सिखाएंगे जो आपके काम आ सकती है. अब कैसे, ये है चीट कोड्स, सुनिएगा जरूर. तो देखिए बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो काम आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी दुनिया भी यूज कर रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारा अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है मामला. ऐसा कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर इज द चीट कोड्स. गेम्स में होते हैं ना चीट कोड्स, वैसे ही चैट जीपीटी भी होते हैं. अब मान लीजिए आपने अपना फोन जो है वो एक्सप्लोर करना है कि भाई मेरे फोन के कंपोनेंट क्या है, मान लो इसे मुझे खोलना पड़ जाए, मैं खुद कुछ सीखना चाहता हूं, तो यू कैन डू दैट. आपको क्या लिखना है उससे, अपने फोन का कोई भी नाम लिख देना. मान लीजिए आपका आईफोन है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसका नाम लिखा लेकिन नाम से पहले आपको एक चीज लिखनी है, वो है

0: एक्सप्लोड व्यू, एक्सप्लोड व्यू, शुरुआत से बताता हूं, फॉरवर्ड स्लैश डालिएगा एक्सप्लोड व्यू, प्लोर नहीं एक्सप्लोड, और उसके बाद अपने फोन का नाम लिखिएगा जो जो मॉडल नंबर है, फॉर एग्जांपल 17 प्रो है, 16 प्रो, व्हाटएवर। तो जब आप ये लिखेंगे उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो वो पूरे के पूरे फोन के कंपोनेंट्स को अलग कर देगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, आपकी आंखों के सामने पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा और वो एक एक चीज आपको बता देगा कि फोन का ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ, और ये हिस्सा ऐसे ओपन होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक और आपको चीट कोड देता हूँ, और ये चीट कोड भी चैट जीपीटी का ही है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको जो है जानना है कि कोई मोटर है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरेटर है, छोटी सी चीज ले लेते हैं, कोई इन्वर्टर है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानना है, या कोई मशीनरी जो आप खुद ठीक करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है forward slash sticky notes sticky notes ये लिखने के बाद जब आप स्पेस देंगे, स्पेस देकर आपको कोई भी मशीन आपके सामने है उसके बारे में पूछ लीजिए, और आपको पूरा का पूरा स्टिकी नोट्स के जरिए लाइक अ टॉडलर ये बताएगा। एंड इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये काम आता है भाई, आप ट्राई करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। कई सारी चीजें हम खुद भी ठीक करना चाहते हैं पर हमें पता नहीं होता है, तो यही मौका है मैकेनिक बनने का मेरे भाइयों, बहुत काम आएगा आपके। ट्राई दिस वन आउट एंड लेट मी नो के इफ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और बाकी आने वाले जो एपिसोड होंगे उनमें आपको मैं और भी चीट कोड्स बताऊंगा। इफ यू लव टू नो मोर चीट कोड्स ऐसे ही चैट जीपीटी के और बाकी एआई के भी बताता रहूंगा। ऑलराइट, एंड लास्ट में एक खबर, खबर बड़ी सिंपल है, ये है खबर गेमिंग की दुनिया से, मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है। अभी तक एल्डन रिंग का कोई भी तोड़ू गेम उसको कंपटीशन देने के लिए नहीं आया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मॉर्टल शेल इज द एल्डन रिंग किलर, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत अच्छा गेम है यार, मैं बुरा नहीं कर पाऊंगा। मॉर्टल शेल 2 इज डेफिनेटली अप देयर, मतलब होता नहीं है कि बस भाई वो सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे 19-20 का फर्क होता है, तो यहां पे 18-20 का फर्क है। मॉडल शेल डेफिनेटली रिकमेंडेड ऑन द लिस्ट। अगली बार मिलते हैं, जाएगा नहीं टेक अपडेट में, मैं दुहा वाला कबीर दिल से अपडेट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
4: गेम चेंजर Season 2.
5: Number 1 hits music station.
4: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
7: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki RJ Mahavish. इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत एक खूबसूरत बाग की तरह है जहाँ हर फूल अपनी अलग खुशबू रखता है। इस बाग में मेहमान नवाजी, खानदान, अदब, रिवायत और अपने विरसे से मोहब्बत शामिल है। कतर की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ इमारतों और शहर को देखना काफी नहीं बल्कि उन रवैयों और रिवायतों को महसूस करना जरूरी है जो लोगों के दिलों में महफूज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेहमान नवाजी की। कतरी माशरे में मेहमान को इज्जत देना बहुत कीमती रिवायत है। किसी मेहमान का घर आना खुशी का मौका समझा जाता है। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम करना, बैठने की जगह पेश करना, कहवा और खजूर से तवाजो करना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं मगर इनमें बहुत गहरा प्यार छुपा होता है। कहवा पेश करने का अंदाज भी एक सकाफती पहलू रखता है। छोटे प्याले में अरबिक कहवा पेश किया जाता है और साथ खजूर रखना अपनायत की अलामत समझा जाता है। ये सिर्फ एक मशरूब या खुराक नहीं होता बल्कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू और रابطے का जरिया बन जाता है। एक प्याला कहवा किसी अजनबी को भी मेहमान और फिर अपना बना सकता है। कतर की सकाफत में खानदान को भी मरकजी अहमियत हासिल है। घर के अफराद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, खुशी और मुश्किल में साथ देने और रिश्तों को मजबूत रखने को जरूरी समझते हैं। बच्चे अपने बुजुर्गों से अदब, मोहब्बत और रिवायत का दर्ज हासिल करते हैं। बुजुर्ग घर की यादों और तजुर्बों का खजाना होते हैं। उनकी बात सुनना और उनका ख्याल रखना इज्जत के साथ साथ सीखने का भी मौका होता है। कतरी माशरे में अदब और एहतराम की रिवायत रोजमर्रा के रवैयों में नजर आती है। सलाम करना, खैरियत पूछना, मेहमान को तवज्जो देना और गुफ्तगू में नरमी रखना इखलाक का हिस्सा है। छोटी उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है कि मिलने वालों से अच्छे तरीके से पेश आए और दूसरों के एहसास का ख्याल रखें। कतर की सकाफत का एक और खूबसूरत पहलू इसका समंदर से रिश्ता है। कतर एक जजीरा है इसलिए समंदर ने यहाँ की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। पुराने जमाने में मछली पकड़ना और मोती हासिल करना समंदरी जिंदगी का हिस्सा था। गांव जैसी रिवायत, कश्तियां इस सफर की याद दिलाती हैं। आज भी समंदरी विरसा कतर की सकाफती पहचान का अहम हिस्सा है। मोती यानी

0: पर कतर के वर्से में खास जगह रखते हैं। मोती की चमक सिर्फ एक कीमती चीज की चमक नहीं बल्कि मेहनत, सबर और समंदरी सफर की कहानी भी है। मोती हासिल करने के लिए लोगों को पानी, मौसम और कश्तियों के सफर को समझना पड़ता था। इसी वर्से को याद रखने के लिए समंदरी नुमाइशें, कश्ती के त्यौहार और सकाफती एहतमाम मुनज़्ज़म किए जाते थे। कतर की सकाफत का रिश्ता डेजर्ट और बदवी वर्से से भी है। रेगिस्तान ने लोगों को सबर, मेहमान नवाजी और मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ देना सिखाया। सफर, ऊंट, टेंट्स और रेगिस्तानी जिंदगी से जुड़ी रिवायत आज भी वर्से के तौर पर महफूज है। रेगिस्तान सिर्फ खाली जमीन नहीं बल्कि यादों, कहानियों और तजुर्बों का एक खूबसूरत सफा है। बास पालना, जिसे फैल्कनरी भी कहा जाता है, कतर की मशहूर रिवायती सरगर्मियों में से एक है। बास की तरबियत के लिए सब्र, तवज्जो और जिम्मेदारी जरूरी होती है। इस फन के जरिए फितरत के साथ रिश्ता कायम होता है और इंसान परिंदों की खूबियों और जरूरियात को समझता है। आज फैल्कनरी वर्से और रिवायती हुनर के तौर पर कदर की जाती है। रिवायती लिबास भी कतर की पहचान का अहम हिस्सा है। मर्दों का थोप, कुतरा, जबकि खवातीन के मुख्तलिफ लिबास और जेवर सकाफत के वक़ार, खूबसूरती और सलीके का इजहार करते हैं। इन लिबासों का अंदाज मौका और मौके महल के मुताबिक बदल सकता है। खास तकरीबात पर लोग अक्सर अपनी रिवायती पहचान को फख्र के साथ पेश करते हैं। कतर की सकाफत में काश्तकारी, दस्तकारी और रिवायती हुनर भी अहमियत रखते हैं। सादू वीविंग, कढ़ाई, खजूर के पत्ते से बनी अशिया और दूसरे दस्तकारी के काम लोगों की महारत और तसव्वुर का इजहार करते हैं। ये हुनर सिर्फ पुरानी चीजों बनाने तक नहीं बल्कि नस्लों के दरमियान इल्म और हुनर मुंतकिल करने का जरिया है। जदीद कतर में भी रिवायत अपनी जगह कायम है। म्यूजियम, सकाफत मरकज, बाजार और वर्से के ये हुनर सिर्फ पुरानी चीजें बनाने तक महदूद नहीं बल्कि नस्लों के दरमियान इल्म और हुनर मुंतकिल करने का जरिया है। जदीद कतर में भी रिवायत अपनी जगह कायम है। म्यूजियम, सकाफती मरकज, बाजार और वर्से के जरिए लोगों को अपनी सकाफत समझने और दूसरों के साथ शेयर करने का मौका देते हैं। जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी और तरक्की के साथ कतर अपनी रिवायती पहचान को भी संभाल रहा है। कतर की सकाफत का असल हुसन इस बात में है कि ये लोगों को राब्ते, इज्जत और शुक्रगुजारी का पैगाम देता है। यह वर्सा सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानी नहीं बल्कि आज की कहानी, आज की जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई शख्स मेहमान का खैर मकदम करता है, बुजुर्ग की बात सुनता है, घर वालों के साथ वक्त गुजारता है या अपने रिवायती लिबास को फख्र के साथ पहनता है तो वो इस सकाफत को जिंदा रखता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि कतर की सकाफत मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी हुई एक खूबसूरत तस्वीर है। इस तस्वीर में कहवे की खुशबू, खजूर की मिठास, समंदर की यादें, रेगिस्तान की वसत और लोगों के दिलों की गर्मी शामिल है। ये सकाफत हमें मोहब्बत, अदब और वर्से की कदर करना सिखाती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: जल्दी करो जल्दी, हेडफोन कहाँ है? माइक ऑन किया कि नहीं? अरे नया नया शो है यार, तुम सब कुछ पुराना ही है। टाइम चेक करो यार, देखो 6:02 हो गया यार तुम्हारे चक्कर।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी, सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। ये शो चेंज हो चुका है, 4 नहीं बज रहे भाई, 4 नहीं बज रहे, 6 बज रहे। हाँ, शाम का वक्त है, डूब गया वो जो तेज धूप दिया करता था, वो डूब गया है। अब गर्मी नहीं होगी, अब भयंकर गर्मी होगी बाबा। कहेगी ये डूबने के बाद ज्यादा गर्म हो जाता है। इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, FM 107 पे ये शो है अनप्लग्ड इवनिंग। हर रोज अब आपको 6 से 7 मैं यहाँ पर मिलूंगा। एक गलती हुई, 6 से 7 हर रोज नहीं, फ्राइडे सैटरडे थोड़ी तो यार सांस लेने दो भाई मेरे को भी। फ्राइडे सैटरडे नहीं बोलूंगा, बाकी तो मैं बाकी दिन यहीं पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मजा आएगा भाई साहब, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात, शाम को 6 बजे हो रही है। वैसे तो हर रोज मुलाकात हमारी और आपकी हो रही थी 4 बजे द रिक्वेस्ट शो में, जहां पर आपकी अपने मर्जी के गाने चल रहे थे। लेकिन वहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए, अब आपको अमिता मिलेंगी, मैं आपको शाम को मिलूंगा 6 से लेकर 7 बजे तक। बाकी और सुनाओ क्या हाल चाल, नए जो पुराने हैं, मतलब जो 4 से 5 वाले अभी भी अगर हैं।

0: हैं जिंदा तो वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप अपना बताओ, नए लोग हो, ठीक ठाक हो, सब चंगा है, भला है, जिंदगी कैसी चल रही है। बाकी तो हम हर रोज आएंगे, हम लेते रहेंगे आपका ख्याल, खैर व खैरियत पूछते रहेंगे कि ठीक है कि नहीं ठीक है, सैलरी आ रही टाइम से, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो बताना नहीं फिर भाई मैं क्या कर पाऊंगा इसमें। लेकिन अपन यहाँ पर जिंदा रहेंगे, शाम को 6 से 7 हर रोज मिलेंगे अनप्लग्ड इवनिंग के शो में, फजील के साथ आप रहने वाले।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: तो यहाँ पर आपके गाने भी चलेंगे और ये सारे अनप्लग्ड गाने बड़े ही लाजवाब, बेहतरीन आपके लिए प्ले किए जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। उसके अलावा सवाल होगा, सवाल हर नए दिन में एक नया सवाल होगा, उस पर आपका जवाब होगा और फिर खत की दुनिया वापस लेकर आएंगे जैसे अनप्लग्ड इवनिंग में हम किया करते थे, है ना। एक सवाल और उस पर आपका खत, बड़ा ही मज़ेदार खत होता है। आप लोगों ने जो पिछली बार खत लिखा था भाई साहब, मुझे अभी तक याद है कुछ खत, बस क्या है ना कि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मज़ेदार खत होते हैं। आपने जो वन लाइनर खत मारे हैं मुझे कई लोगों ने, वो अभी भी याद रहे, और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही ये खत तैयार रहेंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब शुरू करते हैं, आज का टॉपिक क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज पहले तो क्या है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कांड मेरे साथ हो ही जाता है। घर से निकलते हुए आज एक ऐसे ही कांड हुआ और ये बड़ा ही अजीब था। जैसे होता क्या है ना, जब लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो ना, उनके साथ बड़ा नुकसान हो जाता है। आज जैसे ही घर से निकला, अपनी वाली पार्किंग से निकलने के बाद भी, एक तो मैंने आज क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, 3 दिन से मैं लगातार एक्सीडेंट्स देख रहा हूँ, हल्के फुल्के वाले। एक तो लाइव देख लिया, एक बहुत दिन से तो मैंने देखा ही नहीं, लाइव तो मैंने देखा ही नहीं था, ये देखा था कि दो लोग लड़ रहे हैं बस आपस में फिर अभी 3 दिन पहले मैंने एक लाइव देखा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर मैंने वहां पर देखा, वो लाइव नहीं था, वो प्री ऑर्डर्ड था किसी ने डिलीवरी दे दी थी उसकी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक दिन जब आगे निकला, फिर तब मैंने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ था हल्का फुल्का वाला, फिर मैंने आज ही देख लिया। अब मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा भाई, मेरी हल्लू हल्लू मेरी हालत खराब होने लगी, पतली होने लगी, मैं लफ्ज़ बोल नहीं सकता, लेकिन वो होने लगा मेरे साथ। तो जैसे ही घर से बाहर निकले, भाई साहब वो खड़े हुए थे आपस में लड़ रहे, तो पहले तो एक आदमी था, वो उनको अगर आप बताओ तो और लड़ने लग जा रहे थे। तो मैंने दूसरे वाले को बताया, मैंने कहा भैया ये आपने रास्ते में तो खड़ा कर दिया है ना, आपस में लड़ रहे हो, किसी ने फोटो क्लिक करके मैट्रेश पे अपडेट कर दी कि बेटे रास्ते में खड़े होकर लड़ रहे हो, तो 1000 रियाल का फाइन और चपेगा तुम्हें तो भाई वो दूसरा वाला चुपचाप मान गया। लेकिन एक और था, अब क्या है कि उसको अरबी आती थी, मुझको हिंदी आती थी, कम्युनिकेशन गैप भयंकर हो रहा था, उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी ही आती थी मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझसे ही लड़ गया। मैंने कहा भाई तुम्हें हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगे तुम्हारे ऊपर फाइन आ जाएगा। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको ये नियम कानून नहीं पता है, अगर एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होता है तो सबसे पहला काम रास्ते से गाड़ी हटाना है, नहीं हटाओगे तो चप जाएगा फाइन, है ना। तो वो काम उनके साथ भी होने वाला था। मैंने उसको बोला भी, भाई देखो तुम हमारे रास्ते में खड़े हो, अगर हटाओगे नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं हो सकता था कि अगल बगल से निकल ले, थोड़ी जगह है कि भाई अपने को निकालने दो यार, अपने को ऑफिस जाना है, तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो, दिल खोल कर लड़ो, वो भी नहीं हो सकता था क्योंकि रास्ता ही नहीं था। मैंने उनको समझाया, वो मानने को तैयार नहीं, कह रहा मेरी गाड़ी खराब है। मैंने कहा अच्छा, फिर अपन ने तिरछी वाली स्माइल करी। देखो दो तरह की स्माइल होती है, एक होती है मोहब्बत वाली स्माइल जिसमें होंठ के दोनों जो किनारे होते हैं वो कान की तरफ बढ़ते हैं, एक होती है दाएं या बाएं तरफ वाला जो होंठ की लाइन है ना वो कान की तरफ जाती है। मैंने वो वाली स्माइल करी और मैंने कहा ठीक है मुझे इन्फॉर्मेशन है तुमको नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं एक बढ़िया खूबसूरत फोटो खींचूंगा आपकी और फिर मैं वो अपलोड करने वाला हूँ मैट्रेश पे, फाइन लगेगा, टाटा बाय बाय। ये कह के मैं कार में बैठा, देखा सामने का रोड एकदम क्लियर हो गया, मैं ओहो मैंने कहा अरे ये तो मुझे शो करना पड़ेगा पुलिस और आवाम इतने इन्फॉर्मेशन के साथ आ गए ना अपन सारे इन्फॉर्मेशन हो ना तो आपका एटीट्यूड बढ़ जाता है। भाई क्या कॉन्फिडेंटली मैंने उसको बोला है, भाई का जो ईगो 7वें आसमान पे था, पहले फर्श पे आ गया भाई, पहले फर्श पे। तो ये आपको करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एफएम 107 पे मिलता रहेगा और अपन जो है वो सारी डिटेल आपको देते रहेंगे। अब हल्के आज से आज के सवाल पर आ जाते हैं। इस्तकबाल दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और आज का सवाल, पहले दिन का पहला सवाल, इंपॉर्टेंट, खास है ना, बड़ा जरूरी है।

सवाल ये है कि एक अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई जाए जो आपको आपके ख्यालात से दूर कर दे, आपकी मेमोरी, आपकी पिछली मेमोरी जो बिट्रेल की है, जो धोखाधड़ी की है, उसे ख़त्म कर दे, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी भी भरोसा करके वो बटन, जो बटन आया है वो आप दबाएंगे? मतलब एक ऐसा बटन है जिसे आपने दबाया, आपकी मेमोरी बिट्रेल वाली, धोखेधड़ी वाली, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ ऐसी हरकत करी है जो आपको आज तक याद है, अगर वो बटन दबा के वो मेमोरी जा रही है तो क्या आप वो बटन दबाएंगे, हाँ या ना? और अगर दबाएंगे तो क्यों, और नहीं दबाएंगे तो भी क्यों? क्या ऐसा भी होता ना, अरे भैया मैं चाहता हूं उसका गला घोटूं बस वक्त आने दो, मेरा वक्त आ जाए तो मैं तो चाह ही रहा हूं उसका गला घोट दूं मैं। तो ये आपको बताना है 666-22-107 पे, 666-22-107। फिलहाल 6:09 और यहाँ पर गाने भी चलेंगे। अनप्लग्ड का सबसे पहला गाना है फलक शब्बीर का चाहत मेरी, ये गाना आएगा। लेकिन इससे पहले हल्के हाथ से मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैसेज है खादिम साहब का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग मेरा भाई, कैसे हैं, उम्मीद है बेहतरीन होंगे। मिस्ड यू ऑन द रिक्वेस्ट शो। अरे इसमें जिसमें गाना ही चलता है उसमें मिस्ड करने वाली बात ही क्या है यूसुफ भाई। बाकी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, कैसे हैं, मजा आया। शौकत अली खान, मजा आया, मैंने कौन सा आपको शोरमा खिला दिया भाई, अभी तो बाकी है, अभी तो शुरुआत है, बाकी मजा बिल्कुल आएगा। वेलकम दिखाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मैसेज करते रहो, दिल जो है वो खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। फिर आसिफ क्या कैसी कहा, अरे अभी तक 6:10 आसिफ भाई लॉन्ग रूट पे हो गया। फजल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, आप मुझे स्टोरी भेज देना। स्टोरी भाई, स्टोरी कबीर के शो में होती है, यहाँ कहाँ स्टोरी मेरा वाला हिसाब नहीं है भाई। और वो जो है जिसके फेफड़े में असल में जान है ना भाई, वही स्टोरी कर सकता है, मेरा स्टोरी वाला काम नहीं है। और फिर ये भी है ना कि सामने कोड़े वाला आदमी बैठा है, वो एक बार सटाख से कोड़ा जो है अपना उछालता है और फिर मुझे बताता क्या करना है। डायरेक्ट जब आप किसी का नाम नहीं ले सकते थे वाया नाम लेना पड़ता है भाई, बच बच के। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपने मुझे कॉल करना था, मैं है भाई साहब, आपने दूसरे नंबर पे तो मैसेज नहीं कर दिया। उसके अलावा एक और सलाम है, वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, उम्मीद है कि आप भी बहुत बेहतरीन होंगे। बाकी हम एक बार हल्के हाथ से सवाल पर फिर आ जाते हैं। सवाल यह है कि एक ऐसा बटन जिसको दबाने के बाद आपकी सारी जो याददाश्त है, खराब याददाश्त, धोखेधड़ी वाली याददाश्त, दूसरों की जो दी हुई आपको, अगर उस बटन को दबाकर वो सब खत्म हो जाए तो क्या वो बटन दबाएंगे, हाँ या ना? 666-22-107 पे बताना, बाकी खत पर भी आएंगे दोस्त। सुनते रहो FM 107। अभी फिलहाल चाहत मेरी अनप्लग्ड, ये गाना फलक शब्बीर की आवाज में।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर. एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए. तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. एक्सिस.

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं Unplugged Evening with RJ Fazil.
2: Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: हाँ जी, Dil Se Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे फजील के साथ हैं आप. 6:20 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और हर रोज ये आवाज शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक सुनाई देगी, और साथ नहीं 6:50 तक सुनाई देगी. फिर उसके बाद न्यूज़ के लिए तैयारियां भी तो करनी होती है. खैर, आज का सवाल जो किया था उस पर आते हैं. आज का सवाल बड़ा सिंपल सा. मैंने कहा पहला दिन है, हल्लू हल्लू रख लो भाई साहब, है ना. एक्सेलरेटर पे एकदम से पैर नहीं रखना चाहिए. नई गाड़ी है कहीं, है इधर उधर खराब हो गई, कूलेंट लीक हो गया तो क्या होगा. तो हल्लू हल्लू पैर रखेंगे. और कहा गया है कि पहले शुरुआती वक्त में जो है, जब भी नई गाड़ी ले, हौले हौले 500 किलोमीटर तक रेव नहीं करना है आपको, इंजन को गर्म होने देना है ना. तो अभी 4 से 5 जो शो चल रहा था वो 6 से 7 पे आ गया, नया है ना. तो आपको गाड़ी को रवा होने देना, उसके बाद आप सऊदी और दुबई लेकर जाइएगा. अभी पहले दिन आप गाड़ी इतना नहीं भाई. देखिए, फिर इंजन ऑयल भी बहुत दिनों का पड़ा हुआ है ना, वो गाढ़ा हो गया होगा, उसको गर्म करें भाई साहब एकदम से. ना ना ना ना, ना हल्लू हल्लू. तो मैंने इसलिए हल्का सवाल किया. और सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई बटन बनता जिससे आप धोखे को भूल जाते, ऐसा कोई बटन जिससे धोखे को आप भूल जाते, धोखा बोले तो बिट्रेल, जिससे आपने एहसास किया हो अपनी ज़िंदगी में, जो आपको बड़ा परेशान करता हो, लोगों ने आपसे कुछ वादा किया, उस वादे को पूरा नहीं किया, आपसे पैसे लिए और फिर कह रहे 10 दिन के अंदर अब भी देता हूँ तुझे, लेकिन फिर उसके बाद 10 से 20, 20 से 30 और 10 महीने हो गए भाई साहब पैसे नहीं आए. 10 साल, कुछ लोगों को 10 साल भी हो गया होगा. तो अगर आपके साथ इस तरह का बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, तो अगर ऐसा कोई बटन होता कि इस बटन को दबा के आप वो बिट्रेल भूल जाए, अपने दिमाग से ही निकाल दें, तो क्या आप वो बटन दबाते या नहीं दबाते. लोगों के जो जवाब है भाई साहब, मैंने वही कह रहा हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि है लोगों की भाई साहब, बड़ी गाढ़ी. उनके जो याद है ना, वो याद कहीं जाते नहीं है, बड़ी तकलीफ है लोगों को. तो पहले बाकी मैसेज की तरफ हम इधर उधर वाले सॉरी मतलब बाकी जो मैसेज है हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैसेज वाले पे आ जाते हैं जिन्होंने इस सवाल को लेकर मैसेज किया है. तो राहिल भाई का कहना है, भाई धोखा हमेशा याद रखना है, मौका आने पे जवाब देना भी है. पता नहीं कौन सा ऐसा धोखा है जो इनके दिल पे बहुत ज्यादा लग गई है, लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था लोगों से. नहीं नहीं भाई, देखिए फजील भाई, ये अच्छी बात नहीं है. जब भी आपको धोखा मिले, वो खुदा की तरफ से कि आप उसे भुला दें, जितना दिल में रखेंगे उतनी तकलीफ होगी. और फैजान भाई ने ऐसा कुछ कहा भी, मैं जब इनका मैसेज पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि फैजान भाई अभी आखिर में ना एक बहुत ही लाजवाब जो है लाइन मार देंगे कोई, और हम सबको सीख मिल जाएगी. तो फैजान भाई ने लिखा कि भाई हमें सिखाया गया है कि तकलीफ को पकड़ के कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि तकलीफ और बेइज्जती जिसने भी दिया है उसे वक्त आने पर वापस करो. अरे मेरा भाई, पहले तो मुझे लगा कि यार अच्छा मोनोलॉग होगा, ये आदमी अच्छा शुरुआत कर दिया है, हमें सिखाया गया है तकलीफ और तकलीफ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए. एहसास हुआ मुझे कि ये थोड़ा मारेगा, दो चार फिलॉसफी की लाइन तो आएगी आखिर में. भाई ने आखिर में कहा कि बेइज्जती और तकलीफ दोनों वापस भी करना चाहिए वैसे ही. बाकी आबिद भाई का मैसेज है, सलाम, वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं यार मेरा तो बटन ही टूट गया है, वो वाला जिससे धोखा गायब हो जाए. मेरा भाई, तो ये भी तो एक तकलीफ की ही बात है. आपका कौन सा ऐसा बटन लगा था भाई जो इतना ज़्यादा नकली था कि वो बटन टूट गया. अच्छा, ये होता भी है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, कुछ धोखे ऐसे होते हैं म्यूज़िक बंद करके जो भुलाए भी नहीं जा सकते भाई साहब. गाड़ी हो गई है बात नहीं. बाकी एक और मैसेज है ज़ुबैर साहब का, फजील भाई बटन दबाने का नहीं, अपने का आपने कहा के गला दबाने का ऑप्शन होना चाहिए. अरे मैंने नहीं कहा गलत, ए भाई, कल को ये ना हो जाए तुम कोई कांड करके चले आओ और कहो कि अरे वो फजील भाई ने कहा था गला दबाने को. मैंने मजा भाई, देखो वो कोड़े वाला आदमी ना सामने ही बैठता है, वो कभी भी आ सकता है गला दबाने को. प्लीज ये मत करो. कह रहे फजील भाई बटन दबाने का नहीं, आपने कहा था गला दबाने का ऑप्शन होना चाहिए. मैंने कभी नहीं कहा भाई गला दबाने का. मैंने ऐसे मजाक में बोले कि कुछ लोगों का ऐसा दिल करता है, जैसे जुबैर भाई का. अरे यार जुबैर, तुम तो भाई मुझे लग रहा है कुछ दिन में गाना गाना पड़ेगा, ले डूबा. बाकी मैसेज की तरफ, फिर ये किस भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपने कहा था रिक्वेस्ट शो पे आदमी नहीं टाइम चेंज होंगे, बट आप इस वक्त इस शो पे क्यों हैं?
4: अरे मैंने तो वही तो बताया कि मैं चेंज होऊंगा, तो मैं चेंज होकर इधर आ गया नौकरी करने। तो भाई 4 से 5 जो है वो अमिताभ आपको मिलेगी, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि आपके अपने गाने ही कुछ नहीं होने वाले, वो गाने आपके प्ले किए जाएंगे। बाकी वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या है मेरे भाई का? नाम है शेख इरफान अल कासमी। आदमी नहीं टाइम चेंज होंगे, मैंने कहा था टाइम वही रहेगा, आदमी यानी कि मैं चेंज होऊंगा। तो अभी उस शो में महिला आ गई है, तो आप चिंता मत करें, गाने तो पूरे प्ले होंगे मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम वज्जू मियां, सुपर डुपर है। अरे मेरा भाई कहाँ की बात इधर उधर कर ले रहे। फिर उसके बाद ये मैसेज है, लड़ाई की बात करो ना, वो लड़ाई को देखते हैं मजा आया था। नहीं सर, बस आपको ही किया था। अच्छा, मैंने वो झगड़े की बात करी थी ना कि दो लोग आज हमारे अपार्टमेंट के नीचे लड़ गए, कार की भिड़ंत। और भाई इतनी सिंपल भिड़ंत थी, वो एक्सीडेंट था भी नहीं यार। वो होता है ना कि दो लोग ऐसा, आपने देखा है कि जब हाय हेलो होता है ना, अरबी लोग करते हैं, वो गाल से गाल टच करते हैं। भाई सिर्फ उतना ही टच हुआ था यार, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच लगा था। वो जब दाढ़ी होती है ना, दो लोग दाढ़ी से, एक की दाढ़ी थोड़ी टाइट है, एक की हल्की है, तो स्क्रैच हल्का पड़ता, बस उतना ही स्क्रैच था भाई कार में। दोनों लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे ना जाने कितनी बड़ी चीजें हो गई हैं। ऐसा भी नहीं था कि बम्पर आगे का निकल गया हो यार। वो अपार्टमेंट के नीचे ऐसे लड़ रहे थे जैसे वो सही में गला दबा देंगे। मैंने तो एक को धमकी दी कि भाई 1000 रियाल का फाइन लगेगा, तो उसने तो हटा लिया, दूसरा वाला मेरे से लड़ गया। वो नए लोगों को बता रहा हूँ, आप पुराने वाले ना सॉरी। जज्बात मेरे जग गए यार। ये कोई बात है कि तुम लड़ जाओ, मेरे से लड़ गए। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई रूल ऐसा है कि अगर आपने रास्ते से गाड़ी नहीं हटाई आपका ही चप जाएगा फाइन। तो मैंने उनकी फोटो क्लिक करी, अभी भी फोटो मेरे साथ में है। फिर भाई ने तुरंत हटा भी ली। मैं कहा ओके, इन्फॉर्मेशन का फायदा तो है भाई, इन्फॉर्मेशन इज द पावर। बाकी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गाना सुना दो। लो भैया, ए भाई ये रिक्वेस्ट शो नहीं है, कह रहे गाना सुना दो, ये कोई बात है? मैं कौन सा कुमार सानू लगा हूं जो इनका गाना चला दूंगा भैया? लगा कहां से मैं गाना सुना दूं मेरा भाई? एक ये आवाज सुनो, एक कुमार सानू की आवाज है और एक जुबिन नौटियाल की आवाज है। गलती कर बैठा, ये गाने चले तो मजा भी आए, लेकिन आप मुझसे गाने को कह रहे हो, अभी ऐसी फटे बांस की आवाज निकाल दूंगा, फिर कोड़े वाला आदमी आ जाएगा। ठीक है, बाकी वालेकुम अस्सलाम। और अंकल होंगे आपके अंकल, मैं अंकल नहीं हूं। इनका नाम क्या है? शमशाद। शमशाद भाई ये जरूरत ना करें, ये सब बोलोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं कोड़े वाला आपके पास भेज दूंगा। बाकी तबस्सुम ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम फजील, वेलकम, सब लोग आपको जानबूझकर चढ़ा रहे हैं। अच्छा ये प्लानिंग है सुबह की। अच्छा ओ अरे वो होते हैं ना, छोड़ो अच्छा रहने दो, नहीं बोलेंगे, नहीं वो कोड़े वाला आदमी। वो होता है ना कुछ लोग जो ऐसा बड़े बड़े से होते हैं, कुछ

तो वो छोटे बच्चों को कह देते हैं जाओ अंकल से चॉकलेट मांगो, उनके पास बहुत सारी रखी, उनके पास बहुत सारी रखी, और ये जाते भी अंकल अंकल चॉकलेट दे दो फिर अंकल टाफी में निपटाते ओके और ऐसी कोई मशीन हो जो बुरी मेमोरी मिटाने वाली तो डेफिनेटली मिटाना चाहूंगी, पर दिमाग हल्का रहेगा इससे। हाँ फिर दिमाग हाँ ये बात भी सही है, लेकिन जिनका दिमाग ऑलरेडी हल्का है ना वो उनको ये सब याद रहता भी नहीं, बटन की जरूरत ही नहीं ये होता। और मेरे साथ ये बहुत पहले था भी भाई, लेकिन जब से बुद्धि आपको आ जाती है ना आपको अपने ही दिमाग पर बहुत ज़्यादा शक होने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा ना हो कि फांसी लगवा दे मेरा दिमाग। मुझे याद है कि 12-15 की उम्र से लेकर 25 तक सब हंकी डोरी था भाई लाइफ। कोई मेरे साथ बुरा कर दे मुझे लगता था अरे उसने किस कुछ सोच कर ही कहा होगा या किया होगा, मैं बुरा मानता भी नहीं था। मुझे याद है पतंग के लिए 5 रुपये मैंने एक आदमी को दिया कि भाई वो पतंग और सद्दी बोले तो डोर लेके आना, 5 रुपये लेके गायब हो गया, मुझे धोखा लगा। मैंने कहा जब मिलूंगा तो इसको उल्टा सीधा सुनाऊंगा, जब मैंने उसको सुनाया तो वो मुझ पर ही चढ़ बैठा, तो मुझे फिर वहाँ एहसास हुआ कि ये धोखा है। मुझे आज तक याद है भाई ये वाला जो बटन है ये नहीं दबाया मैंने आज तक। तो वो हो जाता है ना कि अगर ऐसा हो कि आपके साथ सही में धोखाधड़ी हुई हो, परेशानी आपने किसी ने आपके लिए क्रिएट की हो, तो आपको याद रहता है। लेकिन 25 तक कुछ नहीं याद रहता, उसके बाद बुद्धि बढ़ जाती है, आपको सब कुछ याद रहता है, फिर आपको समझ में आता है अबे भैया आप तो नाना नानी दादा दादी फुप्पा फुप्पी बन रहे हो, है ना। ऐसा 4-6 लोग बैठते हैं एक दूसरे की बुराई करते हैं, आप भी उसी में एक दिन शामिल हो जाते हैं, तब आपको रियलाइज होता अरे वो 25 वाला फजील वो किधर गया भाई, ये तो नाना नानी बन गए, ये तो मामा मामी की तरह बन गए, बुराइयां कर रहे हैं पुप्पी की तरह, होए होए होए होए होए। बहुत देर में रियलाइज होता है भाई। बाकी यूसुफ भाई का कहना है नहीं फजील मैं नहीं प्रेस करूंगा, अरे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देने हैं जिनको कैसे भूल सकता हूं, मुझे पूछने में शर्म आ रही है लेकिन जिनको देने हैं उनको नहीं आ रही है। हाँ यार ये कैसे लोग हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं ऐसे लोगों को, ये तो हमारा सामाजिक सोशल FM 107 है, वरना ऐसे ऐसे लफ्ज़ की तैयारी करा हुआ है भाई मैंने, मैं मन में बहुत ये सब बोल देता हूं लेकिन उनके सामने आता हूं मैं कहता हूं प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, और वो उल्टा उधर से पूछ लेते तुम्हें क्यों चाहिए, और फिर मेरे को बताना भी पड़ता है कि भाई वो अम्मी बीमार है, कम्मों की शादी नहीं हो रही है, और दहेज में लड़के वाले ऑल्टो मांग रहे, भाई प्लीज पैसे दे दो मेरे भाई फिर ये, और मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ये महान अनुभव जो देते हैं ना हमें, इनको ही हमें बताना पड़ता भाई किस लिए हमें पैसे चाहिए, फिर भी ये नहीं देते हैं। कुछ ऐसे लफ्ज होने चाहिए इन लोगों के लिए जो सामाजिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोड़े वाला आदमी सामने बैठा है। बाकी सलाम ब्रो, बटन की बजाय गला दबाना चाहिए स्माइल कर के मैं भी इस बारे में हामी भरता हूँ, ये ऑप्शन होना चाहिए गला दबाने का, लेकिन ठीक है इन सबसे दूर रहना भाई, पता चला कल को कोई करके आ गया फिर कह रहे फजील भाई ने कहा था, फजील भाई कहाँ है, फजील को ढूंढो, अरे वो जेल में है 3 महीने से आओ जल्दी जल्दी और मैसेज ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, काकी का क्या हाल है, काकी का कुछ पता नहीं है यार, सलमान साहब जिंदा ही होंगी, बाकी दुआ करते रहिए, अगर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह का ऑप्शन भी है अपने पास। वेलकम ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। समीर साहब आपको भी वेलकम इस शो में। कौन है गद्दार, किसने गद्दारी करी उसको पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी, गद्दार पार्टी देगा अब, और कुछ तो नहीं, वो गद्दार है इसीलिए तो गद्दार है कि भाई उसने गद्दारी करी, अब वो पार्टी नहीं देगा तब भी तो गद्दारी ही है। हिशाम साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई। अंसारी जुल्फ़िकार, हाय हाय क्या नाम यार, देख रहो ऐसा नहीं लगता जुल्फ़िकार अगर नाम है किसी का तो उसको CM बन जाना चाहिए, है ना, नहीं लगता आपको कि ये MLA तो ज़रूर होगा भाई, मुस्लिमों का मसीहा तो यही है ओके फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि अपने पैसे वापस लेने के लिए हमें रीज़न बताने होते हैं, दिल में तो आपकी तरह अल्फाज बहुत होते हैं लेकिन ज़मीर गवारा नहीं देता, मेरा ज़मीर गवारा देता है बस FM 107 में ही नहीं दे रहा ओके जुल्फ़िकार साहब कहते हैं मैं बहरीन से, ओ बहरीन के MLA जुल्फ़िकार साहब आपका नाम जो है बड़ा ही लाजवाब है, बहुत कम इस तरह के नाम सुनने को मिलते हैं, बाकी इस्तकबाल है आप सभी का। एक और बच्चा आया है चॉकलेट मांगने के लिए, सलाम वालेकुम अस्सलाम, इनका नाम है MK, चॉकलेट नहीं है बेटा मेरे पास,

ये चॉकलेट तुम्हें सुबह ही मिलेगी, ठीक है? तुम सुबह ये चॉकलेट ले लेना, अभी टाफी से काम चलाओ। बाकी 6:33 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब आ जाते हैं खत पर। एक खत दिल से, जो मर्जी तुम लिखो मैं यहां पर पढ़ूंगा, बाकी जो आप उन लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा करेंगे तो मैं उस पर बीप कर दूंगा। बाकी आप एक खत उनके नाम लिखिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है, और ये खत में अपने दिल की बात, जो आप कहना चाहें अपने दिमाग से, अपने दिल से, वो लिखिए, ठीक है? नंबर है 666-22-107। सिर्फ उधार की बात नहीं हो रही है, लोग तो एकदम ही यार दिल पर ले लिया इन लोगों ने। बाकी अब आपकी अपनी मर्जी के गाने तो नहीं है, लेकिन के की आवाज है तो आपकी मर्जी है, मेरा ऐसा मानना है। ये गाना मेरे बिना अनप्लग्ड सुनिए, मेरे बिना नहीं, गाने का नाम है FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील.
2: ओनली ऑन FM107. दिल से देसी.
3: हाँ जी, दिल से देसी FM107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. और क्या गाना सुना आपने, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया. करण नवानी का ये गाना था FM107 पे अनप्लग्ड वर्जन. और यही होता है भाई, आपने कभी किसी दोस्त के लिए सुना है कि दोस्त कह रहा है भाई सात समंदर तेरे पीछे पीछे मैं आ गया. नहीं भाई, हमारे हम मर्दों के लिए कोई नहीं आ रहा यार. कितने अफसोस से भरी हमारी जिंदगी. नहीं, आप अगर देखें मर्द की जिंदगी कितनी अफसोस की भरी हुई भाई. हम सात समंदर, एक तो हम किसी के पीछे जा नहीं रहे, उल्टा हमें सात समंदर पार जाना पड़ रहा कमाई करने के लिए. और सात समंदर पीछे किसी को छोड़ के आए क्योंकि उसी के लिए कमाई करने आ रहे. तो हम तो ये गाना गा भी रहे हैं लेकिन कितना गलत है कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया. लेकिन यहाँ उल्टा है कि अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए सात समंदर पार करके तेरे आगे आगे मैं कमाने आ गया. ओ भाई साहब, ये भी एक गाना हो सकता है. करण साहब देख लो यार. बाकी अनप्लग्ड इवनिंग के शो में इस्तकबाल आप सभी का. और सवाल जो किया था उस पर हमने खत आपसे मांगा था. अच्छा, मैंने एक चीज नहीं कही और वो था डियर लगाना. तो जब पिछला अनप्लग्ड इवनिंग का शो चल रहा था तो मैं आपसे कहता था कि डियर जरूर लगाना. डियर लिखने के बाद जो भी हम खत लिखते हैं ना कि डियर फलाना, फिर उसके बाद आप अपना खत लिखना शुरू करते हैं. तो मैंने आपसे कहा नहीं वो बात, लेकिन कुछ लोगों को याद था डियर लगाना. आए हाय यार, तुमने तो दिल ही जीत लिया. मतलब साल भर हो गया शायद मेरे ख्याल से. हाँ, जनवरी से कौन सा अनप्लग्ड इवनिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल का था ये अनप्लग्ड इवनिंग. लेकिन भाई तुमको याद था यार. भाई मतलब आप सामने नहीं है, वरना मैं आपको जैसे अरबी वाले लोग करते ना गाल मिला के हैंडशेक, वैसे ही कर रहा होता मैं तुमसे यार. तुमने मेरा वो जीत लिया यार, अरे जिसमें किसी और के लिए खून बहता है, अरे जिसके चक्कर में लड़ाइयां होती ना दो मर्दों के बीच किसी और को लेकर, अरे जो अगर पंप ना करे तो हम जिंदा ना रहे. दिल, हाँ दिल, दिल दिल जीत लिया यार तुमने मेरे लिए. मेरा भाई क्या बात है. चलो मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहला मैसेज किस भाई का था. सलाम वालेकुम अस्सलाम. और यार ऐसे ऐसे मैसेज है, मैं या कहें खत है, मजा आ जाएगा. इरफान शेख ने इतने टॉन्ट में लिखा है, अल्लाह आपको, मतलब इन्होंने तो डियर नहीं लिखा लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिखा इरफान ने कि अल्लाह आपको तमाम मुसीबत और परेशानियों से गुजारे. मतलब जिस बंदे ने आपको धोखा दिया है उसके लिए आपको खत लिखना था. आम तौर पे आप क्या लिखेंगे कि अल्लाह आपको सारी मुसीबतों से दूर रखे, कोई मसला नहीं, आपने धोखा दिया हमने भुला दिया. इरफान भाई इतना सरकास्टिक हो गए, अल्लाह आपको तमाम मुसीबत और परेशानियों से गुजारे, आपके सारे मसले कभी हल ना हो. अरे यार सोचो कितना ज्यादा इविल आदमी है यार ये. इरफान भाई सच में आप एक लौते ऐसे आदमी हैं, आपसे दुआ पढ़वाने के लिए डर लगेगा भाई. फिर उसके बाद आफताब ने बहुत सही लिखा है, तीन लफ्जों में सबसे बेहतरीन क्या कोई खत लिख सकता है. लेकिन आफताब ने लिखा है, आफताब ने लिखा है डियर धोखेबाज लानत है. आफताब भाई अगर रिस्पेक्ट कार चला पाती तो मैं आपके पास भेज देता. रिस्पेक्ट को आपके पास भेज देता मेरा भाई. अगर किसी ने मेरा जीता है दिल तो आफताब भाई है. क्या लाइन है भाई, मतलब दो लफ्जों में खत्म ही कर दी बात इन्होंने. डियर धोखेबाज लानत है. रिगार्ड्स आफताब. ओके, 6:46 और कुछ ही देर में न्यूज शुरू होने वाली है. बाकी मैसेज ले लेते हैं. शेख साहब कहते हैं डियर बगैरत आदमी. देखो शेख साहब को भी याद था, बहुत ही उम्दा. डियर बगैरत आदमी, अगर तुम पे जरा भी शर्म है तो माफी मांग लो. तुम्हारी वजह से मैंने एक लाख की सस्ती कार खरीदी. तुम्हारी सलाह की वजह से मेरा 1 लाख का नुकसान और भी हुआ. ये भाई सबको यार धोखा याद रहता है, धोखा कोई नहीं बुलाता. अब तो असल में हमें वो बटन चाहिए जो दबाने के बाद धोखा बुला दिया जाए जिससे. फिर साहिल भाई कहते हैं एक खत मेरे करीब के धोखेबाज के लिए. अगर मेरे पास ये मेरे को समझ नहीं आया था पहले, मैं सादे पढ़ रहा था, फिर बाद में एहसास हुआ ये सड़े लिख रहे हैं. अगर मेरे पास सड़े फूल होते तो आप पर लुटा देता.
4: मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये वाली बात तो सारे पुल कैसे लुटाते मेरा भाई। ओके फिर यूसुफ भाई ने भी मैसेज किया है और इन्होंने जो लिखा है मैं वो डियर के बाद जो लिखा है मैं वो पढ़ूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा, चलो पढ़ देता हूँ। मेरे को क्या आपको समझना है तो समझो, डियर एक्स एक्स एक्स एक्स चार बार है ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि मैंने ये खत आपको क्यों लिखा है। यही कि अगर आपके पास कुछ रत्ती भर शर्म और इंसानियत रह गई है तो मेरे पैसे वापस कर दें। देखिए इसमें बहुत सारे बीप हैं जो मुझे सुनाई दे रहे हैं यूसुफ भाई लेकिन आपने लिखे नहीं है। आगे लिखते हैं यूसुफ भाई कि वरना फिर क्या होगा, बहुत ही खराब, मेरी तरफ से तो नहीं ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन दुआ है कि कुछ ना हो। देखो यार इंसान की अच्छी आदत ये होती है, अच्छा किरदार क्या होता है ये यूसुफ भाई से सीखिए, कि दिल में कितना भी गुब्ज गुस्सा टेंशन भरी हो लेकिन आपको कभी बद्दुआ नहीं देगा। आपकी जबान खराब हो गई

आपका कैरेक्टर समझ में आ जाता है, ये है एक अच्छा इंसान। आगे लिखा भी है यूसुफ भाई ने, योर्स कोई नहीं यूसुफ भाई। डियर सगीर, फजू भाई ये कौन है कोड़े वाला? अरे यार मकसूद साहब, अगर आपको कोड़े वाला नहीं पता है तो अब समझ लिए वो वक्त निकल चुका मैं कि कोड़े वाले के लिए डिटेल में आपको बताऊं। बाकी मैं आपका खत पढ़ता हूं। डियर सगीर भाई, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही टेक मनी फ्रॉम मी 18 इयर्स बिफोर टिल नाउ, ही डिडंट रिटर्न टू मी इट्स ह्यूज अमाउंट। If you can give me solution how I can take it back, I can't tell to him it's my best friend, but I can, मैं छोड़ भी नहीं सकता और मैं उससे बोल भी नहीं सकता, मुझे पैसे चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट है, 18 साल हो गए। यार 18 साल हो गए और पैसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो इसका सॉल्यूशन मुझे तो नजर नहीं आता यार। 18 साल के बाद तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप 18 साल के बाद दो ही काम कर सकते हैं, या तो दोस्ती तोड़ सकते हैं, या एक और तरीका है जो मैं अपनाऊंगा, उसके घर जा जाके खाना खाओ, इतना खा लो कि पैसे वसूल होने लगे थोड़े थोड़े, है ना। मतलब कभी भी आप उसके घर ऐसी चीजें लेकर पहुंच जाओ या ऐसे ऐसे उम्मीद ऐसी लेकर पहुंच जाओ कि वो पूरा करने से पीछे ना हटे। जैसे खाना खाने पहुंच गए, घर पहुंचे और 7 बजे पहुंचने के बाद 9, 10 बज रही, 11 बज रही, उनको भी नहीं खाने को मिल रहा है और आप भी नहीं खा रहे, फिर वो बगैरती में बैठेंगे सबके साथ, खाएगा ही खाएगा, और ऐसे ही हर रोज पहुंचे रहो। अब मालूम फिर यही होता है कि शर्म वाले, जिस आदमी को शर्म ना आए उसको दिलानी पड़ती है। तबस्सुम ने लिखा है, 2 लाइन का लेटर है, डियर डैश डैश में मैं समझता हूँ बहुत कुछ लिखा होगा आपने, तुम वो मकान का इंतखाब थे जिसकी हर ईंट को मैंने अपने यकीन से सींचा था, पर अफसोस आज वही छत गिरी हुई मुझ पर जिसे अपना आशियां समझा था। आज वही छत गिरी मुझ पर जिसे अपना आशिया समझा था। यार इस लाइन में कितनी लाइनें हैं। तुम वो मकान का इंतखाब थे जिसकी हर ईंट को मैंने अपने यकीन से सींचा था, पर अफसोस आज वही छत गिरी है मुझ पर जिसे अपना आशिया समझा था। आय हाय यार, अब मुझे लग रहा है गलत पूछ लिया क्या मैंने सवाल, लोगों के दर्द एकदम से निकल के आ गए। अजू भाई आपकी आवाज लगती थी, भाई मेरी आवाज़ थी और किसकी आवाज़, इतनी देर से आपको क्या लग रहा था यार। मुबीन भाई का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली फ्रॉम बांग्लादेश, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे खर्चा करने के लिए आ गया। दुख दर्द पीड़ा क्या है, ये इस मैसेज के पीछे जिस शख्स ने लिखी है, यानी कि अली भाई जो बांग्लादेश से, उनसे ही पूछो। भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम आसिफ के किसी, उम्मीद है बढ़िया होंगे आप। डियर स्टार स्टार स्टार स्टार, अल्लाह तुम्हारी इतनी लंबी उम्र करे कि तुम्हें तुम्हारे सामने तुम्हारी नस्ल, अल्लाह हाफिज। यार ये सब अशफाक मियां नाम अच्छा है भाई साहब, इनने बहुत बातें कह दी इतनी लाइन में, 2 लाइन में, असल में कोड़े तो इन्होंने बरसाए। स्टूडियो के उस पार जो बंदा है वो कोड़ा लेकर टहलता है, उसने कोड़े आज तक मारे नहीं है मुझे, लेकिन अगर अशफाक भाई की बात करें, 2 लाइन में उन्होंने कोड़ा मार दिया है और ये कोड़ा बहुत ताकतवर है। अल्लाह तुम्हारी इतनी लंबी उम्र करे कि तुम्हारे सामने डैश डैश डैश डैश, मैं नहीं बोल सकता भाई। अशफाक मियां थोड़ा मोहब्बत से, बाकी हाँ ये भी हो सकता कि अल्लाह तुम्हारी इतनी लंबी उम्र करे कि तुम उस उम्र को कहो कि बस अल्लाह हो गया, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए था। वो भी सोच रहा होगा, अशफाक मियां अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, प्लीज यार एक और दुआ कर दो, थोड़ी उम्र छोटी हो जाए बस इतना नहीं। ये भी एक बहुत डेंजरस है कि आपने ऐसी दुआ कर दी कि इंसान परेशान हो गया कि अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र कर दे, कितनी 100 साल 150 साल 200 साल, अब लग रहा कि भाई खटिया से उठा भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, दांत भी चले गए, चबाया नहीं जा रहा, खाने का मजा अलग नहीं आ रहा है, टेंशन अलग है। अशफाक मियां दुआ वापस लोगे क्या? बस बस इससे ज्यादा नहीं, हल्लू हल्लू ठीक है। बाकी आज पहला दिन था, हल्लू हल्लू सवाल रखा था, मेरे को नहीं पता था इतना जज्बात निकल के आ जाएंगे आपके। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को इजाजत दे, मेरा जाने का वक्त आ गया है भाई साहब, मैं भी दुआ करूं ऐसी वाली। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोई अशफाक जैसा को दोस्त हो कि कहीं मैंने कुछ किया हो खुदा ना खास्ता और उसने ऐसी दुआ दे दे कि अल्लाह तुम्हारी 250 साल की उम्र कर दे लंबी वाली। ओखला हो गया आदमी, बटर चिकन खाए नहीं जा रहा है,
भीगी हुई दाल में काम चलाना पड़ रहा है।

0: इस फक मिया
1: ये दुआ वैसे खतरनाक है भाई साहब। फिलहाल 6:53 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, कुछ ही देर में आपके सामने होंगी बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन, और ये बुलेटिन आपके लिए कतर की तमाम न्यूज लेकर आएगा, जहां पर आपको सभी खबरें पता चलेंगी और इवन इंटरनेशनल न्यूज भी आपके लिए FM 107 पे होगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 6 एक नए सवाल और आपके खत के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। फिलहाल अनप्लग्ड ये इवनिंग शो है और इसी गाने के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। दिस सॉन्ग इज मैं तेनू समझावा की अनप्लग्ड, ये गाना राहत की आवाज में, दिल से देसी।

0: हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ। दोहा वाले कबीर के साथ।
2: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में।
1: न्यूज एट 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफसल नशरिया इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर से आज लुसेल पैलेस में एक्जोन मोबिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुलाकात की। साहिब सुमो अमीर ने हाकून हिश्तम को नॉर्वे के बादशाह की हैसियत से हलफ उठाने पर मुबारकबाद का तहनियती पैगाम इरसाल किया है। वजारत खारजा के तर्जमान ने आज हफ्तवार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान खबरदार किया कि इसराइल की जानिब से खित्ते में ताकत के गलबे की बुनियाद पर एक नई हकीकत मुसलत करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी हवाले से कतर ने अपनी सफारती कोशिशें तेज़ करने का ऐलान किया है। कतर और पाकिस्तान के दरमियान लेबर और मैन पावर के शोबे में दो तरफा तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। और भाई आज का जो मौजू है वो है यू आर नॉट योर डेजिग्नेशन। भाई क्योंकि जॉब टाइटल टेम्पररी होता है मगर स्किल्स और वैल्यूज आपकी असली पहचान है जो हमेशा साथ रहती हैं। भाई सोसाइटी में हमसे सबसे पहला सवाल होता है आप क्या करते हैं, और हम फौरी जवाब देते हैं अपने जॉब टाइटल के साथ। लेकिन असल सवाल ये है आप कौन हैं, और इसका जवाब टाइटल से नहीं करेक्टर, कीमत और असर से आता है। आज के प्रोग्राम में हम तीन चीजें करेंगे, पहचान को डेजिग्नेशन से अलग करेंगे, स्किल्स, पैशंस, रिजिलियंस और ग्रोथ माइंडसेट को समझेंगे, और वहीं प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे जो आप रोजमर्रा में अप्लाई कर सकें। सोच के देखिए, अगर कल आपकी जॉब चेंज हो जाए, रोल रिटायर हो जाए या टाइटल गिर जाए तो क्या आप खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी इंसानी कीमत आपके एक्शंस, वैल्यूज और सीखने की सलाहियत से आती है। तो चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं कि भाई हु आर वी बियॉन्ड आर वर्क। अक्सर हमारी सेल्फ वर्थ को जॉब टाइटल से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इंसान अपने रोल से बड़ा होता है। आप सिर्फ एक मैनेजर या असिस्टेंट ही नहीं, आप बेटा, बेटी, वालिद, वालिदा, दोस्त, नेबर, शहरी भी हैं, और ये तमाम सोशल रोल्स

family time, volunteering, new skills, entrepreneurship. एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। भाई अली एक सीनियर मैनेजर था, एक रिस्ट्रक्चर में टाइटल चला गया। कुछ हफ्तों तक उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर उसने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया, कम्युनिकेशन और मेंटरिंग पर। वीकेंड पर यूथ मेंटरिंग स्टार्ट की।

बनाया और 3 महीने बाद एक प्रोग्राम में लीड रोल मिला. टाइटल अगला था मैनेजर इंपैक्ट और खुशी ज्यादा. दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ. कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद दोस्तों। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां बात हो रही है आपके जॉब टाइटल से हटके। भाई आप जो हैं वही नजर आना जरूरी नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में छलकनी चाहिए, चमकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। भाई सवाल ये है, अगर आपका टाइटल कल बदल जाए तो आपकी असली पहचान में क्या रह जाता है? आप अपनी फैमिली और कम्युनिटी को रोज कैसे बेहतर बनाते हैं? कौन सी वैल्यूज

0: आपके डिसीजंस को गाइड करती हैं। दरअसल दोस्तों, आइडेंटिटी इन्वेंटरी लिखें, मैं कौन हूं, 5 पर्सनल रोल्स प्लस 5 वैल्यूज को लिखिए, वीकली माइक्रो कंट्रीब्यूशन, 30 मिनट वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग और नेबर हेल्प वगैरह कीजिए, कंपैरिजन डिटॉक्स कीजिए, सोशल मीडिया पर टाइटल सेंट्रिक कंपैरिजन को लिमिट करिए, अपनी ग्रोथ का पर्सनल स्कोर कार्ड बनाइए।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
0: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो चलिए दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल मूव्स के हवाले से बात करता हूँ और एग्जांपल देता हूँ, कुछ चार पांच, पांच के करीब। सबसे पहले स्किल ऑडिट कीजिए भाई, 10 स्किल्स लिखें, एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टेक लिटररी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, एम्पैथी, और हर एक के सामने प्रूफ लिखिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसके रिजल्ट्स को देखिए। वहीं लर्निंग स्प्रिंट में 8 हफ्ते लगाइए।

और सैलरी प्लस इंपैक्ट प्लस ग्रोथ का पर्सनल स्कोर कार्ड बनाइए। बात करें कैरियर स्विच के हवाले से तो एक और एग्जांपल देता हूं। फरहा एक असिस्टेंट टाइटल में 6 साल थी। उन्होंने स्किल्स ऑडिट किया, कंटेंट राइटिंग,

अपनी वैल्यूज स्किल्स और एक्शंस हैं आज रात तीन चीजें जरूर लिखिए मेरी पांच वैल्यूज एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया ईमानदारी रहमत कंसिस्टेंसी एम्पैथी और अडाल वहीं मेरी 10 स्किल्स प्लस हर स्किल का प्रूफ जैसे कि मैंने बताया प्रोजेक्ट और रिजल्ट्स देखिए मेरा पर्सनल स्कोर कार्ड क्या है सैलरी प्लस इंपैक्ट प्लस लर्निंग प्लस फैमिली टाइम अगले 30 दिन के लिए एक लर्निंग स्प्रिंट बनाएं हर हफ्ते 3 घंटे एनालिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई लिटरेसी और कम्युनिकेशन

कैपिटल है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे बियॉन्ड द जॉब टाइटल, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराइए, सीखिए और अपना असर छोड़िए। तो सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका, मैं हूं फजील और ये शो, ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड हर गुजरते हुए रोज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आप बहुत होशियार हो जाते हैं और आपको पता है कि जमाने में और जगह जगह पे या हमारे दोस्तों को हमारे यारों को किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह का स्कैम होता है। और आप ऐसे में जब होशियार हो जाते हैं तो स्कैमर्स भी होशियार हो जाते हैं, वो नए तरीके ढूंढते हैं आपको स्कैम करने का, आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का। और आज इसी तरह के एक फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये है टेक सपोर्ट स्कैम, एक ऐसा धोखा जहां स्कैमर्स आपको डराकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। आजकल ये फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचना सबके लिए बेहद जरूरी है। कैसे होता है ये स्कैम? अक्सर एक सडन और डरावने पॉपअप मैसेज से शुरू होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है या आपका सिस्टम डेंजरस वायरस से स्लो पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन फोन नंबर दिया जाता है और तुरंत कॉल करने को कहा जाता है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो एक फेक टेक्नीशियन आपसे बात करता है कॉल पे रहते हुए और आपको डराता है। वो आपसे कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जैसे कि एनी डेस्क या टीम व्यूवर के

0: जरिए देना होगा। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस इन एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं उन्हें, तो यहां पर हो जाता है स्कैम। एक बार जब उन्हें एक्सेस मिल जाता है तो वो आपकी फाइल्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या सिस्टम में रियल मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आखिर में वो इस फेक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपसे मोटी रकम, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, कतरी रियाल, वो डिमांड करते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए? दोस्तों, इस तरह के स्कैम से बचने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इनमें से सिर्फ चार ऐसे तरीकों के बारे में कि इन चार तरीकों को अगर आपने अपना लिया तो ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और बचाव है, कभी भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉपअप किया हुआ मैसेज है जिसमें फोन नंबर है, उस पे कॉल ना करें। इवन कई बार आपको ये स्कैमर्स अलग तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, फोन के जरिए भी ये आपसे स्कैम कर सकते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको पता है कि कैसे इन स्कैमर से टैकल करना है। आपने फोन किया, हो सकता है कि आपका फोन करना ही ये कोई एक स्कैम हो। तो कभी भी नंबर पे कॉल ना करें अगर स्क्रीन पर ऐसा कोई वायरस या एरर पॉपअप आए और उसमें कॉल करने को कहा जाए तो उस नंबर पर कभी कॉल ना करें। रियल टेक कंपनीज, जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो कभी भी आपको इस तरह से कॉल करके आपकी परेशानी को हल करना या आपको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। उसके अलावा उस ब्राउजर को फौरन बंद करें। ऐसे पॉपअप्स आने पर तुरंत अपना वेब ब्राउजर क्लोज कर दें। अगर ब्राउजर फ्रीज हो जाए तो ऑल्ट F4 दबाएं या टास्क मैनेजर से उसे फोर्स क्लोज करें। उसके अलावा कभी भी किसी अनजान शख्स को रिमोट एक्सेस अपने कंप्यूटर का ना दें। किसी भी अनजान इंसान को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तभी दें जब वो आपका कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय हो, आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, ऐसे लोग जो सच में टेक को जानते हो, कंप्यूटर को जानते हो और आपकी कंपनी में काम कर रहे हो। उसके अलावा हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपने जो कलीग हैं, जो टेक्नीशियन आपके ऑफिसेज में हैं, उनसे राबता करें। अगर आपको सच में कंप्यूटर में कोई दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कस्टमर केयर नंबर पे, हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मदद लें। एक बार फिर से, कभी भी किसी को कॉल ना करें। जो पॉपअप हुआ मैसेज है उसे क्लोज करें। उसके अलावा किसी को रिमोट एक्सेस ना दें और ऑफिशियल सपोर्ट का हमेशा इस्तेमाल करें। इन तरीकों से आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बच सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में इसी तरह के नए जमाने के नए फ्रॉड पर बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।

0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी सोचा है कि आपके लिए हेल्थ क्या है? सेहत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हेल्थ सिर्फ तब होती है जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो या जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े? या फिर हेल्थ वो लम्हा होता है जब मन हल्का हो, सांसें गहरी आए और जिंदगी थोड़ी मैनेजेबल लगे? सच ये है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का हल नहीं, हेल्थ एक एहसास है, एक इत्मीनान है, जब जिस्म, दिमाग और जज्बात एक दूसरे के साथ हार्मोनी में हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं, बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बैलेंस है। और रिसर्च ये भी बताती है कि स्ट्रेस का असर सबसे पहले एनर्जी पर नहीं बल्कि मूड और इमोशंस पर पड़ता है। इसीलिए जब हेल्थ हिलती है, सबसे पहले पेशेंस कम होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, आपका दिमाग बॉडी के सिग्नल सुनता है लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पुअर स्लीप फोकस को कम करता है, डिहाइड्रेशन थकान बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यूनिटी को क्वाइटली वीकेंड करता है। हेल्थ कभी एक दिन में खराब नहीं होती, वो धीरे धीरे खामोशी से स्लिप करती है। इसलिए एक छोटा सा मशवरा, रोज थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने आप से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा पानी, थोड़ा मूवमेंट और थोड़ी मेहरबानी खुद के लिए। हेल्थ परफेक्शन का गोल नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस का सफर है, जहाँ पर छोटा ख्याल आपकी बड़ी सेहत बनाता है।
0: योर हेल्थ मैटर, योर हेल्थ मैटर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे धुआंधार बल्लेबाज के बारे में जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि ही वॉज बेसिकली अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन। या दोस्तों, बात हो रही है क्रिस गेल के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बनती बल्कि क्रिकेट फैंस की यादों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और ऐसी ही एक इनिंग्स वेस्ट इंडीज के अजीम बल्लेबाज क्रिस गेल ने खेली थी। तारीख थी 24 फरवरी 2015। मकाम था ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम। या दोस्तों, वेस्ट इंडीज 2015 वर्ल्ड कप में अपना मैच खेल रही थी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दिन क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसी इनिंग्स लिखी जाएगी जो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स में हमेशा याद रखी जाएगी। या दोस्तों, क्रिस गेल क्रिस पर आए और फिर जो हुआ वो किसी क्रिकेटिंग स्पेक्टेकल से कम नहीं था। गेल ने शुरू से ही अपने इरादे वाजे कर दिए। उनकी बैटिंग में वही पावर थी जो उन्हें दुनिया भर में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर करती थी। बॉलर कोई भी हो, गेल का जवाब एक ही था, इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना। और फिर आया वो लम्हा जिसने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्रिस गेल ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी हाँ दोस्तों, 47 गेंदे। वर्ल्ड कप की तारीख में इससे पहले किसी बल्लेबाज ने इतनी तेजी से सेंचुरी नहीं बनाई थी। गेल की सेंचुरी पावर हिटिंग का एक जबरदस्त नमूना थी। हर तरफ बाउंड्रीज, हर तरफ सिक्सेस। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फैंस के लिए ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि गेल रुकने वाले नहीं थे। सेंचुरी के बाद भी उनका एग्रेशन बिल्कुल कम नहीं हुआ। एक तरफ जिम्बाब्वे के बॉलर्स प्रेशर में थे और दूसरी तरफ क्रिस गेल हर ओवर के साथ अपनी इनिंग्स को और भी खतरनाक बनाते जा रहे थे। फिर गेल ने वो कर दिखाया जो वर्ल्ड कप की तारीख में उस वक्त तक किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था, डबल सेंचुरी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप क्रिकेट में डबल सेंचुरी। क्रिस गेल ने 215 रन स्कोर किए, यानी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पर 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और इसी के साथ वर्ल्ड कप की तारीख में डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिस गेल पहले बल्लेबाज बन गए। और उनके इनिंग्स का स्केल समझने के लिए स्कोर कार्ड पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आप, 147 गेंदे, 215 रन, 10 चौके और 16 सिक्सेस, यानी ओवर बाउंड्री। जी हाँ, 16 सिक्सेस। ये सिर्फ एक बिग स्कोर नहीं था, ये पावर हिटिंग का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें गेल ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और टाइमिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उनके सिक्सेस ग्राउंड के हर कोने में नजर आ रहे थे। कुछ शॉट्स सीधा क्राउड में जा रहे थे और कुछ बाउंड्री के ऊपर से। और हर सिक्स के साथ क्रिस गेल अपने नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जोड़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता। उनकी बैटिंग का सबसे खास पहलू था उनका कॉन्फिडेंस। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखने को मिला था क्रिस गेल उस दिन अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन कैनबेरा। गेल को पता था कि अगर वो क्रीज पर सेट हो गए तो बॉलर्स के लिए उन्हें रोकना कितना मुश्किल होगा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल यही किया। पहले सेंचुरी, फिर डबल सेंचुरी और फिर 215 रन्स। एक इनिंग्स में इतने माइलस्टोन हासिल करना अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। दोस्तों, गेल की ये इनिंग्स सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं थी, इस इनिंग्स ने वेस्टइंडीज को भी एक मैसिव टोटल की तरफ पहुंचाया। गेल ने अपनी इनिंग्स के जरिए वर्ल्ड कप क्रिकेट में एक नया स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दिया और उस वक्त वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी का कॉन्सेप्ट ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज था। 50 ओवर क्रिकेट में 200 का स्कोर क्रॉस करना बहुत मुश्किल समझा जाता था, लेकिन क्रिस गेल ने इस इम्पॉसिबल नजर आने वाले टारगेट को अपनी पावर हिटिंग से रियलिटी बना दिया और वो भी सिर्फ 147 गेंदों पर।
क्रिस गेल के करियर में बहुत सी मेमोरेबल इनिंग्स रही हैं। T20 क्रिकेट में उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये इनिंग्स उनके करियर का सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में जरूर शुमार होती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्टार प्लेयर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत एक खूबसूरत बाग की तरह है, जहां हर फूल अपनी अलग खुशबू रखता है। इस बाग में मेहमान नवाजी, खानदान, अदब, रिवायत और अपने विरसे से मोहब्बत शामिल है। कतर की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ इमारतों और शहर को देखना काफी नहीं, बल्कि उन रवैयों और रिवायतों को महसूस करना जरूरी है जो लोगों के दिलों में महफूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेहमान नवाजी की। कतरी माशरे में मेहमान को इज्जत देना बहुत कीमती रिवायत है। किसी मेहमान का घर आना खुशी का मौका समझा जाता है। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम करना, बैठने की जगह पेश करना, कहवा और खजूर से तवाजो करना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इनमें बहुत गहरा प्यार छुपा होता है। कहवा पेश करने का अंदाज भी एक सकाफती पहलू रखता है। छोटे प्याले में अरबिक कहवा पेश किया जाता है और साथ खजूर रखना अपनायत की अलामत समझा जाता है। ये सिर्फ एक मशरूब या खुराक नहीं होता, बल्कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू और रابطے का जरिया बन जाता है। एक प्याला कहवा किसी अजनबी को भी मेहमान और

0: फिर अपना बना सकता है। कतर की सकाफत में खानदान को भी मरकजी अहमियत हासिल है। घर के अफराद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, खुशी और मुश्किल में साथ देने और रिश्तों को मजबूत रखने को जरूरी समझते हैं। बच्चे अपने बुजुर्गों से अदब, मोहब्बत और रिवायत का दर्ज हासिल करते हैं। बुजुर्ग घर की यादों और तजुर्बों का खजाना होते हैं। उनकी बात सुनना और उनका ख्याल रखना इज्जत के साथ साथ सीखने का भी मौका होता है। कतरी माशरे में अदब और एहतराम की रिवायत रोजमर्रा के रवैयों में नजर आती है। सलाम करना, खैरियत पूछना, मेहमान को तवज्जो देना और गुफ्तगु में नरमी रखना इखलाक का हिस्सा है। छोटी उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है कि मिलने वालों से अच्छे तरीके से पेश आए और दूसरों के एहसासात का ख्याल रखें। कतर की सकाफत का एक और खूबसूरत पहलू इसका समंदर से रिश्ता है। कतर एक जजीरा है, इसलिए समंदर ने यहाँ की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। पुराने जमाने में मछली पकड़ना और मोती हासिल करना समंदरी जिंदगी का हिस्सा था। गांव जैसी रिवायत, कश्तियां इस सफर की याद दिलाती हैं। आज भी समंदरी वर्षा कतर की सकाफती पहचान का अहम हिस्सा है। मोती यानी पर्ल कतर के वर्षे में खास जगह रखते हैं। मोती की चमक सिर्फ एक कीमती चीज की चमक नहीं बल्कि मेहनत, सबर और समंदरी सफर की कहानी भी है। मोती हासिल करने के लिए लोगों को पानी, मौसम और कश्तियों के सफर को समझना पड़ता था। इसी वर्षे को याद रखने के लिए समंदरी नुमाइशें, कश्ती के त्यौहार और सकाफती एहतमाम मुनज़्ज़म किए जाते थे। कतर की सकाफत का रिश्ता डेजर्ट और बदवी वर्षे से भी है। रेगिस्तान ने लोगों को सबर, मेहमान नवाजी और मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ देना सिखाया। सफर, ऊंट, टेंट्स और रेगिस्तानी जिंदगी से जुड़ी रिवायत आज भी विरसे के तौर पर महफूज है। रेगिस्तान सिर्फ खाली जमीन नहीं बल्कि यादों, कहानियों और तजुर्बों का एक खूबसूरत सफा है। बांस पालना, जिसे फैल्कनरी भी कहा जाता है, कतर की मशहूर रिवायती सरगर्मियों में से एक है। बांस की तरबियत के लिए सब्र, तवज्जो और जिम्मेदारी जरूरी होती है। इस फन के जरिए फितरत के साथ रिश्ता कायम होता है और इंसान परिंदों की खूबियों और जरूरियात को समझता है। आज फैल्कनरी वर्से और रिवायती हुनर के तौर पर कदर की जाती है। रिवायती लिबास भी कतर की पहचान का अहम हिस्सा है। मर्दों का थोप, कुतरा, जबकि खवातीन के मुख्तलिफ लिबास और जेवर सकाफत के वक़ार, खूबसूरती और सलीके का इजहार करते हैं। इन लिबासों का अंदाज मौका और मौके महल के मुताबिक बदल सकता है। खास तकरीबात पर लोग अक्सर अपनी रिवायती पहचान को फख्र के साथ पेश करते हैं। कतर की सकाफत में काश्तकारी, दस्तकारी और रिवायती हुनर भी अहमियत रखते हैं। सादू वीविंग, कढ़ाई, खजूर के पत्ते से बनी अशिया और दूसरे दस्तकारी के काम लोगों की महारत और तसव्वुर का इजहार करते हैं। ये हुनर सिर्फ पुरानी चीजों बनाने तक नहीं बल्कि नस्लों के दरमियान इल्म और हुनर मुंतकिल करने का जरिया है। जदीद कतर में भी रिवायत अपनी जगह कायम है। म्यूजियम, सकाफत मरकज, बाजार और वर्से के ये हुनर सिर्फ पुरानी चीजें बनाने तक महदूद नहीं बल्कि नस्लों के दरमियान इल्म और हुनर मुंतकिल करने का जरिया है। जदीद कतर में भी रिवायत अपनी जगह कायम है। म्यूजियम, सकाफती मरकज, बाजार और वर्से के जरिए लोगों को अपनी सकाफत समझने और दूसरों के साथ शेयर करने का मौका देते हैं। जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी और तरक्की के साथ कतर अपनी रिवायती पहचान को भी संभाल रहा है। कतर की सकाफत का असल हुसन इस बात में है कि ये लोगों को राबते, इज्जत और शुक्रगुजारी का पैगाम देता है। यह विरसा सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानी नहीं बल्कि आज की कहानी, आज की जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई शख्स मेहमान का खैर मकदम करता है, बुजुर्ग की बात सुनता है, घर वालों के साथ वक्त गुजारता है या अपने रिवायती लिबास को फख्र के साथ पहनता है तो वो इस सकाफत को जिंदा रखता है। آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطر کی ثقافت مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوئی ایک خوبصورت تصویر ہے. اس تصویر میں قہوے کی خوشبو, کھجور کی مٹھاس, سمندر کی یادیں, ریگستان کی وسعت اور لوگوں کے دلوں کی گرمی شامل ہے. یہ ثقافت ہمیں محبت, ادب اور ورثے کی قدر کرنا سکھاتی ہے. تو لسنرز, آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: भाई गाना गाने का दिल कर रहा है कि जिसका तुम्हें था इंतजार, कतर 2026 वो आ गया है वापस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो कतर 2026, काफी लंबे अरसों से लोग इस शो को वापस से सुनना चाहते थे और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो वक्त है कतर 2026 का वो है सितंबर से दिसंबर और फिर जनवरी से लेकर मार्च तक भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी एक खास वजह है, ये वजह है कि इस दौरान यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मौसम थोड़ा बेहतर होने लगता है, इवेंट्स चाहे आउटडोर के हों या इनडोर के इवेंट्स बढ़ने लग जाते हैं और फिर जनवरी में भी काफी बेहतरीन माहौल होता है। चाहे दिसंबर या नवंबर के बारे में बात करें उसमें भी माहौल जबरदस्त होता है। तो लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, रिक्वेस्ट पे कतर 2026 का ये शो आ गया है और हर हफ्ते कतर 2026 आपको अवगत यानी कि आपको इन्फॉर्म करेगा अलग अलग डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बताना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं या क्या चीजों के बारे में हम कतर 2026 में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही एंट्री होगी हम बात करेंगे जो इवेंट्स होने वाले हैं कतर में उसके बारे में। तो इवेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शहर में, कि क्या चल रहा है, वाइब क्या है शहर की, क्या कुछ लोगों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए इवेंट्स में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे वीकेंड में क्या होने वाला है। हर हफ्ते क्योंकि ये शो एक बार आएगा तो ये जरूरी है कि हमें और आपको पता हो कि वीकेंड में क्या कुछ होने वाला है फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए। एंड देन न्यू ओपनिंग्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा रेस्टोरेंट नया बेहतरीन है, कतर में गवर्नमेंट की तरफ से क्या नई चीजें प्रोवाइड की जा रही है, न्यू ओपनिंग्स क्या है, मुशर्रफ डाउनटाउन में कुछ खास होने वाला है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर व्हाट्स ऑन कतर यानी कि कतर में क्या कुछ है फैमिली इवेंट्स में, एग्जीबिशन में, उसके अलावा कतर के स्पोर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है इस पर भी नजर डालेंगे। और फिर लास्ट में कतर का फ्यूचर कैसा होने वाला है, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी की क्या अपडेट्स हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव से लेकर ट्रांसपोर्ट के जो चेंजेस हैं या फिर स्टार्टअप के इकोसिस्टम की कुछ खास न्यूज, ये सारी चीजें हम इस शो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इवेंट जो हम बात करने वाले हैं कतर इवेंट शो 2026, ये एक बहुत ही बड़ा और प्रीमियम 3 दिन का कॉर्पोरेट और कल्चरल इवेंट है जो 1 सितंबर 2026 से लेकर 3 सितंबर 2026 तक लगातार 3 दिनों तक चलेगा। ये इवेंट दोहा के सबसे फेमस, कई लोगों को पता है DECC के नाम से और कई लोगों को पता है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के नाम से, इस जगह पे होने वाला है और ये वेस्ट बे के बिजनेस हब में लोकेटेड है। इस ग्रैंड एग्जीबिशन की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे वर्ल्ड के टॉप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्लानर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स और रीजनल एंटरटेनमेंट सप्लायर्स को एक ही मैसिव रूफ के नीचे लेकर आता है। इसका मतलब टारगेट एक

ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हर बिजनेस तरक्की कर सके और जहां पर बिजनेस नेटवर्क को मजबूत किया जा सके और इवेंट्स इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड्स को लोग समझ सके। तो अगर आप दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जाते हैं और आपका कोई बिजनेस है तो मुझे लगता है कि इस तरफ रुख आपको जरूर करना चाहिए। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो विजिट कतर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको मजीद जानकारी मिल जाएगी। इस एग्जीबिशन के अंदर विजिटर्स को बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, अलग अलग कंट्रीज से आए एग्जीबिटर्स अपने स्मार्ट इवेंट टेक्नोलॉजीज, हाईटेक लाइटिंग, साउंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स, यूनिक डिजिटल स्टेज डिजाइन और एडवांस्ड केटरिंग सॉल्यूशन का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिलेगा आपको। मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े कॉरपोरेट प्लानर्स इस शो में इसलिए आते हैं ताकि वो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स, हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेज और बड़े फेस्टिवल्स के लिए नए वेंडर्स और ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढ सके। इसके साथ ही ये इवेंट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक हाइब्रिड कॉरपोरेट और कल्चरल शो भी है जहां ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे ट्रेडिशनल कतरी हॉस्पिटैलिटी और कल्चर को मॉडर्न बिजनेस इवेंट में ऐड किया जा सकता है। Well, अब बात कर लेते हैं वीकेंड अट्रैक्शन की कि इस हफ्ते आप कहां पर जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। जो फैमिलीज और टूरिस्ट इस वीकेंड पर कुछ प्रीमियम और रिलैक्सिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए MIA बोले तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जाना एक परफेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है जिसे फेमस आर्किटेक्ट आयम बाई ने डिजाइन किया था। ये तो सबको अब तक पता ही चल गया होगा, जो यहाँ के रहने वाले उनको पता है लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये बताना जरूरी भी था। और ये दोहा कॉर्निश के एज पर एक अलग आइलैंड पर बना हुआ है दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको यहाँ पर तो लाजमी जाना चाहिए। यहाँ से आपको तीन चीज दिखेगी, ऑब्वियसली MIA तो दिखेगा, MIA का पार्क लाजवाब है। लोग अगर वीकेंड कहीं एंजॉय करना चाहते हैं ना, फैमिलीज जिनके बच्चे भी हैं तो यहाँ जरूर जाते हैं। और उसके तीसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का दो वक्त का जो व्यू है ना वो गजब का है। सुबह मत जाइए लेकिन शाम को यार प्लीज 5, 5:30, 6 बजे जब सूरज ढल रहा हो तब जाइए, और शाम को यानी कि रात जब हो जाए, अंधेरा जब हो जाए, आप वहां 7, 7:30 तक रुके। वहां का व्यू बेहद खूबसूरत है, इसलिए आपको यहां जरूर जाना चाहिए। उसके अलावा एक अलग आइलैंड पे बना है इस वीकेंड पर, म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन ने विजिटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड वीकेंड गैलरी टूर अरेंज किया है। ये गाइडेड टूर्स लोगों को एक हिस्टोरिकल जर्नी पर लेकर जाएगा जहां पर लोग लगभग 1400 साल पुरानी ग्लोबल इस्लामिक क्राफ्टमैनशिप और उसके रिच हेरिटेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जगह आपके लिए खूबसूरत और लाजमी दोनों है। म्यूजियम के अंदर बनी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी गैलरीज में 3 अलग अलग कंट्रीज जैसे कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कलेक्ट किए गए प्रीशियस हिस्टोरिकल ट्रेजर्स भी रखे गए हैं। विजिटर्स यहाँ पर हाथ से लिखी हुई एंशिएंट मैनुस्क्रिप्ट्स, पुराने जमाने के ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स, मिट्टी के इंट्रिकेट सेरेमिक्स, रेयर ग्लास वर्क, हैवी मेटल वर्क और हीरा जवाहरात, ये सारी चीजें देख सकते हैं करीब से। इवन वहां पर राजघरानों के बहुत पुराने जमाने के वेपन्स और ज्वेलरी दोनों रखे हुए हैं, आप करीब से देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि 1400 साल पहले इस्लामिक जो क्राफ्टमैनशिप थी वो कैसा था, वो रिच हेरिटेज कैसा था। साथ ही आपको बता दें ये टूर बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एडुकेशनल होने के साथ साथ काफी इंटरटेनिंग भी होने वाला है, तो इस जगह पर जाना तो आपकी मजबूरी होनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ यू नो न्यू ओपनिंग्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कतर 2026 में हम नए ओपनिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। न्यू ओपनिंग्स में अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू ओपनिंग्स या रेस्टोरेंट वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कतर 2026 आपके लिए बेस्ट है। मोशारिफ डाउनटाउन दोहा को दुनिया के सबसे पहले फुली सस्टेनेबल और स्मार्ट लाइफस्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स में गिना जाता है दोस्तों। इस हफ्ते मोशारिफ डाउनटाउन में एक बिल्कुल नया इको कॉन्शियस डाइनिंग हब खोला गया है। ये एक हाई एंड प्रीमियम फूड जोन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग लग्जरी डाइनिंग का मजा लेते हुए भी नेचर का ध्यान रख सके। इस डाइनिंग हब का सबसे मेन रूल और फिलॉसफी है जीरो वेस्ट ऑपरेशंस, यानी इस एरिया में चलने वाले सभी कैफेज और रेस्टोरेंट ने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रूल्स को फॉलो करने का प्रॉमिस किया है ताकि फूड वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक और एक्सेस एनर्जी कंजप्शन को जीरो किया जा सके। यहाँ के शेफ्स का मेन फोकस ये है कि वो लोकल ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को मॉडर्न जीरो वेस्ट कुकिंग टेक्निक्स के साथ मिक्स करें। वो मिडिल ईस्ट के ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके नई

और इनोवेटिव डिशेस तैयार करते हैं। तो इस सस्टेनेबिलिटी मॉडल को कम्प्लीटली रन करने के लिए इस हब ने एक स्ट्रिक्ट लोकली सोर्स्ड डाइनिंग फ्रेमवर्क बनाया है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट बाहर के कंट्रीज से खाना या इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट करने से ट्रांसपोर्ट का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। इसके बदले ये रेस्टोरेंट डायरेक्टली कतर के लोकल ऑर्गेनिक फार्म्स, हाईटेक हाइड्रोपोनिक ग्रीनहाउसेस और लोकल फिश मार्केट से फ्रेश आइटम्स खरीदते हैं। इससे खाना बिल्कुल फ्रेश मिलता है और कतर की लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त इनिशिएटिव है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी डिटेल का भी ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई खास, यू नो कतर में क्या कुछ नया हो रहा है, कौन से इवेंट्स हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में भी। कतर में रहने वाले म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट आ रहा है। ये है पूनम फीचरिंग MG लाइव का ग्रैंड शो, जो कि फ्राइडे 4th ऑफ सितंबर 2026 को स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन है साउथ इंडिया के मशहूर सिंगर MG श्री कुमार, जो अपनी बेहतरीन वॉइस में लाइव मलयालम मेलोडीज और ट्रेडिशनल गाने गाकर लोगों का दिल जीतने वाले हैं। उनके साथ ही स्टेज पर मोक्ष डांस ग्रुप का एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक डांस शोकेस भी देखने को मिलेगा, जो इस साल के ओनम सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा रंगीन बनाता है। अगर आपको केरला के रिच कल्चर, ट्रेडिशनल आर्ट और पूरे म्यूजिकल रिदिम का मजा लेना है भाई, तो ये कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस आपके लिए इस हफ्ते का सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो हमने कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस भी कवर कर लिया, लेकिन फैमिली इवेंट्स 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में क्या खास है ये भी सुनते जाइए। अगर आप इस वीकेंड अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ फन और इंटरेक्टिव करना चाहते हैं तो 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम जाना एक परफेक्ट आइडिया है। इस म्यूजियम में बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सारे इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स लगाए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर एक बहुत ही एंगेजिंग एक्टिवेशन जोन बनाया गया है, जहां बच्चे खुद अलग अलग फिजिकल चैलेंजेस और गेम्स के जरिए अपने रॉ एजिलिटी, स्पीड और स्पोर्ट्स स्किल को लाइव टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप जाकर यू नो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जीबिशन के बारे में जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर इस हफ्ते विजिटर्स के लिए स्पेशल और इंटरैक्टिव गैलरीज प्रेजेंट कर रहा है, और ये खूबसूरत म्यूजियम दुनिया के सबसे फेमस आर्किटेक्ट जीन नोवेल की बनाई हुई है, और ये डेजर्ट रोज बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड है। इस टेम्परेरी शोकेस का मेन थीम कतर की हिस्ट्री और उसकी तस्वीर बदलने की कहानी को दिखाता है, तो यहाँ तो जाना बड़ा लाजमी है। और यू नो अगर आपको बाकी इवेंट्स इतने अच्छे नहीं लगते, ये इवेंट आपको जरूर अच्छा लगे तो इस जगह पर भी जाना जरूरी है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के जो दीवाने हैं उनके लिए भी है। आप ये ना सोचे यार स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ है नहीं। कतर कप का सेमीफाइनल और दोहा बैंक स्टार्स लीग, फुटबॉल फैंस के लिए कतर में मैचेस का एक बहुत ही एक्साइटिंग शेड्यूल जो है वो चल रहा है, जिसमें कतर कप और स्टार्स लीग दोनों शामिल है। 1 सितंबर को कतर कप के दो बड़े सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में अलसद स्पोर्ट्स क्लब का सामना अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब से आइकॉनिक स्टेडियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं सेमीफाइनल का दूसरा मैच अल शमाल स्पोर्ट्स क्लब और अल रैयान के बीच होगा, और ये हेड टू हेड मुकाबला जासिम बिन हमद स्टेडियम में होगा। इसके तुरंत बाद दोहा बैंक स्टार्स लीग के रेगुलर सीजन मैचेस ये भी शुरू होंगे, जिसमें 3 सितंबर को अल अहली और कतर स्पोर्ट्स क्लब का मैच होगा और 5 सितंबर को अल रैयान और अल दुहेल का मैच होगा, और ये एक थ्रिलिंग और हाई वोल्टेज क्लैश देखने को मिलेगा। साथ ही अब दोस्तों बात कर लेते हैं कतर के यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर। अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में, कहरामा ने दोहा में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए नए हाई स्पीड सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किए हैं। इसी के साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट अगर आप देखें तो लुसेल सिटी ने रेसिडेंशियल टावर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए ह्यूमिडिटी बेस्ड ऑटोमेटेड कूलिंग स्मार्ट ग्रिड लगाए हैं। ये जबरदस्त इनिशिएटिव है। और फिर एडुकेशन इनिशिएटिव भी लिया गया है। एडुकेशन सिटी ने यूथ के लिए अरबिक लिटरेसी और हेरिटेज बचाने के लिए बिल अरबी वर्कशॉप्स भी शुरू किए हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस देखने को मिला है। मवासलात ने म्यूजियम एरियाज में ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो कनेक्टेड ऑटोनोमस

0: ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक शटल बस बढ़ा दी है। इसी के साथ स्टार्टअप अगर देखा जाए, स्टार्टअप का इकोसिस्टम कतर में जबरदस्त है। क्यूएसटीपी ने एरिड क्लाइमेट्स के लिए एआई वाटर रिसाइकलिंग बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को सीड फंडिंग और मेंटरशिप दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कतर के खूबसूरत या कतर के नेशनल विजन 2030 को लेकर। सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से प्रमोट किया जा रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन बातों में से एक। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के अपडेट्स भी बड़ी जरूरी थी और ये था पूरा कतर 2026 का ये खास शो, जहां पर आपको एक एक डिटेल मिलती है, चाहे वो इवेंट्स के बारे में हो, वीकेंड के कुछ खास जगह हो, या फिर मुशरिफ डाउनटाउन की वो लोकेशन या वो न्यू ओपनिंग्स जहां पर जीरो वेस्ट ऑपरेशंस के जरिए खास लोगों को लुभाया जा रहा है। एंड देन कतर में क्या कुछ हो रहा है, फैमिली इवेंट्स, एग्जीबिशन, कल्चरल म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, और फिर हमने स्पोर्ट्स के मुतालिक भी बात किया। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में जिसका नाम होने वाला है कतर 2026। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। जैसे कि आपने नाम से ही जान लिया, हमारा मकसद है कुरान को समझना, उसकी गहराइयों तक उतरना। तो आइए सफर का आगाज करते हैं और आज हमारा पहला मौजू होगा वो हरूफ मुकत्तआत, जैसे अलिफ लाम मीम कहें या हामीम कहें, तौसीन काफ हा या आईन सौद, इस तरह के जो हरूफ मुकत्तआत होते हैं इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुरान करीम की शुरुआत में आप देखते हैं अलिफ लाम मीम, तो इसका क्या मतलब है, ये मुख्तसर हरूफ क्या राज रखते हैं, हम इस पर बात करेंगे और इन्हीं चंद हरूफ में छुपे बड़े पैगामात को समझने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाहि तआला। अब सामिन किराम, मौजू पर तफसीली गुफ्तगु से पहले चलें दीन की एक हकीकत हम पहले से समझ लेते हैं। दीन की हकीकत हमें ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी का सुकून अल्लाह की रहनुमाई कबूल करने में है। अब जो बददीन हैं, मुल्हिदीन, एथिस्ट की अगर बात करें तो ये हर चीज़ को सिर्फ अपनी समझ पर तोलते हैं और जब समझ ना आए तो बेसब्री या गलत फैसलों की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह वही हमारे लिए एक मजबूत बुनियाद है। अगर हम रोज़मर्रा मसाइल में वही की रहनुमाई को तस्लीम करते हुए सब्र और यकीन के साथ आगे बढ़ें तो फिर मुश्किलात में भी हमें भरोसा रहता है। इस तरह हम गुमराही से बचकर खैर के रास्ते पर गामजन रहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, सीरत में हमें इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं। एक मशहूर वाक़या है सुलह हुदैबिया का। बज़ाहिर ये मुआहदा मुसलमानों के लिए एक मुश्किल और कमज़ोर फैसला लग रहा था। कई सहाबा को तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों किया जा रहा है, लेकिन देखिए फिर लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला था उसको मान लिया और अल्लाह की इस हिकमत को कबूल कर ली। उस वक्त बज़ाहिर ये मुआहदा मुश्किल लगा, मगर बाद में यही मुआहदा आगे चलकर फतह मक्का की राह बनी। इससे हमें सबक मिलता है कि जब हम सब कुछ नहीं समझ पाते तब भी अल्लाह की तरफ से खैर का यकीन रखते हुए तहम्मुल और सब्र का रास्ता अपनाना चाहिए। मसला यह है कि जब आप सिर्फ साइंसदान बनकर कुरान की तफसीर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ मसाइल पैदा हो सकते हैं। सामने कराम, एक साइंसदान जिनका दीन की स्पिरिचुअल पावर से या दीन से कोई ताल्लुक नहीं, तो उनका भी यही कहना है कि हम सब कुछ नहीं जानते बल्कि इल्म वक्त के साथ आगे बढ़ता है। जहाँ अकल रुक जाती है वहाँ मजीद तलाश जारी रखते हैं। तो साइंसदान भी ये तस्लीम करते हैं कि कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारी

0: क्वेस्ट शो, सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar, दिल से देसी।

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बच्चों आप सब हैं मेरे पहले मुखातिब. आप सबको इस प्रोग्राम में तलहा शफ़ ज़मान की तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम. और बच्चों के अलावा दूसरे जो हमें सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर जो अम्मी अब्बू हैं, उन्हें भी हम इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, चूँकि उनके लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ तो है ज़रूर तरबियत के हवाले से. और बच्चों को हम कैसे कुरान सिखाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम का नाम है कुरान फॉर किड्स. ये वो प्रोग्राम है जहां हम कुरान पाक को आसानी, मोहब्बत, मुस्कराहट के साथ सीखने की कोशिश करते हैं. तो मेरे नन्हे दोस्तों, ज़रा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम तुम्हें बहुत मुश्किल लगा हो और कभी कोई काम बहुत आसान? होता है ना ऐसा? होता तो है ज़रूर. कभी होमवर्क मुश्किल लगता है, अरे ये काम तो मुझसे नहीं हो पा रहा, अरे ऐसा क्यों है? फिर कभी जल्दी उठना मुश्किल लगता है, अब नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि उठने को दिल ही नहीं चाह रहा. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कभी किसी बात को समझना आसान हो जाता है, यूं सुना और यूं समझ में आ गया. तो बच्चों, कुरान ये जो मुश्किल और आसान, तो इन दोनों के हवाले से इस बारे में कुरान ने बहुत प्यारा राज बताया है. कुरान हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला हमसे सख्ती नहीं चाहते, बल्कि वो हमसे क्या चाहते हैं? सख्ती के मुकाबिल क्या होगा? यानी आसानी. आसानी चाहते हैं. अल्लाह को खूब पता है कि हम थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम सफ़र में होते हैं और कभी कभी हमसे सब कुछ नहीं हो पाता ना. तो ये बात सभी को पता है और अल्लाह को तो ज़्यादा ही पता है. इसीलिए अल्लाह ने दीन को बोझ नहीं बनाया, बल्कि सहारा बनाया है, हिदायत के तौर पर इस दीन को भेजा है, हमारे लिए फ़र्ज किया है. यानी अगर इस दीन को हम फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान बनेगी. हाँ, अगर कोई इबादत मुश्किल हो जाए तो अल्लाह उसमें आसानी पैदा कर देते हैं. यूँ नहीं कि इबादत हर एक के लिए एक ही तरीके से लाजमी तौर पर ऐसा ही करना है, बात ऐसी नहीं. अल्लाह हमारे खालिक हैं और वो अपने बंदों को हम से भी ज़्यादा जानते हैं. प्यारे बच्चों, ज़रा ये बताओ कि जब दो काम सामने हों, एक आसान हो और दूसरा मुश्किल, तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे? क्या आ रहा है जहन में इस वक्त? क़ुरान तो हमें ये बताता है और ये सिखाता है कि जब दो काम सामने हों और एक आसान हो और दूसरा मुश्किल, तो अल्लाह को आसान रास्ता पसंद है. इस्लाम हमें तो ये सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई सहूलत को कबूल कर लो. यूँ नहीं कहना कि नहीं मुझे सहूलत नहीं चाहिए, ये वो, तो अल्लाह बड़े गुस्सा हो जाएंगे. तुम्हें सहूलत दी है इस वजह से कि तुम इसे कबूल करो. तो बच्चों, चलें आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी आयत सीखेंगे जो हमें बताती है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमें थकाना नहीं चाहते और अल्लाह चाहते हैं कि हम दीन को खुशी के साथ अपनाएं. तो सब तैयार है ना? आराम से बैठ जाओ बच्चों, दिल को हल्का कर लो और कुरान के इस खूबसूरत पैगाम के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं अल्लाह का दीन, जो आसानी का दीन है, मुश्किल का नहीं. आप लोग ज़रा सुकून से बैठ जाइए, अपने आंखें बंद करें, दिल को खामोश कर लीजिए, ठीक है ना? तो बच्चों, अब हम कुरान पाक की एक बहुत प्यारी आयत सुनने वाले हैं, तो अगर किसी को याद है तो बेहतर है, कम से कम याद ना हो तो दिल से सुनने की तो बेहद ज़रूरत है. दिल से सुनना है, सिर्फ यूँ नहीं कि मैंने सुन लिया और ख़त्म, नहीं, दिल से सुनना है, दिल के भी कान होते हैं. अच्छा, गौर से सुनो आज की आयत. युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र

0: सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मैत्राश ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। आरजे ए फॉर अमिता के साथ AI लॉक्ड पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड, आरजे ए फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की।
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।

क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का अल्लाह को इल्म है? कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई सरगोशी हो और उनके दरमियान चौथा अल्लाह न हो, या पांच आदमियों में सरगोशी हो और उनके अंदर छठा अल्लाह न हो। खुफिया बात करने वाले खाह इससे कम हो या ज्यादा, जहां कहीं भी वो हो, अल्लाह उनके साथ होता है। फिर कयामत के रोज वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफी है, उसी का वो ईंधन बनेंगे। बड़ा ही बुरा अंजाम है उनका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें नहीं, बल्कि नेकी और तकवा की बातें करो, और उस खुदा से डरते रहो जिसके हुजूर तुम्हें हश्र में पेश होना है। कानाफूसी तो एक शैतानी काम है, और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग उससे रंजीदा हों, हालांकि बे इज़्ने खुदा वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से तखलिये में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका दे दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा तर है। अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ न पाओ तो अल्लाह गफूर और रहीम है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तखलिये में गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें सदकात देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा न करो और अल्लाह ने तुमको उससे माफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो, जकात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर

तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज न निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी हरगिज मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालिफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के मानंद हैं जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक आजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरीउज़्ज़िम्मा हूं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएं, और जालिमों की यही जजा है।